ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्स एवं न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर। श्रोताओं, आज दिन शनिवार है। शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 30वीं तिथि, तदनुसार 20 जून सन 2026। इस समय प्रातः के 5:56 हो रहे हैं। अब हमारी आज की प्रातःकालीन सभा प्रारंभ होती है।

आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर। श्रोताओं, सुबह के 6 बजने को हैं। कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पश्चिम बंगाल और ओडिशा के दौरे पर रहेंगे। ओडिशा में वे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के 68वें जन्मदिन के मौके पर उनसे मुलाकात करेंगे। इसके बाद दोनों नेता एक जनसभा को संबोधित करेंगे। ये जनसभा ओडिशा सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित की जा रही है। पश्चिम बंगाल की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री हुगली के तारकेश्वर में पश्चिम बंगाल दिवस के समारोह में भागीदारी करेंगे। कोलकाता के रेड रोड पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे और देश में निर्मित 3 युद्धपोत दुनागिरी, अग्रय और संशोधक राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री लगभग 590 करोड़ रुपए की लागत की रेल परियोजनाओं, हावड़ा में 300 बिस्तरों वाले नए रेलवे अस्पताल और पूर्वी मिदनापुर में एक रेल ओवर ब्रिज सहित कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री 315 किलोमीटर से अधिक दूरी की प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 49 ग्रामीण सड़क परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में एक समारोह में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया। योजना का उद्देश्य रोजगार सृजन में तेजी लाना और सभी क्षेत्रों में सामाजिक सुरक्षा का विस्तार करना है। श्री मोदी ने कहा कि इस योजना का लक्ष्य पहली बार रोजगार पाने वालों को सशक्त बनाना और युवाओं तथा उद्योग के बीच सेतु का निर्माण करना है।
1: दुनिया भारत के युवाओं की क्षमता को भली भांति पहचानने लगी है और ऐसे समय में हमारी कोशिश है कि भारत का हर युवा अपनी क्षमता को अवसर में बदल सके और इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का आरंभ हुआ।
0: देश में कोयले से अमोनियम नाइट्रेट बनाने का पहला वाणिज्यिक संयंत्र ओडिशा के झारसुगुड़ा जिले में 25,000 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इस कोयला गैसीकरण परियोजना की आधारशिला रखेंगे। ये परियोजना BHEL की स्वदेशी रूप से विकसित कोयला गैसीकरण तकनीक का उपयोग करके प्रतिदिन 2,000 टन अमोनियम नाइट्रेट का उत्पादन करेगी। सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि तय फुटपाथ पर चलने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि किसी नागरिक का तय किए गए फुटपाथ

0: पर चलने का मौलिक अधिकार प्राथमिक है और मोटर वाहनों की आवाजाही की तुलना में इसे प्राथमिकता दी जाएगी। न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि यह अनुच्छेद 21 जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार सहित अनुच्छेद 19 और अन्य मौलिक अधिकारों के अंतर्गत गारंटीकृत आवाजाही के अधिकार का हिस्सा है। एक दुखद मोटर दुर्घटना के क्षतिपूर्ति मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह फैसला सुनाया। अपने 5 वर्षीय पुत्र को पिता द्वारा स्कूल ले जाते समय कथित दुर्घटना में बच्चे की मौत हो गई थी। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने विश्व के मौजूदा अस्थिर दौर में राष्ट्रीय हितों, रणनीतिक स्वायत्तता और विविध मतों के साथ संतुलन बनाए रखते हुए सभी देशों के साथ बेहतर संबंधों पर बल दिया। कल शाम नई दिल्ली में भारत अमेरिका फोरम को संबोधित करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने जटिलताओं और चुनौतियों का सामना करते हुए विभिन्न क्षेत्रों में भारत और अमरीका की साझेदारी मजबूत करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि प्रगति के साथ साथ भारत के हितों का भी विस्तार होगा और विविधता बढ़ेगी। वरिष्ठ नौकरशाह विवेक अग्रवाल को वर्ष 2026-27 के लिए वित्तीय कार्रवाई कार्यबल का उपाध्यक्ष चुना गया है। वे ब्रिटेन के गाइल्स थॉमसन का स्थान लेंगे। श्री अग्रवाल वर्तमान में संस्कृति मंत्रालय में सचिव हैं। वे वित्तीय कार्रवाई कार्यबल में भारतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व कर चुके हैं तथा धन शोधन और आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने पर अंकुश रखने वाली वैश्विक संस्था के साथ महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुके हैं। 17 से 19 जून के दौरान कार्यबल की पूर्ण बैठक में यह निर्णय लिया गया। विदेश मंत्रालय ने श्री अग्रवाल के चयन को भारत के लिए एक बड़ी विजय बताया है। मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस नियुक्ति से आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने और गैरकानूनी वित्तीय नेटवर्क के खिलाफ संघर्ष की बात की भारत की प्रतिबद्धता मजबूत होती है। श्री गाइस थॉमसन को कार्यबल का अगला अध्यक्ष नियुक्त किए जाने का निर्णय हुआ है। भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच आज दोपहर चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा। मेजबान टीम 2-0 की बढ़त के साथ पहले ही श्रृंखला अपने नाम कर चुकी है। दोहा डायमंड लीग में भारत के जेवलिन खिलाड़ी नीरज चोपड़ा कतर में 4th स्थान पर रहे। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर। इस समय सुबह के 6:05 हो रहे हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। कार्यक्रम में सबसे पहले सुनते हैं संवित स्वर में ये देश गान।

भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के आगरा केंद्र से। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति हरिओम शरण की आवाज में।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे सुमन कल्याणपुर, बाबला मेहता, हरिओम शरण और साथियों की आवाज़ों में कुछ भक्ति रचनाएं। इसी के साथ ही भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर। इस समय सुबह के 6:25 हो रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम चिंतन। कार्यक्रम में आइए सुनते हैं गोस्वामी तुलसीदास के विचार।
1: अहंकार की अग्नि में दहत सकल संसार, तुलसी बाचे संत जन केवल साथ आधार। वर्तमान युग भौतिकता का है। मनुष्य ने वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति के द्वारा जो कुछ पाया है उससे बहुत अधिक खोया है। उसने अपने अहंकार से अपने मानवीय गुणों को क्षति पहुंचाई है। गोस्वामी जी का यह कथन मानव की उसी परिणति की चेतावनी थी जो हमारे आपके सामने प्रत्यक्ष है। यूं तो इस अहंकार की आग ने आरंभ से ही इस विश्व को जलाया है, किंतु भौतिक उन्नति के इस युग में अपने अहंकार के उन्माद में वह जल ही नहीं रहा है, बल्कि नष्ट होने के कगार तक पहुंच गया है। ऐसे में गोस्वामी जी के कथनानुसार केवल वे सज्जन व्यक्ति ही सुरक्षित रह सकते हैं जिन्होंने शांति को अपने जीवन का आधार बनाया हो। शांति बाहर की नहीं, भीतर की, जो अहंकार के हर प्रहार का कवच है, जो हमें न किसी में आसक्त रहने देती है और न किसी के प्रति द्वेष भाव रखने की छूट देती है। राग और द्वेष से रहित मन ही व्यक्ति की महानता का प्रतीक बन जाता है। वो विद्वान कैसा जो मोह या ईर्ष्या का भाव रखता हो, वह योद्धा कैसा जो फल के प्रति अनासक्त न हो, वह तत्वज्ञानी कैसा जो बैरागी न हो, वह गुणवान कैसा जो विवेकवान न हो। सच तो यह है कि जैसे ही व्यक्ति अपने और पराए की भावना से जुड़ जाता है, उसकी मानवीय गरिमा समाप्त हो जाती है। राग और द्वेष से मुक्त मन ही व्यक्ति को मनुष्य बनाता है। किंतु प्रश्न यह है कि मन को राग और द्वेष से मुक्त बनाने में किस उपाय को स्वीकार किया जाए। यह उपाय है विवेक।

विवेक अर्थात नीर क्षीर विवेक, उचित और अनुचित का निर्णय करने की क्षमता। आज जबकि अपने पूर्व ग्रहों, रुझानों तथा प्रतिबद्धताओं से बंधा व्यक्ति जब उचित और अनुचित का निर्णय करने की अपनी क्षमता खो चुका है, उसकी विवेक दृष्टि धुंधला गई है, ऐसे में गोस्वामी जी द्वारा विवेक के महत्व का प्रतिपादन निश्चय ही उसे यह सोचने को बाध्य कर सकता है कि हम विवेक के प्रकाश में जीवन का पथ निर्धारित करें, तभी हम अपने समाज, देश या विश्व के विकास में रचनात्मक सहयोग दे पाएंगे। यह विवेक का प्रकाश जहां अच्छी और बुरी प्रवृत्तियों की पहचान कराएगा, वहां हम इसके द्वारा सुपात्र और कुपात्र को भी पहचान सकेंगे। सच तो यह है कि कुपात्र के सम्मुख अच्छे गुणों की उपस्थिति या सद्व्यवहार का कोई महत्व नहीं होता। हमें दूसरे व्यक्ति से व्यवहार करते समय उसकी सुपात्रता या कुपात्रता का निर्धारण कर लेना चाहिए। सामान्यतः होता यह है कि अपने निजी रुझानों या बाहरी दबावों के कारण हम व्यक्ति की शक्ति और सीमाओं का सही मूल्यांकन नहीं कर पाते। परिणाम यह होता है कि उससे हमें या तो छल मिलता है या निराशा। यदि हम गोस्वामी जी के इस कथन को ध्यान में रखें तो अपने सामाजिक व्यवहार में ऐसा संतुलन बनाए रख सकते हैं जो विवेक पट्टिका होता है। हमारे संतों और मनीषियों ने सेवा को धर्म का एक अंग माना है। जिस प्रकार से धर्म एक साधना है, उसी प्रकार सेवा भी साधना है, तपस्या है। वास्तव में आज जीवन की विडंबना यह है कि वो सेवा धर्म को धीरे धीरे भूलता जा रहा है। हम में स्वामी बनने की जितनी रुचि है, उतनी सेवक धर्म को निभाने की नहीं। भौतिक सुखों और संपत्ति को पाने के लिए हम जितने प्रयत्नशील रहेंगे, वो हमसे उतना ही दूर भागेगी। हमारा कर्तव्य यह है कि हम अनासक्त भाव से अपना कर्तव्य करते रहें। तब हमें जो कुछ मिलेगा उसका अहंकार नहीं होगा, और नहीं मिल पाया उसके लिए कुंठा और निराशा नहीं होगी। तभी हम समाज, राष्ट्र और विश्व के कल्याण के लिए स्वयं को समर्पित कर सकेंगे।

अभी आप सुन रहे थे गोस्वामी तुलसीदास के विचार। इसके साथ ही कार्यक्रम चिंतन अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है, मीडियम वेव 196.1 मीटर पर। इस समय सुबह के 6:30 हो रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण। अब से थोड़ी ही देर में यानी 6:35 पर आप सुनेंगे श्री रामचरितमानस गान। गायक कलाकार होंगी रंजना जोगेलकर, संगीतकार होंगे सतीश भाटिया। खेती की बातें कार्यक्रम में 6:45 पर सुनेगा पशुओं में बांझपन रोग विषय पर डॉक्टर एस के सिंह की वार्ता।

सुबह 7:10 पर स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में आप सुनेंगे स्तन की गांठ एवं उपचार विषय पर डॉक्टर मधुराजपाल की वार्ता। आसपास की गतिविधियों पर आधारित सूचना परक कार्यक्रम आसपास आप सुन सकेंगे 7:31 पर। सदाबहार फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि सुना जा सकेगा 8:45 पर और पुरानी फिल्मों से फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत मंजूषा आप सुन सकेंगे 9:25 पर। 9:45 पर कार्यक्रम लोक संगीत में आप सुनेंगे सुखलेश देवी के गाए कुछ लोकगीत। आपके साथ संगत करता होंगे ढोलक पर राधा मोहन शर्मा, हारमोनियम पर दीनदयाल शर्मा, साइड रिदम पर राजकुमार पांडे। सदाबहार फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुरसरिता सुना जा सकेगा 10:00। 10:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आप सुन सकेंगे वसीम अहमद खां का राग बैराग।

की भैरव में ख्याल गायन। सुबह 11 बजे कार्यक्रम आज के कलाकार में आप सुनेंगे चरित्र अभिनेत्री सुषमा सेठ के बारे में। समसामयिक विषयों पर आधारित कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत सुना जा सकेगा सुबह 11:30 पर। कार्यक्रम में आज का विषय रहेगा प्रकृति से जुड़कर स्वस्थ रहने की पद्धति है योग। दोपहर 12 बजे कार्यक्रम लोक मंजरी में सुनेगा सीलो के गाए कुछ लोकगीत। कार्यक्रम नए तराने आप सुन सकेंगे दोपहर 12:30 पर।

दोपहर 1:15 पर कार्यक्रम पनघट में ग्रामीण अंचल की बहनें सुनेंगी लघु उद्योग और रोजगार सृजन एवं विश्व शरणार्थी दिवस पर चर्चाएं। साथ ही सुनवाई जाएगी खुशबू गांधी की वार्ता, विषय होगा बच्चों की बेहतर परवरिश कैसे करें। लोकगीतों के अलावा सुनेगा आपकी रसोई और दादी का बटुआ। सुगम संगीत के कार्यक्रम में 1:45 पर आप सुन सकेंगे शोम्पा गांगुली के गाए कुछ गीत व भजन। 2:30 पर उपशास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सुनेगा शिप्रा बोस का राग तिलंग में गायन। पुरानी फिल्मों से फिल्म संगीत का कार्यक्रम भूले बिसरे गीत सुना जा सकेगा 2:45 पर। कार्यक्रम गीत गुंजन का प्रसारण समय रहेगा 3:00। श्रोताओ, ये था कार्यक्रम विवरण। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर। इस समय स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 6:35 हो रहे हैं। प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस गान, गायक कलाकार हैं रंजना जोगलेकर, संगीतकार हैं सतीश भाटिया।

स्वयंभुव मनु से मनुष्यों की अनुपम सृष्टि हुई मानी जाती है। महाराज मनु ने दीर्घ काल तक राज्य किया। राजकाज करते हुए बुढ़ापा आ गया, किंतु विषयों से वैराग्य नहीं हुआ, ये सोच मनु अत्यंत दुखी हुए। उन्होंने राजकाज का भार अपने पुत्र को सौंपा और अपनी रानी शत्रुपा को साथ लेकर वन गमन किया। अत्यंत पवित्र और साधकों को सिद्धि देने वाले तीर्थ नैमिषारण्य को, जहां मुनियों और सिद्धों के समूह बसते थे, मनु शत्रुपा ने अपना निवास स्थान बनाया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 12 अक्षरों वाले इस मंत्र का जाप उनकी तपस्या का आधार था। आरंभ में मनु दंपति साग फल तथा कंद का अल्पाहार करते थे, फिर फलमूल त्याग कर केवल जल पीकर रहने लगे। मन में मात्र एक उत्कट अभिलाषा कि किसी प्रकार उन परम प्रभु को देखें जो निर्गुण अखंड अनंत और अनादि हैं।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान। गायक कलाकार थी रंजना जोगिलकर, संगीतकार थे सतीश भाटिया। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है, मीडियम वेव 196.1 मीटर पर। श्रोताओ, अब समय है कार्यक्रम खेती की बातें का। कार्यक्रम में आइए सुनते हैं पशुओं में बांझपन रोग विषय पर डॉक्टर एस के सिंह की वार्ता।
1: प्रिय किसान बंधुओं, पशुओं में बांझपन का होने के कई कारण हैं, जैसे कि मादा पशुओं जैसे गाय या भैंस का गर्मी में नहीं आना। साधारणतः गर्भित मादा पशु शांत रहते हैं और उनमें गर्मी के लक्षण नहीं पाए जाते। इसी प्रकार प्रायः ब्याने के 2 या 3 माह तक भी पशु गर्मी में नहीं आते, परंतु इसके पश्चात गर्मी के लक्षण नहीं दिखने पर मादा पशु को बांझपन का रोग हो सकता है। मादा पशुओं के जनन अंगों में स्थित रजग्रंथि पर गांठ या मस्से हो जाने पर भी पशु गर्मी में नहीं आते और ऐसी दशा में कुशल पशु चिकित्सक की सहायता अवश्य लेनी चाहिए। इसी प्रकार कुछ मादा पशुओं का ऋतुकाल छोटा होता है, विशेषकर ओसर, बछिया और पाड़ियों में, जिसकी वजह से पशुपालक अपने पशुओं में गर्मी के लक्षण ठीक प्रकार से देख नहीं पाते और उनके पशु गर्भित होने से वंचित रह जाते हैं। अतः ऐसे मादा पशु जो देरी से गर्मी में आते हैं या बिल्कुल गर्मी के लक्षण नहीं दिखाते, उन्हें पशु चिकित्सक को दिखाकर बांझपन की चिकित्सा करानी चाहिए। इसके अतिरिक्त जिस नर अथवा मादा पशुओं के खान पान का शुरू से ध्यान न दिया जावे, वैसे पशुओं में भी बांझपन के रोग हो सकते हैं। पशु चारे में उचित मात्रा में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, वसा न होने पर एवं लगातार कई दिनों तक ऐसा चारा बढ़ते बछियों और पाड़ियों द्वारा खाए जाने पर उनकी शारीरिक वृद्धि में देरी होती है, फलस्वरूप जननांगों का उचित विकास नहीं होता और मादा पशु देरी से ऋतुकाल के लक्षण दिखाते हैं अथवा बिल्कुल नहीं दिखाते। अतः यहाँ पर पशुपालकों को चाहिए कि वे प्रारंभ से ही अपने पशुओं को अच्छा पौष्टिक चारा दें, जिससे उचित मात्रा में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, विटामिन एवं खनिज लवण पशुओं को प्राप्त हों। पौष्टिक आहार खिलाने से पशुओं की शारीरिक वृद्धि में काम आने वाली हार्मोन ग्रंथियां भली प्रकार से कार्य करती हैं और उनसे पर्याप्त मात्रा में हार्मोन शरीर को प्राप्त होता है, जो कि पशुओं को बांझपन रोग से बचाते हैं। किसान बंधु अपने पशुओं के चारे में हरे चारे को अवश्य शामिल करें, क्योंकि इसमें विटामिन ए बहुतायत होता है, जो कि पशुओं की प्रजनन क्षमता को बढ़ाने के लिए आवश्यक है। इसके अलावा सादा नमक 50 ग्राम तथा 100 ग्राम खड़िया मिट्टी भी पशुओं के चारे में प्रतिदिन मिलाने से पशुओं की शारीरिक वृद्धि और प्रजनन क्षमता के लिए आवश्यक खनिज जैसे सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम, फास्फोरस व विटामिन डी आदि प्राप्त होते हैं। आजकल बाजार में बने बनाए खनिज लवण के मिश्रण भी दवा की दुकानों पर उपलब्ध हैं, जिसकी 25 से 50 ग्राम की मात्रा चारे में प्रतिदिन डाल

0: कर पशुओं को खिलाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त पशुओं में होने वाले दीर्घकालिक रोग भी बांझपन रोग का कारण हैं, जैसे कि पशुओं के शरीर के बाहर व भीतर पाए जाने वाले परजीवी एवं टीबी जैसे रोग जो कि पशुओं के शरीर को कमजोर बनाते हैं और जिसके कारण पशुओं की प्रजनन क्षमता घट जाती है। ऐसी दशा में भी पशु चिकित्सक की सलाह से रोगी पशु की उचित चिकित्सा करानी चाहिए। दीर्घकालिक रोगों के अतिरिक्त गाय और भैंसों के गर्भाशय में पाए जाने वाली सूजन भी बांझपन का एक मुख्य कारण है। गर्भाशय की सूजन जीवाणु और विषाणु के संक्रमण द्वारा होती है और यह संक्रमण कई कारणों से हो सकती है, जैसे कि गर्भाशय में घाव होना या ब्याते समय गर्भाशय के रास्ते में रुकावट होना अथवा गर्भ का गिरना अथवा जेर का भीतर रुक जाना तथा पशुग्रह का वातावरण स्वच्छ न होना। गर्भाशय की सूजन होने पर गर्भाशय के भीतर मवाद बनने लगती है और पशु के शरीर से दुर्गंध आने लगती है तथा योनि द्वार से सफ़ेद पीला अथवा लाल रक्त मिश्रित स्राव बाहर आने लगता है जो कि गर्भाशय के सूजन की पहचान है। ऐसी दशा में पशु चिकित्सक की सहायता से गर्भाशय की सफाई कराने के पश्चात कुछ एंटीबायोटिक दवाओं का प्रयोग कराना भी आवश्यक हो जाता है। गर्भाशय की सूजन के अलावा गर्भधारण में रुकावट संबंधी कुछ कारण भी बांझपन का रोग पशुओं में उत्पन्न कर सकते हैं, जैसे कि रज कण तथा शुक्राणुओं के आकार प्रकार में असमानता होना, रजवाहिनियों के रास्ते में रुकावट होना। वैज्ञानिक अध्ययनों से पता चला है कि रजस्खलन होने के 2 से 8 घंटे के भीतर वीर्यदान कराने पर रजकणों को शुक्राणुओं द्वारा गर्भित कराने में 70% तक सफलता मिलती है। अतः यहाँ पर पशुपालकों को सलाह दी जाती है कि मादा पशु के गर्मी में आने पर इसे 10 से 12 घंटे पश्चात ही वीर्यदान करावें, क्योंकि रजकण की आयु शुक्राणुओं की आयु से कम होती है। निश्चित गर्भधारण के लिए यह भी आवश्यक है कि उत्तम प्रजनन क्षमता वाले सांड का वीर्य उपयोग में लाया जाए। ऐसे सांडों के रख रखाव और उनके उचित पोषण पर ध्यान दिया जाना भी आवश्यक है ताकि उनकी दीर्घकाल तक प्रजनन क्षमता बनी रहे। गर्भित मादा पशुओं के गर्भाशय में पल रहे भ्रूण के रोग ग्रस्त हो जाने पर भ्रूण नष्ट हो जाता है तथा यह भी बांझपन का कारण हो सकता है। ट्राइकोमोनाज, विब्रियो और ब्रुसेला नामक जीवाणुओं के कारण भ्रूण रोग ग्रस्त हो सकते हैं, अतः इन बीमारियों से बचाव के लिए गर्भधारण से पूर्व मादा पशुओं को टीका लगवाना चाहिए। मैं अंत में बांझपन के रोगों का प्रसार रोकने के लिए कुछ सुझाव देता हूँ। सबसे पहले पशुओं में नज़दीकी रिश्ते वाले संसर्ग को रोकना चाहिए, जिसे अंग्रेजी में इनब्रीडिंग कहते हैं, जिससे कि अवांछित आनुवांशिक गुणों को अगली पीढ़ी में जाने से रोका जा सके जो कि बांझपन का कारण बनते हैं। दूसरा उपाय अच्छे रखरखाव का होना चाहिए और इसके लिए पशुपालक को अपने प्रत्येक प्रजनन योग्य पशुओं का ब्रीडिंग रिकॉर्ड रखना चाहिए। इस रिकॉर्ड में पशु की जन्म से प्रजनन योग्य आयु तक नापा गया वजन व पहले ऋतुकाल की तिथि, वीर्यदान की तिथि, सांड का नाम, गर्भ जांच की तिथि, ब्याने की तिथि दर्ज होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त पशुपालक को सवेरे पशुगृह में स्थित गाय अथवा भैंसों का निरीक्षण करते हुए देखना चाहिए कि पशु के योनि द्वार से बाहर आने वाले स्राव का रंग कैसा है। यदि सफ़ेद चमकीला स्राव है तो ऐसे मादा पशु को गर्मी में समझना चाहिए और उसके गर्भधारण हेतु प्रयास करना चाहिए। किसी गाय या भैंस को ब्याने के 60 दिन के पश्चात ही गर्भधारण कराना चाहिए ताकि गर्भाशय पूर्ण रूप से सिकुड़ सके। जिस गाय या भैंस का गर्भपात हो गया हो अथवा जेर भीतर रह गई हो उसे 3 से 4 माह के पश्चात ही गर्भित करवाना चाहिए। इसी प्रकार एक सांड द्वारा 3 बार से अधिक गर्भधारण कराने पर यदि गाय गर्भित न हो तो उसे किसी अन्य सांड के पास ले जाना चाहिए। इसी प्रकार सुबह गर्मी के लक्षण दिखाने वाली गाय अथवा भैंस को सायंकाल में तथा सायंकाल में गर्मी के लक्षण दिखाने वाले पशु को सवेरे गर्भित कराना ठीक रहता है। 250 किलोग्राम शारीरिक वजन से ऊपर की ओसर बछिया को गर्भित कराना ठीक रहता है। सभी गर्भित गाय अथवा भैंस का दूध ब्याने से 2 माह पूर्व निकालना बंद कर देना चाहिए। हमें आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि बांझपन के रोग संबंधी इन सभी बातों का ध्यान रखकर हमारे किसान भाई अवश्य लाभान्वित होंगे।
1: श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे पशुओं में बांझपन रोग विषय पर डॉक्टर एस के सिंह की वार्ता। इसी के साथ ही कार्यक्रम खेती की बातें अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर।

अधिक पेड़ लगाएं, हरियाली बढ़ाएं, प्रदूषण घटाएं, पर्यावरण बचाएं। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर। श्रोताओं, सुबह के 6:55 होने को हैं। कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से हमारा अगला प्रसारण।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से ओडिशा और पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। ओडिशा में वे आज मयूरभंज जिले के पहाड़पुर गांव में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से उनके 68वें जन्मदिन पर भेंट करेंगे। इसके बाद राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मयूरभंज जिले के रायरंगपुर में मोहन चरण मांझी सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे। इस दौरान वे 47,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। पश्चिम बंगाल के 2 दिन के दौरे में आज प्रधानमंत्री हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंग दिवस समारोह में शामिल होंगे। वे राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। श्री मोदी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त भी जारी करेंगे। कल प्रधानमंत्री कोलकाता में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में भाग लेंगे। देश में कोयले से अमोनियम नाइट्रेट बनाने का पहला वाणिज्यिक संयंत्र ओडिशा के झारसुगुड़ा जिले में 25,000 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इस कोयला गैसीकरण परियोजना की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में एक समारोह में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2,400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया। योजना का उद्देश्य रोजगार सृजन में तेजी लाना और सभी क्षेत्रों में सामाजिक सुरक्षा का विस्तार करना है। श्री मोदी ने कहा कि इस योजना का लक्ष्य पहली बार रोजगार पाने वालों को सशक्त बनाना और युवाओं तथा उद्योग के बीच सेतु का निर्माण करना है।
1: दुनिया भारत के युवाओं की क्षमता को भली भांति पहचानने लगी है और ऐसे समय में हमारी कोशिश है कि भारत का हर युवा अपनी क्षमता को अवसर में बदल सके और इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का आरंभ हुआ।
0: गृहमंत्री अमित शाह आज कोल्हापुर और इचलकरंजी के दौरे पर हैं। वे महालक्ष्मी मंदिर परिसर में विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन करेंगे और मंदिर क्षेत्र में पश्चिमी महाराष्ट्र मंदिर विकास योजना के तहत चल रही विकास परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। श्री शाह कोल्हापुर के पुलिस परेड ग्राउंड में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने विश्व के मौजूदा अस्थिर दौर में राष्ट्रीय हितों, रणनीतिक स्वायत्तता और विविध मतों के साथ संतुलन बनाए रखते हुए सभी देशों के साथ बेहतर संबंधों पर बल दिया है। कल शाम नई दिल्ली में भारत अमेरिका फोरम को संबोधित करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने जटिलताओं और चुनौतियों का सामना करते हुए विभिन्न क्षेत्रों में भारत और अमरीका की साझेदारी मजबूत करने पर जोर दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने बैंकों, परिसंपत्ति पुनर्गठन

0: ईंधन कंपनियों और ऋण लेने वालों के बीच साजिश पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। न्यायालय ने डूबे ऋण को निपटाने के तरीके पर भी सवाल उठाए। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति वी मोहन की पीठ ने कहा कि बैंक करदाताओं के पैसे ऋण के रूप में दे रहे हैं, लेकिन वसूलने के प्रभावी उपाय नहीं किए गए हैं। अदालत ने जनता के पैसे के दुरुपयोग पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि इस राशि का उपयोग जनकल्याण में होना चाहिए। वरिष्ठ नौकरशाह विवेक अग्रवाल को वर्ष 2026-27 के लिए वित्तीय कार्रवाई कार्यबल का उपाध्यक्ष चुना गया है। वे ब्रिटेन के गाइल्स थॉमसन का स्थान लेंगे। श्री अग्रवाल वर्तमान में संस्कृति मंत्रालय में सचिव हैं। 17 से 19 जून के दौरान कार्यबल की पूर्ण बैठक में यह निर्णय लिया गया। विदेश मंत्रालय ने श्री अग्रवाल के चयन को भारत के लिए बड़ी जीत बताया है। उत्तर प्रदेश ब्रिक्स देशों के साथ व्यापार, प्रौद्योगिकी और निवेश संपर्क बढ़ा रहा है। राज्य सरकार ने बताया है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान ब्रिक्स देशों और साझेदार देशों को 5 अरब 36 करोड़ डॉलर मूल्य से अधिक का निर्यात किया गया। आगरा में ब्रिक्स एमएसएमई फोरम में ब्रिक्स देशों और सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम क्षेत्र के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा और अंतिम एकदिवसीय क्रिकेट मैच आज दोपहर चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा। मेजबान टीम 2-0 की बढ़त के साथ पहले ही श्रृंखला अपने नाम कर चुकी है। दोहा डायमंड लीग में भारत के जेवलिन खिलाड़ी नीरज चोपड़ा कल रात सीजन की पहली प्रतियोगिता में चौथे स्थान पर रहे। नीरज चोपड़ा ने अपने तीसरे प्रयास में 85.69 मीटर भाला फेंककर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Naresh Mago. Prime Minister Narendra Modi will be on a visit to Odisha and West Bengal from today. In Odisha, he will join President Draupadi Murmu at Pahadpur village in Mayurbhanj district on the occasion of the President's 68th birthday. The President and Prime Minister will visit Pahadpur and offer prayers at sacred groves Santhali Jahera and Ho Jahera Skill Center and Pahadpur School. Later, they will participate in a program at Rai Rangpur in Mayurbhanj district, marking the completion of 2 years of the Mohan Charan Majhi-led state government. During the program, they will inaugurate and lay the foundation stones of various development projects worth over 47,000 crore rupees. During his 2-day visit to West Bengal, the Prime Minister will participate in Paschim Banga Divas West Bengal Day celebrations at Tarakeshwar in Hooghly district today. He is also scheduled to launch, dedicate to the nation and lay the foundation stones of multiple development projects in West Bengal. Mr. Modi will release the 23rd installment of the Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi, PM Kisan. India's senior bureaucrat Vivek Agarwal has been selected as the next vice president of the Financial Action Task Force, FATF, for the 2026-27 term. He will succeed Giles Thompson of the United Kingdom. Mr. Agarwal, currently serving as secretary in the Ministry of Culture, earlier headed the Indian delegation to the FATF and played a key role in India's engagement with the global anti-money laundering and counter-terror financing watchdog. The decision was made during the FATF plenary held from 17th to 19th June. The Ministry of External Affairs has termed Mr. Agarwal's selection a major win for India. In a social media post, the ministry spokesperson Randhir Jaiswal said, "The appointment reinforces India's relentless focus on combating global terrorist financing networks and dismantling illicit financial systems." The National Testing Agency, NTA, has said that it is fully prepared for the smooth, fair and transparent conduct of the National Eligibility Cum Entrance Test, NEET UG 2026, re-examination, which is scheduled for tomorrow. In a statement, NTA said that the exam will be conducted across 551 cities in India and 14 cities abroad for over 22.79 lakh candidates. The agency noted more than 2 lakh personnel, including observers, coordinators, police forces and administrators, have been deployed. The Securities and Exchange Board of India, SEBI, has approved a series of reforms aimed at

0: improving market efficiency, easing compliance requirements, and strengthening regulatory frameworks across the financial sector. At the 214th meeting of SEBI held in Mumbai yesterday, the SEBI board simplified the transmission of securities for legal heirs and claimants that are in the name of deceased investors. The decision was taken to introduce a new quick transmission processing category for small value claims to enable faster processing with reduced documentation. The regulator has also enhanced simplified documentation limits, removed mandatory PAN submission in certain cases, and accepted QR code-enabled death certificates to ease verification. SEBI has also approved the reintroduction of open market share buybacks through stock exchanges from 1st August this year with revised timelines and stricter compliance norms. The board has also allowed mutual funds to undertake intraday borrowings to manage temporary liquidity mismatches. The Supreme Court has expressed serious concern over what it described as a deep-rooted nexus between banks, asset reconstruction companies, and borrowers, questioning the manner in which large loan defaults are being settled. A bench comprising Chief Justice Suryakant and Justice V. Mohan observed that public money collected from taxpayers is being lent through banks, but effective efforts are often not made to recover these dues. The court said that it was concerned about the misutilization of public money, which should have been spent for the welfare of people. In cricket, the third and final ODI between India and Afghanistan will be played at the M.A. Chidambaram Stadium in Chennai this afternoon. The match is scheduled to begin at 1:30 p.m. The hosts have already secured the series with a 2-0 lead and will be aiming to complete a clean sweep of the three-match series. And that is the end of this news bulletin.
1: आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर। इस समय सुबह के 7:10 हो रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा। कार्यक्रम में आइए सुनते हैं स्तन की गांठ एवं उपचार विषय पर डॉक्टर मधु राजपाल की वार्ता।
2: स्तन की गांठ किसी भी महिला के लिए चिंता का विषय बन सकती है। आज हमारे देश में स्तन का कैंसर दूसरे नंबर पे कॉमन है और जैसा कि हम सब जानते हैं कि कैंसर में जल्दी पता लगा लेने और इलाज ले लेने में ही मरीज की भलाई होती है। लेट स्टेज में डॉक्टर के पास पहुंचने पर यह बीमारी जानलेवा साबित हो सकती है। स्तन की गांठ दो प्रकार की होती है, एक तो बेनाइन यानी कि जो कैंसर नहीं है और दूसरी कैंसर। बिनाइन गांठों में सबसे कॉमन टाइप की होती है फाइब्रोएडिनोमा। यह छोटी गांठ होती है जो कि स्तन में किसी भी उम्र पे, खासतौर से छोटी उम्र की लड़कियों को ज़्यादा होती है। इसमें गांठ मोबाइल होती है यानी कि अंदर से या खाल से जुड़ी हुई नहीं होती है और मरीज को कोई दर्द नहीं महसूस होती है। हालांकि यह खतरनाक गांठ नहीं है, लेकिन फिर भी कोई भी गांठ महसूस होने पर डॉक्टर के पास जाना जरूरी है और अगर डॉक्टर राय देता है कि इसको निकलवा देना चाहिए तो वो अच्छी बात है, क्योंकि बाद में इसमें भी कैंसर होने की संभावना हो सकती है। दूसरी एक बिनाइन कंडीशन होती है, स्त्रियों में 35 से 40 साल की उम्र के आसपास स्तनों में दर्द होता है। यह दर्द ज़्यादातर 15वें दिन के बाद से शुरू होता है और महीना होने के बाद में ठीक हो जाता है और छोटी छोटी गांठें अंदर महसूस होती हैं। यह भी कोई खतरनाक स्थिति नहीं है, यह एक हार्मोनल कंडीशन है जो कि सादी दवाई देने से ठीक हो जाती है। अगर परेशानी ज़्यादा है तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए और दवाई लेकर के अपने को ठीक कर लेना होता है। तीसरी जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और जिसके बारे में मैं बताना चाहती हूँ वह है स्तन का कैंसर। यह गांठें खराब टाइप की होती हैं और इनके साथ खास बात यह है कि इनमें दर्द नहीं होता है, इसलिए मरीज डॉक्टर के पास जाने में देरी करता है। तो स्त्रियों, कोई भी गांठ अगर स्तन में महसूस हो रही है तो घर पर बैठे नहीं रहना है और डॉक्टर को जाकर के रिपोर्ट करना है। इसके लिए एक मैं बहुत अच्छी चीज़ आप लोग को सिखाती हूँ, सेल्फ एग्जामिनेशन, अपने आप को चेक करना। हर महीने से निपटने के बाद एक बार अपने आप को आप चेक करना सीखिए। चेक करने में अपने हाथ की उंगलियों से दबा दबा कर दोनों स्तनों को पूरा अच्छे से महसूस करना है कि कहीं कोई गांठ तो नहीं दिख रही है, कहीं कोई गांठ जो खाल से चिपकी हो या अंदर चिपकी हो

0: या कोई भी गांठ महसूस हो रही हो, चाहे उसमें दर्द ना हो, पर आपको डॉक्टर के पास जाना है। और इस प्रकार की गांठ खतरनाक साबित हो सकती है। कोई भी छोटे छोटे अंदर की तरफ को दर्द भरे हुए लिम्फ नोड्स महसूस होते हैं, तब भी जाना पड़ता है डॉक्टर के पास में। और अगर डॉक्टर देख करके, कुछ चेकिंग करके बताता है कि यह कैंसर है, तो उसका उचित उपचार लेना चाहिए, क्योंकि सही समय पर लिया हुआ उपचार आपकी जान बचा सकता है। जांचों में डॉक्टर ज़्यादातर वहाँ से छोटा सा टुकड़ा लेकर के या पानी लेकर के जांच के लिए भेजते हैं, और देखते हैं कि यह कैंसर तो नहीं है। दूसरा, वहाँ का खास एक्सरे होता है, जिसको मैमोग्राफी कहते हैं, वो करा कर देख लेते हैं। अल्ट्रासाउंड करके हम लोग देख लेते हैं, और अगर इन सब जांचों में आता है कि कैंसर है, तो डॉक्टर राय देते हैं कि वह स्तन निकाल देना चाहिए। और अगर वो ऐसी राय देते हैं, तो आप करवा लीजिए। और कभी कभी जब स्टेज ज़्यादा होती है, तो इसमें कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी की भी सलाह दी जाती है। तो बहनों, आपने देखा कि स्तन की गांठ, अगर हम ठीक समय पर इसका उपचार करा लें, तो जानलेवा नहीं है, और हम खुद जांच करके इसके बारे में पता लगा सकते हैं। इसलिए यह कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिससे हम शर्माएं और हम डॉक्टर के पास ना जाएं। अगर हम ठीक समय पर पहुंच जाते हैं, तो हम ठीक हो सकते हैं।
1: अभी आप सुन रहे थे स्तन की गांठ एवं उपचार विषय पर डॉक्टर मधुराज पाल की वार्ता। इसी के साथ ही कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। आइए अब सुनते हैं संवित स्वर में ये देश गान।

0: नहीं डरूंगा, केवल भगवान से डरूं। मैं किसी के प्रति बुरा भाव न रखूं, मैं किसी के अन्याय के समक्ष झुकूं नहीं। मैं असत्य को सत्य से जीतूं और असत्य का विरोध करते हुए मैं सभी कष्टों को सह सकूं। महात्मा गांधी।
1: मन का धर्म है मनन करना, मनन में ही उसे आनंद है, मनन में बाधा प्राप्त होने से उसे पीड़ा होती है। रविन्द्रनाथ ठाकुर।
0: अपने ज्ञान पर जरूरत से ज्यादा यकीन करना मूर्खता है। सबसे मजबूत कमजोर हो सकता है और सबसे बुद्धिमान गलती कर सकता है। APJ अब्दुल कलाम।
1: जैसे सूर्य सबको एक सा प्रकाश देता है, बरसात सबके लिए बरसती है, उसी तरह विद्या वृष्टि सब पर बरकरार होनी चाहिए। महात्मा गांधी।
0: आकाश की तरफ देखिए, हम अकेले नहीं हैं, सारा ब्रह्मांड हमारे लिए अनुकूल है। और जो सपने देखते हैं, मेहनत करते हैं, उन्हें प्रतिफल देने की साजिश करता है। APJ अब्दुल कलाम। निरंतर विकास जीवन का नियम है और जो व्यक्ति खुद को सही दिखाने के लिए हमेशा अपनी रूढ़िवादिता को बरकरार रखने की कोशिश करता है, वह खुद को गलत स्थिति में पहुंचा देता है। महात्मा गांधी।
1: मानव का दानव होना उसकी हार है, मानव का महामानव होना उसका चमत्कार है, और मनुष्य का मानव होना उसकी जीत है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन।
0: कोई त्रुटि तर्क वितर्क करने से सत्य नहीं बन सकती, और ना ही कोई सत्य इसलिए त्रुटि बन सकता है क्योंकि कोई उसे नहीं देख रहा है। महात्मा गांधी।
2: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं सोनी निगम। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का किया वितरण। कहा, युवाओं और उद्योगों के बीच सेतु का निर्माण कर रही है ये योजना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में 378 करोड़ रुपए से अधिक की 126 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, SIT की जांच में सामने आ जाएगा मंदिर चढ़ावा मामले का सच। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूर्वांचल की 3 ट्रेनों को दिखाई हरी झंडी। कहा, आने वाले समय में दिल्ली से वाराणसी होते हुए सिलीगुड़ी तक चलेगी बुलेट ट्रेन। और आगामी 3 दिनों तक और गर्मी से नहीं मिलेगी राहत। मौसम विभाग ने पूरे प्रदेश में मौसम शुष्क बने रहने का जताया पूर्वानुमान। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित एक समारोह में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया। इस अवसर पर उन्होंने उत्तर प्रदेश सहित देश भर से जुड़े लोगों को वर्चुअली संबोधित करते हुए कहा कि पूरा विश्व आज भारत की युवा शक्ति की चर्चा कर रहा है। श्री मोदी ने कहा कि ये योजना का उद्देश्य पहली बार रोजगार पाने वालों को सशक्त बनाना और युवाओं तथा उद्योग के बीच सेतु का निर्माण करना है।
3: दुनिया भारत के युवाओं की क्षमता को भली भांति पहचानने लगी है और ऐसे समय में हमारी कोशिश है कि भारत का हर युवा अपनी क्षमता को अवसर में बदल सके। और इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का आरंभ हुआ।
2: प्रधानमंत्री ने बताया कि इस योजना से बड़ी संख्या में रोजगार सृजन हुआ है।
3: प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के सहयोग से अब तक करीब 70 लाख जॉब सृजित हुई है। करीब 20 लाख युवा अपनी पहली नौकरी के 6 महीने पूरे भी कर चुके हैं। 2000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंची है। यह राशि केवल आर्थिक सहायता नहीं है, यह उनके परिश्रम का सम्मान है।
2: श्री मोदी ने कहा कि भारत के युवाओं की आकांक्षाएं, कौशल और क्षमता ही विकसित भारत का मार्ग प्रशस्त करती है।
3: भारत दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक है, इसलिए विकसित

अभी आप सुन रहे थे संवेद स्वर में ये देश गान। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है, मीडियम वेव 196.1 मीटर पर। श्रोताओं, सुबह के 7:18 हो रहे हैं। अब आप सुनेंगे लखनऊ केंद्र से हमारा अगला प्रसारण।

0: विकसित भारत का रास्ता भी युवाओं के सपनों, उनके कौशल और उनके सामर्थ्य से होकर ही आगे जाता है। हमारा प्रयास है कि देश का हर युवा अपनी क्षमता के अनुसार जितना आगे बढ़ सकता है बढ़े, जिसके पास हुनर है उसे अवसर मिले, जिसके पास आइडिया है उसे इनोवेशन के लिए मंच मिले और जो अपने दम पर कुछ करना चाहता है उसे पूरा सहयोग मिले।
1: इस योजना के अंतर्गत प्रदेश में लखनऊ, ग्रेटर नोएडा, वाराणसी, मेरठ और गोरखपुर सहित 17 जिलों में कार्यक्रम आयोजित किए गए। उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक और कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने लखनऊ स्थित इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में योजना के राज्य स्तरीय कार्यक्रम का शुभारंभ किया। वहीं आगरा में केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल शामिल हुए। इस योजना के तहत पहली बार रोजगार पाने वाले कर्मचारियों को 15,000 रूपये तक का प्रोत्साहन दिया जाता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल अयोध्या के रुदौली विधानसभा क्षेत्र में राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय व चिकित्सालय समेत 378 करोड़ रुपए से अधिक की 126 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरासत और विकास के विजन को साकार करने की दिशा में डबल इंजन सरकार पूरी तरह प्रतिबद्धता के साथ निरंतर अग्रसर है। उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार की वजह से उत्तर प्रदेश देश की अर्थव्यवस्था में ब्रेक थ्रू साबित हुआ है।
2: जो उत्तर प्रदेश अपनी शानदार यात्रा को लेकर के चल रहा है, अब देश के अंदर बीमारू राज्य नहीं, भारत की अर्थव्यवस्था का एक ब्रेक थ्रू बनकर के ग्रोथ इंजन के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहा है। अब यूपी के हमारे नौजवानों के सामने पहचान का संकट नहीं है, ये इसी पंच प्रण का परिणाम है और डबल इंजन सरकार का परिणाम है।
1: मुख्यमंत्री ने श्रीराम मंदिर चढ़ावा मामले को लेकर कहा कि ट्रस्ट के अनुरोध पर सरकार ने एसआईटी जांच बैठाई है, एसआईटी की जांच से सारी सच्चाई सामने आ जाएगी।
2: हम लोगों ने ट्रस्ट के अनुरोध पर एसआईटी जांच बिठाई है और मैं उन्हें इस बात के लिए कह सकता हूं कि एसआईटी जांच दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेगी, उसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन मैं सभी से इस बारे में अनुरोध करूंगा, सभी पक्षों से कहूंगा कि कोई भी ऐसी अनर्गल टिप्पणी और बातें न हो जो राम भक्तों की भावनाओं को आहत करती हो।
1: मुख्यमंत्री ने नगर निगम अयोध्या में 290 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 245 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इससे पूर्व मुख्यमंत्री ने गोंडा में देवी पाटन और बस्ती मंडल के लोक निर्माण विभाग की बैठक की और प्रमुख 13 मार्गों के विकास को मंजूरी दी। उन्होंने कुल 4,901 करोड़ 65 लाख रुपए की 1,000 से अधिक विकास परियोजनाओं के प्रस्तावों को स्वीकृति दी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR News गोरखपुर और X हैंडल AIR News _GKP पर भी उपलब्ध है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कल बिहार के छपरा जंक्शन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दोहरीघाट ओडियार ट्रेन सेवा का वाराणसी सिटी तक विस्तार और मऊ आनंद विहार नियमित एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने मऊ के रास्ते संचालित होने वाली छपरा आनंद विहार सुपरफास्ट ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री वैष्णव ने कहा कि आने वाले समय में इस क्षेत्र को बुलेट ट्रेन की सौगात मिलेगी जो दिल्ली से लखनऊ और वाराणसी होते हुए पटना और सिलीगुड़ी तक जाएगी।
3: आने वाले समय में एक और नई चीज चालू होगी, बिहार में बुलेट ट्रेन आएगी, दिल्ली से लखनऊ, लखनऊ से वाराणसी, वाराणसी से पटना और पटना से सिलीगुड़ी, यानी दिल्ली से पटना की यात्रा मात्र 4 घंटे और 41 मिनट की रह जाएगी।
1: इस दौरान मऊ जंक्शन रेलवे स्टेशन पर आयोजित समारोह में प्रदेश सरकार के नगर विकास और ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा शामिल हुए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विगत 12 वर्षों में इंडिया फर्स्ट की भावना राष्ट्रीय चरित्र बन गई है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि इसी भावना ने वैश्विक मंच पर

0: भारत के मान सम्मान और सामर्थ्य को नई ऊंचाई दी। इसी क्रम में केंद्र सरकार के 12 वर्षों की उपलब्धियों और समावेशी विकास की यात्रा को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से पत्र सूचना कार्यालय वाराणसी द्वारा कल वाराणसी में वार्तालाप मीडिया कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस अवसर पर प्रदेश सरकार के स्टाम्प एवं पंजीयन राज्य मंत्री रविन्द्र जायसवाल और पत्र सूचना ब्यूरो के निदेशक दिलीप शुक्ला भी उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आकाशवाणी समाचार एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज हम पूर्वोत्तर में बदलाव के लिए सरकार के महत्वपूर्ण कदमों के बारे में जानकारी दे रहे हैं।
1: नए भारत में राष्ट्र निर्माण की बात हो और पूर्वोत्तर क्षेत्र को नजरअंदाज किया जाए, यह संभव नहीं है। एक समय था जब पूर्वोत्तर को हिंसा, नाकाबंदी और उपेक्षा के लिए जाना जाता था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने इस तस्वीर को बदल दिया है। पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री ने स्वयं 83 से अधिक बार पूर्वोत्तर राज्यों का दौरा किया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत पूर्वोत्तर क्षेत्र में 47,270 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए गए हैं और 46,290 किलोमीटर से ज्यादा ग्रामीण सड़कों का निर्माण किया गया है। पिछले 12 वर्षों में 8 नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे विकसित किए गए हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र में 4,170 किलोमीटर से अधिक रेलवे लाइनों का विद्युतीकरण किया गया है। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा और मिजोरम में रेलवे का 100% विद्युतीकरण पूरा हो चुका है। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: मौसम विभाग ने प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्रों के कुछ जिलों में आज गरज चमक के साथ हल्की वर्षा को तो कहीं पूर्वी क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहने का अनुमान जताया है। विभाग के अनुसार आगामी 3 दिनों तक गर्मी से राहत नहीं मिलेगी और पूरे प्रदेश में मौसम इसी तरह शुष्क बना रहेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत 2,400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का किया वितरण। कहा, युवाओं और उद्योगों के बीच सेतु का निर्माण कर रही है ये योजना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में 378 करोड़ रुपए से अधिक की 126 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, SIT की जांच में सामने आ जाएगा मंदिर चढ़ावा मामले का सच। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूर्वांचल की 3 ट्रेनों को दिखाई हरी झंडी। कहा, आने वाले समय में दिल्ली से वाराणसी होते हुए सिलगुड़ी तक चलेगी बुलेट ट्रेन और आगामी 3 दिनों तक और गर्मी से नहीं मिलेगी राहत। मौसम विभाग ने पूरे प्रदेश में मौसम शुष्क बने रहने का जताया पूर्वानुमान। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो ये दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। APJ अब्दुल कलाम।
3: यदि युवा को है रोजगार पाना तो होगा उसे कौशल बढ़ाना। अपने कौशल का विकास कीजिए, अपने भविष्य को संवारिए, वृद्धों का सम्मान करें, मर्यादा का ध्यान रखें, बड़े बुजुर्गों की करे मदद, आशीर्वाद मिले वही बड़ी दौलत, जो सिखाएं हमें व्यवहारिक ज्ञान, करें ज्येष्ठ लोगों का सम्मान।
2: असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
4: आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर। श्रोताओं, सुबह के 7:31 हो चुके हैं। आइए अब सुनते हैं आसपास की गतिविधियों पर आधारित सूचना परक कार्यक्रम आसपास। कार्यक्रम में सबसे पहले कुछ खोए हुए व्यक्तियों की सूचना सुन लीजिए। थाना मक्खनपुर फिरोजाबाद से प्राप्त सूचना के अनुसार रमाकांत पुत्र कैलाश चंद्र विगत 1 मई 2026 से लापता हैं। ये ग्राम बदनपुर करखा फिरोजाबाद के रहने वाले हैं। रमाकांत की आयु 20 वर्ष, कद 5 फुट 8 इंच, रंग गोरा और चेहरा सामान्य है। ये पेंट शर्ट और काले रंग के जूते पहने हुए हैं। रमाकांत

के बारे में कोई भी सूचना मिलने पर कृपया थाना मक्खनपुर जनपद फिरोजाबाद के पते पर सूचित करें। थाना खैरगढ़ फिरोजाबाद से प्राप्त सूचना के अनुसार खोए हुए व्यक्ति का नाम अवधेश पुत्र श्री बलवीर है। ये कस्बा व थाना खैरगढ़ फिरोजाबाद के रहने वाले हैं। अवधेश की आयु 37 वर्ष, रंग गेहुआ, चेहरा सामान्य और कद 5 फुट 3 इंच है। ये लोअर टी शर्ट पहने हुए हैं। अवधेश की मानसिक स्थिति कमजोर है। इनके बारे में कोई भी सूचना मिलने पर कृपया थाना खैरगढ़ जनपद फिरोजाबाद के पते पर सूचित करें। थाना सिरसागंज फिरोजाबाद से प्राप्त सूचना के अनुसार सोहम उर्फ कृष्णा पुत्र रघुवीर सिंह विगत 24 अप्रैल 2026 से लापता है। ये ग्राम नगला मधे फिरोजाबाद के रहने वाले हैं। सोहम की आयु 15 वर्ष, ऊंचाई 5 फुट 7 इंच और चेहरा गोल है। ये ग्रे रंग की टी शर्ट व नीले रंग की पैंट पहने हुए हैं और पैरों में सैंडल पहने हुए हैं। सोहम उर्फ कृष्णा के बारे में कोई भी सूचना मिलने पर कृपया थाना सिरसागंज जनपद फिरोजाबाद के पते पर सूचित करें। थाना नसीरपुर फिरोजाबाद से प्राप्त सूचना के अनुसार पूजा उर्फ धंतो पुत्री श्रीनिवास विगत 4 मई 2026 से लापता हैं। ये अब्बासपुर नसीरपुर फिरोजाबाद की रहने वाली हैं। पूजा उर्फ धंतो की आयु 15 वर्ष, ऊंचाई 5 फुट 4 इंच, रंग गेहुआ और चेहरा लंबा है। ये सलवार सूट पहने हुए हैं। पूजा उर्फ धंतो के बारे में कोई भी सूचना मिलने पर कृपया थाना नसीरपुर जनपद फिरोजाबाद के पते पर सूचित करें। खोए हुए व्यक्तियों की सूचना समाप्त हुई।

श्रोताओ, कार्यक्रम आसपास आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के आगरा केंद्र से। आइए अब एक नजर डालते हैं आज की मुख्य सूचनाओं पर। नए सत्र में नहीं होंगे विश्वविद्यालय के संस्थानों में शिक्षक। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय में नए सत्र की तैयारियां शुरू हो गई हैं और प्रवेश प्रक्रिया भी जारी है, लेकिन विभिन्न विषयों के शिक्षण को लेकर चिंता बढ़ने लगी है। विश्वविद्यालय में कार्यरत अतिथि शिक्षकों का कार्यकाल या तो समाप्त हो चुका है या 30 जून को समाप्त हो जाएगा। इसके बावजूद अभी तक न तो उनके कार्यकाल विस्तार की प्रक्रिया शुरू हुई है और न ही नई नियुक्तियों को लेकर कोई पहल की गई है। विश्वविद्यालय के चारों परिसरों के विभिन्न विभागों और संस्थानों में 100 से अधिक अतिथि शिक्षक कार्यरत हैं। शैक्षणिक और प्रशासनिक कार्यों का बड़ा हिस्सा इन्हीं के माध्यम से संचालित होता है। कई विभागों में स्थायी शिक्षकों की संख्या सीमित होने के कारण नियमित शिक्षण व्यवस्था काफी हद तक अतिथि शिक्षकों पर निर्भर है। हर वर्ष सत्र शुरू होने से पहले विश्वविद्यालय प्रशासन कार्यकाल विस्तार या नई नियुक्तियों की प्रक्रिया पूरी कर लेता है, लेकिन इस बार देरी से छात्रों और विभागों में असमंजस की स्थिति बन रही है।

LLB BA LLB के प्रैक्टिकल 22 से आगरा कॉलेज के विधि संकाय में LLB तृतीय वर्ष और BA LLB पंचम वर्ष के परीक्षार्थियों की प्रयोगात्मक परीक्षाएं 22 और 23 जून को आयोजित की जाएंगी। विधि संकाय के विभागाध्यक्ष के अनुसार प्रश्न पत्र संख्या 9 की परीक्षा 22 जून को और प्रश्न पत्र संख्या 10 की परीक्षा 23 जून को सुबह 11 बजे से आगरा कॉलेज के लॉ फैकल्टी परिसर में होगी।

कल 20 सेंटर पर 9,500 अभ्यर्थी देंगे परीक्षा। प्रत्येक केंद्र के बाहर 6 पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। एसीपी लगातार भ्रमण पर रहेंगे। पैरा मिलिट्री फोर्स की सुरक्षा में केंद्रों तक जाएगा नीट का पेपर। रविवार यानी कल दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक नीट परीक्षा आयोजित होगी। परीक्षा में किसी प्रकार की गड़बड़ी रोकने के लिए इस बार प्रश्न पत्रों की सुरक्षा की जिम्मेदारी CISF और CRPF को सौंपी गई है। पैरा मिलिट्री फोर्स के जवान कड़ी सुरक्षा घेरे में प्रश्न पत्र परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाएंगे। परीक्षा केंद्रों पर भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। प्रत्येक केंद्र के बाहर 6 पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे, जबकि थाना प्रभारी और ACP लगातार भ्रमण पर रहेंगे। DCP मुख्यालय ने बताया कि सिटी जोन में 19 और पश्चिमी जोन में 1 परीक्षा केंद्र बनाया गया है। इस बार प्रश्न पत्र केंद्रों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी सेक्टर मजिस्ट्रेटों की के पास नहीं होगी। 10 केंद्रों पर CISF और शेष 10 केंद्रों पर CRPF के सुरक्षा घेरे में प्रश्न पत्र पहुंचाए जाएंगे। परीक्षा संचालन के लिए पैरा मिलिट्री फोर्स के जवान बाहर से आ रहे हैं। पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीम केंद्रों पर निगरानी रखेगी। सुरक्षा के मद्देनजर 3 QRT गठित की गई हैं। प्रत्येक सेक्टर मजिस्ट्रेट के साथ 2-2 सशस्त्र पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। परीक्षा के दौरान केंद्रों के आसपास पुलिस की विशेष निगरानी रहेगी। केंद्रों के पास फोटोस्टेट की दुकानें बंद रहेंगी। परीक्षा से 1 दिन पहले होटल, धर्मशाला और लॉज में भी चेकिंग कराई जाएगी। परीक्षा समाप्त होने के बाद उत्तर पुस्तिकाओं को भी कड़ी सुरक्षा घेरे में भेजा जाएगा। इसके लिए अलग सुरक्षा योजना तैयार की गई है, जिसे गोपनीय रखा गया है। परीक्षा के बाद शहर में जाम की स्थिति न बने, इसके लिए भी विशेष इंतजाम किए गए हैं। केंद्रों के आसपास अतिरिक्त पुलिस बल तैनात रहेगा। MG रोड, हाईवे और प्रमुख चौराहों पर यातायात व्यवस्था संभालने के लिए पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। आज ही कर लें परीक्षा की तैयारी, ना लें तनाव। भीड़ और अव्यवस्था से बचने के लिए अभ्यर्थियों को निर्धारित समय पर ही परीक्षा केंद्र पर पहुंचना होगा। ध्यान रहे कि दोपहर 1:30 बजे के बाद किसी भी स्थिति में परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं मिलेगा। इसलिए ट्रैफिक और दूरी को ध्यान में रखते हुए समय से घर से निकलें। विशेषज्ञों के अनुसार 3 घंटे 15 मिनट की परीक्षा में अंतिम 15 मिनट केवल OMR शीट की जांच के लिए सुरक्षित रखें। इस दौरान नया प्रश्न हल करने के बजाय यह सुनिश्चित करें कि कोई उत्तर छूटा ना हो और सभी गोले सही तरीके से भरे गए हों। श्रोताओं, सूचनाओं का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन आइए अब सुनते हैं ये गीत।

का कहना है कि जनविश्वास अधिनियम के अंतर्गत यह बदलाव किए गए हैं। ट्रेन में अभी बिना टिकट यात्रा करते हुए पकड़े जाने पर पूरे किराए के साथ ही ₹250 जुर्माना वसूला जाता है। जुर्माने की राशि बढ़ाकर ₹500 कर दी गई है। पहले जुर्माने की राशि वर्ष 2013 में ₹50 से बढ़ाकर ₹250 की गई थी। यदि किसी अन्य के नाम पर बुक टिकट से कोई यात्रा करेगा तो उससे पूरा किराया और ₹500 जुर्माना वसूला जाएगा।

श्रोताओ, कार्यक्रम आसपास आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के आगरा केंद्र से। आइए एक बार फिर चलते हैं आज की मुख्य सूचनाओं की ओर। ट्रेन में बिना टिकट यात्रा पर अब देना होगा 2 गुना जुर्माना। ट्रेन में बिना टिकट यात्रा करने पर अब पहले से 2 गुना जुर्माना देना पड़ेगा। इसी तरह से दूसरे व्यक्ति के नाम से बुक किए गए टिकट पर यात्रा करना भी महंगा पड़ेगा। महिला कोच में प्रवेश करने वाले पुरुष पर और ट्रेन व रेल परिसर में अन्य नियमों का उल्लंघन करने पर अधिक जुर्माना वसूला जाएगा। नए नियम 1 जुलाई से लागू हो जाएंगे। अधिकारी

कल रात ईदगाह पहुंचेगी अमृत भारत एक्सप्रेस। रेल प्रशासन ने यात्रियों की सुविधा के लिए गाड़ी संख्या 19725 और 19726 अमृत भारत एक्सप्रेस चलाने का निर्णय लिया है। ये ट्रेन जयपुर के खातीपुरा से बिहार के दरभंगा के बीच चलेगी। इस ट्रेन का शुभारंभ रविवार को खातीपुरा से शाम 4 बजे होगा। इसके बाद ट्रेन रात 8:15 पर ईदगाह स्टेशन पहुंचेगी। इसका संचालन शुक्रवार को छोड़कर अन्य सभी दिन होगा।

लाल कुआं बलसाड़ के बीच चलेगी स्पेशल ट्रेन। यात्रियों की सुविधा को रेलवे ने 05344 05343 लाल कुआं वलसाड़ लाल कुआं स्पेशल ट्रेन की घोषणा की है। पीआरओ ने बताया कि ट्रेन लाल कुआं से 11 जून से 9 जुलाई तक हर गुरुवार को और वलसाड़ से 12 जून से 10 जुलाई तक प्रत्येक शुक्रवार को चलेगी। ट्रेन लाल कुआं से गुरुवार सुबह 9 बजे चलकर शाम 4:15 पर मथुरा जंक्शन और शुक्रवार को दोपहर 12 बजे वलसाड़ पहुंचेगी। ट्रेन वलसाड़ से शुक्रवार दोपहर 3:25 पर चलकर शनिवार सुबह 10:10 पर मथुरा जंक्शन और शाम 5:45 पर लालकुआ पहुंचेगी। ट्रेन में 4 जनरल, 6 स्लीपर, 2 एसी थर्ड इकोनॉमी, 3 एसी थर्ड और 1 एसी सेकंड कोच लगे होंगे।

ग्रीष्म संक्रांति पर 14 घंटे झेलना होगा सूर्य का ताप। कल यानी 21 जून को सूरज आम दिनों की अपेक्षा ज्यादा देर तक नजर आएगा। दरअसल इस साल भी ग्रीष्म संक्रांति अपने साथ गर्मी का सबसे लंबा दिन लेकर आ रहा है। ऐसे में करीब 13 घंटे 58 मिनट और 11 सेकंड तक आग उगलते हुए

सूरज का ताप झेलना होगा। सिर्फ उत्तरी गोलार्ध में घटित होने वाली इस खगोलीय घटना के दौरान दोपहर थम सी जाएगी। इसके बाद सूरज की दिशा धीरे धीरे दक्षिण की ओर झुकने लगेगी और दिन छोटे होते चले जाएंगे। गोरखपुर के खगोलविद ने के अनुसार ग्रीष्म संक्रांति की यह घटना पृथ्वी की गति के कारण 20 या 21 जून को घटित होती है। इस बार यह 21 जून को होगी और इस दिन दोपहर बाद 1:55 पर भारत इस महत्वपूर्ण खगोलीय क्षण का साक्षी बनेगा। उन्होंने बताया कि पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। श्रोताओं, ये थी आज की मुख्य सूचनाएं और आइए अब आनंद लेते हैं इस गीत का।

श्रोताओं, इसी के साथ ही कार्यक्रम आसपास अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है, मीडियम वेव 106.1 मीटर पर। श्रोताओं, सुबह के 8 बजने को हैं, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से हमारा अगला प्रसारण।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाएं, योग को जीवन का हिस्सा बनाएं। एक दिन नहीं, हर दिन योग, स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक संयोग।
1: करो योग, रहो निरोग। करो योग, रहो निरोग।
0: इस 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। यहीं से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
2: लो फिर आ रहा 21 जून ला रहा नया संदेश, योग से जीवन बने विशेष। बढ़ती उम्र के साथ योग का साथ न्यारा, योग फॉर हेल्दी एजिंग, ये भरोसा हम सबका प्यारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाएं, योग को जीवन का हिस्सा बनाएं। एक दिन नहीं, हर दिन योग, स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक संयोग। इस 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। यहीं से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाएं, योग को जीवन का हिस्सा बनाएं। एक दिन नहीं, हर दिन योग, स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक संयोग।
1: करो योग, रहो निरोग। करो योग, रहो निरोग।
0: इस 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। यहीं से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
2: लो फिर आ रहा 21 जून ला रहा नया संदेश, योग से जीवन बने विशेष, बढ़ती उम्र के साथ योग का साथ न्यारा, योग फॉर हेल्दी एजिंग, ये भरोसा हम सबका प्यारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाएं, योग को जीवन का हिस्सा बनाएं। एक दिन नहीं, हर दिन योग, स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक संयोग। इस 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। यहीं से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाएं, योग को जीवन का हिस्सा बनाएं। एक दिन नहीं, हर दिन योग, स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक संयोग।
1: करो योग, रहो निरोग। करो योग, रहो निरोग।
0: इस 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। यहीं से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
2: लो फिर आ रहा 21 जून ला रहा नया संदेश, योग से जीवन बने विशेष, बढ़ती उम्र के साथ योग का साथ न्यारा, योग फॉर हेल्दी।

0: एजिंग, ये भरोसा हम सबका प्यारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाएं, योग को जीवन का हिस्सा बनाएं। एक दिन नहीं, हर दिन योग स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक संयोग। इस 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। यहीं से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
1: आया खुशियों का पैगाम पीएम किसान, पीएम किसान।
2: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 20 जून को हुगली पश्चिम बंगाल से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किश्त जारी करेंगे। इसके तहत 9 करोड़ 44 लाख से अधिक किसानों के खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की सम्मान राशि सीधे हस्तांतरित की जाएगी। पीएम किसान की इस किश्त के साथ ही किसानों को हस्तांतरित कुल राशि 4,46,000 करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगी, जो करोड़ों किसान परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान कर रही है।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ओडिशा के मयूरभंज में 47,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी पश्चिम बंगाल के हुगली से पीएम किसान योजना की 23वीं किस्त जारी करेंगे। 9 करोड़ से अधिक किसान होंगे लाभान्वित। वरिष्ठ नौकरशाह विवेक अग्रवाल वित्तीय कार्रवाई कार्यबल के उपाध्यक्ष नियुक्त। भारत ने आतंकवाद वित्त पोषण से निपटने की प्रतिबद्धता दोहराई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की कल होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा से पहले आज राष्ट्रव्यापी मॉक ड्रिल। सेबी ने मृत निवेशकों के शेयर उनके कानूनी उत्तराधिकारियों को हस्तांतरित करने की प्रक्रिया आसान बनाई। और भारत और अफगानिस्तान के बीच एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मैच आज चेन्नई में। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से ओडिशा और पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री आज ओडिशा के मयूरभंज जिले के पहाड़पुर गांव में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से उनके 68वें जन्मदिन पर भेंट करेंगे।
4: राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मिलकर पवित्र संथाली जोहरा और हो जोहरा स्थलों पर पूजा अर्चना करेंगे और स्थानीय शिक्षण और कौशल विकास संस्थानों का दौरा करेंगे। इससे आदिवासी समुदायों के सशक्तिकरण के प्रति देश की प्रतिबद्धता जाहिर होगी। इसके बाद दोनों नेता रायरंगपुर में एक बड़े सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री 47,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और ऊर्जा, परिवहन, स्वास्थ्य, शिक्षा, सिंचाई और औद्योगिक बुनियादी ढांचे जैसे प्रमुख क्षेत्रों में नई परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। राष्ट्रपति मुर्मू और प्रधानमंत्री मोदी एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे। रायरंगपुर से प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार।
3: पश्चिम बंगाल के दौरे में आज प्रधानमंत्री हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंग दिवस समारोह में शामिल होंगे। वे राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। श्री मोदी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त भी जारी करेंगे। इसके तहत देश के 9 करोड़ 44 लाख किसानों के बैंक खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे अंतरित की जाएगी। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
5: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुगली के तारकेश्वर में पश्चिम बंगाल दिवस समारोह में शामिल होंगे और कलकत्ता में रोइड रोड पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में नेतृत्व करेंगे। इसी अवसर पर वे 3 स्वदेशी युद्धपोत INS दुनोगिरी, INS संशोधक और INS अग्रय राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री कई महत्वपूर्ण परियोजना का भी उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। कृषि क्षेत्र में श्री मोदी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत करेंगे। संदीपन दासगुप्त के साथ काशफिन नाहर, आकाशवाणी कोलकाता।
3: गृहमंत्री अमित शाह आज कोल्हापुर और इचलकरंजी के दौरे पर हैं। वे महालक्ष्मी मंदिर परिसर में विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन करेंगे और मंदिर क्षेत्र में पश्चिमी महाराष्ट्र मंदिर विकास योजना के तहत चल रही विकास परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। श्री शाह कोल्हापुर के पुलिस परेड ग्राउंड में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। वरिष्ठ नौकरशाह विवेक अग्रवाल को वर्ष 2026-27 के लिए वित्तीय कार्रवाई कार्यबल का उपाध्यक्ष चुना गया है। वे ब्रिटेन के गाइल्स थॉमसन का स्थान लेंगे। कार्यबल की पूर्ण बैठक में यह निर्णय लिया गया। विदेश

0: मंत्रालय ने श्री अग्रवाल के चयन को भारत के लिए बड़ी जीत बताया है। मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस नियुक्ति से आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने और गैर कानूनी वित्तीय नेटवर्क के खिलाफ संघर्ष की भारत की प्रतिबद्धता मजबूत होती है। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के तहत पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव हुए हैं। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर एक विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज जानकारी सशक्त भारत के संकल्प को साकार करने वाली सरकार की परिवर्तनकारी पहलों के बारे में।
1: पिछले 12 वर्षों में सरकार ने भारत के हाईटेक क्षेत्र में बड़ा बदलाव लाने का काम किया है। सशक्त भारत के दो महत्वपूर्ण आधार हैं, सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का विकास और स्पेस स्टार्टअप्स की तेजी से बढ़ती संख्या। सरकार की नीतियों और फैसलों से सेमीकंडक्टर क्षेत्र में सिर्फ योजनाएं ही नहीं बनी बल्कि अब निर्माण और डिजाइन से जुड़े कई इकाई भी काम कर रहे हैं। दिसंबर 2021 में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन शुरू किया गया। इसके लिए 76,000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया। इस योजना के तहत सिलिकॉन फैब, कंपाउंड सेमीकंडक्टर इकाई, असेंबली और टेस्टिंग सुविधाओं तथा चिप डिजाइन के लिए 50% तक वित्तीय सहायता दी गई। साल 2026 में सरकार ने सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 शुरू किया, जिसके लिए 1,000 रुपए का प्रावधान किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य उद्योगों के सहयोग से शोध और प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करना, नई तकनीकों का विकास करना और भविष्य के लिए कुशल मानव संसाधन तैयार करना है। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मिशन 1.0 ने इस जटिल उद्योग की मजबूत नींव रखी है।
2: We have been able to achieve that in the first.
3: हम अपने सेमीकंडक्टर मिशन के पहले चरण में ये हासिल कर पाए हैं। 75,000 से ज्यादा इंजीनियर इस क्षेत्र में प्रशिक्षित हो चुके हैं। 300 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज छात्रों को चिप डिजाइन करना सिखा रही हैं और भारत में 2 नैनोमीटर चिप्स डिजाइन की जा रही हैं, जो दुनिया की सबसे एडवांस चिप्स हैं। इनमें एनवीडिया और इंटेल की चिप्स भी शामिल हैं और ये सभी अब भारत में ही डिजाइन की जाती हैं।
2: They are all designed in India now.
1: वहीं भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 ने निजी कंपनियों को अंतरिक्ष क्षेत्र में पूरी तरह काम करने की अनुमति दी है। अब निजी संस्थाएं रॉकेट लॉन्च, उपग्रह निर्माण और संचालन, डेटा संग्रह और वितरण तथा ग्राउंड स्टेशन जैसी गतिविधियां कर सकती हैं। इस नीति के बाद भारत में स्पेस स्टार्टअप्स की संख्या 2014 में केवल 1 से बढ़कर 400 से अधिक हो गई है। इससे देश की निजी अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को नई गति मिली है। भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था वर्तमान में लगभग $8 अरब से अधिक की है और अगले 8 से 10 वर्षों में इसके 4 से 5 गुना बढ़कर 40 से 45 अरब डॉलर तक पहुंचने की संभावना है। आकाशवाणी के साथ बातचीत में अनिल प्रकाश, स्पेस इंडस्ट्री एसोसिएशन ऑफ इंडिया के महानिदेशक ने बताया कि भारत में अब 400 से अधिक स्पेस टेक स्टार्टअप्स हैं।
4: नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में स्पेस सेक्टर रिफॉर्म, स्पेस की स्थापना और प्राइवेट पार्टिसिपेशन में को बढ़ावा देने वाली नीतियों ने एक नई क्रांति की शुरुआत की है। आज भारत में 400 से अधिक स्पेस टेक स्टार्टअप कार्यरत है, जो सैटेलाइट, लॉन्च व्हीकल, अर्थ ऑब्जर्वेशन और डाटा सर्विस जैसे क्षेत्रों में इनोवेशन कर रहे हैं।
1: सेमीकंडक्टर मिशन की उपलब्धियों और तेजी से बढ़ती निजी अंतरिक्ष क्षेत्र के माध्यम से भारत विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए कल होने वाली नीट यूजी पुनः परीक्षा से पहले आज राष्ट्रव्यापी अभ्यास संचालित करेगा। परीक्षा से पहले मानक तैयारी के निरीक्षण के लिए ये मॉक ड्रिल की जा रही है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने मृत निवेशकों के शेयरों के आसानी से हस्तांतरण के उद्देश्य से कानूनी उत्तराधिकारी और दावेदारों को प्रतिभूति अंतरित किए जाने के तरीके को सरल बनाया है। कल मुंबई में बोर्ड की 214वीं बैठक में सेबी ने बाजार क्षमता बढ़ाने, अनुपालन में आसानी और नियामक व्यवस्था में मजबूती के लिए कई सुधारों को मंजूरी दी। और अब खेल खबरें। भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच आज दोपहर चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा। भारत 2-0 की बढ़त के साथ पहले ही श्रृंखला अपने नाम कर चुका है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
5: धन्यवाद विशाल। टेलीग्राम पर केंद्र सरकार की रोक पर दिल्ली उच्च न्यायालय का फैसला आज के सभी अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर है। दैनिक जागरण की सुर्खी है, टेलीग्राम पर प्रतिबंध सही। फुटपाथ पर पैदल चलना लोगों का मौलिक अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय का ये निर्णय, दैनिक ट्रिब्यून सहित कई अखबारों में है। इस खबर पर नवभारत टाइम्स ने पहला हक शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, सुरक्षित फुटपाथ केवल सड़क सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा नहीं, ये पर्यावरण और लोगों की सेहत से भी जुड़ा है। पाकिस्तान अपने ही भस्मासुरों का शिकार, आतंकियों की है खुली पनाहगाह, संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि अनुपमा सिंह का ये बयान अमर उजाला में है।
0: धन्यवाद फरहत। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्र

0: third installment of the PM Kisan to over 9 crore farmers from Hooghly in West Bengal. Senior Indian bureaucrat Vivek Agarwal appointed as Vice President of Financial Action Task Force FATF. New Delhi reiterates its commitment to combat terror financing. NTA to conduct nationwide mock drill today ahead of NEET UG re-examination scheduled for tomorrow. SEBI clears channel for easier transfer of shares to legal heirs of deceased investors. And in men's cricket, India to take on Afghanistan in third and final ODI of series in Chennai this afternoon. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
1: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं शबाना बेगम। पहले इस वक्त की खास खबरें। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू और वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज ओडिशा के मयूरभंज जिले में 47,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत वाले तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे और संगे बुनियाद रखेंगे। वजीर आजम मोदी मगरबी बंगाल के शहर हुगली से 9 करोड़ से ज्यादा किसानों के लिए पीएम किसान स्कीम की 23वीं किस्त जारी करेंगे। भारत के सीनियर अफसर शाह विवेक अग्रवाल को माली एक्शन टास्क फोर्स FATF का नायब सदर मुकर्रर किया गया है। भारत ने दहशतगर्दी को माली मदद फराहम करने की लानत से निमटने के अपने अज़्म को दोहराया है। NTA नीट UG के दोबारा इम्तिहान से पहले आज मुल्कगीर सतह पर मशक करेगी। ये इम्तिहान कल कराया जाएगा। सेबी ने फौतशुदा सरमायाकारों के कानूनी वर्सा को शेयर्स की आसान मुंतकली के तरीकेकार की मंजूरी दे दी है। और मर्दों के क्रिकेट में आज दोपहर चेन्नई में सीरीज के तीसरे और आखिरी ODI में भारत का मुकाबला अफगानिस्तान से होगा। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज सुबह ओडिशा का दौरा कर रहे हैं, जहां वो सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू से उनके आबाई जिले मयूरभंज में मिलेंगे। जनाब मोदी का यह दौरा सदर जमहूरिया के 68वें यौम पैदाइश और ओडिशा सरकार के 2 साल पूरे होने के मौके पर हो रहा है। वजीर आजम मोदी आज देर गए मगरी बंगाल के शहर हुगली से पीएम किसान स्कीम के तहत 9,44,00,000 किसानों के बैंक खातों के लिए 18,880 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम जारी करेंगे। इसमें मगरी बंगाल के 45,00,000 से ज्यादा किसानों के खातों में भेजे जाने वाले 900 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम भी शामिल है। पेश है वजीर आजम के दौरे की खबरें देने वाले हमारे नामानिगार की एक रिपोर्ट।
2: वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज 2 रोजा दौरे पर मगरबी बंगाल पहुंच रहे हैं। रियासत में बीजेपी के इख्तदार के बाद ये उनका पहला दौरा है। अपने क्याम के दौरान वो हुगली में ताराकेश्वर में मगरबी बंगाल के दिन की तकरीबात में शिरकत करेंगे, कोलकाता के रेड रोड पर बैन अल-अक़वामी योग डे प्रोग्राम की क्यादत करेंगे और मुल्क ही में तैयार किए गए 3 जंगी जहाजों INS दोनागिरी, INS संशोधक और INS एग्रे को मुल्क के नाम वक्फ करेंगे। वो बहुत से अहम प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे और संगे बुनियाद रखेंगे। जनाब मोदी ज़राअत के शोबे के लिए मगरबी बंगाल में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का भी बाकायदा आगाज करेंगे, जिसके तहत तकरीबन 50,00,000 किसानों को बीमा फराहम किया जाएगा। कोलकाता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मुजीब अख्तर।
1: वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंगाल दिवस के मौके पर मगरबी बंगाल के अवाम को मुबारकबाद दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब मोदी ने कहा कि इस रोज एक ऐसी रियासत का जश्न मनाया जाता है जिसने अदब, मौसीकी, आर्ट, रूहानियत, साइंस, तिजारत और समाजी इसलाह की शक्ल में मुल्क की तारीख में जबरदस्त किरदार अदा किया है। वजीर आजम ने कहा कि मगरबी बंगाल की तारीख में इस दिन की खास अहमियत है। भारत ने पिछले 12 साल में वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क्यादत में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के उसूलों के तहत बहुत सी काबिल जिक्र तब्दीलियां की हैं। इस दौरान मोदी हुकूमत ने गरीबों, किसानों, खवातीन और नौजवानों की फलाह और उन्हें बाख्तियार बनाने के लिए अहम कदम उठाए हैं। आकाशवाणी का खबरों का शोभा आपके लिए खसूसी फीचर 12 साल विश्वास के, विकास के, जनकल्याण के पेश कर रहा है। आज हम एक बाख्तियार भारत के तस्वुर के लिए यकसर तब्दीली लाने वाले इकदाम का जिक्र कर रहे हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
3: बाय।

0: के दो सबसे अहम सतून सेमीकंडक्टर इको निजाम की तश्कील और खला से मुतालिक स्टार्टअप्स की जबरदस्त तरक्की है। इस ताजा तरीन पॉलिसी से सेमीकंडक्टर इको निजाम की उमंगें मैन्युफैक्चरिंग और डिजाइनिंग में बदल गई है। सेमीकंडक्टर्स कौमी सलामती, इक्तिसादी इस्तेहकाम, डिजिटल खुदमुख्तारी और मुस्तकबिल के मुकाबला जाती रुझान की बुनियाद हैं। ये मिशन दिसंबर 2021 में शुरू किया गया था। 2026 तक हुकूमत ने सेमीकंडक्टर्स मिशन दोयम का आगाज किया, जिसके बारे में इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी के वजीर अश्विनी वैष्णव ने कहा कि पहला मिशन इस पेचीदा सनत के लिए बुनियाद के तौर पर कायम किया गया था और मिशन दोयम के तहत इको निजाम में गहराई लाई जाएगी। भारत की खलाई पॉलिसी 2023 के तहत प्राइवेट कंपनियों को खलाई सरगर्मियां अंजाम देने की इजाजत दी गई, जिसमें सैटेलाइट खला में भेजा जाना भी शामिल है। इसके बाद खला से मुतालिक रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स की तादाद में इजाफा हुआ। 2014 में महज एक स्टार्टअप था, जबकि अब इनकी तादाद 400 से ज्यादा हो गई है। इसकी वजह से मुल्क की प्राइवेट खलाई मईशत में जबरदस्त इजाफा हुआ है। आकाशवाणी के खबरों के शोबे से बात करते हुए भारत की खलाई सनत की एसोसिएशन के डायरेक्टर जनरल अनिल प्रकाश ने कहा कि ये कंपनियां इख्तराई तौर पर सरगर्म हैं।
1: पिछले 12 वर्षों में भारत के स्पेस सेक्टर में अभूतपूर्व बदलाव आया है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में स्पेस सेक्टर रिफॉर्म, स्पेस की स्थापना और प्राइवेट पार्टिसिपेशन में को बढ़ावा देने वाली नीतियों ने एक नई क्रांति की शुरुआत की है। आज भारत में 400 से अधिक स्पेस टेक स्टार्टअप कार्यरत है, जो सेटेलाइट, लॉन्च व्हीकल, अर्थ ऑब्जर्वेशन और डाटा सर्विस जैसे क्षेत्रों में इनोवेशन कर रहे हैं। भारत का पहला सेफ स्पेस टेक यूनिकॉर्न स्काई टू एरोस्पेस इस परिवर्तन का प्रमाण है।
0: सेमीकंडक्टर मिशन और प्राइवेट खलाई शोबे की पेशरफ्त की शक्ल में एक तरक्की याफ्ता मुल्क की जानिब भारत का सफर जारी और सारी है। अमन यादव की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असलम बेग।
2: मरकजी वजीर दाखिला जनाब अमित शाह आज कोल्हापुर और इचलकरंजी का दौरा करेंगे। वो महालक्ष्मी मंदिर के अहाते में मुख्तलिफ तरक्याती कामों का इफ्तिताह करेंगे और मंदिर के इलाके में मगरबी महाराष्ट्र मंदिर तरक्याती मनसूबे के तहत शुरू किए गए तरक्याती प्रोजेक्टों का जायजा लेंगे। जनाब शाह कोल्हापुर के पुलिस परेड ग्राउंड में एक अवामी जलसे से भी खिताब करेंगे। बाद में जनाब शाह इचलकरंजी में जनता सहकारी बैंक की नई इमारत का इफ्तिताह करेंगे। जनाब शाह इमदाद बाहमी चीनी मिल को नया नाम दिए जाने और तौसीकारी से मुतालिक एक प्रोग्राम में भी शिरकत करेंगे। जनाब शाह इचलकरंजी में कलपना अवाडे टेक्सटाइल पार्क ग्राउंड में किसानों के एक इज्तिमा से भी खिताब करेंगे। वजीर खारजा डॉक्टर जयशंकर ने जोर देकर कहा है कि भारत को बहरान से दो चार दुनिया में अपने कौमी मफादात, दिफाई खुदमुख्तारी और कसीर कुतबियत को बरकरार रखते हुए ताल्लुकात को मुस्बत बनाना चाहिए। कल शाम नई दिल्ली में भारत अमरीका फोरम 2026 से खिताब करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने बहुत से शोबों में भारत अमरीका शराकतदारी को गहरा करने के बारे में इजहार ख्याल किया, जैसा कि दोनों ममालिक अपने मामलात और पेचीदगियों को हल करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जैसे जैसे भारत तरक्की कर रहा है, इसके मफादात में भी तौसी और तनव्वो पैदा हो रहा है। ये आकाशवाणी है। भारत के सीनियर ब्यूरोक्रेट विवेक अग्रवाल को मालियाती एक्शन टास्क फोर्स FATF का 2026-27 की मुद्दत के लिए नायब सदर मुंतखब किया गया है। वो इंग्लैंड के जिल्स थॉमसन की जगह लेंगे। जनाब अग्रवाल इस वक्त वजारत सकाफत में सेक्रेटरी के फराइज अंजाम दे रहे हैं। इससे पहले वो FATF के लिए भारतीय वफ्द की क्यादत भी कर चुके हैं। 17 से 19 जून के दरमियान FATF के मुकम्मल इजलास के दौरान जनाब अग्रवाल को इस जिम्मेदारी के लिए मुंतखब किया गया। वजारत खारजा ने जनाब अग्रवाल का इंतखाब किए जाने को भारत की बड़ी कामयाबी करार दिया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में वजारत ने कहा कि जनाब अग्रवाल की तकरीरी से दहशतगर्दी की माली एयानत और गैर कानूनी माली नेटवर्क और गैर कानूनी मालियाती ढांचों के खात्मे के भारत के अज़्म को मजीद तकवियत हासिल हुई है। इम्तिहानात की कौमी एजेंसी NTA नीट UG 2026 के दोबारा इम्तिहान से पहले आज एक मुल्कगीर मॉक ड्रिल का इनेकाद करेगी। इम्तिहानात को खुशुसलूबी, महफूज और शफाफ तौर से कराए जाने को यकीनी बनाने के मकसद के हिस्से के तौर पर ऐसा किया जा रहा है। पेश एक रिपोर्ट।
0: NTA ने कहा है कि वो नीट UG 2026 के दोबारा इम्तिहान के बिला रुकावट, मुनसिफाना और शफाफ इनेकाद के लिए पूरी तरह तैयार है। ये इम्तिहान कल होना है। एक बयान में NTA ने कहा कि यह इम्तिहान मुल्क के 551 शहरों और बैरून मुल्क के 14 शहरों में मुनक्किद किया जाएगा। तकरीबन 22,79,000 उम्मीदवार इम्तिहान में शरीक होंगे। एजेंसी ने मजीद कहा कि इम्तिहान को मुनसिफाना और शफाफ तौर से कराए जाने को यकीनी बनाने के लिए कसीर सतही सिक्योरिटी निजाम नाफिज किया गया है। दोबारा

0: इम्तिहान दोबारा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 पर कलम और कागज के तरीकेकार के तहत कराया जाएगा। शिवांग की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असलम बेग।
1: इसके अलावा दिल्ली हाई कोर्ट ने कल दोबारा इम्तिहान से पहले टेलीग्राम को आरजी तौर पर ब्लॉक करने के मरकज के फैसले को बरकरार रखा और कहा कि प्लेटफॉर्म का निजाम गैर कानूनी मवाद के तेज रफ्तार फैलाव को मुमकिन बनाता है और ये कि महदूद नौइयत के दीगर इकदामात इम्तिहान में धोखाधही को रोकने में नाकाम रहे थे। हम अपनी सीरीज आकाशवाणी पर लोगों के पद्म की अगली किस्त में एक सामाजिक कारकुन और कारोबारी जज्बे के हामिल एसकेएम मिलानंदन का जिक्र कर रहे हैं, जिन्हें पद्म भूषण से नवाजा जाएगा। आप ये प्रोग्राम आज 100.1 आकाशवाणी गोल्ड पर सुबह 9:10 से सुन सकते हैं। ये प्रोग्राम आप न्यूज ऑन एआईआर ऐप और न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी सुन सकते हैं। भारत के सिक्योरिटीज और एक्सचेंज बोर्ड सेबी ने कुछ इस्लाहात की मंजूरी दी है, जिनका मकसद मार्केट की इस्तेदाद में बेहतरी लाना, दरकार दस्तावेजात की फरहमी में आसानी पैदा करना और माली शोबे में जाब्ता जाती फ्रेमवर्क्स को मुस्तहकम बनाना है। कल मुनाकिदा 214वीं मीटिंग में सेबी बोर्ड ने फौत शुदा सरमायाकार के कानूनी जानशीनों और दावेदारों के लिए सिक्योरिटीज की मुंतकली को आसान बनाया है। यह फैसला छोटी रकम वाले दावों को जल्द निपटाने के मकसद से किया गया है, ताकि इसके लिए कम से कम दस्तावेजात दरकार हों। सेबी ने कुछ मामलों में पैन की लाजमियत को भी खत्म कर दिया है और क्यूआर कोड वाले डेथ सर्टिफिकेट्स को तस्लीम कर लिया है। सेबी ने स्टॉक एक्सचेंजों के जरिए खुली मार्केट में अपने फरोख्त किए गए शेयर्स को वापस खरीदने का निजाम भी दोबारा शुरू करने का फैसला किया है। यह निजाम इस साल 1 अगस्त से दोबारा शुरू हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने बैंकों, असासे की तामीर नौ करने वाली कंपनियों और कर्जा देने वाली कंपनियों के माबैन बकौल उसके गहरी सांठगांठ पर शदीद तशवीश जाहिर की है, जिससे उस तरीके पर शकों को शुबहात पैदा हो जाते हैं जिसके तहत कर्ज नादहिंदगी के मामलात निपटाए जा रहे हैं। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस वी मोहन पर मुश्तमिल एक बेंच ने कल कहा कि बैंक टैक्स दहिंदगान से हासिल किया गया पैसा कर्ज के तौर पर दे रहे हैं, लेकिन इन कर्जों को वापस लेने की अक्सर मौसर कोशिशें नहीं की जा रही। अदालत ने कहा कि उसे सरकारी पैसे के गलत इस्तेमाल पर तश्वीश है, जिसे अवाम की बहबूद के लिए खर्च किया जाना चाहिए। योगा का बैनुल अक्वामी दिन 2026 कल पूरी दुनिया में मनाया जाएगा। यह 12वां योगा का बैनुल अक्वामी दिन होगा, जिसका मौजू है सेहतमंद बुढ़ापे के लिए योगा, जो सभी उम्र के लोगों के लिए योगा की अहमियत पर जोर देता है। इस सिलसिले में तकरीबात के हिस्से के तौर पर वजारत सकाफत मुल्क के 100 अहम मकामात पर योगा के बैनुल अक्वामी दिन के ताल्लुक से खुसूसी तकरीबात का एहतमाम करेगी। असल तकरीब वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क्यादत में कोलकाता के तारीखी रेड रोड पर मुनाकिद होगी, जहां वजीर आजम कॉमन योगा प्रोटोकॉल में मुल्क की क्यादत करेंगे। मगरबी बंगाल में खलीज बंगाल से उठने वाले मॉनसून के सरगर्म बादलों और शदीद रतूबत के सबब हिमालय से मुत्तसिल अजला में आज से इंतहाई शदीद बारिश का इम्कान है। कोलकाता और मजाफात के कई इलाकों ने इस मगरबी बंगाल के कुछ जनूबी जिलों में कल मूसलाधार बारिश हुई, जिसके सबब लोगों को दिन के मसरूफ दफ्तरी औकात में पानी भर जाने की सूरत हाल का सामना करना पड़ा। मर्दों के क्रिकेट में भारत और अफगानिस्तान के दरमियान जारी 3 एक रोजा बैनुल अक्वामी मैचों की सीरीज का तीसरा और आखिरी मैच आज दोपहर चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम में खेला जाएगा। यह मैच दोपहर 1:30 बजे शुरू होगा। मेजबान भारत पहले ही सीरीज में 2-0 से सबकत हासिल किए हुए है और अब वो सीरीज के तीनों मैच को जीतने के मकसद से मैदान में उतरेगा। और अब अखबारात के आईने के साथ हैं मुजीब अख्तर।
2: शुक्रिया शबाना। राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के सभी अखबारात ने अलग अलग खबरों को अहमियत दी है। रोना प्रताप ने वजी अजम नरेंद्र मोदी के मगरबी बंगाल दौरे की खबर को खसूसी तौर पर शाये किया है, जिसके मुताबिक जनाब मोदी आज वहां के दौरे पर रवाना होंगे, जहां वो मगरबी बंगाल दिवस के साथ साथ योगा डे की तकरीब में भी शिरकत करेंगे। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने मध्य प्रदेश में बैनुल अक्वामी सिकल सेल डे के मौके पर खिताब करते हुए कहा कि सिकल सेल एनीमिया के खात्मे के मिशन के तहत 7 करोड़ अफराद की स्क्रीनिंग हुई है। इस खबर पर रोना प्रताप ने खसूसी तवज्जो दी है। मुल्क दिफाई शोबे में खुद इंसारी की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहा है और 3 लाख करोड़ रुपए की दिफाई पैदावार नीत 50,000 करोड़ रुपए की दिफाई बरामदाद के अहदाफ को वक्त से पहले हासिल कर लिया जाएगा। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने नागपुर में ये बात कही। इस खबर को प्रताप ने पहले सफे पर जगह दी है। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर के जरिए दिल्ली के सब्जी मंडी इलाके में अव्वलीन खातून पुलिस स्टेशन के इफ्तिताह की खबर को रोजनामा इंकलाब ने उजागर किया है।
1: आखिर में खास खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू और वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज ओडिशा के मयूर

0: गंज जिले में 47,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत वाले तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे और संग बुनियाद रखेंगे। वजीर आजम मोदी मगरबी बंगाल के शहर हुगली से 9 करोड़ से ज्यादा किसानों के लिए पीएम किसान स्कीम की 23वीं किस्त जारी करेंगे। भारत के सीनियर अफसर शाह विवेक अग्रवाल को माली एक्शन टास्क फोर्स FATF का नायब सदर मुकर्रर किया गया है। भारत ने दहशतगर्दी को माली मदद फराहम करने की लानत से निमटने के अपने अज़्म को दोहराया है। NTA नीट UG के दोबारा इम्तिहान से पहले आज मुल्की सतह पर मॉक ड्रिल करेगी, ये इम्तिहान कल कराया जाएगा। और सेबी ने फौतशुदा सरमायाकारों के कानूनी वर्षा को शेयर्स की आसान मुंतकली के तरीकेकार की मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।
1: आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर। इस समय सुबह के 8:00

आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर। इस समय सुबह के 8:45 हो रहे हैं। प्रस्तुत है सदाबहार फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि। श्रोताओं, कार्यक्रम का पहला गीत सुनते हैं किशोर कुमार की आवाज़ में। फिल्म का नाम है आ गले लग जा।

0: हेमलता की आवाज़ में भी आप सुन रहे थे फिल्म अखियों के झरोखों से का ये गीत। गीत और संगीत था रविंद्र जैन का। श्रोताओं, कार्यक्रम गीतांजलि आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के आगरा केंद्र से। अगला गीत सुनते हैं इस छोटे से अंतराल के बाद।
1: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।

0: पसीना, तुम डाकू मैं हूँ शीशा, तुम पत्थर शीशा पत्थर टकराने दो। आने वाला आएगा जाने वाला जाएगा, तुम ना मानो तो जाने दो। तौबा तौबा क्या होगा, होना है जो वो होगा, होता है जो हो जाने दो।
1: अभी आप सुन रहे थे आशा भोंसले की आवाज़ में फिल्म मिस्टर नटवरलाल का ये गीत। गीत को लिखा था आनंद बख्शी ने, संगीतबद्ध किया था राजेश रोशन ने। कार्यक्रम में आइए आप सुनते हैं एक बार फिर आशा भोंसले की आवाज़ में फिल्म इजाज़त का ये गीत। गीत को लिखा है गुलजार ने, संगीतबद्ध किया है आर डी बर्मन ने।

आशा भोसले, किशोर कुमार, भूपेंद्र सिंह और साथियों की आवाज़ों में अभी आप सुन रहे थे फिल्म सत्ते पे सत्ता का ये गीत। गीतकार थे गुलशन बाबरा, संगीतकार थे आरडी बर्मन। इसी के साथ ही सदाबहार फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। सुबह के 9:15 होने को हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे लखनऊ केंद्र से हमारा अगला प्रसारण।

0: आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। प्रस्तुत है अगला कार्यक्रम जिले की हलचल। आज सुनिए कासगंज और कौशाम्बी जिलों की हलचल।
1: जिले की हलचल आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए कासगंज और कौशाम्बी जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं कासगंज जिले की हलचल। आलेख और स्वर है चंद्रशेखर मिश्र का।
2: कासगंज जनपद में केंद्र सरकार के सेवा सुशासन और गरीब कल्याण की 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में 5 से 21 जून तक विभिन्न जन जागरूकता एवं जन कल्याणकारी कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य केंद्र सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं और उपलब्धियों को आम जन तक पहुँचाना तथा पात्र लाभार्थियों को योजनाओं से जोड़ना है। जनपद के सभी विकास खंडों, नगर निकायों एवं ग्राम पंचायतों में विशेष शिविर, जन चौपाल संगोष्ठियां, लाभार्थी संपर्क अभियान तथा विकास प्रदर्शनियों का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रमों के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, उज्ज्वला योजना, स्वच्छ भारत मिशन, डिजिटल इंडिया तथा अन्य जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी लोगों को दी जा रही है। विभिन्न स्थानों पर आयोजित जन संवाद कार्यक्रमों में जन प्रतिनिधियों और अधिकारियों द्वारा लाभार्थियों से सीधे संवाद स्थापित कर योजनाओं के प्रभाव और क्रियान्वयन की समीक्षा भी की जा रही है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर जनपद में व्यापक वृक्षारोपण अभियान भी चलाया गया, जबकि आगामी 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में विशेष योग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार यह अभियान केवल सरकारी उपलब्धियों के प्रचार प्रसार तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका मुख्य उद्देश्य समाज के अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना और विकसित भारत के संकल्प को मजबूत करना है। जनपद कासगंज में अपराधियों के विरुद्ध पुलिस प्रशासन द्वारा लगातार कार्यवाही की जा रही है। पुलिस अधीक्षक ओपी सिंह ने बताया कि सभी क्षेत्राधिकारियों सहित संबंधितों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि पुलिस मित्र वाली छवि को बनाए रखने एवं पीड़ितों की समस्याओं को गंभीरता से सुनकर तत्काल उनका गुणवत्तापूर्ण समाधान किया जाए। श्री सिंह ने बताया कि सरकार की मंशा के अनुरूप जिले में अपराधियों, भूमाफियाओं एवं अन्य अराजक तत्वों को चिन्हित कर कार्यवाही अमल में लाई जा रही है। वहीं महिलाओं बालिकाओं की सुरक्षा के लिए पुलिस द्वारा जिले भर में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में जनपद कासगंज में 15 से 21 जून तक योग सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम योग फॉर हेल्दी एजिंग, स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग रखी गई है, जिसका उद्देश्य योग के माध्यम से स्वस्थ, सक्रिय और संतुलित जीवन शैली को बढ़ावा देना है। योग सप्ताह का शुभारंभ 15 जून को कासगंज के श्री गणेश इंटर कॉलेज के मैदान में सामूहिक योगाभ्यास के साथ किया गया। इस वर्ष की थीम योग फॉर हेल्दी एजिंग रखी गई है, जिसका उद्देश्य हर आयु वर्ग में योग के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। इस विशेष सप्ताह के दौरान जिले के सभी प्रमुख शिक्षण संस्थानों, तहसील परिसरों, विकास भवन, विकास खंड कार्यालयों, नगर निकायों और ग्राम पंचायतों में योग कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। योग सप्ताह का भव्य समापन 21 जून को नवीन पुलिस लाइन कासगंज में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम के रूप में होगा, जिसमें जन प्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी, छात्र छात्राएं और बड़ी संख्या में नागरिक शामिल होंगे। इस बारे में कासगंज की साहित्यकार और समाज सेवी पारुल वंसल ने बताया।
3: योग हमारे ऋषि मुनियों की वह अमूल्य देन है, जिसने आज पूरे विश्व को स्वस्थ जीवन का मार्ग दिखाया है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में योग शरीर को स्वस्थ, मन को शांत और विचारों को सकारात्मक बनाने का काम करता है। मुझे प्रसन्नता है कि भारत सरकार के प्रयासों से योग को आज वैश्विक पहचान मिली है और आज दुनिया के अनेक देश अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को उत्साह के साथ मना रहे। यह हमारे देश की सांस्कृतिक विरासत का सम्मान भी है और मानवता के कल्याण का संदेश।
2: कासगंज जनपद में किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर मक्का खरीद की प्रक्रिया शुरू हो गई है। खाद्य एवं रसद विभाग ने खरीद व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए जिले में कुल 10 क्रय केंद्र स्थापित किए हैं। सरकार द्वारा मक्का का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2400

0: रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। मंडी परिसर में 3 खरीद केंद्र बनाए गए हैं, जबकि सूरों, साहबर, गंज दुंडवारा, अमापुर और सिरपुरा में 1-1 केंद्र तथा पटियाली में 2 खरीद केंद्र संचालित किए जा रहे हैं। विभाग के अनुसार खरीद प्रक्रिया पंजीकृत किसानों से ही की जाएगी। इसके लिए ऑनलाइन पोर्टल पर किसान पंजीकरण जारी है। किसानों को उनकी उपज का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से सीधे बैंक खाते में किया जाएगा। जनपद में आगामी पल्स पोलियो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस यानी NID अभियान 2026 के सफल संचालन के लिए तैयारियां तेज हो गई हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर डीला रानी ने बताया कि आगामी 28 जून को जनपद के 336 पोलियो बूथों पर 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो रोधी दवा की खुराक पिलाई जाएगी।
1: कासगंज जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं कौशाम्बी जिले की हलचल। मालिक और स्वर है सोने लाल का।
2: उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने किसानों की सुविधा के लिए तहसील सिराथू, चायल और मंजनपुर में उप निबंधक कार्यालयों का शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि जिले में तहसीलों पर उप निबंधक कार्यालय की स्थापना होने से किसानों और व्यापारियों को अपनी जमीनों को बेचने और खरीदने में समय की बचत होगी। लोगों को कार्यालय में बैठने के लिए भी पर्याप्त मात्रा में जगह उपलब्ध होगी। कौशाम्बी जिले में प्रधानमंत्री के 12 वर्ष कार्यकाल पूर्ण होने पर उप मुख्यमंत्री ने एक पेड़ माँ के नाम रोपित किया। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सिराथू तहसील परिसर में एक पेड़ माँ के नाम रोपित किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 12 वर्ष कार्यकाल पूर्ण होने पर किसानों और व्यापारियों के लिए लाभदायक रहा है। विभिन्न योजनाओं को प्रधानमंत्री द्वारा जन जन तक पहुंचाया गया। 213 स्वयं सहायता समूहों को 63,90,000 और 338 स्वयं सहायक समूहों को 5,07,00,000 का ऋण स्वीकृत किया गया। 12 वर्ष पूर्ण होने पर समेकित जन जागरूकता 56 ग्राम पंचायतों में प्लास्टिक मुक्त अभियान चलाया गया, जिसमें 7 क्विंटल से अधिक प्लास्टिक कचरा संग्रहण किया गया। कौशाम्बी जिले में 12 वर्ष सेवा सुशासन गरीब कल्याण और विकसित भारत संकल्प ऐतिहासिक यात्रा प्रधानमंत्री के अटूट विश्वास और सरकार का सेवा भाव और भरोसा दिलाता है। जिले की प्रभारी मंत्री पशुधन एवं दुग्ध विकास कृष्णा पासवान ने कहा कि 12 वर्षों की सबसे बड़ी ताकत है जनता का अटूट विश्वास और सरकार का सेवा भाव, जो 2014 से देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भरोसा जताता है। 2019 से पहले बड़ा बहुमत देकर जनता ने मोहर लगाई और फिर 2024 में तीसरी बार जनता ने चुनकर साफ कर दिया कि देश में सिर्फ वादे नहीं बल्कि काम देखता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहला काम किसानों के हित में किसान सम्मान निधि जारी किया। सरकार ने 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला। सरकार ने जनधन योजना के तहत 58 करोड़ से अधिक बैंक खाते खोले गए, जिनमें 32 करोड़ से अधिक महिलाएं हैं। कोरोना काल में 81 करोड़ से अधिक देशवासियों को मुफ्त राशन दिया गया। 60 करोड़ लोगों का आयुष्मान कार्ड जारी किया गया। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत 58 करोड़ लोगों को सुरक्षा कवच मिला। 4 करोड़ से अधिक परिवारों को पक्के मकान, 11 करोड़ महिलाओं को उज्ज्वला योजना गैस कनेक्शन देकर धुएं से आजादी दी गई। जल जीवन मिशन योजना के तहत 16 करोड़ से अधिक घरों में नल से साफ पानी पहुंचाया गया। 12 करोड़ से अधिक शौचालय बनाकर स्वच्छता की नई क्रांति लाई गई। रेहड़ी पटरी वाले भाई बहनों को पीएम स्वनिधि योजना से 74,00,000 से अधिक लोगों को ऋण दिया गया। मुद्रा योजना के अंतर्गत 57 करोड़ से अधिक ऋण बांटे गए। पीएम विश्वकर्मा योजना से 30,00,000 लोगों को लाभ पहुंचाया गया। धरती आभा ग्राम उत्कर्ष योजना के अंतर्गत 79,000 करोड़ रुपए आवंटित किया गया। किसानों के केसीसी योजना के तहत 7 करोड़ से अधिक 10,00,000 करोड़ का सस्ता ऋण दिया गया। देश में मध्यम वर्ग को बड़ी राहत देते हुए टैक्स में बड़ी छूट दी गई। माताएं और बहनों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए लखपति दीदी योजना के अंतर्गत 3 करोड़ से अधिक महिलाओं को ऋण दिया गया। बेटियों की सुरक्षित भविष्य के लिए सुकन्या योजना के तहत 4 करोड़ से अधिक खाते खोले गए। कौशाम्बी जिले में सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामलों का सुलह समझौता के तहत निस्तारण होगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव ने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामलों का सुलह समझौता के तहत निस्तारण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 22 और 23 अगस्त को विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। मामलों के निस्तारण के लिए गूगल फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 31 जुलाई निर्धारित की गई है। आवेदन की प्रक्रिया 22 मई से प्रारंभ कर दी गई है। कौशाम्बी जिले में साइबर सेल द्वारा 23,00,000 कीमत के 123 मोबाइल फोन बरामद कर उनके मालिकों को वितरित किया गया। पुलिस अधीक्षक सत्यनारायण प्रजापत ने बताया कि ऐप के माध्यम से चोरी और गायब हुए 23,00,000 कीमत के 123 मोबाइल बरामद कर उनके मालिकों को वापस किया गया। लोगों को जागरूक किया गया। बैंक खातों से गायब धनराशि 20,00,000 से अधिक बरामद कर बैंक खातों में वापस किया गया। मिशन शक्ति योजना के तहत स्कूलों में स्टॉल लगाकर छात्राओं को जागरूक किया गया। गांव-गांव बुकलेट पेपर वितरित कर छोटे छोटे अपराधों को रोकने के लिए महिलाओं को जागरूक किया गया।

0: कोई भी घटना घटित होने पर हेल्पलाइन नंबर 112 आपातकालीन, 1076 मुख्यमंत्री और 1090 वुमेन पावर, 1098 चाइल्ड हेल्पलाइन, 1930 साइबर क्राइम और 181 महिला हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है।
1: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।
2: ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है, मीडियम वेव 196.1 मीटर पर। इस समय सुबह के 9:25 हो रहे हैं। प्रस्तुत है पुरानी फिल्मों से फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत मंजूषा। कार्यक्रम का पहला गीत सुनते हैं मोहम्मद रफी की आवाज में। फिल्म का नाम है चंदन का पालना। गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार हैं आर डी बर्मन।

मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे फिल्म मेरे हुजूर का ये गीत। गीतकार थे हसरत जयपुरी, संगीतकार थे कल्याण जी आनंद जी। श्रोताओ, कार्यक्रम गीत मंजूषा आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के आगरा केंद्र से। आइए अब सुनते हैं लता मंगेशकर और आशा भोंसले की आवाज़ों में फिल्म मेरे महबूब का ये गीत। गीत को लिखा है शकील बदायूनी ने, संगीत बद किया है नौशाद ने।

मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ों में अभी आप सुन रहे थे मजरूह सुल्तानपुरी की शब्द रचना को, जिसकी धुन बनाई थी ओपी नैयर ने। फिल्म का नाम था मेरी सनम। इस गीत के

बनाई थी ओपी नैयर ने। फिल्म का नाम था मेरी सनम। इस गीत के साथ ही पुरानी फिल्मों से फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत मंजूषा अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है मीडियम वेव 196.1 मीटर पर। श्रोताओं, अब समय है कार्यक्रम लोक संगीत का। आइए सुनते हैं सुखलेश देवी के गाए कुछ लोकगीत। आपके साथ संगत करता है ढोलक पर राधा मोहन शर्मा, हारमोनियम पर दीनदयाल शर्मा और साइड रिदम पर साथ दे रहे हैं राजकुमार पांडे। आइए सुनते हैं कार्यक्रम की पहली प्रस्तुति।

श्रोताओं, कार्यक्रम लोक संगीत आकाशवाणी के आगरा केंद्र से प्रसारित किया जा रहा है। कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं शुक्लेश देवी के गाए कुछ लोकगीत।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे शुक्लेश देवी के गाए कुछ लोकगीत। आपके साथ ढोलक पर संगत कर रहे थे राधा मोहन शर्मा, हारमोनियम पर दीनदयाल शर्मा और शायद रिदम पर राजकुमार पांडे। इसी के साथ ही कार्यक्रम लोक संगीत अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। श्रोताओं, अब आप सुनेंगे सदाबहार फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुर सरिता इस छोटे से अंतराल के बाद।
1: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
0: श्रोताओं, कार्यक्रम में सबसे पहले आइए सुनते हैं सुरेश वाडकर और लता मंगेशकर की आवाजों में फिल्म प्रेमरोग का ये गीत। गीत को लिखा है संतोष आनंद ने, संगीत बद्ध किया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: श्रोताओं, कार्यक्रम सुरसरिता आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के आगरा केंद्र से। आइए अब सुनते हैं सोनू निगम और विनोद राठौर की आवाजों में फिल्म मोहब्बत का ये गीत। गीत को लिखा है समीर ने, संगीतबद्ध किया है संजीव दर्शन ने।

अभी आप सुन रहे थे सोनू निगम और विनोद राठौर की आवाज़ों में फिल्म मोहब्बत का ये गीत। गीतकार थे समीर, संगीतकार थे संजीव दर्शन। कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ों में फिल्म खुद्दार का ये गीत। गीत को लिखा है राहत इंदौरी ने, संगीत बद्ध किया है अनु मलिक ने।

कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाजों में अभी आप सुन रहे थे फिल्म खुद्दार का ये गीत। श्रोताओ, सदाबहार फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुरसरिता आकाशवाणी के आगरा केंद्र से प्रसारित किया जा रहा है। कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं लता मंगेशकर और सोनू निगम की आवाजों में फिल्म 1 2 4 का ये गीत। गीत को लिखा है महबूब ने, संगीतबद्ध किया है AR रहमान ने।

लता मंगेशकर और सोनू निगम की आवाज़ों में अभी आप सुन रहे थे फिल्म 1-2 का 4 का ये गीत। गीत को लिखा था महबूब ने, संगीतबद्ध किया था AR रहमान ने। इस गीत के साथ ही सदाबहार फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुरसरिता अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। श्रोताओं, अब समय है कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत।

ईद का कार्यक्रम में आइए सुनते हैं वसीम अहमद खां का ख्याल गायन। आप प्रस्तुत कर रहे हैं राग बैरागी भैरव।

श्रोता भी सुन रहे थे कलाकार वसीम अहमद खान द्वारा राग वैरागी भैरव में ख्याल गायन, और कार्यक्रम था शास्त्रीय संगीत। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज़ और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर। हमारे स्टूडियो में घड़ी में दिन के ठीक 11 बजे हैं। श्रोता अब सुनेंगे कार्यक्रम आज के कलाकार।

स्वागत है श्रोताओं कार्यक्रम आज के कलाकार में। और आज का ये कार्यक्रम लेकर हाजिर हूँ मैं आपकी रेडियो दोस्त माधुरी उपाध्याय। तो स्वीकार कीजिए हमारा प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, भारतीय सिनेमा के इतिहास में कुछ ऐसे कलाकार हुए हैं जिनका नाम सुनते ही किसी नायक या नायिका की नहीं बल्कि उन जीवंत किरदारों की याद आती है जिन्होंने कहानियों को आत्मा प्रदान की। वे पर्दे पर भले ही मुख्य भूमिका में ना रहे हों लेकिन

कहानियों के बिना कहानी अधूरी लगती है। और आज एक ऐसे ही अद्भुत कलाकार से हम आपको मिलवाएंगे आपके अपने कार्यक्रम आज के कलाकार में। जी हाँ, जब भी भारतीय फिल्मों और धारावाहिकों में एक स्नेहमयी दादी, समझदार माँ और गरिमामयी सास या परिवार की मार्गदर्शक महिला का चित्र सामने आता है, तो सबसे पहले जिस चेहरे की स्मृति उभरती है वे हैं हमारी आज के कार्यक्रम की कलाकार सुषमा सेठ। जी हाँ, आज हम सफर तय करेंगे चरित्र अभिनेत्री सुषमा सेठ के जीवन का। उनकी शांत मुस्कान, आत्मविश्वास से भरी आवाज और स्वाभाविक अभिनय ने लाखों दर्शकों के दिलों में विशेष स्थान दिलाया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह अभिनेत्री केवल फिल्मों तक ही सीमित क्यों रही? ये फिल्मों तक सीमित नहीं रही, क्योंकि उन्होंने रंगमंच, टेलीविजन और सामाजिक कार्यों में भी अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। एक साधारण परिवार से निकलकर

श्रोताओं, सुषमा सेठ स्वयं गायिका नहीं थी, लेकिन उन्होंने जिन फिल्मों में अभिनय किया उन फिल्मों के कई लोकप्रिय गीत आज भी पसंद किए जाते हैं। और यहाँ उनकी कुछ प्रसिद्ध फिल्मों और उनके चर्चित गीतों को ही आप सुन रहे हैं आज के कार्यक्रम आज के कलाकार में। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज की हमारी कलाकार हैं सुषमा सेठ। जैसा कि हमने बताया कि उन्होंने दूरदर्शन के स्वर्णिम युग में अपना अभिनय दिखाया और दूरदर्शन के प्रसिद्ध धारावाहिक हम लोग ने सुषमा सेठ को घर घर में लोकप्रिय बना दिया। यह धारावाहिक भारतीय टेलीविजन के इतिहास में मील का पत्थर माना जाता है। इस धारावाहिक में उनके अभिनय ने दर्शकों का दिल जीत लिया। उन्होंने एक ऐसे पात्र को जीवंत बनाया जो परिवार, संस्कार और मानवीय मूल्यों का प्रतीक था। टेलीविजन में सफलता के बाद सुषमा सेठ ने फिल्मों की ओर कदम बढ़ाया। उनकी परिपक्व अभिनय क्षमता और प्रभावशाली व्यक्तित्व ने उन्हें चरित्र भूमिकाओं के लिए एक आदर्श बना दिया। उन्होंने अनेक प्रसिद्ध फिल्मों में माँ, दादी, नानी और परिवार की वरिष्ठ महिला के रूप में यादगार अभिनय किया। सुषमा सेठ ने कई लोकप्रिय फिल्मों में काम किया, जिनमें से कुछ प्रमुख हैं चांदनी, दीवाना, कभी खुशी कभी गम, कल हो ना हो, धड़कन और स्टूडेंट ऑफ द ईयर। इन फिल्मों में उनके द्वारा निभाए गए पात्र छोटे तो होते थे लेकिन बहुत प्रभावशाली रहे। सुषमा सेठ की अभिनय शैली की यदि बात की जाए तो उनकी अभिनय शैली की सबसे बड़ी विशेषता थी उनकी स्वाभाविकता। वे पात्र को अभिनय नहीं करती थी बल्कि उसे जीती थी। उनकी आवाज में गंभीरता और चेहरे पर मातृत्व का भाव दर्शकों को तुरंत प्रभावित कर देता था। यही कारण है कि उन्हें हिंदी सिनेमा की सर्वश्रेष्ठ चरित्र अभिनेत्रियों में उन्हें गिना जाता था। सुषमा सेठ का व्यक्तित्व जीवन भी उतना ही संतुलित रहा जितना कि उनका पेशेवर जीवन। उन्हें एक ऐसी महिला के रूप में जाना जाता है जिन्होंने अपने परिवार और करियर के बीच में एक सुंदर सामंजस्य स्थापित किया। वे हमेशा मानती रही हैं कि सफलता का वास्तविक अर्थ केवल प्रसिद्धि नहीं है बल्कि जीवन के मूल्यों को बनाए रखना है। उनके व्यक्तित्व में विनम्रता, सरलता और गरिमा स्पष्ट दिखाई देती है।

श्रोताओं, अभिनय के अलावा सुषमा सेठ सामाजिक कार्यों से भी जुड़ी रहीं। उन्होंने महिलाओं और बच्चों के कल्याण से संबंधित गतिविधियों में रुचि दिखाई। उनका मानना था कि कलाकार केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं बल्कि समाज को सकारात्मक दिशा देने वाला व्यक्ति भी होता है। सुषमा सेठ ने हिंदी फिल्मों में अनेक बड़े सितारों के साथ काम किया, जिनमें शामिल हैं शाहरुख खान।

ऋषि कपूर, अनिल कपूर, अक्षय कुमार, काजोल। उनकी उपस्थिति में पारिवारिक गर्माहट और भावनात्मक गहराई को जोर देती थी। बहुत सी अभिनेत्रियां माँ या दादी की भूमिका निभाती हैं, लेकिन सुषमा सेठ की खासियत यह थी कि अपने पात्रों में गरिमा, स्नेह और दृढ़ता का अद्भुत संतुलन प्रस्तुत करती थी। वे केवल भावुक नहीं दिखती थी बल्कि समझदार और प्रभावशाली भी लगती थी। जी हाँ श्रोताओं, सुषमा सेठ भारतीय सिनेमा और टेलीविजन की उन महान चरित्र अभिनेत्रियों में से हैं जिन्होंने अपने अभिनय से पीढ़ियों को प्रभावित किया। उन्होंने यह सिद्ध किया कि किसी कलाकार की महानता केवल मुख्य भूमिकाओं से नहीं बल्कि उन पात्रों से भी तय होती है जिन्हें वे जीवंत बना देते हैं। आज भी जब भारतीय दर्शक परिवार आधारित फिल्मों और धारावाहिकों को याद करते हैं तो सुषमा सेठ का नाम सम्मान के साथ लिया जाता है। उनका अभिनय, उनका व्यक्तित्व और उनकी कला आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना रहेगा। पर्दे पर माँ, दादी और संस्कारों की प्रतिमूर्ति बनकर जिसने अनगिनत परिवारों को भावनाओं के सूत्रों में बांधा, वह नाम है सुषमा सेठ।

तो श्रोताओं, ये था आज का कार्यक्रम आज के कलाकार, जिसमें आज की हमारी अभिनेत्री थी सुषमा सेठ, जिनका हमने जीवन वृतांत आपसे साझा किया। मिलेंगे कल एक नए कलाकार के साथ और कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए कार्यक्रम से इजाजत दीजिए। अपनी रेडियो दोस्त माधुरी उपाध्याय को नमस्कार।

श्रोता भी सुन रहे थे कार्यक्रम आज के कलाकार। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन के 11:30 हुए हैं। श्रोता अब सुनेंगे समसामयिक विषयों पर आधारित कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत।

स्वागत है श्रोताओं कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत में। और आज का ये कार्यक्रम एक बार फिर से आप सुन रहे हैं आपकी रेडियो दोस्त माधुरी उपाध्याय के साथ, तो स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस कार्यक्रम में हम बात करते हैं समसामयिक विषयों पर, और आज जो विषय हम लेकर आए हैं वह है योग। जी हाँ, कल 21 जून को हम सभी मनाएंगे योगा डे। प्रकृति से जुड़कर स्वस्थ रहने की पद्धति है योग। जी हाँ श्रोताओं, प्रकृति की गोद सुहानी है, योग की महिमा न्यारी है, तन मन को स्वस्थ बनाता है, जीवन में खुशियां लाता है। सूरज की किरणें कहती हैं स्वस्थ रहो, आगे रहो, बढ़ते रहो। योग और प्रकृति का साथ मिले तो जीवन में सुख के फूल खिले। जी हाँ श्रोताओं, योग हमें जोड़ता

है हमारे मन से, हमारी आत्मा से, और मन और आत्मा का मिलन कराता है हमारे शरीर से। जी हाँ, योग का अर्थ ही है जोड़ना। योग भारत की प्राचीन संस्कृति की एक अमूल्य देन है। आज के समय में मनुष्य अनेक प्रकार की शारीरिक और मानसिक समस्याओं से जूझ रहा है। भागदौड़ भरी जीवन शैली, तनाव, प्रदूषण और अनियमित दिनचर्या ने लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डाला है। ऐसे समय में योग एक ऐसी जीवन पद्धति के रूप में सामने आता है जो हमें प्रकृति के निकट ले जाकर हमें स्वस्थ और संतुलित जीवन जीना सिखाता है। प्रकृति, श्रोताओं, यदि देखा जाए तो प्रकृति ही हमारे जीवन का आधार है। शुद्ध वायु, स्वच्छ जल, सूर्य का प्रकाश, पेड़ पौधे और हरियाली हमें स्वस्थ रहने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जब योग को प्रकृति के साथ जोड़ा जाता है तब उसका लाभ कई गुना बढ़ जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि प्रकृति से जुड़कर स्वस्थ रहने की सर्वोत्तम पद्धति है योग।

इस मीठे से गीत के बाद एक बार फिर से स्वागत है श्रोताओं कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत में। जी हाँ श्रोताओं, हमारा दिल फुर्सत के पल ढूंढता है कि कभी हम सर्दी में धूप में बैठें, धूप में बस लेटे रहें, किताब पढ़ें, कुछ प्रकृति के साथ अपना तालमेल बिठाएं, या गर्मियों में या बरसात में जब कभी भी हमारा मन करता है तो हम ऐसे फुर्सत के पल ढूंढते हैं जब हम प्रकृति के साथ बैठें और कुछ समय अकेले में बिताएं। और योग श्रोताओं यही काम करता है। योग हमारे शरीर का, हमारे मन और हमारी आत्मा से मिलन कराता है, ये और योग हमें प्रकृति के बीच में ले जाता है। यदि आप वास्तव में हमारे जीवन का जो एक आधार है वो जानना चाहते हैं, इस आधार से जुड़ना चाहते हैं, तो आप जानेंगे कि योग का हमारे जीवन में कितना महत्व है। और इसी महत्व को हमें हम तक पहुंचाने के लिए, हमें बताने के लिए हर वर्ष 21 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ योगा मनाया जाता है और इसका उद्देश्य विश्व भर में योग के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। योग केवल व्यायाम नहीं है बल्कि स्वस्थ और संतुलित जीवन की को

की एक कला है। योग हमें प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करना और जीवन को सकारात्मक दृष्टि से देखना सिखाता है। श्रोताओ, यदि वास्तव में आप योग का महत्व अपने जीवन में जानते हैं तो आप जानेंगे कि प्रकृति का हमारे जीवन में कितना महत्व है। अन्यथा आप प्रकृति के बीच में जाएंगे, यानी कि कुछ लोग अभी जैसा कि आप देखते हैं कि गर्मियों के दिनों में सोचते हैं कि क्यों ना हम कहीं घूम कर आएं, प्रकृति के बीच में जाएं, बर्फ के नजारे लें, वहां पर जाएं, घूमें फिरें। और लोग जाते भी हैं, लेकिन जिनके शरीर का अपने मन और आत्मा से संबंध नहीं होता है, जो हमारे जीवन और प्रकृति के बीच में एक जो सामंजस्य है उसके ज्ञान से अनभिज्ञ हैं, वे वास्तव में प्रकृति को जान ही नहीं पाते। वे सिर्फ जाते हैं, वहां सैर सपाटा करते हैं, खाते हैं, पीते हैं और वहां पर टनों, मतलब आप उसकी गिनती भी नहीं कर सकते, इतनी गंदगी उन पर्वतों पर जाकर, उन नदियों पर जाकर वहां पर फेंक कर आते हैं। तो क्या यह हमारा प्रकृति से जुड़ना है? क्या हमारे शरीर का या हमारे मन का या हमारे आत्मा का मिलन प्रकृति से हुआ? हम तो वहां सिर्फ कुछ मौज मस्ती सैर सपाटे के लिए गए और प्रकृति की गोद में भी गए, लेकिन वहां जाकर उल्टा प्रकृति को हम गंदा कर आए। क्या यही हमारे जीवन का आधार है? जो प्रकृति हमें बहुत कुछ देती है, हम उसी प्रकृति को नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन श्रोताओं, यदि आप योग से जुड़े हुए हैं, आप जानते हैं कि योग का हमारे जीवन में क्या महत्व है, तो आप उन व्यक्तियों में से हैं जो कि जानेंगे कि प्रकृति हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है और प्रकृति का हमें सम्मान किस रूप में करना चाहिए। यदि आपका स्वास्थ्य हमें ये बताता है कि हमारा जो मन है, हमारी जो आत्मा है, हमारे नियंत्रण में है, तो हम वास्तव में प्रकृति से जुड़ेंगे और एक नियंत्रित तरीके से जुड़ेंगे। हम प्रकृति के बीच में जाकर प्रकृति को महसूस करना चाहेंगे, प्रकृति को जीना चाहेंगे, ना कि प्रकृति का दोहन करना चाहेंगे और ना ही प्रकृति को नुकसान करना चाहेंगे। योग का अभ्यास खुले वातावरण में करने से हमें बहुत लाभ मिलता है। ताजी हवा, हरियाली और सूर्य का प्रकाश शरीर व मन दोनों को नई ऊर्जा प्रदान करता है। प्रकृति हमें ताजी हवा में जीना सिखाती है और योग हमें उस प्रकृति की ओर ले जाता है। हरियाली हमारी आंखों को एक सुकून प्रदान करती है और योग हमें खींच कर ले जाता है कि आओ बाहर बैठो, इस घास पर बैठो और कुछ समय आंखें बंद कर ध्यान लगाकर इस प्रकृति के साथ अपना तालमेल बैठाओ। और सूर्य का प्रकाश, ये तो हमारे जीवन में एक नई ऊर्जा प्रदान करता है। जी हाँ श्रोताओं, उगते हुए सूरज की किरणों के साथ यदि आप ताजी हवा में, हरियाली के बीच, एक नरम घास के आसन पर बैठते हैं और चिंतन करते हैं, योग की बहुत सारी जो क्रियाएं होती हैं, और हम आपको बताएं भी कि योग के मुख्य अंग कौन से होते हैं, तो वो होते हैं यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान या समाधि। और इन प्रमुख अंगों में से यदि आप कुछ भी करते हैं, प्रकृति के बीच में जाकर आसन लगाते हैं, प्राणायाम करते हैं, ध्यान लगाते हैं या समाधि करना चाहते हैं, तो बस समझ लीजिए कि आप प्रकृति से जुड़ रहे हैं। और सूर्य का प्रकाश, उगती हुई किरणें, जब ये हमारे शरीर पर पड़ती हैं तो ये हमारे शरीर और मन दोनों को नई ऊर्जा से भर देती हैं। श्रोताओं, आप अपने जीवन में कितनी भी नकारात्मक ऊर्जा के बीच में रहें, और ये ध्यान रखिए कि यदि जीवन है तो जीवन में उतार चढ़ाव तो आते रहेंगे, लेकिन अपने जीवन को सकारात्मक तरीके से जीने के लिए हमारे पास बहुत तरीके हैं। एक तरीका ये भी है कि आप उस नकारात्मकता के बीच में खुद को कोसते रहें कि अरे ये हमारे जीवन में क्या हो रहा है, हम कहाँ खो गए हैं, आखिर मेरे साथ क्यों अच्छा नहीं हो रहा है। और एक तरीका ये भी है कि उस नकारात्मकता को, उस दुख दर्द को अपने जीवन का एक कुछ समय का हिस्सा मानकर आप आगे बढ़िए और सकारात्मकता का हाथ पकड़े रखिए कि ये जो दुख के क्षण हैं वो कुछ समय के हैं और

उस समय पश्चात मेरे जीवन में सब कुछ अच्छा होगा। तो श्रोताओ, हमारे जीवन में जो ये सकारात्मकता आती है, हमारे अंदर, हमारे शरीर के अंदर जो पॉजिटिविटी आती है, उसको जीने का एक तरीका है योग, जो हमारे दिन की शुरुआत के साथ आता है। तो यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में सब कुछ अच्छा हो, होता रहे, और ऐसा नहीं है कि सब कुछ हमेशा ही अच्छा होता रहेगा, दुख आएगा, दर्द आएंगे, पीड़ा भी आएंगे, लेकिन इन सबको जीने का तरीका जो है हमारे मन को

होता रहेगा, दुख आएगा, दर्द आएंगे, पीड़ा भी आएंगे, लेकिन इन सबको जीना का तरीका जो है हमारे मन को और हमारी आत्मा को आपस में समझाता है, हमारे शरीर को ये बात बताता है, जो है वो है योग। इन तीनों के बीच में तालमेल बैठाता है और इन तीनों का जो कनेक्शन है, एक कहीं ना कहीं संबंध स्थापित करवाता है प्रकृति से, वो है योग। तो श्रोताओं, कल है 21 जून, कुछ लोग केवल कल ही आसन लगाएंगे, कुछ समय के लिए योगा करेंगे, लेकिन अगर आप वास्तव में अपने जीवन में अपने शरीर को, अपनी आत्मा और अपने मन के साथ एक तालमेल स्थापित करना चाहते हैं और वास्तव में आप प्रकृति के साथ जुड़ना चाहते हैं, तो केवल कल ही नहीं, अपने जीवन के प्रत्येक दिन आप सुबह जल्दी उठिए, प्रकृति की गोद में जाइए, हरियाली के बीच में जाइए, ताजी हवा के बीच में जाइए और सूरज की किरणों के बीच में बैठकर आप कुछ समय के लिए सोचिए कि योग आपको क्या-क्या फायदे दिलाता है। और वहां जाने से पहले आइए सुनते हैं इस प्यारे से नगमे को, जो आपको सिखाएगा कि सूरज की गर्मी भी हमारे जीवन के लिए जरूरी होती है और सूरज की तपती हुई गर्मी में भी हमें जो छांव देता है, वो आखिर हमारे जीवन में क्या होता है।

जी हाँ श्रोताओं, जैसे सूरज की गर्मी में जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया, ऐसा ही सुख यदि आप अगर योग की शरण में जाते हैं तो आप भी महसूस करेंगे कि आपके जीवन में बहुत कुछ बदल चुका है। आपको एक अजीब सी छाया, एक अजीब सी शांति मन में महसूस होगी। और अगर आप अपने जीवन में परेशान हैं अपने शरीर से, यानी कि आपके शरीर आपका साथ नहीं दे रहा है, अनेक बीमारियों का घर बन चुका है, आपके मन में व्यर्थ की बातें, अनर्थ की बातें चलती रहती हैं, इधर उधर की परेशानियां, बेवजह बैठकर भी आपका मन इधर उधर दौड़ता है, चंचल है, इधर आपके काबू में नहीं है, बहुत सी परेशानियों का डेरा बन चुका है, और आपकी आत्मा जिसको आप परमात्मा से जोड़ना चाहते हैं, यानी कि राम की शरण में जाना चाहते हैं, जैसा कि अभी आपने इस गीत को सुना, तो इन सब का अगर कोई कारण आप, मतलब इन सब का अगर एक दवा, जैसा कि हम कहें एक दवा जो इन सब रोगों से आपको निजात दिला सकती है, तो वो है योग। आप योग की शरण में जाकर देखिए, ये आपका प्रकृति से मिलन कराएगी, आपकी आत्मा का परमात्मा से मिलन कराएगी, ये आपके शरीर के विकारों को दूर करेगी, आपके मन को शांत करेगी। बस एक दवा है योग। श्रोताओं, योग के शारीरिक लाभ अगर आपको बताएं तो शरीर को ये स्वस्थ और लचीला बनाता है, रोग आपकी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, रक्त संचार को बेहतर करता है, थकान और आलस को दूर करता है और शरीर में ऊर्जा का संचार करता है। अब सोचिए इतने सारे फायदे और सिर्फ योग से। इस भागदौड़ भरी जिंदगी में, इस मतलब शांति तो जहां है ही नहीं, हर जगह भागम भाग लगी हुई है, वहां इतनी सारी दवाइयों को खाने की जगह अगर आपको सिर्फ एक योग के द्वारा इतना कुछ लाभ मिलता है, तो क्यों ना आप योग की शरण में जाएं। इसके अलावा योग आपको मानसिक लाभ भी देता है, जैसे कि यह आपकी चिंता और तनाव को कम करता है, आपकी एकाग्रता को बढ़ाता है,

आपके अंदर आत्मविश्वास में वृद्धि करता है, सकारात्मक सोच विकसित करता है और मन को शांत और प्रसन्न करता है। और अगर आप विद्यार्थी जीवन जी रहे हैं तो ये आपका पढ़ाई में ध्यान विकेंद्रित करवाता है, आपकी परीक्षा में तनाव को कम करता है, आपकी स्मरण शक्ति को बढ़ाता है और आपके अंदर अनुशासन और आत्मनियंत्रण को सिखाता है। और श्रोताओं, आज के जीवन में आत्मनियंत्रण और अनुशासन बहुत जरूरी है। प्रकृति को हमने वैसे ही इतना नुकसान पहुंचाया है, लेकिन यदि आप योग से जोड़ते हैं तो आप जानेंगे कि हमारे जीवन में अनुशासन कितना जरूरी है कि हम प्रकृति से जुड़े रहें और अनुशासित रूप में भी रहें। हम जब घर से बाहर निकलते हैं तो घर से बाहर निकलकर हम देखते हैं कि हम प्रकृति का कितना दोहन कर चुके हैं और प्रकृति को कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं। लेकिन आप यदि वास्तव में एक अनुशासित जीवन जी रहे हैं तो आप जानेंगे कि हमें प्रकृति को नुकसान नहीं पहुंचाना है और किस तरह से अपने जीवन को यापन करना है, प्रकृति से जुड़कर रहना है कि हम प्रकृति को पा भी सकें, प्रकृति से जो मिलने वाले लाभ हैं उनको उठा भी सकें और प्रकृति को किसी तरह से हम नुकसान भी ना पहुंचाएं। क्योंकि योग जो है हमारा प्रकृति से तालमेल कराता है। जब हम प्रकृति को जान जाएंगे, पहचान जाएंगे, तो हम ये जानेंगे कि ये प्रकृति तो हमारे जीवन का आधार है और यदि प्रकृति जीवन का आधार है तो हमें इसे नुकसान नहीं पहुंचाना है, बल्कि इसके साथ जुड़कर तालमेल बैठाकर हमें एक स्वस्थ जीवन जीना है। और प्रकृति से जुड़कर स्वस्थ रहने की पद्धति ही तो योग है। तो श्रोताओं, दवाइयों का उपयोग करने से अच्छा है कि हम एक योग की टैबलेट सुबह उठते ही रोजाना लें, प्रकृति की गोद में जाएं, सूरज की आती हुई किरणों के बीच में सूर्य देवता को प्रणाम करते हुए प्राणायाम करें, आसन करें, ध्यान लगाएं, कुछ भी करें, लेकिन योग की इतनी सारी जो प्रक्रियाएं हैं उनसे जुड़िए, खुद स्वस्थ रहिए, अपने परिवार को स्वस्थ करिए और प्रकृति की गोद में आइए। कोशिश करिए कि हम प्रकृति के बीच में जाकर, चाहे हम पृथ्वी पर बात करें, पहाड़ों की, नदियों की, कहीं भी जाएं, तो हम प्रकृति को नुकसान ना पहुंचाएं। जुड़िए, प्रकृति को जानिए, पहचानिए और देखिए कि प्रकृति आपको कितना कुछ देती है और बदले में हम उसको क्या दे रहे हैं। तो कोशिश कीजिए कि आप अपनी ज़िंदगी में केवल एक दिन यानी 21 जून को योग ना करें, जीवन के प्रतिदिन आप सुबह उठकर प्रकृति की गोद में जाएं और योग से जुड़ें। तो श्रोताओं, ये था आज का कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत, जहां हमने बात करी योग के बारे में। मिलेंगे कल एक नए विषय के साथ और कुछ नए विचारों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए कार्यक्रम से इजाज़त। नमस्कार। श्रोता भी सुन रहे थे कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के ठीक 12 बजे हैं। श्रोता, आप सुनेंगे कार्यक्रम लोकमंजरी। और कार्यक्रम लोकमंजरी के अंतर्गत हम आपको सुनवाएंगे कलाकार सीलो द्वारा गाए हुए कुछ चयनित लोकगीत। कार्यक्रम की शुरुआत में आप सुनेंगे ये लोकगीत जिसके बोल हैं, खातिर कर ले नई गुजरिया।

श्रोता भी सुन रहे थे कार्यक्रम लोक मंजरी आकाशवाणी के आगरा केंद्र से मीडियम वेव 196.1 मीटर और 1530 किलो हर्ट्ज पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 12:30 हुए हैं। श्रोता अब सुनेंगे कार्यक्रम नए तराने। कार्यक्रम की शुरुआत में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं फिल्म टू स्टेट सीन गीत, जिसमें अपनी आवाजें दी हैं अरिजीत सिंह और चिन्मयी श्रीपदा ने। संगीत निर्देशन है शंकर एहसान लॉय का और इस गाने के बोल लिखे हैं अमिताभ भट्टाचार्य ने।

श्रोता समय सुन रहे हैं नई फिल्मों से फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम नए तराने आकाशवाणी के आगरा केंद्र से। कार्यक्रम का ये अगला गीत आप सुनेंगे आतिफ असलम की आवाज में, जिसमें संगीत निर्देशन है प्रीतम का, और इस गाने को हमने लिया है फिल्म ट्यूबलाइट से।

कार्यक्रम नए तराने का अगला गीत हम आपको सुनवाएंगे श्रेया घोषाल और इंदर बरवा की आवाजों में। इस गीत में संगीत निर्देशन है संजय बरवा का और इस गीत को लिखा है मोरूस मुंतसिर ने और इस गीत को हमने लिया है रॉकी हैंडसम से। तो आइए श्रोताओं सुनते हैं कार्यक्रम नए तराने में ये अगला गीत।

0: श्रोता समय सुन रहे हैं कार्यक्रम नए तराने आकाशवाणी के आगरा केंद्र से। कार्यक्रम अभी जारी है श्रोताओं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आइए लेते हैं एक छोटा सा अंतराल।
1: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
0: इस छोटे से अंतराल के बाद फिर से स्वागत है श्रोताओं कार्यक्रम नए तराने में। कार्यक्रम का अगला नगमा अब आप सुनेंगे फिल्म हाउसफुल से, जिसमें अपनी आवाजें दी हैं तरुण सागर, अलीशा मेंडोलसा और लॉय मेंडोनिसा ने। इस गाने में संगीत निर्देशन है शंकर एहसान लॉय का और इस गीत को लिखा है समीर ने। तो आइए श्रोता सुनते हैं इस गीत को फिल्म हाउसफुल से।

कार्यक्रम नए तराने का अगला गीत श्रोता सुनेंगे फिल्म देशी बॉयज से, जिसमें अपनी आवाजें दी हैं मीका सिंह और शेफाली अल्वारिस ने। इस गीत में संगीत निर्देशन है प्रीतम का और इस गीत को लिखा है कुमार ने।

श्रोता समय सुन रहे हैं कार्यक्रम नए तराने आकाशवाणी के आगरा केंद्र से। कार्यक्रम का ये अगला गीत श्रोता सुनेंगे फिल्म डिशुम से जोनिता गांधी और अमित मिश्रा की आवाजों में। इस गीत में संगीत निर्देशन है प्रीतम का और इस गीत को लिखा है कुमार और आशीष पंडित ने। तो आइए श्रोताओं सुनते हैं इस गीत को कार्यक्रम नए तराने में।

0: और श्रोताओं, इस गीत के साथ ही कार्यक्रम नए तराने अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है, मीडियम वेव 196.1 मीटर पर। दोपहर का 1 बजने को है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार और दोपहर 1:05 पर आप सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार। इन दोनों ही बुलेटिन का प्रसारण हमारे दिल्ली केंद्र से किया जाएगा। दोपहर 1:10 पर श्रोता सुनेंगे हमारे लखनऊ केंद्र से रिले इलाकाई खबरें। कृपया हिंदी में समाचारों की प्रतीक्षा करें।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज ओडिशा के मयूरभंज जिले में अपने पैतृक गांव पहाड़पुर पहुंची। ओडिशा के राज्यपाल हरिबाबू कंभमपति, मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी और स्थानीय लोगों ने राष्ट्रपति के आगमन पर उनका स्वागत किया। अपने पैतृक गांव में राष्ट्रपति ने 68वां जन्मदिन भी मनाया। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहाड़पुर गांव पहुंच गए हैं। राष्ट्रपति मुर्मू ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ अपने गांव का दौरा किया। वे पवित्र संथाली जहेरा और होजहेरा उपवनों में पूजा अर्चना करेंगे, साथ ही कौशल विकास केंद्र और पहाड़पुर स्कूल का दौरा भी करेंगे। इसके बाद राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री रायरंगपुर में ओडिशा सरकार के 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। वे ऊर्जा, अवसंरचना, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सिंचाई सहित विभिन्न क्षेत्रों में 47,000 करोड़ रुपए से अधिक के विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इस अवसर पर वे जनसभा को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पश्चिम बंगाल भी जाएंगे। वे हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंग दिवस समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। वे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त भी जारी करेंगे। इसके अंतर्गत देश के 9,44,00,000 किसानों के बैंक खातों में 18,880 करोड़ रुपये से अधिक की राशि सीधे अंतरित की जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंग दिवस पर राज्य के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पर अपने संदेश में राष्ट्रपति ने कहा कि ये दिन पश्चिम बंगाल के भारत का अभिन्न अंग बने रहने के संकल्प और आकांक्षाओं का प्रतीक है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि वर्ष 1947 में इसी दिन एक ऐतिहासिक फैसले में भारत के एक अहम हिस्से के रूप में पश्चिम बंगाल राज्य के गठन का मार्ग प्रशस्त किया गया था। प्रधानमंत्री ने कहा कि पश्चिम बंगाल साहित्य, संगीत, कला, आध्यात्मिकता, विज्ञान, व्यापार, वाणिज्य, समाज सुधार के माध्यम से देश के इतिहास में महत्वपूर्ण योगदान करने वाला राज्य है। गृहमंत्री अमित शाह आज कोल्हापुर और इचलकरंजी के दौरे पर हैं। वे महालक्ष्मी मंदिर परिसर में विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन और कोल्हापुर के पुलिस परेड ग्राउंड में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद वे इचलकरंजी में जनता सहकारी बैंक के नए भवन का उद्घाटन करेंगे तथा सहकारी चीनी कारखाने के नामकरण और विस्तार के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। सरकार के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी विवेक अग्रवाल को वर्ष 2026-27 के लिए

0: वित्तीय कार्यवाही कार्यबल का उपाध्यक्ष चुना गया है। वे ब्रिटेन के गाइल्स थॉमसन का स्थान लेंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए कल होने वाली नीट यूजी पुनः परीक्षा से पहले आज राष्ट्रव्यापी अभ्यास संचालित कर रहा है। परीक्षा से पहले मानक तैयारी के निरीक्षण के लिए मॉक ड्रिल की जा रही है। एजेंसी ने बताया कि कल होने वाली पुनर्परीक्षा के लिए उसकी तैयारियां पुख्ता हैं। भारतीय सूचना सेवा के पूर्व अधिकारी दीपांकर मुखोपाध्याय का कल रात लंबी बीमारी के बाद कोलकाता में निधन हो गया। वे 77 वर्ष के थे। श्री मुखोपाध्याय ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय के विभिन्न मीडिया इकाइयों में सेवाएं प्रदान की और आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग में भी कार्य किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा करते हुए उन्हें मजबूत और प्रभावशाली नेता बताया है। उन्होंने कहा कि श्री मोदी चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के साथ दुनिया के सबसे प्रभावशाली नेताओं में से एक हैं। एक साक्षात्कार में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि श्री मोदी के पिछले 12 सालों के नेतृत्व में भारत को मजबूती और स्थिरता मिली है। विश्वभर में कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। इस वर्ष 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय है स्वस्थ आयु के लिए योग। ये विषय हर उम्र में योग के महत्व को रेखांकित करता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर संस्कृति मंत्रालय देश भर में 100 स्थानों पर विशेष कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। इनमें भारत की समृद्ध विरासत और योग परंपराओं को प्रदर्शित किया जाएगा। योग दिवस का मुख्य समारोह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर आयोजित किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मध्य प्रदेश के जबलपुर में योग दिवस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होंगी। भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच आज दोपहर एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba. Prime Minister Narendra Modi arrived at Paharpur in Odisha's Mayurbhanj district today. He was received by Odisha Governor Dr. Hari Babu Kambapati and Chief Minister Mohan Charan Manchi. Earlier, President Draupadi Murmu had reached her village Paharpur to celebrate her 68th birthday in the presence of the Prime Minister. The two leaders are scheduled to offer prayers at the sacred Santhali Jahera and Ho Jahera groves and visit the Skill Development Centre and Paharpur School, highlighting initiatives aimed at empowering tribal communities through education and skill development. Later in the day, the President and the Prime Minister will participate in a public program at Rai Rangpur, marking the completion of 2 years of the Odisha government. Developmental projects worth over 47,000 crore rupees will be inaugurated and foundation stones laid across sectors including energy, infrastructure, healthcare, education and irrigation. Both the President and the Prime Minister will also address a large public gathering on the occasion. Prime Minister Narendra Modi will commission 3 indigenously built Indian Navy platforms, INS Dounagiri, INS Sanshodhak and INS Agra in Kolkata tomorrow. Designed by the Navy's Warship Design Bureau and built by Garden Reach Shipbuilders and Engineers, the vessels are intended to strengthen combat operations, hydrographic surveying and anti-submarine warfare. INS Dounagiri, a Project 17A stealth frigate, is armed with BrahMos missiles and medium-range air defense systems. INS Sanshodhak is a survey vessel designed for coastal and deep water hydrographic operations, while INS Agra is an anti-submarine warfare craft equipped with torpedoes, rocket launchers and sonar systems for coastal defense. The Navy said the vessels have more than 75% indigenous content and involved over 200 micro, small and medium enterprises, highlighting the growth of India's domestic shipbuilding industry. President Draupadi Murmu, Vice President C.P. Radhakrishnan and Prime Minister Narendra Modi have extended greetings to the people of West Bengal on the occasion of Pashchim Bongo Diwas today. In a social media post, she said that the day marks a significant milestone in the state's history, reflecting the aspirations and resolve that ensured West Bengal remained an integral part of India. The Vice President said that on this day in 1947, a historic decision paved the way for the creation of West Bengal as an integral part of India. He said that West Bengal occupies a special place in the country's civilizational and national life.

0: वानी लखनऊ है। इलाकाई खबरें दीबा हाशमी से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज मग़रिबी बंगाल से किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त जारी करेंगे। इस स्कीम के तहत मुल्क भर के 9,44,00,000 किसानों के बैंक खातों में 18,880 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम बराह रास्त मुंतकिल की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली के विज्ञान भवन में मुनक़िद एक तकरीब में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत 2400 करोड़ रुपए की मुराद तकसीम की। उत्तर प्रदेश समेत मुल्क भर के एक वर्चुअल सामेईन से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि आज पूरी दुनिया हिंदुस्तान की नौजवान ताकत पर बहस कर रही है। जनाब मोदी ने कहा कि इस स्कीम का मकसद पहली बार मुलाजमत के मुतलाशियों को बाइख्तियार बनाना और नौजवानों और सनत के दरमियान पुल बनाना है। वज़ीर आज़म ने कहा कि इस स्कीम से बड़ी तादाद में मुलाजमतें पैदा हुई हैं। जनाब मोदी ने कहा कि हिन्दुस्तान के नौजवानों की ख्वाहिशात, हुनर और सलाहियतें तरक्की याफ्ता हिन्दुस्तान की राह हमवार करती हैं।
1: दुनिया भारत के युवाओं की क्षमता को भली भांति पहचानने लगी है और ऐसे समय में हमारी कोशिश है कि भारत का हर युवा अपनी क्षमता को अवसर में बदल सके और इसी

0: सोच के साथ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का आरंभ हुआ। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के सहयोग से अब तक करीब 70 लाख जॉब सृजित हुई है। करीब 20 लाख युवा अपनी पहली नौकरी के 6 महीने पूरे भी कर चुके हैं। 2000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंची है। ये राशि केवल आर्थिक सहायता नहीं है, यह उनके परिश्रम का सम्मान है।
1: इस पहल के तौर पर लखनऊ, ग्रेटर नोएडा, वाराणसी, मेरठ और गोरखपुर समेत रियासत के 17 जिला में प्रोग्राम मुनक्किद किए गए। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कल अयोध्या म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में 290 करोड़ रुपए से ज्यादा के 245 तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और संगे बुनियाद रखा। कबलज चीफ मिनिस्टर ने गोंडा में देवी पाटन और बस्ती डिवीजनों के महकमा तामीरात आम्मा के साथ मीटिंग की और 13 बड़ी सड़कों की तरक्की को मंजूरी दी। उन्होंने कुल 4901 करोड़ 65 लाख रुपए के 1000 से ज्यादा तरक्याती मनसूबों की तजावीज को भी मंजूरी दी। उत्तर प्रदेश ब्रिक्स ममालिक के साथ तिजारत, टेक्नोलॉजी और सरमायाकारी के रवाबत को बढ़ा रहा है। रियासती हुकूमत ने इतला दी है कि माली साल 2025-26 के दौरान ब्रिक्स ममालिक और शराकतदार ममालिक को 5 अरब 36 करोड़ डॉलर से ज्यादा की बरामदात की गई। माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस के वजीर भूपेंद्र सिंह चौधरी ने आगरा में ब्रिक्स MSME फोरम से खिताब करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश मुख्तलिफ ममालिक को मशीनरी, गारमेंट्स, चमड़े के सामान, कालीन और कीमती पत्थर बरामद कर रहा है। रियासती हुकूमत के एक बयान के मुताबिक ब्रिक्स ममालिक को 3 अरब 94 करोड़ डॉलर और पार्टनर ममालिक को तकरीबन 1 अरब 43 करोड़ डॉलर की बरामदात की गई। आगरा में ब्रिक्स MSME फोरम में ब्रिक्स ममालिक और माइक्रो, छोटे और दरमियाने दर्जे के इंटरप्राइजेस सेक्टर के नुमाइंदों ने शिरकत की। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क्यादत में मुल्क में गुज़िश्ता 12 सालों में गैर मामूली तब्दीली हुई है, जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के उसूलों पर कार फरमा है। ऑल इंडिया रेडियो न्यूज गुज़िश्ता 12 सालों में अहम शोबों में हुकूमत की कोशिशों को उजागर करने वाले खसूसी प्रोग्राम नष्ट कर रहा है। आज हुकूमत की इन तब्दीलियों के इकदाम के बारे में जाने, जो एक मजबूत हिन्दुस्तान के विजन को पूरा कर रही है।
2: सशक्त भारत के दो महत्वपूर्ण आधार हैं, सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का विकास और स्पेस स्टार्टअप्स की तेजी से बढ़ती संख्या। दिसंबर 2021 में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन शुरू किया गया। इसके लिए 76,000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया। साल 2026 में सरकार ने सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 शुरू किया। इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मिशन 1.0 ने इस जटिल उद्योग की मजबूत नींव रखी है। वहीं भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 ने निजी कंपनियों को अंतरिक्ष क्षेत्र में पूरी तरह काम करने की अनुमति दी है। अब निजी संस्थाएं रॉकेट लॉन्च, उपग्रह निर्माण और संचालन, डेटा संग्रह और वितरण तथा ग्राउंड स्टेशन जैसी गतिविधियां कर सकती हैं।
1: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA कल के नीट UG के दोबारा इम्तिहान से पहले आज मुल्क गिर मॉक ड्रिल करेगी। ये मशक इम्तिहान से कबल तैयारी के मेयार का जायजा लेने के लिए की जा रही है। दरियस्ता नीट इम्तिहान 2026 के उम्मीदवारों की सहूलत के लिए शुमाल मशरकी रेलवे लखनऊ डिवीजन इंतजामिया की तरफ से कल 21 जून को गोरखपुर और लखनऊ गोरखपुर के दरमियान दो जोड़े गैर महफूज इम्तिहानी खसूसी ट्रेनें चलाई जाएंगी। दरियस्ता शुमाली रेलवे लखनऊ डिवीजन भी 21 जून को खसूसी गैर महफूज इम्तिहानी खुसूसी ट्रेन चलाएगा। और महकमा मौसमियात ने आज रियासत के मगरबी इलाकों के कुछ अजला में हल्की बारिश और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई की है, जबकि मशरकी इलाकों में मौसम खुश्क रहेगा। महकमे के मुताबिक अगले 3 दिनों तक गर्मी से कोई राहत नहीं मिलेगी और रियासत भर में मौसम खुश्क रहेगा। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नष्ट किया जाएगा।
3: ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर। अब समय है हमारी बहनों के अपने कार्यक्रम पनघट का।

0: बहनों, आप सुन रही हैं ग्रामीण महिलाओं का कार्यक्रम जिसका नाम है पनघट। और आज के सफर में आपके साथ है आपकी रेडियो साथी शोभना। तो स्वीकार करें हमारी राम राम। सखियों, आज की चर्चा का विषय आपको पता है क्या है? चलिए हम बताते हैं। आज की चर्चा का विषय है लघु उद्योग और रोजगार सृजन। आज हम और आप दोनों मिलकर जानेंगे कि छोटे छोटे उद्योगों के माध्यम से हमारी ग्रामीण महिलाएं किस तरीके से अपनी आमदनी को बढ़ा सकती हैं और परिवार की आर्थिक स्थिति को भी मजबूत बना सकती हैं। सखियों, आज के समय में केवल खेती पर निर्भर रहना ही जरूरी नहीं है। गांव में रहते हुए भी महिलाएं कई तरीके के लघु उद्योग शुरू कर सकती हैं। लघु उद्योग, इसका मतलब होता है कि एक ऐसा छोटा व्यवसाय जिसे कम पूंजी और सीमित संसाधनों से शुरू किया जा सके। आज हमारी बहुत सी महिलाएं घर बैठकर अचार, पापड़, मसाले, अगरबत्ती, सिलाई कढ़ाई, ब्यूटी पार्लर का, डेयरी, बकरी पालन, मशरूम उत्पादन और हस्तशिल्प जैसे कार्य अच्छी आमदनी कर रही हैं। पहले अक्सर महिलाओं को लगता था कि व्यवसाय शुरू करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए, लेकिन अब स्वयं सहायता समूह हो और सरकारी योजनाओं की मदद से कम पूंजी में भी काम शुरू किया जा सकता है। बहनों, स्वयं सहायता समूह यानी कि महिला समूह न केवल बचत करने का माध्यम है, बल्कि इनके जरिए महिलाएं बैंक से ऋण लेकर अपना छोटा उद्योग भी शुरू कर सकती हैं। समूह में काम करने से अनुभव और जिम्मेदारियां भी साझा हो जाती हैं। बहनों, लघु उद्योग का सबसे बड़ा फायदा ये है कि इससे गांव में ही रोजगार के अवसर पैदा होते हैं। महिलाओं को काम की तलाश में बाहर ही नहीं जाना पड़ता और वे घर परिवार की जिम्मेदारियों के साथ साथ अपनी आय भी बढ़ा सकती हैं। इसके अलावा आजकल डिजिटल माध्यमों का भी खूब उपयोग हो रहा है। कई महिलाएं अपने उत्पादों की जानकारी सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए लोगों तक पहुँचा रही हैं। इससे उनके सामान की बिक्री तो बढ़ी रही है, साथ में बाजार भी बड़ा हो रहा है। अगर किसी महिला को सिलाई का काम आता है तो वो कपड़े सिलने का काम शुरू कर सकती है। जिनके पास पशु हैं वो दूध और दूध से बने उत्पाद तैयार कर सकती हैं। और इसी तरीके से स्थानीय ज़रूरतों को ध्यान में रखकर, यानी कि जो आपके आस पास ज़रूरत की चीज़ें हैं उसी से ही आप छोटे छोटे उद्योग शुरू कर सकती हैं। एक और महत्वपूर्ण बात बहनों कि उद्योग शुरू करने से पहले बाजार की मांग को समझना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा काम चुनें जिसकी ज़रूरत आपके क्षेत्र में हो और जिसकी बिक्री आसानी से हो सके। जब महिलाएं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनती हैं तो उनका आत्मविश्वास भी बढ़ता है। वे परिवार के महत्वपूर्ण निर्णयों में भागीदारी करती हैं और बच्चों की शिक्षा तथा परिवार के विकास में बेहतर योगदान दे पाती हैं। आज ग्रामीण महिलाओं के पास आगे बढ़ने के अनेक अवसर हैं। जरूरत है तो केवल अपनी क्षमता पहचानने की और उपलब्ध योजनाओं तथा प्रशिक्षण का लाभ उठाने की। तो बहनों, आज की चर्चा से हमें यही संदेश मिलता है कि लघु उद्योग न केवल आय का साधन है, बल्कि आत्मनिर्भरता और रोजगार सृजन का भी मजबूत माध्यम है। अगर सही योजना और मेहनत के साथ शुरुआत की जाए तो छोटे कदम भी बड़ी सफलता की ओर ले जा सकते हैं, और इस बात से हम तो कभी इनकार कर ही नहीं सकते। तो बहनों, इस अच्छी सी महत्वपूर्ण सी चर्चा के बाद आइए लेते हैं एक छोटा सा अंतराल, पर कहीं जाइएगा नहीं क्योंकि हम कर रहे हैं आपका इंतजार।
1: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
2: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
0: सखियों, अंतराल के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। बहनों, हमारे जीवन में घर का बहुत महत्व होता है। घर केवल ईंट पत्थर से बनी चार दीवारी नहीं होता, बल्कि हमारी यादों, रिश्तों और सुरक्षा का एक स्थान होता है। लेकिन दुनिया में ऐसे भी लाखों लोग हैं जिनको युद्ध, हिंसा, प्राकृतिक आपदाओं या फिर अन्य कठिन परिस्थितियों के कारण अपना घर और अपना देश छोड़ना पड़ जाता है। ऐसे लोगों की पीड़ा और संघर्ष को समझने और उनके प्रति संवेदनशीलता बढ़ाने के लिए हर वर्ष

0: 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है। जब किसी व्यक्ति या परिवार को अपने देश में युद्ध, हिंसा, उत्पीड़न या फिर किसी गंभीर संकट के कारण अपनी जान बचाने के लिए दूसरे देश में शरण लेनी पड़ती है, तो ऐसे लोगों को शरणार्थी कहा जाता है। वे अपनी इच्छा से घर नहीं छोड़ते बहनों, बल्कि परिस्थितियां उन्हें ऐसा करने के लिए मजबूर कर देती हैं। सोचिए, यदि किसी परिवार को अचानक अपना घर, जहां पर आप कई सालों से पले हैं, बड़े हैं, या फिर आपने 5-10 साल वहां पर बिताए हैं, खेत, रोजगार और आपका परिचित वातावरण, जहां पर आप सभी को जानते हैं, उन सबको छोड़ना पड़ जाए तो उसे कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। शरणार्थियों को भी ऐसी ही कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है। उन्हें नए स्थान पर रहने, भोजन, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए संघर्ष करना पड़ता है। बहनों, संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2001 से 20 जून को, यानी कि आज के दिन को, विश्व शरणार्थी दिवस के रूप में मनाना शुरू किया है। इसका उद्देश्य सिर्फ इतना ही है कि दुनिया भर में शरणार्थियों के साहस, संघर्ष और धैर्य को सम्मान देना तथा लोगों को उनकी समस्याओं के प्रति जागरूक करना है। इस दिवस का सबसे बड़ा संदेश है मानवता और सहानुभूति। जब कोई व्यक्ति या परिवार संकट में हो तो उसके प्रति सहयोग और संवेदना का भाव रखना चाहिए। हमारी ग्रामीण बहनें परिवार और समाज की मजबूत आधारशिला होती हैं। वे अपने बच्चों को दया, सहयोग और इंसानियत के संस्कार देकर एक बेहतर समाज के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। आज दुनिया के कई हिस्सों में संघर्ष और प्राकृतिक आपदाओं के कारण लाखों लोग विस्थापित हो रहे हैं। ऐसे समय में विश्व शरणार्थी दिवस हमें याद दिलाता है कि हर व्यक्ति को सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार है। हमें ये समझना चाहिए कि कठिन परिस्थितियों में फंसे लोगों की मदद और उनका सम्मान करना हम सब की सामूहिक जिम्मेदारी है। इंसानियत, सहानुभूति और सहयोग की भावना को हमेशा बनाए रखें। विश्व शरणार्थी दिवस हमें यह सिखाता है कि चाहे व्यक्ति किसी भी देश, भाषा या संस्कृति का हो, दुख और संकट के समय उसे सम्मान और सहारा मिलना चाहिए। और ये सभी बातें बहनों हम सीखते हैं एक परिवार में रहकर। और बहनों, बच्चे किसी परिवार की सबसे बड़ी पूंजी होते हैं। उनकी अच्छी परवरिश न केवल उनके उज्जवल भविष्य की नींव रखती है, बल्कि एक बेहतर समाज के निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आज के बदलते समय में बच्चों को अच्छे संस्कार देना, उनकी भावनाओं को समझना और उनके सर्वांगीण विकास पर ध्यान देना पहले से कहीं अधिक आवश्यक हो गया है। और इन्हीं महत्वपूर्ण बातों पर प्रकाश डालने के लिए हम लेकर आए हैं एक विशेष वार्ता, बच्चों की बेहतर परवरिश कैसे करें। और इस विषय पर अपने विचार आप सभी से साझा करेंगी वार्ताकार खुशबू गांधी। तो आइए बिना किसी देरी के सुनते हैं ये उपयोगी और ज्ञानवर्धक वार्ता।
1: बच्चों के आंसू कड़वे होते हैं, उन्हें मीठा करिए। बच्चों की जिज्ञासा गहरी होती है, उन्हें शांत करिए। बच्चों का दुख तीव्र होता है, उसे मंद करिए। बच्चों का दिल कोमल होता है, उसे कठोर न करिए। बच्चे जो आज बच्चे हैं, कल परिवार, समाज और देश का भविष्य होंगे। बच्चों का सबसे पहला स्कूल उनका घर परिवार है और माता पिता शिक्षक। हम सभी अपने बच्चों को बेहतर परवरिश देना चाहते हैं, पर क्या हम सभी माता पिता जानते हैं कि बच्चों की परवरिश कैसे करनी चाहिए? सबसे पहले तो इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि हर बच्चा अपने माता पिता को ही अपना आदर्श माने। इसके लिए हमें अपने व्यवहार, बोलचाल और रहन सहन को बहुत साधारण तरीके से रखना होगा। अपने विचारों को उच्च बनाना होगा। समय से संयम और धैर्य से बातचीत करनी होगी, क्योंकि किसी बच्चे को समझाने का इससे बेहतर तरीका नहीं हो सकता। कभी कभी बच्चे किसी गलत बात की जिद करते हैं, तो उन्हें डांट फटकार ना लगाकर प्यार से सही और गलत में फर्क समझाना चाहिए। अगर

0: फिर भी बच्चा ना माने तो उसे गुस्सा ना करें, बल्कि कुछ समय के लिए उसे अकेला छोड़ दें। कुछ देर बाद वातावरण व मन शांत हो जाएगा, तब बच्चे को समझाएं। कभी कभी बच्चे अपनी गलत बात पर जिद पर अड़ जाते हैं। माता पिता कभी कभी अपनी मानसिक शांति के लिए उस वक्त बच्चे की जिद को पूरा कर देते हैं। बस यहीं से गलत होने लगता है। बच्चे को लगने लगता है कि उसकी हर बात को मान लिया जाएगा। इसलिए शुरू में ही थोड़ा कठोर व्यवहार और सही निर्णय बच्चे को ये एहसास दिलाएगा कि उसकी हर बात नहीं मानी जाएगी, और इसके लिए वह भविष्य में तैयार रहेगा। बच्चों के मन में छुपे भाव को हमें समझना चाहिए। इसके लिए माता पिता को उनसे दोस्ताना व्यवहार रखना चाहिए, पर्याप्त समय देना चाहिए, वार्तालाप करनी चाहिए और प्रतिदिन की दिनचर्या की जानकारी रखनी चाहिए। कुछ माता पिता बच्चों को हर समय टोकते रहते हैं। हर समय बच्चे को हिदायत देने की बजाय आप उनके मन के अनुसार कुछ करने दें। ये जरूरी नहीं कि बच्चे हमेशा गलत हों। हो सकता है कि बच्चे सही भी हों। उनके द्वारा कुछ अच्छा करने पर उनकी प्रशंसा करें। इससे उन्हें प्रोत्साहन मिलेगा, और गलत करने पर प्रेम से उन्हें उनकी गलती बताएं। इससे उनकी सुधार करने की आदत बनेगी। यहाँ अगर हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ध्यान दें तो अपने बच्चों की बेहतर परवरिश कर सकते हैं। जैसे घर परिवार में सभी बड़े बुजुर्गों का आदर करें और विनम्र होकर उनसे बात करें। ये देखकर घर में बच्चे भी परिवार में सभी का मान सम्मान करेंगे। जब भी घर में मेहमान आए तो हमें उनकी उचित आवभगत करनी चाहिए, ताकि बच्चे भी ये देखकर सिर्फ परिवार वालों का ही नहीं बल्कि सबका सम्मान करें। घर में छोटे छोटे काम जैसे कपड़े, जूते, किताबें आदि चीजें सही जगह पर बच्चों से रखवाएं। इससे उनमें अनुशासन की भावना आएगी और वो जिम्मेदारी भी समझने लगेंगे। कभी कभी घर के छोटे छोटे निर्णयों में बच्चों को भी शामिल करिए। इससे वे परिवार से जुड़े रहेंगे और बड़े होने पर अपने माता पिता को अपने निर्णयों में शामिल करेंगे। पूरे हफ्ते काम करके और पढ़ के एक रविवार के दिन हम अपने बच्चों के साथ समय व्यतीत कर मनोरंजन कर सकते हैं, और ऐसा करने से हमें खुद बच्चों के साथ बच्चा बन जाना चाहिए। इससे बच्चों का पारिवारिक और व्यक्तिगत विकास होता है। स्वस्थ तन में स्वस्थ मन निवास करता है, इसलिए शारीरिक रूप से बच्चे मजबूत बने इसके लिए उनके खान पान का भी पूरा ध्यान देना चाहिए। बच्चों को भूख लगने पर चिप्स, बर्गर, पिज्जा का उपयोग ना करें। बच्चों को घर का भोजन दे। इससे बच्चों को माँ का प्यार भी मिलेगा और पोषण भी। अपने घर के कार्य को पूरा करने के लिए माता पिता बच्चों को फोन, टीवी आदि का उपयोग करने देते हैं, जो बच्चे की मानसिक रूप पे प्रभाव डालता है। बच्चों को ऐसी पुस्तकें और कार्य में लगाएं जिससे उनका अच्छा विकास हो और वे अपनी संस्कृति से जुड़े रहें। अंत में मैं यही कहना चाहती हूँ कि हर बच्चा एक न एक खूबी अपने अंदर छुपाए बैठा है। बस माता पिता की पारखी नजर अगर उसे खोज ले तो हर बच्चा अपना भविष्य को उज्जवल बना सकता है। इससे देश को होनहार प्रतिभाएं मिलेंगी और एक मजबूत समाज और राष्ट्र का निर्माण होगा।
1: तो बहनों, अभी आपने सुनी खुशबू गांधी की वार्ता, जिसका विषय था बच्चों की बेहतर परवरिश कैसे करें। तो चलिए अब लेते हैं एक छोटा सा अंतराल।
2: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है। घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: बहनों, दादी के बटुए में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसा नुस्खा जिसमें दवा भी है और सेहत का राज भी। 21 जून को यानी कि कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। तो आइए बहनों, जानते हैं कि योग को अपनी दिनचर्या में शामिल करके हम कैसे स्वस्थ रह सकते हैं। बहनों, गांव की महिलाएं सुबह से शाम तक घर और खेत के काम में लगी रहती हैं। ऐसे में कमर दर्द, घुटनों का दर्द, थकान और तनाव जैसी समस्याएं होना आम बात है, और इनसे राहत पाने के लिए रोज सुबह सिर्फ 10 से 15 मिनट आपको योग करना ज़रूरी है, और इससे आपको बहुत ही फायदा मिलेगा। दादी की सलाह तो यही है कि सुबह

उठकर खुली हवा में बैठें और 5 मिनट तक गहरी सांस लें। इसके बाद ताड़ासन करें। इसमें करना कुछ नहीं है, बस सीधे खड़े होकर दोनों हाथों को ऊपर उठाएं और पूरे शरीर को ऊपर की ओर खींचें। इससे शरीर में खिंचाव आता है और रीढ़ मजबूत होती है। इसके बाद वज्रासन में बैठकर कुछ मिनट तक गहरी सांसें लें। ये पाचन को बेहतर बनाने में मदद करता है। और हाँ बहनों, योग के साथ एक छोटा सा घरेलू नुस्खा भी याद रखिए। गर्मियों में थकान ज़्यादा महसूस हो तो 1 गिलास सादे पानी में थोड़ा सा नींबू और चुटकी भर नमक मिलाकर पी लें। इससे शरीर को तरावट मिलती है। तो दादी के बटुए की आज की सीख यही है कि रोज थोड़ा योग, सेहत रहे निरोग। दिन में कुछ मिनट अपने लिए भी निकालिए और स्वस्थ जीवन की ओर कदम बढ़ाइए। और हम उम्मीद करते हैं कि हमारी बहनें खुद को स्वस्थ रखने के लिए योग ज़रूर करेंगी। भाई बहनें, आप स्वस्थ रहेंगी तभी तो आप अपने परिवार का ध्यान रखेंगी। तो बहनों, आज से खुद से वादा करिए कि कल से आप योग ज़रूर करेंगी। मतलब अपने लिए 10 से 15 मिनट तो आपको निकालने ही चाहिए और आप निकालेंगी भी। बहनों चलिए, बातें हमने बहुत सारी कर ली और अब जो हमारा काम है ये आप जानती हैं कि हमें रसोई में जाना तो पड़ता ही है। तो चलिए हम भी आपको लेकर चलते हैं रसोई में। आप देख ही रही हैं कि गर्मी का मौसम है ही, तो गर्मियों के मौसम में जो दही है ना और लौकी, दोनों ही शरीर को ठंडक पहुंचाने का काम करते हैं। आज हम बनाएंगे लौकी का स्वादिष्ट रायता, जो खाने में हल्का भी है, पौष्टिक भी है और बहुत ही आसान सा है। तो बहनों जल्दी से ले आइए कॉपी और पेन, नोट कर लीजिए सामग्री। तो इसके लिए आपको चाहिए एक छोटी लौकी, 2 कप ताज़ा दही, 1/2 चम्मच भुना जीरा पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, थोड़ा सा काला नमक, बारीक कटा हुआ हरा धनिया। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा पुदीना भी डाल सकती हैं, तो आप थोड़ी सी पुदीने की पत्तियां भी रख सकती हैं। तो बहनों आइए बात करते हैं अब इसको बनाना कैसे है। तो सबसे पहले आपको करना यह है कि लौकी को छील कर धो लें और उसको कद्दूकस कर लें। अब इसे थोड़े से पानी में 5 से 7 मिनट तक के लिए उबाल लें और जब लौकी नरम हो जाए तो पानी छान कर इसको ठंडा होने के लिए रख दीजिए। अब आपको करना क्या है कि एक बर्तन में आपको दही लेना है और उसको अच्छी तरीके से फेंट लेना है। अब इसमें उबली हुई लौकी को डाल दें और इसके बाद इसमें नमक डालें। आप इसमें सफ़ेद नमक भी डाल सकती हैं, काला नमक भी डाल सकती हैं। आप इसमें भुना जीरा डालिए और थोड़ा सा आप इसमें हरा धनिया और पुदीना, हाथ से पुदीने की पत्तियों को तोड़कर भी डाल दीजिए और अच्छे से इसको मिला दीजिए। अब आप चाहें तो इसे कुछ देर के लिए फ्रिज में रखकर ठंडा ठंडा कर सकती हैं और खाने के टाइम पे इसको ठंडा ठंडा ही परोसिए। तो बहनों ये तो हो गया लौकी का रायता। अब एक रसोई की टिप आपके लिए ये है कि गर्मी के दिनों में दोपहर के खाने के साथ लौकी का रायता खाने से भोजन हल्का लगता है और शरीर भी को ठंडक मिलती है। तो बहनों इस गर्मी आपने अभी तक अगर लौकी का रायता नहीं बनाया है तो ये आसान और सेहतमंद लौकी का रायता ज़रूर बनाइए और अपने परिवार के स्वाद के साथ स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिए। सखियों अभी हमने आपको हमारी रसोई घर में गर्मियों के लिए स्वादिष्ट और सेहतमंद लौकी का रायता बनाने की विधि बताई। उम्मीद है कि आप इसे ज़रूर बनाएंगी। गर्मी के मौसम में जहाँ ठंडी ठंडी चीज़ें शरीर को राहत देती हैं, वहीं इस मौसम की अपनी अलग ही कहानी है और रंग भी होते हैं। तो आइए अब गर्मी के इसी रंग और मिजाज को लोक संगीत के सुरों में महसूस करते हैं और सुनते हैं मनोज शर्मा की आवाज़ में लोकगीत, जिसके बोल हैं गर्मी आए गई पैर पसार।

तो सखियो इस गर्मी पानी खूब ज़्यादा पीजिए, शिकंजी पीजिए, जैसा कि हमारे लोकगीत गायक मनोज शर्मा जी ने कहा है और घड़ी की सुइयों ने इशारा कर दिया है अब आपसे विदा लेने का। तो कार्यक्रम संपन्न करने की दीजिए इजाज़त अपनी रेडियो सखी शोभना को। राम राम।

हमारी बहनें अभी सुन रही थी अपना कार्यक्रम पनघट। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज पर। अब समय है कार्यक्रम सुगम संगीत का। कार्यक्रम के अंतर्गत श्रोता सुनेंगे शोम्पा गांगुली द्वारा गाए हुए कुछ चयनित भजन। प्रस्तुत है पहला, माफ कीजिएगा, कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुनेंगे शोम्पा गांगुली द्वारा गाए हुए कुछ गीत और भजन। पहला गीत है मैं तेरे मन को गाऊं।

श्रोता समय सुन रहे हैं कार्यक्रम सुगम संगीत और कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुन रहे हैं शोम्पा गांगली द्वारा गाए हुए गीत और भजन। प्रस्तुत है शोम्पा गांगली द्वारा गाया हुआ भजन जिसके बोल हैं ओ जी हरी।

0: Vinicius can hack start for the five-time world champion, scoring twice in the first half. Vinicius Jr. added a third goal before the break to give Brazil a commanding lead. The score remained unchanged in the second half as Brazil controlled the match and secured all 3 points. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi joins President Draupadi Murmu in Odisha to inaugurate projects worth over 47,600 crore rupees. Government prohibits manufacture, sale and distribution of 16 fixed dose combinations in public interest. NTA conducts nationwide mock drill ahead of NEET UG re-examination scheduled for tomorrow. IMD issues red alert for extremely heavy rainfall at isolated places over sub-Himalayan West Bengal and Sikkim till tomorrow. In cricket, third and final ODI between India and Afghanistan underway in Chennai. And in FIFA World Cup, Brazil registered their first win, defeating Haiti 3-0. For details of these stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and News on AIR app. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ ओडिशा में 47,600 करोड़ रुपए से अधिक के विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर रहे हैं। सरकार ने 16 फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन दवाओं के उत्पादन, बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध लगाया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा कल होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा से पहले देश भर में मॉक ड्रिल। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों और सिक्किम में कुछ स्थानों पर कल तक मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया। भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच चेन्नई में जारी। और फीफा विश्व कप में ब्राजील ने हैती को 3-0 से हराकर पहली जीत दर्ज की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ओडिशा के मयूरभंज जिला स्थित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पैतृक गांव पहाड़पुर पहुंचे। राष्ट्रपति मुर्मू अपने 68वें जन्मदिन के अवसर पर अपने गांव में हैं। ओडिशा के राज्यपाल डॉ. हरिबाबू कंभमपति, मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी और स्थानीय लोगों ने उनके आगमन पर गर्मजोशी से स्वागत किया।
2: उड़ीसा के आदिवासी इलाकों तक पहुंचने की एक अहम कोशिश के तहत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मयूरभंज जिले में अपने गांव पहाड़पुर गई। प्रधानमंत्री ने पवित्र सांथाली जोहरा और जो जहरा पूजा स्थलों पर प्रार्थना की और स्थानीय आदिवासी समुदायों के लोगों के बातचीत के, जिससे उन्हें उनकी समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं और जीवन शैली के बारे में जानकारी मिली। प्रधानमंत्री ने स्किल डेवलपमेंट सेंटर और SLS मेमोरियल स्कूल का भी दौरा किया, जहां उन्होंने छात्रों से बातचीत की और उन्हें शिक्षा, कौशल विकास और आत्मनिर्भरता के दिशा में बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। ये दौरा इसलिए भी खास था क्योंकि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति मुर्मू के 68वें जन्मदिन के मौके पर उनके गांव में उनका साथ शामिल हुए। इन कार्यक्रम से आदिवासी सशक्तिकरण, शिक्षा को बढ़ावा देने और समावेश विकास के प्रति उनकी साझा प्रतिबद्धता को पता चलता है। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री अब रायरंगपुर के डांडा बेस में उड़ीसा सरकार के 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित एक बड़े सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। यहां प्रमुख क्षेत्रों में 47,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास परियोजना का उद्घाटन और उन्हें राष्ट्र को समर्पित किया जा रहा है। आकाशवाणी समाचार के लिए रायरंगपुर से मैं प्रकाश दास।
1: इस समय राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ओडिशा सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर रायरंगपुर में आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित हैं। इस अवसर पर ऊर्जा, परिवहन, औद्योगिक ढांचे, स्वास्थ्य, शिक्षा, सिंचाई और पेयजल से जुड़ी 47,600 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। इस समय प्रधानमंत्री एक विशाल जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
3: प्रवति परिदा जी, उड़ीसा के मंत्री गणेश जी खुंटिया जी, कृष्णचंद्र महापात्र जी, सांसद नवाचरण मांझी जी, मनमोहन सामल जी, बैजन पांडा जी, अन्य महानुभाव,

0: भाइयों और बहनों, हमारा ओडिशा इन दिनों उत्सवों के आनंद में डूबा हुआ है। यहां का गण पर्व रज पिछले हफ्ते ही धूमधाम से मनाया गया है। महाप्रभु जगन्नाथ जी की रथ यात्रा की तैयारियां भी पुरजोश चल रही है। मयूरभंज के बारीपदा रथ यात्रा को लेकर भी उत्साह का माहौल है।
1: प्रधानमंत्री मोदी आज पश्चिम बंगाल भी जाएंगे। वे हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंग दिवस समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। वे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त भी जारी करेंगे। इसके अंतर्गत देश के 9,44,00,000 किसानों के बैंक खातों में 18,880 करोड़ रूपये से अधिक की राशि सीधे अंतरित की जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंग दिवस पर राज्य के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पर अपने संदेश में राष्ट्रपति ने कहा कि ये दिन पश्चिम बंगाल के भारत का अभिन्न अंग बने रहने के संकल्प और आकांक्षाओं का प्रतीक है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि वर्ष 1947 में इसी दिन एक ऐतिहासिक फैसले में भारत के एक अहम हिस्से के रूप में पश्चिम बंगाल राज्य के गठन का मार्ग प्रशस्त किया गया था। प्रधानमंत्री ने कहा कि पश्चिम बंगाल साहित्य, संगीत, कला, आध्यात्मिकता, विज्ञान, व्यापार, वाणिज्य के लिए प्रसिद्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता में कल स्वदेश में निर्मित नौसेना की 3 जहाजों INS धुनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रय का अनावरण करेंगे। इन जहाजों का निर्माण भारत में किया गया है। इनका उपयोग समुद्री सुरक्षा, सर्वेक्षण और पनडुब्बी रोधी अभियानों में किया जाएगा। ये भारत की रक्षा और जहाज निर्माण क्षमता को मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। गृहमंत्री अमित शाह आज कोल्हापुर और इचलकरंजी के दौरे पर हैं। वे महालक्ष्मी मंदिर परिसर में विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन किया और कोल्हापुर के पुलिस परेड ग्राउंड में एक जनसभा को संबोधित किया।
2: मोदी जी प्रधानमंत्री बने और अयोध्या में भव्य राम मंदिर आज अपनी भगवी ध्वजा के साथ खड़ा हुआ। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जो औरंगजेब ने

0: कामाख्या का कॉरिडोर बन रहा है और अब अंबाबाई का कॉरिडोर बनाने का काम भी शुरू हो गया।
1: इसके बाद गृहमंत्री इचलकरंजी में जनता सहकारी बैंक के नए भवन का उद्घाटन करेंगे तथा एक सहकारी चीनी कारखाने के नामकरण और विस्तार के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। सरकार ने जनहित में 16 फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन एफडीसी दवाओं के उत्पादन, बिक्री और वितरण पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। यह फैसला सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर की गई विशेषज्ञ समिति की समीक्षा के बाद लिया गया। समिति ने पाया कि इन दवाओं के संयोजन का पर्याप्त चिकित्सीय औचित्य नहीं है और इनके उपयोग से स्वास्थ्य संबंधी जोखिम हो सकते हैं। प्रतिबंधित उपचार तथा कुछ एंटीबायोटिक दवाएं शामिल हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि इसका उद्देश्य केवल सुरक्षित, प्रभावी और वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। मंत्रालय ने राज्य औषधि नियामकों और संबंधित एजेंसियों को इस प्रतिबंध को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी कल होने वाली नीट यूजी 2026 पुनर्परीक्षा की तैयारियों के अंतर्गत आज देश भर में मॉक ड्रिल कर रही है। सुबह 9 बजे शुरू हुआ यह अभ्यास पूरे दिन जारी रहेगा। इस अभ्यास में 2.5 लाख से अधिक सुरक्षाकर्मी तैनात हैं। इसका उद्देश्य परीक्षा का सुरक्षित, निष्पक्ष और सुचारू संचालन सुनिश्चित करना है। एजेंसी के अनुसार नीट यूजी पुनर्परीक्षा भारत के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में आयोजित की जाएगी, जिसमें 22,79,000 से अधिक अभ्यर्थी शामिल होंगे। परीक्षा में सीसीटीवी निगरानी, आधार आधारित बायोमेट्रिक सत्यापन और परीक्षा सामग्री के सुरक्षित परिवहन जैसे विशेष सुरक्षा व्यवस्थाएं की गई हैं। सरकार के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी विवेक अग्रवाल को वर्ष 2026-27 के लिए वित्तीय कार्यवाही कार्यबल का उपाध्यक्ष चुना गया है। वे ब्रिटेन के गाइस थॉमसन का स्थान लेंगे। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस नियुक्ति से आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने और गैरकानूनी वित्तीय नेटवर्क के खिलाफ संघर्ष की भारत की प्रतिबद्धता मजबूत होती है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल दुनिया भर में मनाया जाएगा। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय है स्वस्थ आयु के लिए योग। ये विषय हर उम्र में योग के महत्व को रेखांकित करता है। हमारे संवाददाता ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर संस्कृति मंत्रालय देश भर में 100 स्थानों पर विशेष कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। इनमें भारत की समृद्ध विरासत और योग परंपराओं को प्रदर्शित किया जाएगा।
2: नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने कल मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले रन फॉर योग और एक विशेष जुम्बा सत्र का आयोजन आज किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों को अपने दैनिक जीवन में योग अपनाने के लिए प्रेरित करना था। संस्थान के निदेशक प्रोफेसर प्रदीप कुमार प्रजापति ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि योग केवल एक दिन मनाने की चीज नहीं है, बल्कि इसे पूरे साल नियमित रूप से करना चाहिए।
3: हमारे लिए ये बहुत जरूरी है कि हम 365 डेज योगा करें और इस बार के योगा के ऊपर डिक्लेरेशन भी होने जा रहा है कि हम वर्ल्ड में कम से कम 15 से 20 मिनट अगर योग करते हैं, अपने प्राणायाम करते हैं, तो जो इस तरह की हमारे लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स हैं उनको हम बहुत अच्छे की तरह से मैनेज कर सकते, और ये प्रूव हो चुका है।
2: अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य राष्ट्रीय कार्यक्रम कल कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आयोजित किया जाएगा। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद और विदेशों में स्थित भारतीय मिशनों के संयुक्त प्रयासों से इस वर्ष योग दिवस के कार्यक्रम दुनिया भर में लगभग 2,500 स्थानों पर आयोजित किए जा रहे हैं। इनमें 210 से अधिक भारतीय मिशन भाग ले रहे हैं। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: स्लोवाकिया में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। स्लोवाकिया गणराज्य में भारतीय राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव ने आकाशवाणी को बताया कि स्लोवाकिया में योग और आयुर्वेद बहुत लोकप्रिय हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि भारतीय दूतावास और अन्य संगठन राजधानी ब्रातिस्लावा और अन्य स्थानों पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं।
4: स्लोवाक रिपब्लिक में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए भारतीय दूतावास का मुख्य कार्यक्रम ब्रातिस्लावा शहर में आयोजित किया जाएगा। दूतावास मशहूर ब्रातिस्लावा कैसल में भी एक योग कार्यक्रम आयोजित करेगा। स्लोवाकिया में भारत की राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव ने बताया कि दूतावास परिसर में हर दिन 2 योग कक्षाएं आयोजित की जा रही हैं और अब पूरे स्लोवाकिया में सैकड़ों योग प्रशिक्षण केंद्र संचालित हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हाल ही में हुई स्लोवाकिया यात्रा के दौरान आयुष मंत्रालय द्वारा हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन से स्लोवाकिया में योग को और मजबूत करने के रास्ते खुलने की उम्मीद है। स्मृति एस पल्लुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: इस कड़ी में आकाशवाणी समाचार आयुष राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार प्रताप राव जाधव का विशेष साक्षात्कार प्रसारित करेगा। आकाशवाणी FM गोल्ड 100.1 MHz चैनल पर यह साक्षात्कार आज रात 9:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। श्री जाधव ने बताया कि कामकाजी लोगों के लिए सरकार ने वाईब्रेक ऐप भी शुरू किया है।
5: लोग दिन भर चेयर पे बैठ के काम करना पड़ता है, वो लोग भी जब लंच ब्रेक होता है तब तक बहुत सारी थकान वो लोगों में आती है, तो वो थकान दूर करने के लिए भी उनके लिए वाई ब्रेक नाम का एक हमने ऐप निकाला है कि उसमें 10 मिनट में तुम चेयर पर बैठे बैठे कौन से आसन कर सकते हो, करने से जो भी तुम्हारा थकान आई होगी वो दूर हो जाएगी।
1: भारत सोमवार से शुरू हो रही 2 दिवसीय ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल करेंगे। विदेश मंत्रालय के अनुसार बैठक में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और प्रतिनिधिमंडल नई सुरक्षा चुनौतियों पर विचार विमर्श करेंगे। बैठक में नई तकनीक से जुड़े सुरक्षा खतरों और आतंकवाद से निपटने के उपायों पर भी चर्चा होगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा करते हुए उन्हें मजबूत और प्रभावशाली नेता बताया है। उन्होंने कहा कि श्री मोदी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ दुनिया के सबसे प्रभावशाली नेताओं में से एक हैं। एक साक्षात्कार में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि श्री मोदी के पिछले 12 सालों के नेतृत्व में भारत को मजबूती और स्थिरता मिली है। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों सिक्किम में कल तक कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने केरलम माहे तमिलनाडु पुदुचेरी कराईकल और देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों में भी बारिश की संभावना व्यक्त की है। भारतीय सूचना सेवा के पूर्व अधिकारी दीपा

0: शंकर मुखोपाध्याय का कल रात लंबी बीमारी के बाद कोलकाता में निधन हो गया। वे 77 वर्ष के थे। क्रिकेट में चेन्नई में भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरे और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच में ताजा समाचार मिलने तक अफगानिस्तान ने 12वें ओवर में 4 विकेट पर 42 रन बना लिए हैं। उधर फीफा फुटबॉल विश्व कप में ब्राजील ने हैती को 3-0 से हराकर पहली जीत दर्ज की। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ ओडिशा में 47,600 करोड़ रुपए से अधिक के विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर रहे हैं। सरकार ने 16 फिक्स डोज कॉम्बिनेशन दवाओं के उत्पादन, बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध लगाया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा कल होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा से पहले देश भर में मॉक ड्रिल। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों और सिक्किम में कुछ स्थानों पर कल तक मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया। भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच चेन्नई में जारी। और फीफा विश्व कप में ब्राजील ने हैती को 3-0 से हराकर पहली जीत दर्ज की। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज़ और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 2:30 हुए हैं। श्रोता आप सुनेंगे कार्यक्रम उप शास्त्रीय संगीत। कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुनेंगे कलाकार शिप्रा बोस द्वारा राग तिलंग में गायन।

श्रोता भी सुन रहे थे कार्यक्रम उपशास्त्रीय संगीत। कार्यक्रम के अंतर्गत आपने सुनी कलाकार शिप्रा बोस द्वारा राग तिलंग में गायन। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर दोपहर के 2:45 हुए हैं। श्रोता अब सुनेंगे पुरानी फिल्मों से गीतों पर आधारित कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। कार्यक्रम की शुरुआत में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं आशा भोसले की आवाज में फिल्म काला पानी से ये गीत, जिसमें संगीत निर्देशन है आर.डी. वर्मन का और इस गीत को अपने शब्दों से सजाया है मजरूर ने।

कार्यक्रम भूले बिसरे गीत का ये अगला गीत श्रोता सुनेंगे फिल्म बैजू बावरा से मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में। संगीत निर्देशन है नौशाद का और इस गीत को लिखा

श्रोता समय सुन रहे हैं कार्यक्रम भूले बिसरे गीत आकाशवाणी के आगरा केंद्र से। कार्यक्रम का ये अगला गीत श्रोता सुनेंगे मोहम्मद रफी की आवाज में। संगीत निर्देशन है रवि का और इस गीत को लिखा है शकील बदायूरी ने। और इस गीत को हम आपको सुनवाने जा रहे हैं फिल्म घराना से।

और इस गाने के साथ ही कार्यक्रम भूले बिसरे गीत अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो

ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के ठीक 3 बजे हैं। श्रोता अब सुनेंगे कार्यक्रम गीत गुंजन। कार्यक्रम की शुरुआत में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं फिल्म आप तो ऐसे ना थे से ये गीत, जिसमें अपनी आवाज दी है मनहर ने। इस गीत को संगीत से सजाया है उषा खन्ना ने और इस गीत के बोल लिखे हैं निदा फाजली ने।

श्रोता इस समय सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत गुंजन आकाशवाणी के आगरा केंद्र से। कार्यक्रम का अगला गीत श्रोता सुनेंगे फिल्म साजन से एसपी बाल सुब्रमण्यम की आवाज में। इस गीत को संगीत से सजाया है नदीम श्रवण ने और इस गीत में बोल हैं समीर के।

कार्यक्रम गीत गुंजन का अगला गीत श्रोता सुनने जा रहे हैं अपने रेडियो सेट पर फिल्म जीत से सोनू निगम और अलका याग्निक की आवाजों में। इस गीत में संगीत निर्देशन है नदीम श्रवण का और इस गीत को लिखा है समीर ने।

श्रोताओं, कार्यक्रम गीत गुंजन का ये अंतिम गीत आप सुनने जा रहे हैं अलका याग्निक की आवाज में। इस गीत में संगीत निर्देशन है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का और इस गीत को हमें लिया है फिल्म खलनायक से।

और श्रोताओं, इस गीत के साथ ही कार्यक्रम गीत गुंजन अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है, मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर। और इसी के साथ अब इस सभा के कार्यक्रमों का प्रसारण यहीं समाप्त होता है। सायंकालीन सभा के कार्यक्रमों के साथ शाम 5 बजे हम आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।

आकाशवाणी का यह आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्स और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर शाम के 5 बजने को हैं। हमारी सांध्यकालीन सभा अब आरंभ होती है। श्रोताओं, अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार। कृपया प्रतीक्षा करें।

आज चुनाव और शपथ ग्रहण के बाद मुझे पहली बार आपके बीच आने का सौभाग्य मिला है। बंगाल की हवा में अब एक नई ताजगी है। यहां के कण कण से एक नई खुशबू आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे बंगाल अब बेड़ियों से आजाद हो गया है, जैसे बंगाल का गौरव लौटने का आरंभ हो गया है। आज का ये कार्यक्रम साक्षी है, इन परियोजनाओं का शुभारंभ गवाह है कि हमारा बंगाल अपने नए भविष्य के निर्माण में जुट गया है। बंगाल के लोगों के चेहरों की चमक, गांव-गांव में खुशी और विश्वास का भाव, मैं आपके इस आनंद में भागीदार बनने के लिए आया हूं। आपका एक वोट, एक चुनाव कितना कुछ परिवर्तन कर सकता है, ये बंगाल में साफ साफ नजर आ रहा है। परिवर्तन भालो लागे छे तो मैं इस अवसर पर बंगाल के लोगों को और सभी देशवासियों को इस आयोजन की, पश्चिम बंग दिवस की बहुत बहुत बधाई दे

आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है, मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर। अब समय हो चला है कार्यक्रम विवरण का।

अब से कुछ देर बाद 5:10 पर आप सुनेंगे भक्ति परक फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुर संध्या। युवा श्रोताओं का कार्यक्रम युववाणी का समय रहेगा शाम 5:30। इसमें चर्चा रहेगी वैश्विक शांति सूचकांक पर। वार्ता में सुनेगा शरणार्थियों के पुनर्वास की तकनीक की भूमिका। वार्ताकार होंगी श्वेता जादौन। ग्रामीण कार्यक्रम में शाम 6:00 आप सुनिएगा चर्चा पानी की हर बूंद है कीमती, जल संरक्षण में बढ़ेगी खेती की सफलता। वार्ता रहेगी बाग लगाने की वैज्ञानिक विधि। वार्ताकार होंगे अनुपम दुबे। श्रमिक साथियों का कार्यक्रम मजदूर मंडल का समय रहेगा शाम 6:30। इसमें आज चर्चा की जाएगी विश्व शरणार्थी दिवस पर। वार्ता में सुनेगा अधिकार और कर्तव्य के प्रति जागरूकता। वार्ताकार होंगे डॉक्टर सत्य प्रकाश।

विविधा कार्यक्रम में शाम 7:10 पर आप सुनेगा वार्ता योग और आसन नियमित करें पाचन। वार्ताकार होंगे सत्य प्रकाश शर्मा। मेरी माटी मेरा देश कंपेयर्ड कार्यक्रम के तहत आप सुनेगा शाम 7:31 पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की पूर्व संध्या पर योग फॉर हेल्दी एजिंग विषय पर योगाचार्य डॉ. राजकुमार शर्मा से अनिंद्र सिंह की बातचीत। रात्रि 8:00 आप सुनेंगे हमारे लखनऊ केंद्र से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की पूर्व संध्या पर माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार आयुष विभाग डॉ. दयाशंकर मिश्र दयालु से बातचीत का प्रसारण। फिल्मों से भजनों का कार्यक्रम भजन संध्या आप सुनेगा रात्रि 8:15 पर। 8:30 पर हम आपको सुनवाएंगे चित्रपट संगीत।

हमारे दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित कार्यक्रमों में रात्रि 9:30 पर आप सुनिएगा रेडियो पत्रिका चित्र भारती और रात 10 बजे से संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम। श्रोताओं, ये था आज की सभा के शेष कार्यक्रमों का विवरण।

आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्स और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर। सांध्यकालीन सभा की शुरुआत हो चुकी है, तो अब चलते हैं भक्ति की तरफ और सुनते हैं भक्ति परक फिल्म संगीत का कार्यक्रम सूर्य संध्या।

शुद्धों कार्यक्रम का पहला गीत आपने सुना फिल्म चार धाम से। गीत को गाया था हरिहरन ने, गीत लिखा था उदय शंकर पाणी ने, संगीत

0: संगीतबद्ध किया था सुरेंद्र कोहली ने। कार्यक्रम का अगला गीत इस अंतराल के बाद।
1: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।

सुहाग फिल्में भी आपने सुना मोहम्मद रफ़ी, आशा भोसले और साथी को। आनंद बख्शी की रचना को संगीत से संवारा था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। कार्यक्रम की आखिरी प्रस्तुति में सुनते हैं महेंद्र कपूर और साथी को फिल्म गोपी में। राजेंद्र कृष्ण की रचना को संगीतबद्ध किया है कल्याण जी आनंद जी ने।

श्रोताओं, कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति में भी आपने सुना महेंद्र कपूर और साथी को फिल्म गोपी में। राजेंद्र कृष्ण की रचना को संगीतबद्ध किया था कल्याण जी आनंद जी ने। इसके साथ ही भक्ति पर फिल्म संगीत का कार्यक्रम सर्व संध्या में ही संपन्न होता है। और अब समय हो चला है हमारे युवा श्रोताओं के कार्यक्रम युववाणी का, तो सुनते हैं कार्यक्रम युववाणी।

नमस्कार दोस्तों, कुछ बातें दिल की, कुछ सपनों की, कुछ आज की और कुछ आने वाले कल की। इन्हीं बातों को लेकर हाजिर है युवानी और मैं हूँ जहाँ आपके साथ आपकी अपनी रेडियो वाली दोस्त कनिका सिंह। सबसे पहले तो फरमाइए, कैसे हैं आप? इंटरनेशनल योगा डे की तैयारी में तो लगे हुए हैं ना आपके अपने।

एक्टिव व्यूअर्स और आपकी अपनी योगा मैट। अगर योगा मैट नहीं भी है तो चटाई ही सही। तैयारी तो पूरी कर लीजिए दोस्तों, कल साथ में मिलकर के योगा करना है और कल से ही इसकी शुरुआत करनी है। वैसे दोस्तों योगा की तैयारी तो हर ओर चल रही है, लेकिन इन दोनों ना एक बात जो है हम सभी में आम है, वो है महंगाई। दोस्तों महंगाई ने आम आदमी की चिंता बढ़ा रखी है। पेट्रोल, डीजल, LPG से लेकर खाने चीज़ों तक हर तरफ बढ़ती कीमतों का असर देखने को मिल रहा है। घर का बजट संभालना दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा है। लेकिन इसी बीच एक ऐसी खबर आई है जिसने लोगों की उम्मीदें बढ़ा दी हैं। जी हाँ दोस्तों, हाल ही में अमेरिका और ईरान के बीच एक बड़ा समझौता हुआ है। दोनों देशों ने तनाव कम करने और शांति की दिशा में आगे बढ़ने पर सहमति जताई है। अब सवाल उठता है कि आखिर इस समझौते का असर आम लोगों की ज़िंदगी पर कैसे पड़ेगा। दरअसल इस समझौते के तहत ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम पर कुछ सीमाएं मानने और हॉर्मुज जलद मरुद्ध में जहाज़ों की सुरक्षा आवाजाही सुनिश्चित करने की बात कही है। वहीं अमेरिका ने भी ईरान पर लगे कुछ प्रतिबंधों में राहत देने का संकेत दिया है, जिससे ईरान का तेल दुनिया के बाजारों तक आसानी से पहुंच सकेगा। यही वजह है कि विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले समय में कच्चे तेल की कीमतों पर दबाव कम हो सकता है, और अगर ऐसा होता है तो इसका फायदा भारत जैसे देशों को मिल सकता है जो अपनी ऊर्जा जरूरत के लिए बड़ी मात्रा में तेल आयात करते हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि इसका असर भारत में पेट्रोल, डीजल और LPG की कीमतों पर भी दिखाई देगा। क्या महंगाई से परेशान लोगों को राहत मिल पाएगी? फिलहाल इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा, लेकिन इतना जरूर है कि इस समझौते ने दुनिया भर के बाजारों में एक सकारात्मक माहौल बनाया है और लोगों की उम्मीदें बढ़ा दी हैं। लेकिन दोस्तों, किसी भी देश की पहचान सिर्फ उसकी अर्थव्यवस्था से नहीं होती। किसी देश में शांति और सुरक्षा का माहौल कैसा है, ये भी उतना ही मायने रखता है। अब सवाल उठता है कि आखिर दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश कौन सा है? कौन से देश शांति और सुरक्षा के मामले में सबसे आगे हैं? और इन सब मामलों में भारत की स्थिति क्या है? इन्हीं सवालों का जवाब हमें देता है ग्लोबल पीस इंडेक्स, जो हर साल दुनिया के देशों में शांति के स्तर को मापता है। हाल ही में जारी हुई है ग्लोबल पीस इंडेक्स 2026 की रिपोर्ट। इसमें भारत को 163 कंट्रीज की सूची में 127वां स्थान मिला है। अब सवाल ये है कि आखिर किसी देश की शांति को मापा कैसे जाता है? इसके लिए 23 अलग अलग मानकों को ध्यान में रखा जाता है दोस्तों। इनमें देश की आंतरिक सुरक्षा, सामाजिक स्थिरता, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों की स्थिति और सैन्य गतिविधियों जैसे पहलुओं को शामिल किया जाता है। इस रिपोर्ट को इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस नाम की जो संस्था है वो तैयार करती है, जो दुनिया में शांति के स्तर को मापने वाली प्रमुख संस्थाओं में से एक है। अगर दुनिया के सबसे शांतिपूर्ण देशों की बात करें तो आइसलैंड लगातार 19वें बार पहले स्थान पर रहा है। इसके बाद न्यूजीलैंड, स्विट्जरलैंड, स्लोवेनिया और आयरलैंड भी हैं। वहीं दूसरी तरफ सबसे कम शांतिपूर्ण देशों की सूची में रूस सबसे नीचे रहा। इसके अलावा सूडान, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, यूक्रेन, इसराइल भी निचले पायदान पर हैं। तो दोस्तों, ग्लोबल पीस इंडेक्स की यह रिपोर्ट हमें बताती है कि किसी भी देश के विकास के लिए सिर्फ आर्थिक मजबूती ही नहीं, बल्कि शांति, सुरक्षा और स्थिरता भी उतनी ही जरूरी है।

0: वेलकम बैक दोस्तों। दोस्तों अभी हम बात कर रहे थे वॉर टाइम की, और आप जानते हैं जब वॉर होता है, जब ऐसी संघर्षपूर्ण स्थिति आती है, तो कई जिंदगियां हैं जो सफ़र कर रही होती हैं। जी हाँ दोस्तों, सभी पर इस वॉर का प्रहार पड़ता है, उन पर भी जो डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं और उन पर भी जो डायरेक्टली नहीं इन्वॉल्व हैं। किन्हीं के घर चले जाते हैं, किन्हीं की फैमिलियाँ पे छुट जाती हैं, कुछ शरणार्थी बन जाते हैं और कहीं कैंप्स में शरण लेते हैं। दोस्तों ऐसे भी दिन आते हैं और ऐसी भी स्थितियाँ आती हैं। इसी को लेकर के हम आज के दिन को हम डेडिकेट करते हैं सभी शरणार्थियों को। चलिए हम आज की वार्ताकार श्वेता जाधव से समझते हैं शरणार्थियों के पुनर्वास में तकनीक की भूमिका।
1: नो वन लीव्स होम अनलेस होम इज द माउथ ऑफ अ शार्क, अर्थात कोई भी व्यक्ति अपना घर तब तक नहीं छोड़ता जब तक उसका अपना घर ही उसके लिए भय और असुरक्षा का कारण ना बन जाए। दोस्तों घर केवल चार दीवारों का ढांचा नहीं, बल्कि

मनुष्य की पहचान, सुरक्षा और आत्मसम्मान की धुरी है। किंतु जब राजनीतिक अस्थिरता, युद्ध उत्पीड़न या प्राकृतिक आपदाएं किसी मनुष्य को उसकी ही जड़ों से उखाड़ देती हैं, तो वह रातों रात शरणार्थी बन जाता है। आज 21वीं सदी का विश्व अभूतपूर्व मानवीय चुनौतियों के दौर से गुजर रहा है। विश्व के अनेक भागों में चल रहे युद्ध, जातीय संघर्ष, धार्मिक उत्पीड़न, आर्थिक अस्थिरता और जलवायु परिवर्तन के कारण लाखों लोग अपने घरों से विस्थापित हो रहे हैं। सीरिया, यूक्रेन, अफगानिस्तान, सूडान और म्यांमार जैसे अनेक उदाहरण हमारे सामने हैं। ऐसी परिस्थितियों में शरणार्थियों का पुनर्वास केवल राहत और सहायता का प्रश्न नहीं रह जाता, बल्कि यह मानवाधिकार, सामाजिक न्याय और वैश्विक उत्तरदायित्व का एक विषय बन जाता है। इसी संदर्भ में प्रतिवर्ष 20 जून को संपूर्ण विश्व में विश्व शरणार्थी दिवस यानी वर्ल्ड रिफ्यूजीज डे मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित यह दिन उन करोड़ों लोगों के साहस, शक्ति और रेजिलियंस को सम्मानित करने का अवसर है जिन्होंने अपना देश छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। यह दिवस केवल उनके संघर्ष को याद करने का दिन नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए उनकी सुरक्षा और पुनर्वास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराने का भी अवसर है। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त यानी UNHCR के अनुसार सुरक्षा कोई विशेषाधिकार नहीं, बल्कि एक सार्वभौमिक अधिकार है। संयुक्त राष्ट्र के पूर्व महासचिव कोफी अन्नान ने कहा था, ह्यूमन सफरिंग एनीवेयर कंसर्न्स मैन एंड वुमेन एवरीवेयर, अर्थात मानव पीड़ा कहीं भी हो वह संपूर्ण मानवता की चिंता का विषय होती है। यही भावना आज शरणार्थी पुनर्वास के वैश्विक प्रयासों की आधारशिला है। परंतु जब लाखों लोगों को भोजन, आवास, स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा और रोजगार उपलब्ध कराने की चुनौती सामने हो, तब केवल पारंपरिक व्यवस्थाएं पर्याप्त नहीं होती। यहाँ आधुनिक तकनीक एक परिवर्तनकारी शक्ति के रूप में उभरती है। शरणार्थी पुनर्वास की प्रक्रिया का पहला चरण होता है पहचान और पंजीकरण। पारंपरिक रूप से शरणार्थी पुनर्वास कागजी कार्यवाहियों, लंबी कतारों और प्रशासनिक सुस्ती से भरा होता था, लेकिन आज चौथी औद्योगिक क्रांति ने इस पूरी प्रक्रिया का लोकतांत्रिकरण और सरलीकरण कर दिया है। अब जरा हम विश्व परिदृश्य की बात करें तो शरणार्थियों को सुरक्षा और वैध पहचान देने के लिए UNHCR जॉर्डन और कीनिया जैसे देशों के शरणार्थी शिविरों में आइरिस स्कैन और बायोमेट्रिक तकनीक का प्रयोग किया जा रहा है। जिन लोगों के पासपोर्ट या कागजात युद्ध में जल गए, उनकी पहचान अब उनकी आंखें और उंगलियों के निशान है। ब्लॉकचेन तकनीक के माध्यम से शरणार्थियों तक बिना किसी बिचौलिए के सीधे वित्तीय सहायता क्रिप्टोकरेंसी या डिजिटल वाउचर के रूप में पहुंचाई जा रही है। जॉर्डन के एजरेक शिविर में आई असिस्ट तकनीक की मदद से शरणार्थी केवल अपनी आंखों को स्कैन करके सुपरमार्केट से राशन ले सकते हैं। आज कोर्सेरा और एडेक्स जैसे तकनीकी प्लेटफॉर्म शरणार्थियों को कोडिंग, भाषा और तकनीक कौशल की मुफ्त शिक्षा देकर उन्हें वैश्विक जॉब मार्केट के योग्य बना रहे हैं। दोस्तों, बात करते हैं हमारे यहाँ के भारतीय संदर्भ की। भारत का इतिहास शरणार्थियों को आश्रय देने की गौरवशाली परंपरा से समृद्ध है। पारसियों और तिब्बतियों से लेकर पड़ोसी देशों के उत्पीड़ित अल्पसंख्यकों तक भारत ने हमेशा वसुधैव कुटुंबकम के दर्शन को जिया है। वर्तमान में भारत सरकार की सकारात्मक नीतियों और डिजिटल इंडिया अभियान के संगम ने शरणार्थियों के पुनर्वास को एक नई दिशा दे दी है। भारत सरकार के गृह मंत्रालय की नीतियों के अंतर्गत जिन शरणार्थियों को वैध रूप से लंबी अवधि का वीजा यानी लॉन्ग टर्म वीजा या नागरिकता संशोधन अधिनियम जैसी नीतियों के तहत राहत दी गई है, उन्हें सुचारू रूप से डिजिटल पहचान प्रदान की जा रही है। नियमानुसार आधार कार्ड की बायोमेट्रिक प्रणाली ने उन्हें एक विशिष्ट पहचान दी है जो कि पुनर्वास की पहली सीढ़ी है। एल्बर्ट आइंस्टाइन, जो स्वयं 1933 में जर्मनी से अमेरिका गए थे, उन्होंने कहा था कि शरणार्थी किसी देश की अर्थव्यवस्था पर बोझ नहीं बनते, बल्कि यदि उन्हें अवसर मिले तो वे देश की क्रिया शक्ति और उत्पादन क्षमता को बढ़ाते हैं। दोस्तों, भारत सरकार ने शरणार्थियों के लिए जनधन बैंक खाते खोलने की प्रक्रिया को आसान बनाया है। इसके माध्यम से मिलने वाली कोई भी सरकारी या गैर सरकारी राहत राशि सीधे डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर के जरिए उनके खातों में पहुंच जाती है। आज डिजिटल भुगतान यानी UPI की मदद से कई शरणार्थी भारत के स्थानीय बाजारों में छोटे व्यवसाय और रेहड़ी पट्टी लगाकर आत्मनिर्भर बन रहे हैं। COVID-19 जैसी वैश्विक महामारी के दौरान भारत की नीति पूरी तरह समावेशी रही। भारत सरकार ने

0: ने कोविन पोर्टल के माध्यम से देश में रह रहे सभी वैध शरणार्थी और विदेशी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के मुफ्त टीकाकरण की सुविधा दी। इसके अतिरिक्त ई संजीवनी जैसे टेलीमेडिसिन तकनीक के माध्यम से दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले विस्थापित लोग भी देश के शीर्ष डॉक्टरों से स्वास्थ्य परामर्श प्राप्त कर रहे हैं। भारत सरकार के दीक्षा और स्वयं पोर्टल के माध्यम से शरणार्थी बच्चों को भारतीय पाठ्यक्रम के अनुसार निःशुल्क डिजिटल शिक्षा मिल रही है। इसके साथ ही स्किल इंडिया मिशन के तहत उन्हें स्थानीय भाषाओं और कंप्यूटर कौशल का प्रशिक्षण दिया जा रहा है ताकि वे भारतीय समाज की आर्थिक प्रगति में भागीदार बन सकें। दोस्तों, विज्ञान और तकनीक के सकारात्मक पक्षों के साथ कुछ चुनौतियां भी हैं जिन्हें हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। डेटा गोपनीयता और सुरक्षा यानी डाटा प्राइवेसी एक बहुत बड़ी चुनौती बनकर सामने उभर रही है। शरणार्थियों का बायोमेट्रिक डेटा अत्यंत संवेदनशील होता है। यदि यह डेटा साइबर अटैक या उनकी दमनकारी सत्ताओं के हाथ लग जाए जिनसे वे भागकर आए हैं तो उनकी जान को खतरा हो सकता है। दूसरी समस्या जो हमारे सामने आती है वह है डिजिटल डिवाइड। आज भी एक बड़ी शरणार्थी आबादी विशेषकर महिलाएं और वृद्ध डिजिटल रूप से साक्षर नहीं है। स्मार्टफोन और इंटरनेट की अनुपलब्धता के कारण वे तकनीक जनित पुनर्वास नीतियों के लाभ से वंचित रह जाते हैं। इन्हीं सब कसौटियों को पार करने के लिए तकनीक को एक ऐसा सुरक्षित कमरा तैयार करना होगा जहां हर विस्थापित अपनी नई शुरुआत कर सके। तकनीकी नवाचार, इनोवेशन और मानवीय करुणा कंपैशन का यह संगम ही विश्व शरणार्थी दिवस के वास्तविक संकल्प जो कि मानवता की रक्षा और सम्मान है उसको धरातल का सच साबित कर सकता है।
1: दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे श्वेता जाधवन को, जिन्होंने हमें समझाया कि शरणार्थियों के पुनर्वास में तकनीक की भूमिका किस प्रकार है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और एक नज़र जरा बीते हफ्ते पर भी डाल देते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो हमने जाना कि अब यूएसए और ईरान के बीच पीस डील की शुरुआत तो हो चुकी है। वहीं दोस्तों, आपने देखा होगा इंटरनेशनल लेवल पर G7 समिट भी अब फ्रांस में हो चुका है और इसी के साथ साथ फ्रांस में UPI की सौगात भी आ चुकी है, यानी कि देश का एस UPI दोस्तों हर जग में इसका बोलबाला है। वहीं दोस्तों, हाल ही में हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने चिन्हित फुटपाथ पर चलने के अधिकार को मौलिक अधिकार बताया, यानी कि आप जहां पर भी देखें कि फुटपाथ का साइन है वहां पर आप चलें क्योंकि ये अब आपका मौलिक अधिकार है। चलिए दोस्तों, एक बार स्पोर्ट्स के ओर भी चलते हैं। फीफा 2026 की शुरुआत हो चुकी है और वहीं क्रिकेट यानी कि ICC वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप की भी शुरुआत हो चुकी है। और सभी स्टूडेंट्स को मैं बता दूं, SSC CGL के फॉर्म्स आ चुके हैं दोस्तों, जिसकी लास्ट डेट 22 जून है। तो जिन्हें भी SSC में अप्लाई करना है, SSC CGL में अप्लाई करना है, वे जल्द से जल्द ऑफिशियल साइट पर जा करके अपना फॉर्म भर सकते हैं। एक बार फिर ध्यान दिला दूं, 26 जून है इसकी लास्ट डेट, तो जल्दी से कर लीजिए अपना रजिस्ट्रेशन। और एग्ज़ाम की बात हो रही है तो दोस्तों, मुझे याद आया, कल है NEET UG का री एग्ज़ाम और सभी एस्पिरेंट्स को मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। हम सभी चलिए मिलकर के कोशिश करते हैं कि हमारी मेहनत ज़रूर रंग लाएगी और इसी विश्वास के साथ एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करते हैं। अब वक्त हो चला है आज के अगले सेगमेंट में गैलेंट्री अवार्ड्स के बारे में जानने का। दोस्तों, ज़रा सोचिए, अगर किसी संकट की घड़ी में हर कोई अपनी जान बचाने में लगा हो और उसी समय व्यक्ति दूसरों की मदद के लिए आगे बढ़ जाए तो आप उसे क्या कहेंगे? निसंदेह वह एक वीर है। ऐसे ही साहसी लोगों के सम्मान के लिए हमारे देश में है वीरता पुरस्कार। वेल, जब हम वीर या वीरता की बात करते हैं तो हमारे जहन में आते हैं सैन्य बल, यानी कि हमारे सैनिक। दोस्तों, भारत सरकार ने 26 जनवरी 1950 को तीन प्रमुख वीरता पुरस्कार, परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र की शुरुआत की। बाद में शांति काल में साहस दिखाने वाले लोगों के लिए अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र स्थापित किए गए। इन सभी पुरस्कारों को मरणोपरांत भी दिया जाता है। परमवीर चक्र देश का सर्वोच्च युद्धकालीन वीरता पुरस्कार है। यह युद्ध में असाधारण साहस दिखाने वाले सैनिकों को दिया जाता है। सबसे पहला परमवीर चक्र मेजर सोमनाथ शर्मा को प्रदान किया गया था। फिर महावीर चक्र, वीर चक्र भी युद्ध के दौरान दिखाई गई बहादुरी के लिए दिए जाते हैं। वहीं शांति का

में दिए जाने वाले पुरस्कारों में है अशोक चक्र सबसे बड़ा सम्मान, इसके बाद कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र आते हैं जो कि साहस, वीरता और आत्म बलिदान के लिए प्रदान किए जाते हैं। दोस्तों, मैं आपको याद दिला दूं कि ये जो चक्र हैं, ये जो वीरता अवार्ड्स हैं, ये सिर्फ सैन्य बल के सैनिकों को ही नहीं बल्कि सिविलियंस को भी दिए जाते हैं, जिन्हें हम कहते हैं शांति काल में दिए जाने वाले पुरस्कार। तो दोस्तों, वीरता पुरस्कार ये केवल पदक नहीं है बल्कि

संतुलित और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देना। दोस्तों, इस वर्ष का मुख्य राष्ट्रीय कार्यक्रम पश्चिम बंगाल के शहर कोलकाता में आयोजित किया जा रहा है, जहां हजारों लोग एक साथ योगाभ्यास करके इस दिन को और भी विशेष बना रहे हैं। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत 2014 में हुई थी। हाँ जी दोस्तों, इसके बाद 21 जून को आधिकारिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया गया। पहली बार यह दिन 2015 में मनाया गया था। 21 जून का चयन भी वैज्ञानिक और प्राकृतिक दृष्टि से खास है, क्योंकि यह उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन होता है, जिसे ग्रीष्म संक्रांति कहा जाता है। ये दिन ऊर्जा और प्रकाश और संतुलन का प्रतीक माना गया है, ठीक वैसे ही जैसे योग हमारे जीवन में संतुलन लाता है। दैनिक जीवन में योग को अपनाना बहुत सरल है। आप चाहें तो सूर्य नमस्कार का अभ्यास अपने जीवन में, अपने दिनचर्या में लेकर के आ सकते हैं, और उसके बाद धीरे धीरे संपूर्ण व्यायाम भी शामिल कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, सेहत एक ऐसी चीज़ है जो हम सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और योग केवल व्यायाम तो नहीं है, बल्कि शरीर को, मन को और आत्मा के बीच एक संतुलन स्थापित करने की जीवन शैली है। और दोस्तों, जब हम ये जीवन शैली अपनाते हैं ना, तो सिर्फ एक व्यक्ति ही नहीं, बल्कि हर व्यक्ति जो कि आसपास है वो भी सेहतमंद रहता है। क्योंकि देखिए ना, जब आप योग करेंगे, जब आप इसे अपनाएंगे, तो आपके आसपास वाले भी, आपके पड़ोसी, आपके फैमिली मेम्बर्स, सब आपसे इंस्पायर होंगे और वो भी योग को अपनी दिनचर्या में शामिल करेंगे। दोस्तों, और योग को जब वो अपनी दिनचर्या में शामिल करेंगे, तो वो एक और भी हेल्दी लाइफ को लीड कर पाएंगे। तो इसलिए अगर आपको भी हेल्दी लाइफ को लीड करना है ना, तो बिल्कुल भी खुद को मत रोकिए और पहुंच जाइए कल अपने अपार्टमेंट्स के, अपने कॉलोनी के पार्क्स में, और योग को अपनाइए। दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपकी रेडियो वाली दोस्त आपसे लेना चाहूँगी विदा। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खिलखिलाते रहें। नमस्कार।

वेलकम बैक दोस्तों। दोस्तों आपको पता है कल क्या है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, जो कि सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मनाया जाने वाला है। ये हर साल 21 जून को मनाया जाता है और इस साल हम 12वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं, जिसकी खास थीम भी है दोस्तों, स्वस्थ आयु के लिए योग। यानी योग के माध्यम से लंबी

राम राम किसान भाइयों बहनों, आप सुन रहे हैं आपका अपना प्रिय कार्यक्रम ग्रामीणों। मैं हूं आपकी मित्र उमा अली। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय की जो खेती, पर्यावरण और हमारे भविष्य तीनों से जुड़ा हुआ है, यानी आज का विषय है पानी। पानी की हर बूंद कीमती, जल संरक्षण से बढ़ेगी खेती की सफलता। साथियों, पानी जीवन का आधार है। बिना पानी के ना तो खेती संभव है और ना ही जीवन। लेकिन आज बढ़ती आबादी, अनियमित वर्षा और भूजल के अत्यधिक दोहन के कारण जल संकट एक गंभीर चुनौती बनता जा रहा है। ऐसे में जल संरक्षण केवल एक विकल्प नहीं बल्कि समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। कभी हमारे गांव में तालाब, पोखर और कुएं पानी से भरे रहते थे। किसान वर्षा के पानी का उपयोग समझदारी से करते थे, लेकिन समय के साथ हमने प्राकृतिक जल स्रोतों की उपेक्षा की और परिणाम ये हुआ कि आज कई क्षेत्रों में भूजल का स्तर लगातार नीचे जा

उठाएं। विशेषज्ञों की माने तो यदि अभी से जल संरक्षण पर ध्यान नहीं दिया गया तो आने वाले वर्षों में खेती करना और अधिक कठिन हो सकता है। इसलिए हर किसान को पानी की एक एक बूंद का महत्व समझना होगा। हमारे किसान भाई हमेशा कहते हैं कि हम तो हर साल खेतों में सिंचाई करते हैं फिर भी पानी की कमी बनी रहती है, आखिर इसका समाधान क्या है? तो भाई इसका सबसे बड़ा समाधान है जल का संरक्षण और उसका कुशल प्रबंधन। सबसे पहले हमें वर्षा जल का संचयन पर ध्यान देना चाहिए। बारिश का पानी यदि खेतों, तालाबों, जलाशयों में संग्रहित किया जाए तो ये पूरे वर्ष खेती के काम आ सकता है। खेतों के किनारों पर मेड़बंदी करना, छोटे छोटे तालाब बनाना और जल संग्रहण संरचनाएं तैयार करना बेहद उपयोगी उपाय है। इससे वर्षा का पानी बहकर नष्ट नहीं होता और भूजल का स्तर भी बढ़ता है। किसान साथियों, आज आधुनिक तकनीकों ने जल संरक्षण को और भी आसान बना दिया है। ड्रिप सिंचाई यानी कि बूंद बूंद सिंचाई और स्प्रिंकलर सिंचाई यानी कि फव्वारा सिंचाई, ये एक ऐसी तकनीकें हैं जिनसे कम पानी में अधिक क्षेत्र की सिंचाई की जा सकती है। ड्रिप सिंचाई में पानी सीधे पौधों की जड़ों तक पहुंचता है, इससे पानी की बर्बादी कम होती है, ना के बराबर होती है, फसल को पर्याप्त नमी मिलती है। इसी प्रकार स्प्रिंकलर प्रणाली वर्षा की तरह पानी का छिड़काव करती है जिससे पानी की बचत होती है। सरकार भी इन तकनीकों को अपनाने के लिए किसानों को विभिन्न योजनाओं के माध्यम से सहायता और अनुदान प्रदान कर रही है। अब आपके दिमाग में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि क्या केवल सिंचाई तकनीक बदलने से ही पानी बचाया जा सकता है? नहीं, इसके अलावा भी कई उपाय हैं। उदाहरण के लिए किसानों को अपनी भूमि और क्षेत्र के अनुसार फसल का चयन करना चाहिए। जहाँ पानी कम उपलब्ध हो वहाँ कम पानी वाली फसलें उगाना अधिक लाभकारी होता है। इसके साथ ही खेतों में मल्चिंग तकनीक अपनाने से मिट्टी की नमी लंबे समय तक बनी रहती है। फसल अवशेषों या जैविक पदार्थों को मिट्टी की सतह पर बिछाने से पानी का वाष्पीकरण कम होता है। किसान साथियों, बहनों, जल संरक्षण केवल खेत तक सीमित नहीं है, गाँव के प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी है। वे पानी की बचत करें, घर में नल को खुला न छोड़ें, जल स्रोतों को स्वच्छ रखें और वर्षा जल का संचयन करें। यदि पूरा गांव मिलकर जल संरक्षण का संकल्प ले ले तो जल संकट की समस्या काफ़ी दूर हो सकती है। देश के कई गांवों ने सामूहिक प्रयासों से सूखे क्षेत्रों को हरा भरा बना दिया है। लोगों ने तालाबों का पुनर्जीवन किया, चेक डैम बनाए, वर्षा जल का संग्रहण किया, परिणाम स्वरूप वहाँ खेती की उत्पादकता बढ़ी और किसानों की आय में भी वृद्धि हुई। तो प्रश्न उठता है कि क्या जल संरक्षण से खेती की लागत भी कम हो सकती है? बिल्कुल, जब पानी का सही उपयोग होगा तो बिजली, डीजल और सिंचाई पर होने वाला खर्च भी कम हो जाता है। फसल की गुणवत्ता बेहतर होती है, उत्पादन में वृद्धि होती है। यानी कि जल संरक्षण केवल पर्यावरण की रक्षा नहीं करता बल्कि किसान की आर्थिक स्थिति को भी मजबूत बनाता है। और यही कारण है कि आज जल संरक्षण को खेती की सफलता की कुंजी माना जा रहा है। साथियों, हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि पृथ्वी पर उपलब्ध जल का केवल छोटा सा हिस्सा ही मीठे पानी के रूप में उपयोग योग्य है। यदि हम इसे व्यर्थ बहाते रहेंगे तो आने वाली पीढ़ियों को गंभीर कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए आज से ही संकल्प लें, वर्षा जल का संरक्षण करेंगे, खेतों में मेड़बंदी और जल संचयन को बढ़ावा देंगे, ड्रिप और स्प्रिंकलर जैसी आधुनिक सिंचाई तकनीकें अपनाएंगे, पानी की अनावश्यक बर्बादी रोकेंगे, गाँव में जल संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाएंगे। बहुत ज़रूरी बात है ये साथियों। और साथियों, याद रखिए कि पानी की हर बूंद कीमती है। यदि हम आज जल बचाएंगे तो कल हमारी खेती सुरक्षित होगी, हमारी आय बढ़ेगी और आने वाली पीढ़ियों का भविष्य भी उज्जवल बनेगा। जल है तो कल है, बूंद बूंद का मान करें, पानी बचाकर धरती माँ का हम सब मिल सम्मान करें।

इसी संदेश के साथ मैं आपको छोड़ जाती हूँ। इस लोकगीत के साथ आप आनंद लीजिए और मैं इंतज़ार करती हूँ इस लोकगीत के खत्म होने का, क्योंकि अभी आपसे और भी बहुत सारी बातें करनी है।

0: किसान साथियों, अभी आप सुने थे मेजर सिंह और उनके साथियों की आवाज़ में लोकगीत। साथियों, बाग किसान की बुढ़ापे की पेंशन की तरह काम करता है अगर उसे वैज्ञानिक तरीके से लगाया जाए। और इस वैज्ञानिक विधि को जानते हैं आज की वार्ता में, जिसका विषय है बाग लगाने की वैज्ञानिक विधि। वार्ताकार हैं अनुपम दुबे।
1: किसान भाइयों, हमारे पूर्वज फल बाग लगाने का शौक रखते थे। कारण, बाग आमदनी का एक अच्छा जरिया साबित होता था। आज गौर करें तो उत्पादन और जनसंख्या के हिसाब से भारतवासी को केवल 48 ग्राम फल और 136 ग्राम सब्जियां ही प्रतिदिन प्रति व्यक्ति मिल रही हैं। आज देश में फल उत्पादन जनसंख्या की जरूरत के अनुरूप नहीं हो रहा है। कारण, किसान भाइयों का मानना है कि बाग लगाना घाटे का सौदा है, लेकिन इसके कई कारण हो सकते हैं। जैसे बाग लगाने से पहले इस बात पर विचार न करना कि उन्हें किस मृदा में, किस जलवायु और कैसे पानी के साथ किस प्रजाति के फलदार वृक्ष लगाने चाहिए। यहाँ तक कि किसान भाई इस बात का भी ध्यान नहीं रख पाते कि फल विशेष के पौधों से पौधों के मध्य कितनी दूरी रखें। एक कामयाब और लाभदायक बाग लगाने के लिए किन बातों का ध्यान रखा जाना जरूरी है, आइए हम जानते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है फल बाग योजना। किसान भाइयों, सबसे महत्वपूर्ण बाग की योजना बनाना है, क्योंकि फलों के वृक्ष लंबे समय के लिए रोपे जाते हैं। इसलिए बाग इस तरह लगाया जाना चाहिए ताकि उससे लंबे समय तक फायदा मिलता रहे, देखने में अच्छे लगें, पेड़ स्वस्थ बने रहें और बाग में उपलब्ध सभी साधनों का पूरा इस्तेमाल होता रहे। सभी पौधों को फैलने के लिए उचित स्थान मिल सके, सिंचाई की उचित व्यवस्था, साथ ही खाली जगह का भी पूर्ण रूप से प्रयोग होता रहे। दूसरा बिंदु है स्थान का चयन। किसान भाइयों, बाग लगाने के लिए हमें उपजाऊ भूमि का ही चयन करना चाहिए। कंकड़ पत्थर और ऊबड़ खाबड़ जमीन बाग लगाने के लिए उपयुक्त नहीं होती है। इसी प्रकार क्षारीय एवं रेतीली मृदा भी बाग लगाने के लिए उचित नहीं होती है। ऐसे ही मृदा में बेर, आंवला, बेलपत्र आदि के फल बाग लगाए जा सकते हैं। बागों के लिए उचित जल निकास, दोमट या बलुई दोमट मिट्टी वाले खेत अच्छे माने जाते हैं। किसान भाइयों, बागों के लिए जमीन का चयन, सड़क परिवहन की सुविधा युक्त स्थान या रेलवे स्टेशन आदि के पास करना चाहिए, जिससे बागों से प्राप्त उपज समय पर बिकने के लिए बाजार या मंडी में पहुंचाई जा सके। बाग के आसपास जंगल न हो तो बेहतर रहता है, क्योंकि जंगल के पास होने पर जंगली जानवर जैसे नीलगाय, सुअर, हिरण, बंदरों एवं पक्षियों द्वारा फलों को नुकसान होने की संभावना रहती है। इसी प्रकार बाग को गर्म व ठंडी हवा और कुदरती दुश्मनों से रक्षा के लिए उसके चारों ओर देशी आम, जामुन, बेल, शहतूत, देशी आंवला, करौंदा, इमली आदि फलों के पेड़ लगाने चाहिए। किसान भाइयों, किस्मों का चुनाव करते समय हमें ध्यान रखना चाहिए, जैसे कम उपजाऊ और पथरीली भूमि में अमरूद जैसी कठोर किस्में लगानी चाहिए। ऐसी भूमि पर आम का बाग कामयाब नहीं होता है। इसी प्रकार रेह युक्त खराब जमीन में लसोड़ा, बेर, आंवला, बेलपत्र आदि के पेड़ लगाए जा सकते हैं। पानी जमाव वाले स्थान पर संतरा, माल्टा, नींबू आदि नहीं लगाए जाने चाहिए, क्योंकि इन पेड़ों की जड़ों में पानी रुकने से जड़ें गल जाती हैं।

आती हैं। ऐसे स्थान पर अमरूद बाग लगाए जाने चाहिए। किसान भाइयों, किस्म का चुनाव करते समय उद्यान विभाग के अधिकारियों या कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों की सलाह से ही करना चाहिए। तैयारी के समय किसान भाइयों, मिट्टी की जांच करवा लेनी चाहिए। संभव हो तो पूरे खेत में हरी खाद जैसे फसल ढेंचा आदि की बुवाई करके उसे खेत में ही जोत देना चाहिए। इसके बाद भूमि में पेड़ पौधे लगाने के स्थानों पर निशान लगाने से पूर्व उसका एक नक्शा बना लेना चाहिए, जिससे वांछित जगहों पर रेखांकन या लेआउट वर्गाकार या आयताकार आदि हो सकता है। वर्गाकार रेखांकन आसान एवं सबसे अधिक प्रचलित है। इस रेखांकन में पेड़ से पेड़ के बीच का फासला और लाइन से लाइन के बीच का फासला एक समान होता है, ताकि लाइनों में पेड़ लगाए जा सकें। किसान भाइयों, अब हम जानते हैं कैसे लगाएं पेड़ और एवं पौधे। बाग रोपण में इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि पौधे हमेशा किसी प्रमाणिक नर्सरी या सरकारी पौधशाला से ही लाएं। बाग लगाने के लिए पेड़ों के हिसाब से जमीन पर निशान लगा देने के बाद 3 फुट चौड़े तथा 3 फुट गहरे गड्ढे को खोदने का काम जून माह तक अवश्य कर लेना चाहिए, जिससे बरसात होने से पूर्व गड्ढों की मिट्टी को कम से कम 15 से 20 दिन तक हवा लग जाए। गड्ढों से निकाली गई मृदा से कंकड़ पत्थर आदि निकालकर उसमें लगभग 2 भाग गोबर की खाद मिलाकर गड्ढों को भर देते हैं। 1-2 अच्छी वर्षा होने के बाद गड्ढों के बीचों बीच पौधा लगा दें। पौधे लगाते समय किसान भाइयों इस बात का विशेष ध्यान रखें कि पौधा उसी गहराई तक लगे जितना वह पहले या तो क्यारी में लगा था या गमले में लगा हुआ था। पौधा ऐसा हम इसलिए करते हैं कि अधिक गहरा लगा देने पर तना मिट्टी में दब जाता है और सड़ने की संभावना बनी रहती है। किसान भाइयों, हमारे देश में तेज गर्म हवाएं सदा पश्चिम से और ठंडी हवाएं हमेशा उत्तरी ओर से चलती हैं। इन हवाओं को रोकने के लिए बाग की उत्तर दिशा और पश्चिम दिशा में ऊंचे बढ़ने वाले शीशम, देशी आम, जामुन आदि के पेड़ों को पंक्तियों में लगा देते हैं। इस पंक्ति को विंड ब्रेकर भी कहते हैं। इन पेड़ों का फासला बाग के पेड़ों से लगभग 10 से 15 फुट तक रखा जाता है। वहीं लू एवं पाले से छोटे पेड़ों को बचाने के लिए अधिक गर्मी और सर्दी के मौसम में प्रत्येक पेड़ के चारों ओर फूस या टाट को पूर्व दिशा की ओर खुले रूप में लगा दें, जिससे पेड़ को सामान्य धूप और हवा मिलती रहे। किसान भाइयों, बाग लगाने में एक समस्या और होती है, वो है जंगली जानवरों का प्रभाव। जंगली जानवरों से रक्षा। बाग में जंगली जानवर चौपाए आदि को रोकने के लिए बाग के चारों ओर कांटेदार बाड़ लगाना आवश्यक है। आजकल कांटेदार तार लगाने का प्रचलन है। इसके अलावा हम बाग के चारों ओर कांटेदार घनी झाड़ी जैसे खट्टी, बबूल आदि को भी लगा सकते हैं। बाग की बाड़ से आप अतिरिक्त कमाई भी कर सकते हैं। जैसे बाग के चारों तरफ हम करौंदा या सागर घोटा आदि लगा सकते हैं। किसान भाइयों, अब हम जानते हैं पेड़ों की कटाई छटाई किस प्रकार करें। पेड़ लगाने के बाद प्रारंभ के 2-3 साल तक सभी पेड़ों को सुंदर और सुदृढ़ बनाने के लिए कटाई छटाई की जरूरत होती है। भूमि से लगभग 2-3 फुट की ऊंचाई तक तने को साफ कर लेना चाहिए। तने के ऊपरी भाग में 3 या 4 मजबूत भिन्न भिन्न दिशाओं में बढ़ती हुई शाखाओं को छुल लेना चाहिए और केवल उनको ही बढ़ने देना चाहिए। अन्य शाखाओं को तने के पास से काट देना चाहिए। जैसे जैसे पेड़ बढ़ते जाए उनके थाले बढ़ाते जाना चाहिए। प्रतिवर्ष थालों की गुड़ाई करके उनमें खाद देनी चाहिए। उचित सिंचाई का विशेष ध्यान रखें, विशेषकर ग्रीष्मकालीन में फल लगाने के बाद। इसी प्रकार किसी भी बीमारी अथवा कीड़े के लगते ही उसको रोकने के लिए अनुभवी बाग मालिक या फल वैज्ञानिक की सलाह से उचित दवा का छिड़काव करें। इस तरह की सभी सलाहें कृषि विज्ञान केंद्र बिचपुरी आगरा से किसानों को मिलती रहती हैं। बगीचा लगाने से पहले सिंचाई कैसे होगी, इस पर ध्यान देना जरूरी है। पानी की कमी वाले इलाकों में बूंद बूंद सिंचाई विधि का इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे पानी व मेहनत दोनों की बचत होगी और पौधों को जरूरत के हिसाब से पानी मिलने के कारण

0: पैदावार में बढ़ोतरी हो जाएगी। सिंचाई की नालियां पौधों की कतारों के बीच से निकल कर दोनों ओर पौधों की जरूरत के हिसाब से थाले बनाकर पानी दिया जाना चाहिए। अब हम जानते हैं किसान भाइयों, फल के पेड़ों का सही दूरी पर रेखांकन करना। उद्यान का रेखांकन करने के लिए सबसे पहले खेत के किसी एक किनारे से जरूरी दूरी की आधी दूरी रखते हैं, पहली लाइन का रेखांकन करते हैं। इसके बाद हर लाइन के लिए दूसरी दूरी रखते हुए पूरे खेत में दोनों किनारों से इसी विधि द्वारा रेखांकन कर लेते हैं व निशान लगी जगहों पर पौधे रोपते हैं। बगीचों को वर्गाकार विधि से ही लगाना चाहिए, क्योंकि यह सबसे आसान तरीका होता है। इसमें सभी प्रकार के काम आसानी से किए जा सकते हैं। पौधे लगाने से 1 महीने पहले गड्ढे खोदकर 20 से 25 दिन तक गड्ढों को खुला छोड़ देना चाहिए, ताकि धूप से कीटाणु खत्म हो जाएं। गड्ढे खोदते समय ऊपर की आधी उपजाऊ मिट्टी एक तरफ रख देनी चाहिए व आधी मिट्टी दूसरी तरफ डालनी चाहिए। गड्ढों की भराई के 1 महीने बाद गड्ढों को गोबर की सड़ी हुई खाद 20 से 25 किलोग्राम, सुपर फास्फेट 250 ग्राम, मिथाइल पैराथियन 4% 50 ग्राम, नीम की खली 2 किलोग्राम, अगर क्षारी जमीन है तो 250 ग्राम जिप्सम को गड्ढे की मिट्टी में डालकर भर देना चाहिए। मिश्रण में खेत की ऊपरी मिट्टी को मिलाना चाहिए। बरसात शुरू होने से पहले मिश्रण से गड्ढे को खेत की सतह से कुछ ऊंचाई तक दबाकर भर देना चाहिए व काफी मात्रा में पानी डाल देना चाहिए, ताकि गड्ढे की मिट्टी अच्छी तरह बैठ जाए। पौधों की रोपाई जहां तक मुमकिन हो 2 से 3 बार अच्छी बारिश होने के बाद ही करनी चाहिए। सरकारी व अच्छी नर्सरी से खरीदे गए पौधों को तैयार गड्ढों में रोप देना चाहिए। रोपाई जुलाई से अगस्त के महीने में शाम के समय करनी चाहिए। पौधों को रोपने से 2 घंटे पहले उससे लिपटी हुई घास, पिंड व पॉलिथिन थैली को थोड़े समय के लिए पानी में रखकर उसमें भरी हवा को बाहर निकालें, जिससे पौधा लगाते समय पिंड की मिट्टी बिखरे नहीं। पौधा सूखने लगे तो उसमें हल्की निराई कर केचुए की खाद में क्लोरोपाइरीफॉस नाम की दवा मिला दें व सिंचाई करें। छाछ व चाय का पानी भी छिड़का जा सकता है। अगर पत्तियों पर किसी प्रकार का कीट दिखाई दे तो रोगोर नाम की दवा या नीम तेल का छिड़काव भी कर सकते हैं। शुरू के 2 महीने तक पौधों को पानी की ज्यादा जरूरत होती है, तो किसान भाइयों इस समय 2 से 3 दिन के अंतर पर पानी देना चाहिए। 2 सिंचाइयों के बीच का समय जगह, मौसम, जमीन, फलों की किस्म, फल का समय व वहाँ की जलवायु आदि पर निर्भर करता है। अगर बारिश के मौसम में बारिश होती रहे तो पानी देने की जरूरत नहीं होती है। सर्दी के मौसम में 10 से 15 दिनों के अंतर पर सिंचाई करनी चाहिए। और किसान भाइयों, पाला पड़ने की संभावना हो तो फसलों में ज्यादा पानी देना चाहिए। गर्मी के मौसम में 7 से 10 दिन के अंतराल पर सिंचाई करनी चाहिए।
1: किसान साथियों, आप सुन रहे थे वार्ता जिसका विषय था बाग लगाने की वैज्ञानिक विधि। वार्ताकार थे अनुपम दुबे। और अब लेते हैं एक छोटा सा अंतराल।
2: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है। घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
3: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
4: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: किसान साथियों, नई खोज में आज हम बात करेंगे सौर ऊर्जा चालित कृषि रोबोट की। यह रोबोट सूरज की ऊर्जा से चलता है और खेत में निराई गुड़ाई, निगरानी तथा कुछ मामलों में स्प्रे का कार्य भी कर सकता है। इस तकनीक का सबसे बड़ा लाभ यह है कि इसमें डीजल या पेट्रोल की आवश्यकता नहीं होती, जिससे ईंधन का खर्च कम होता है,

के बराबर होता है। रोबोट खेत में लगातार काम कर सकता है और किसानों की मजदूरी लागत भी घटाता है। और साथियों, विशेषज्ञों का मानना है कि भविष्य में ऐसे रोबोट खेती को अधिक लाभकारी और टिकाऊ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। आधुनिक तकनीक को अपनाकर किसान कम लागत में अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। और साथियों, अब जान लेते हैं मंडी भाव। मक्का का भाव रहा 1620 से 1622 प्रति क्विंटल। ज्वार का भाव रहा 3120 से 5850 रुपये प्रति क्विंटल। गेहूं शरबती 2858 से 2877। मूंगफली 13944 से 13964 रुपये। सोयाबीन का भाव रहा 7916 से 7936 रुपये प्रति क्विंटल। नींबू का भाव रहा 2520 से 2500 रुपये। पपीता 2620 से 3000 रुपये प्रति क्विंटल। आलू के दाम रहे 500 रुपये से 520 रुपये। टमाटर का दाम रहा 2000 रुपये से 2020 रुपये। प्याज का दाम रहा 800 रुपये से 820 रुपये प्रति क्विंटल। हरी मिर्च 1420 से 1600 रुपये प्रति क्विंटल। तो किसान साथियों, ये था मंडी भाव। और अब जान लेते हैं मौसम की जानकारी भी। बीते 24 घंटों में आगरा व उसके आसपास का अधिकतम तापमान रहा 40 डिग्री सेल्सियस व न्यूनतम तापमान रहा 32 डिग्री सेल्सियस। आगामी 24 घंटों में अनुमान है कि अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस व न्यूनतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस हो सकता है। और साथियों, इसके साथ ही आज का ग्रामीण लोक कार्यक्रम यहीं पर संपन्न करने की अपने मित्र उमा अली को अनुमति दीजिए। राम राम।

अभी हमारे ग्रामीण अंचल के श्रोता सुन रहे थे अपना कार्यक्रम ग्रामीलोक। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है, मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर। शाम के 6:30 हुए हैं, समय है श्रमिक साथियों के कार्यक्रम मजदूर मंडल का।

कार्यक्रम मजदूर मंडल सुनने वाले हमारे सभी श्रमिक भाई बहनों को आपकी रेडियो साथी रिंकू चौरसिया का प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हर रोज की तरह आपके अपने खास कार्यक्रम मजदूर मंडल में। साथी, हमारा यह कार्यक्रम खास तब और ज़्यादा हो जाता है जब हम खास चर्चाओं के साथ साथ आपका मनोरंजन भी कराते हैं और साथ ही खास और ज्ञानवर्धक सवाल जवाब आपसे करते हैं, जिसका आप सबको बेसब्री से इंतज़ार भी रहता है ना साथियों। तो चलिए साथियों, इस इंतज़ार को ख़त्म करते हुए पूछ लेते हैं आपसे आज का प्रश्न। साथियों, आपसे आज का प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस कब मनाया जाता है। साथियों, इस प्रश्न का जवाब हम आपको कार्यक्रम के मध्य में देंगे, तब तक आप भी अपना दिमाग लगाइए और ढूंढिए इस प्रश्न का जवाब। और साथियों, अब हम बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे की ओर और बात करते हैं आज की विशेष और ख़ास चर्चा पर। साथियों, जैसा कि हम जानते हैं कि हर व्यक्ति अपने देश, समाज, परिवार, भाषा और संस्कृति से जुड़ा हुआ होता है, क्योंकि वहीं उसका जन्म होता है, उसका पालन पोषण होता है और व्यक्तित्व विकास भी इन्हीं सब के बीच होता है। इसलिए कोई भी व्यक्ति अपनी मातृभूमि को छोड़कर नहीं जाना चाहता। लेकिन साथियों, कभी कभी कुछ लोगों के सामने कई ऐसी परिस्थिति सामने आ जाती है जिसके कारण उन्हें अपना घर परिवार और देश छोड़कर किसी दूसरे देश में जाने को मजबूर होना पड़ता है, और साथियों ऐसे लोगों को शरणार्थी कहा जाता है। जी हाँ साथियों, हम बात कर रहे हैं शरणार्थियों की, क्योंकि आज है विश्व शरणार्थी दिवस, क्योंकि आज ही के दिन यानी कि 20 जून को

विश्व भर में मनाया जाता है। सन 2000 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा यह निर्णय लिया गया कि यह दिवस हर वर्ष 20 जून को मनाया जाएगा। तब से यह दिवस विश्व शरणार्थी दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। साथ ही इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य दुनिया भर में शरणार्थियों की स्थिति के बारे में जागरूकता बढ़ाने में, साथ ही उनका समर्थन और उनका सम्मान करना है। क्योंकि साथियों, शरणार्थी लोग भी तो हमारी तरह इंसान होते हैं ना, उन्हें भी सम्मान, सुरक्षा और गरिमा के साथ जीने का अधिकार होता है। और वैसे भी साथियों, वो लोग अपनी इच्छा से तो शरणार्थी बनते नहीं, बल्कि किसी युद्ध, हिंसा, प्राकृतिक आपदाओं, भेदभाव या फिर उत्पीड़न जैसी परिस्थितियों के कारण ही उन्हें अपना देश और घर छोड़ना पड़ता है, और तब वे सुरक्षित जीवन की तलाश में दूसरे देशों में आश्रय लेते हैं। और साथ ही ये बात तो हम सभी जानते हैं कि अपने घर परिवार, मित्रों और संस्कृति और अपनी पहचान से दूर होना किसी व्यक्ति के लिए कितना पीड़ादायक होता है। क्योंकि किसी एक जगह किसी व्यक्ति को अपना नाम बनाने या फिर अपनी पहचान बनाने में काफ़ी वक्त लगता है, और तब ऐसे में इस तरह का विस्थापन वाकई में कष्टदायक होता है। साथियों, आज भी दुनिया के कई हिस्सों में युद्ध और संघर्ष के कारण लाखों लोग विस्थापित हो रहे हैं या अपना घर छोड़ रहे हैं। उन्हें भोजन, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं और सुरक्षित आवास जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए भी संघर्ष करना पड़ रहा है, जिसके चलते यह दिवस हमें याद भी दिलाता है साथियों कि शरणार्थियों को केवल सहायता का पात्र नहीं बल्कि साहस और संघर्ष के प्रतीक के रूप में भी देखना चाहिए। क्योंकि वे विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं और समाज में अपना योगदान देते हैं। वही साथियों, हम अपने भारत देश की बात करें तो हमारे भारत देश की संस्कृति तो सदियों से ही अतिथि देवो भव और वसुधैव कुटुंबकम के आदर्शों पर आधारित रही है, जहां हमारे देश ने विभिन्न समय पर अनेक शरणार्थियों को आश्रय देकर मानवता का परिचय दिया है, जो कि हमें सिखाता भी है कि करुणा, सहानुभूति और सहयोग ही हमारा मानव समाज की सबसे बड़ी जो है ताकत है। साथ ही इस दिवस पर हम सभी को यह समझना होगा कि शरणार्थी समस्या केवल किसी एक देश की समस्या नहीं है, बल्कि यह पूरी मानवता की चुनौती है, जिसके समाधान के लिए विश्व समुदाय को मिलकर काम करना हो। वहीं शांति, संवाद, शिक्षा और सहयोग के माध्यम से इस तरह की परिस्थितियों को कम करने के बारे में सोचना हो। तो आइए साथियों, इस दिवस पर आज हम सब ये संकल्प लें कि हम ज़रूरतमंद लोगों की सहायता करेंगे, शांति का समर्थन करके एक ऐसे विश्व का निर्माण करने में अपना योगदान देंगे जहां किसी को भी भय, हिंसा के कारण अपना घर परिवार छोड़ने को मजबूर न होना पड़े।

साथियों, आज के ज्ञान सागर में हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश राज्य के कुशीनगर जिले की, जो कि एक ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल माना जाता है। और यह स्थान विश्व भर में अपनी विशेष पहचान इसलिए भी रखता है क्योंकि इसी स्थान पर भगवान गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था, और इसी कारण कुशीनगर को बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए सबसे पवित्र स्थलों में से एक माना जाता है। साथियों, बात करें कुशीनगर की, तो कुशीनगर में कई ऐसे प्रसिद्ध स्थल हैं जिन्हें देखने के लिए हजारों लोग हर रोज़ यहाँ आते हैं, जिसमें सबसे प्रसिद्ध स्थल महापरिनिर्वाण मंदिर है। इस मंदिर में महात्मा बुद्ध की लगभग 6 मीटर लंबी प्रतिमा स्थापित है। यह प्रतिमा भगवान बुद्ध के अंतिम विश्राम की मुद्रा को दर्शाती है, जो कि 1876 में खुदाई के दौरान प्राप्त हुई। साथियों, ये सुंदर प्रतिमा चुनार के बलुआ पत्थर से बनी हुई मानी जाती है, जो कि उस मंदिर का मुख्य आकर्षण भी है। इसके अलावा रामा भारसपूत कुआर मंदिर

0: बौद्ध संग्रहालय, थाई मंदिर, जापानी मंदिर, माँ भवानी मंदिर, श्रीलंकाई मंदिर, इस तरह के कई सारे मंदिर हैं जो कि कुशीनगर में अपनी अनूठी वास्तुकला और सुंदरता के लिए प्रसिद्ध हैं। साथ ही ये मंदिर भारत और अन्य देशों के बीच सांस्कृतिक संबंधों को भी मजबूत बनाते हैं। वहीं कुशीनगर धार्मिक महत्व के साथ साथ पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं के लिए भी महत्वपूर्ण माना जाता है। साथियों, क्योंकि यहाँ आने वाले पर्यटकों से यहाँ के होटल, परिवहन, हस्तशिल्प और अन्य व्यवसायों को भी रोजगार मिलता है। हाल के वर्षों में कुशीनगर के विकास के लिए सरकार द्वारा भी कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं शुरू की गई, जिससे यह क्षेत्र पर्यटन के क्षेत्र में और अधिक उन्नति कर रहा है। साथ ही कुशीनगर हमें शांति, अहिंसा, करुणा और मानवता का संदेश देता है। यहाँ भगवान बुद्ध के उपदेश आज भी सारे विश्व को प्रेम और भाईचारे की राह दिखाते हैं। साथियों, क्योंकि जो भारत के वैज्ञानिकों ने साथियों जिस तरह से योगदान दिया है, वैसे हर एक इंसान को इन धरोहरों की जो है इसकी रखवाली, संरक्षण के लिए उनको योगदान देना चाहिए। क्योंकि साथियों, हमारे वैज्ञानिकों ने, भारत के वैज्ञानिकों ने विज्ञान के क्षेत्र में, चिकित्सा, अंतरिक्ष और कृषि और कई सारी तकनीक के क्षेत्र में भी बेहतर काम किया है। जी हाँ साथियों, वैज्ञानिकों ने कई खोज और आविष्कारों से न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया को लाभ पहुंचाया है, जिसमें स्मार्ट रोबोट तकनीक आज के समय की कई क्षेत्रों में कामगार साबित हो रही है। क्योंकि स्मार्ट रोबोट ऐसे यंत्र होते हैं जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि AI सेंसर और कंप्यूटर तकनीक की सहायता से अपने आसपास के वातावरण को समझ सकते हैं, निर्णय ले सकते हैं और कई काम स्वयं वो कर सकते हैं, जिस कारण उन्हें स्मार्ट रोबोट कहा जाता है। साथियों, आज स्मार्ट रोबोट का उपयोग कारखानों, अस्पतालों, कृषि क्षेत्रों, अंतरिक्ष अनुसंधान और आपदा राहत कार्य में भी किया जा रहा है। और वहीं हमारे किसान व श्रमिक भाइयों के लिए तो यह तकनीक वरदान जैसी है, जिसमें कारखानों, निर्माण स्थलों और खदानों में भारी सामान उठाने एवं खतरनाक काम को करने में रोबोट तकनीक बेहद सहायक हो रही है, जिसके बदले में हमारे श्रमिक भाइयों को उनका काम भी बड़ा आसान और सरल हो जाता है और साथ ही हमारे भाइयों को मेहनत भी ज़्यादा नहीं करनी पड़ती। तो है ना साथियों, ये खुशी की बात। तो चलिए साथियों, एक विराम लेते हैं, जल्द हाजिर होते हैं।
1: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है। घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
0: साथियों, जैसा कि हम जानते हैं कि इस धरती पर प्रत्येक मनुष्य को सम्मान पूर्वक जीना का अधिकार होता है, लेकिन अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों का पालन करना भी उतना ही आवश्यक है। क्योंकि अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, जिनको जानना हर व्यक्ति के लिए बेहद ज़रूरी हो जाता है। तो साथियों, वो क्या क्या अधिकार हैं और कर्तव्य हैं जो एक व्यक्ति को अपने जीवन में समझना चाहिए और उनका पालन करना चाहिए, आइए जानते हैं आज की इस वार्ता के माध्यम से, जिसका नाम है अधिकार और कर्तव्य के प्रति जागरूकता और जिसके वार्ताकार हैं डॉक्टर सत्यप्रकाश।
2: श्रोताओं, आपकी हर चीज अपनी है, आपका भाग्य भी, इसे संवारने की जिम्मेदारी भी आपकी है। मनुष्य जब पैदा होता है तो उसके तन पर कुछ भी नहीं होता। कहने का तात्पर्य है कि वह अपने साथ कुछ भी लेकर नहीं आता। यही तो प्रकृति का चमत्कार है। वह कहती है, अपने कर्म के अनुसार अपना जीवन यापन करो। आत्मा को सिखाएं कि उसको अभ्यास करना है और अभ्यास से आप अपने और समाज का भाग्य उदय कर सकते हैं। अभ्यास के उस विचार को सच किया जा सकता है जो किसी दिन आपके दिमाग से निकला था। हमारे संविधान ने हमें कुछ ऐसे मौलिक अधिकार दिए हैं जो हमें श्रेष्ठ जीवन जीने के लिए आवश्यक हैं। वहीं हमारे कर्तव्यों की ओर भी ध्यान आकर्षित किया है, अर्थात कर्तव्य और अधिकार दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। सबसे पहले हम उन अधिकारों की चर्चा करते हैं जो भारतीय समाज में सम्मान के साथ जीवन यापन करने की इजाजत देते हैं, जैसे समानता का अधिकार।

तंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार आदि प्रकार के अधिकार हमें प्राप्त हैं। हम अपने जीवन को श्रेष्ठतम तरीके से जीने के लिए अनेकों प्रकार के अधिकारों का अपने जीवन में उपयोग करते हैं। इन अधिकारों की रक्षा के लिए हमारे देश में विभिन्न स्तरों यथा जिला, प्रदेश व देश में न्यायालयों की स्थापना की गई है। अधिकारों के द्वारा धनवानों, गरीबों, बच्चों को अपना जीवन स्तर सुधारने का अवसर मिलता है। हमने अधिकतर देखा है कि हम अपने अधिकारों के प्रति तो सजग रहते हैं, लेकिन कर्तव्यों से मुंह मोड़ लेते हैं, अर्थात कर्तव्यों की ओर कम ध्यान देते हैं, जिससे प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से हम अपना व देश का भारी नुकसान करते हैं। जैसा कि हमने अभी चर्चा की कि हमें श्रेष्ठ जीवन यापन करने के लिए संविधान में हमारे अधिकार निहित हैं, वहीं हमारे कर्तव्य भी निर्धारित हैं। कर्तव्यों में मुख्य रूप से समाज के प्रति कर्तव्य, परिवार के प्रति कर्तव्य, अपने प्रति कर्तव्य तथा देश के प्रति कर्तव्य आदि कर्तव्य हमें श्रेष्ठ नागरिक बनने के लिए प्रेरित करते हैं। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। इसके पश्चात वर्ष 2002 में 86वां संविधान संशोधन द्वारा इसमें एक और अर्थात 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया। पहला कर्तव्य देश के प्रत्येक नागरिक को संविधान का पालन, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना चाहिए। दूसरा, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोकर उसका पालन करें। तीसरा, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें। चौथा महत्वपूर्ण कर्तव्य है कि हम अपने राष्ट्र की रक्षा करें, जिसको विस्तृत रूप से समझने की जरूरत है। सबसे पहले हम अपनी रक्षा करें, क्योंकि हम स्वयं भी राष्ट्र की एक इकाई हैं। हम बिना हेलमेट के बाइक या बिना सीट बेल्ट के लगाए चार पहिया वाहन चलाने लगते हैं, जिससे दुर्घटना के समय हम अपनी जान गंवा देते हैं, जो राष्ट्र को भारी क्षति का कारण बनता है। अगर दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति अपने छोटे छोटे कर्तव्यों का भी पालन करता है, तो इस जीवन के सफर में अनेकों देश के कार्यकर्ता। पांचवा, हमारा कर्तव्य देश के सभी नागरिकों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना के निर्माण की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करता है, जो हमारे जीवन के उत्थान के लिए अति महत्वपूर्ण है। छठवें कर्तव्य के रूप में हमें भारत की सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझने का अवसर प्रदान करती है, जो हमें नए नए कीर्तिमान स्थापित करने के लिए प्रेरित करता है। लेकिन हम इन कर्तव्यों की ओर ध्यान न देकर अधिकारों में उलझकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं, जो राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में बाधा ही समझना चाहिए। हमें संविधान ने सातवें कर्तव्य में जीवन की रक्षा के लिए अप्रत्यक्ष रूप से प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसके संवर्धन हेतु जनहित में कार्य करने की सलाह दी है। हमें विभिन्न योजनाएं बनाकर भारी मात्रा में पेड़ पौधे लगाने की आवश्यकता है। यदि प्रतिवर्ष एक व्यक्ति एक पेड़ को लगाकर उसकी देखभाल करे, तो लगभग 135 करोड़ पेड़ों की वृद्धि प्रतिवर्ष हो सकती है। विश्व में सबसे आगे रहकर जन कल्याण के लिए आठवां कर्तव्य हमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन की ओर ध्यान दिलाता है। लेकिन हम अपने देश के विद्यार्थियों के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करने में अभी उतनी गति नहीं ला पा रहे हैं जितनी लानी चाहिए। हम अभी भी इतने जागरूक नहीं हुए हैं कि सार्वजनिक संपत्ति को अपनी निजी संपत्ति समझकर रक्षा करें। हमारे मूल नौवे कर्तव्यों में सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखने के लिए प्रेरित किया गया है। दसवें कर्तव्य के रूप में

हमें व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने के प्रयास का उल्लेख मिलता है। 2002 में संविधान के 86वें संविधान संशोधन द्वारा हमें 11वां मूल कर्तव्य भी मिला है, जिसमें माता पिता या संरक्षक द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना हमारा दायित्व है, जिसकी अनदेखी अधिकतर

0: को स्कूल या विद्यालय में सही समय पर प्रवेश दिलाकर उनकी शिक्षा की व्यवस्था का दायित्व निभाना होगा। अगर हम सब अपने कर्तव्यों का पालन करें तो अधिकारों को खोजने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कर्तव्यों की उपेक्षा करके हम अधिकारों के पीछे पड़े तो हमारी खोज मृग तृष्णा की तरह व्यर्थ होगी। कर्तव्य यानी ड्यूटी हमारी नैतिक प्रतिबद्धताएं हैं। यह व्यक्ति की इच्छा और अनिच्छा पर निर्भर करते हैं, जिसमें किसी बाहरी शक्ति का दबाव कार्य न करके वह कर्तव्य का पालन आंतरिक अंतः प्रेरणा से करता है। यानी कर्तव्य का अर्थ बाहरी दबाव से नहीं बल्कि स्व इच्छा से की गई जिम्मेदारियों का निर्वहन है। कर्तव्य की भावना के बिना काम करना भूख के बिना खाना खाने जैसा है। मानवता की सेवा इंसान का बहुत महत्वपूर्ण कर्तव्य है। जब हम कर्तव्य का पालन करते हैं तो योग्यता स्वतः ही जन्म लेती है। सफलता उन्हीं को मिलती है जो अपने कर्तव्य पथ पर अटल रहते हैं। आप अपने कर्तव्य का पालन करके तो देखिए, आपको जो खुशी मिलेगी उसका कोई ठिकाना नहीं रहेगा। मनुष्य को चाहिए कि वह अपनी समस्याओं के लिए चारों ओर के वातावरण को दोषी नहीं ठहराएं। अपनी गलती स्वीकार करो और सीखो कि आपने कर्तव्य को पूरा करने में कहां गलती की थी। यहां जो कुछ भी है सब आपको ही करना है। आप न तो परिस्थिति को बदल सकते हैं और न मौसम बदल सकते हैं, न ही आप लोगों को बदल सकते हैं। आप केवल खुद को बदल सकते हैं और अपने आप में यह बदलाव केवल अपने कर्तव्य पालन द्वारा ही कर सकते हैं।
1: साथियों, अभी आप सुन रहे थे वार्ता अधिकार और कर्तव्य के प्रति जागरूकता, जिसके वार्ताकार थे डॉक्टर सत्यप्रकाश। साथियों, इसी के साथ अब हम आपको बता देते हैं आज के प्रश्न का जवाब। साथियों, आज का हमारा प्रश्न था कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है, जिसका जवाब है 21 जून को, यानी कि कल के ही दिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हम सभी मनाएंगे, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए भी साथियों बहुत ज़रूरी भी है। साथियों, स्वास्थ्य हमारे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। यदि हमारा शरीर स्वस्थ होता है तो हम सब अपने काम को और भी अच्छी तरीके से कर पाते हैं। लेकिन आज की भागदौड़ भरी ज़िंदगी में लोग अपने आप पर, अपने स्वास्थ्य पर ध्यान ही नहीं दे पाते। ऐसे समय में साथियों, योग क्रिया एक ऐसी पद्धति बनकर सामने आई है जिसके द्वारा हम अपने स्वास्थ्य को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ बना सकते हैं। और इसकी सबसे बड़ी बात यह है साथियों, योग क्रिया किसी भी उम्र का व्यक्ति आसानी से कर सकता है, जिसके नियमित अभ्यास से शरीर मजबूत, मन शांत और जीवन में सकारात्मकता आती है। योग करने से शरीर में लचीलापन और रक्त संचार बेहतर होता है, साथ ही हृदय, फेफड़े और पाचन तंत्र को भी बेहतर बनाने में सहायक होता है। साथियों, आज के समय में जब लोग मोबाइल, कंप्यूटर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का अधिक प्रयोग कर रहे हैं, ऐसे में योग शरीर को स्वस्थ रखने का एक प्रभावी उपाय बनकर सामने आया है। साथियों, योग में कई प्रकार की क्रिया, आसन, प्राणायाम, अनुलोम विलोम, कपालभाति, भ्रामरी और ध्यान और शुद्धि क्रियाएं मिलकर शरीर को स्वस्थ, मन को शांत और जीवन को संतुलित बनाती हैं। इसलिए साथियों, हम सभी को अपने जीवन में योग को प्राथमिकता देनी चाहिए।

0: अभी हमारे श्रमिक साथी सुन रहे थे अपना कार्यक्रम मजदूर मंडल। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है, मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्स और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार, उसके उपरांत अंग्रेजी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं करिश्मा राय। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना की। उन्होंने कहा कि श्री मोदी ने विश्व नेताओं के साथ अपने दूरदर्शी शासन और संपर्क के जरिए वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाया है। राष्ट्रपति ने मोहन चरण मांझी सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर ओडिशा के मयूरभंज जिले के रायरंगपुर में एक जनसभा में यह बात कही। प्रधानमंत्री मोदी भी कार्यक्रम में उपस्थित रहे। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं से सशक्त होकर आदिवासी समुदाय भारत के विकास में सक्रिय योगदान दे रहे हैं। श्री मोदी ने पूर्वी भारत के विकास में तेजी लाने के उद्देश्य से सरकार के पूर्वोत्तर दृष्टिकोण का भी उल्लेख किया।
2: ओडिशा में आर्थिक गतिविधियां, निवेश और उद्योगों को आकर्षित करने का सामर्थ्य आज नजर आ रहा है। केंद्र सरकार का विजन है पूर्वी भारत के विकास से भारत का विकास। इसलिए हम पूर्वोदय की नीति पर काम कर रहे हैं। जिस पूर्वी भारत को कांग्रेस के दौर में पिछड़ेपन का पर्याय बना दिया गया था, आज वो प्रगति का प्रवेश द्वार बन रहा है।
1: इस दौरान ओडिशा में 47,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया। बाद में प्रधानमंत्री हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंगाल दिवस समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने कहा कि इन परियोजनाओं से राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी।
2: आज यहाँ सैकड़ों करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास हुआ है। रेल, रोड, कृषि, इससे जुड़ी ये परियोजनाएं बंगाल को नई गति देगी। इन परियोजनाओं से यहाँ की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। मैं बंगाल के लोगों को इन विकास परियोजनाओं की बधाई देता हूँ।
1: श्री मोदी ने प्रधानमंत्री किसान योजना की 23वीं किस्त के रूप में 18,880 करोड़ रुपए जारी किए। इससे देशभर के 9 करोड़ 44 लाख से अधिक किसानों को लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री कोलकाता में कल स्वदेश में निर्मित नौसेना

0: के तीन जहाजों आईएनएस दोनागिरी, आईएनएस संशोधक और आईएनएस अग्रय का अनावरण करेंगे। इन पोतों में 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है। इनके निर्माण में 200 से अधिक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों ने योगदान दिया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल दुनिया भर में मनाया जाएगा। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय है बढ़ती उम्र के प्रभाव को रोकने के लिए योग। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य कार्यक्रम पश्चिम बंगाल के कोलकाता में ऐतिहासिक रेड रोड पर आयोजित किया जाएगा। प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम में सामान्य योगाभ्यास के दौरान राष्ट्र का नेतृत्व करेंगे। ये राष्ट्रीय कार्यक्रम सुबह 5 बजे से शुरू होगा। सरकार ने जनहित में 16 फिक्स डोज कॉम्बिनेशन एफडीसी दवाओं के उत्पादन, बिक्री और वितरण पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर विशेषज्ञ समिति की समीक्षा के बाद यह फैसला लिया गया। समिति ने पाया कि इन दवाओं के संयोजन का पर्याप्त चिकित्सीय औचित्य नहीं है और इनके उपयोग से स्वास्थ्य संबंधी जोखिम हो सकते हैं। भारत सोमवार से शुरू हो रही 2 दिवसीय ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल करेंगे। बैठक में नई तकनीक से जुड़े सुरक्षा खतरों और आतंकवाद से निपटने के उपायों पर भी चर्चा होगी। कैलाश मानसरोवर यात्रा पर गए तीर्थयात्रियों का पहला जत्था आज नाथूला दर्रे से होते हुए चीन में प्रवेश कर गया। जत्थे में 2 संपर्क अधिकारियों और 1 चिकित्सा अधिकारी सहित 41 तीर्थयात्री और 4 सहायक कर्मचारी शामिल हैं, जिससे इस दल की कुल संख्या 47 हो गई है। चेन्नई में तीसरे और अंतिम एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान ने भारत को 219 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 16वें ओवर में बिना किसी नुकसान के 123 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। President Draupadi Murmu today lauded Prime Minister Narendra Modi's leadership, stating that he has significantly enhanced India's prestige and influence on the global stage through his visionary governance and constructive engagement with world leaders. Addressing a large public gathering at Rai Rangpur in Odisha's Mayurbhanj district, organized to mark the completion of 2 years of the Mohan Charan Majhi government, in presence of Mr. Modi, the President said, India has consistently emerged as a voice of peace, dialogue and cooperation under Prime Minister Modi's stewardship. Addressing the public gathering, Prime Minister Narendra Modi lauded Odisha's progress as the state completed 2 years under Chief Minister Mohan Charan Majhi, saying it is moving rapidly on the path of development and contributing significantly to the growth of eastern India.
2: Odisha mein aarthik gatividhiyan, nivesh aur udyogon ko aakarshit karne ka samarthya aaj nazar aa raha hai. Kendra sarkar ka vision hai पूर्वी भारत के विकास से भारत का विकास, इसलिए हम पूर्वोदय की नीति पर काम कर रहे हैं। जिस पूर्वी भारत को कांग्रेस के दौर में पिछड़ेपन का पर्याय बना दिया गया था, आज वो प्रगति का प्रवेश द्वार बन रहा है।
1: The Prime Minister today inaugurated and laid the foundation stones for development projects worth around 47,000 crore rupees across multiple sectors. Later, the PM arrived in West Bengal for a 2-day visit. He took part in Paschim Banga Divas celebrations at Tarkeshwar in Hooghly district. He also released the 23rd installment of PM Kisan scheme worth 18,880 crore rupees, benefiting over 9.44 crore farmers across the country. Mr. Modi participated in a grand function to celebrate the State Day along with Chief Minister Suvendu Adhikari. He launched, dedicated and laid foundation stones for various development projects across railways, agriculture, rural development, fisheries and animal husbandry sectors. Speaking on the occasion, Prime Minister Modi said the BJP government has started working at super fast pace for Bengal's development. He expressed hope that this historic Paschim Banga Divas inspired development of West Bengal. Prime Minister Narendra Modi will lead the nation to celebrate International Yoga Day 2026 tomorrow at Red Road in Kolkata. Thousands of yoga enthusiasts will participate, while millions of citizens are expected

0: to join virtually from across India and abroad. The event will reaffirm yoga's growing role as a global movement promoting health, harmony and collective well-being. This year marks the 12th International Day of Yoga with the theme Yoga for Healthy Aging, which highlights the importance of adopting yoga as a lifelong practice for healthy, active and dignified aging. Prime Minister Narendra Modi will commission three indigenously built Indian Navy platforms, INS Dunagiri, INS Sanshodhak and INS Agre in Kolkata tomorrow. Designed by the Navy's Warship Design Bureau and built by Garden Reach shipbuilders and engineers, the vessels are intended to strengthen combat operations, hydrographic surveying and anti-submarine warfare. The government has notified the expansion of central drugs laboratory functions at Chaudhary Charan Singh National Institute of Animal Health in Baghpat, Uttar Pradesh for veterinary vaccine testing. With the latest notification, the scope of testing at the institute has been substantially expanded from testing two vaccines to now test 42 veterinary vaccines. The ministry said that the notification will further strengthen the regulatory framework for ensuring the quality, safety and efficacy of veterinary vaccines. The first batch of pilgrims undertaking the Kailash Mansarovar Yatra 2026 crossed into China through the Nathula Pass today, marking the commencement of their onward journey. Governor of Sikkim Om Prakash Mathur flagged off the batch in the presence of Minister of Tourism Shering Thendu Bhutia. According to the schedule, the pilgrims are expected to reach Gyangde today. The Mansarovar Parikrama is slated for 27 June and the first batch is scheduled to return to Gangtok on 1st of next month. In cricket, Afghanistan has set a target of 219 runs for India in the third and final ODI in Chennai. In reply, India were 132 for no loss in 17 overs when reports last came in. And that is the end of this news bulletin.
1: आकाशवाणी का यात्रा केंद्र है मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज़ और न्यूज़ ऑन एयर मोबाइल ऐप पर। शाम के 7:10 हुए हैं। समय है विविधा कार्यक्रम का। विविधा कार्यक्रम में आइए सुनते हैं वार्ता, योग और आसन नियमित करें पाचन। वार्ताकार हैं सत्य प्रकाश शर्मा।
2: नियमित योगासन और संतुलित रखे पाचन। पाचन एक्चुअली है क्या, वो चीज थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। पहले आयुर्वेद के अनुसार पाचन शारीरिक स्वास्थ्य का मूल आधार है। पाचन वह प्रक्रिया है जो भोजन को पचाकर शरीर के लिए पोषक तत्व और ऊर्जा प्रदान करती है। पाचन की प्रक्रिया को संतुलित रखना अति महत्वपूर्ण है क्योंकि असंतुलित पाचन रोगों का कारण बन सकता है। पाचन की प्रक्रिया मुख्य रूप से पाचन तंत्र में होती है जिसमें मुंह, ग्रास नली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, अग्नाशय शामिल हैं। और पाचन दो प्रकार से होता है, यांत्रिक पाचन। यांत्रिक पाचन में भोजन को चबाने और पेट में मंथन द्वारा भौतिक रूप से छोटे टुकड़ों में तोड़ना होता है। और एक दूसरा होता है रासायनिक पाचन। रासायनिक पाचन एंजाइम और पाचक रसों की मदद से भोजन के जटिल अणुओं को सरल अणुओं में तोड़ना होता है। थोड़ा समझते हैं कि पाचन की प्रक्रिया एक्चुअली होती कैसे है। हमारा खाना जो है मुंह से ही पाचन प्रक्रिया शुरू हो जाती है। मुंह में खाना हमें धीरे धीरे और चबा चबा कर खाना चाहिए। लार में मौजूद एंजाइम कार्बोहाइड्रेट्स को तोड़ना शुरू करते हैं। फिर खाना आमाशय स्टमक में पहुंचता है, उससे गैस्ट्रिक जूस प्रोटीन को तोड़ते हैं और भोजन को कीमा में बदलते हैं। उसके बाद छोटी आंत में अग्नाशय रस और पित्तरस भोजन को और अधिक तोड़ते हैं तथा पोषक तत्वों का अवशोषण होता है। बड़ी आंतों में पानी का अवशोषण होता है और बचे हुए अपशिष्ट को मल के रूप में बाहर निकाला जाता है। तो इस तरह से जो पाचन प्रक्रिया है उसका अंतिम उद्देश्य है कि भोजन से हम पोषक तत्व प्राप्त करें और जो अपशिष्ट है उसको शरीर से बाहर निकाल। अब थोड़ा सा समझते हैं कि पाचन तंत्र को स्वस्थ रखने के लिए हम क्या उपाय कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले है हमारा आहार। आहार हम जो भी खाएं धीरे धीरे खाएं और खाने में हम अपने आहार में ताजा, स्वास्थ्यिक और ऋतु अनुसार आहार लें और संतुलित आहार लें। संतुलित आहार में जैसे फाइबर युक्त भोजन जिसमें साबुत अनाज, फल, सब्जियां, ऐसी चीजें खाएं जिससे कि कब्ज से बचने और आंतों को स्वस्थ रखने में सहायता मिले। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और स्वस्थ वसा जैसे नट्स, एवोकाडो और जैतून का तेल संतुलित मात्रा में इसका सेवन करें। प्रोबायोटिक्स हैं जैसे दही, छाछ लें जिससे कि आंतों में अच्छे बैक्टीरियाओं का बढ़ावा हो। और पर्याप्त पानी पिएं। पानी हम कम पीते हैं।

0: हैं तो पानी हमें ज्यादा से ज्यादा पीना चाहिए, कम से कम 8-10 गिलास पानी रोज पीना चाहिए। पानी पीने से पाचन सुचारू रहता है और कब्ज की समस्या कम होती है। और भोजन नियमित करें, छोटे छोटे और नियमित अंतराल पर भोजन करें, एक साथ ज्यादा खाने से बचें, और रात का खाना सोने से कम 2-3 घंटे पहले खा लें ताकि भोजन को पचने के लिए पर्याप्त समय मिल सके। और जंक फूड, तला भुना, ज्यादा मसालेदार और प्रोसेस्ड फूड खाने से बचें, इससे पाचन को धीमा कर सकता है इस तरह का आहार, और जिससे एसिडिटी और गैस की समस्या हो सकती है। व्यायाम करें, कम से कम आधा घंटा तेज चलना, साइकिलिंग, योग, इस तरह के हम शारीरिक व्यायाम कर सकते हैं। तनाव से बचें, तनाव पाचन पर बुरा असर डालता है। जो लोग तनाव में रहते हैं उनका पाचन तंत्र खराब ही रहता है, ठीक नहीं रहता। नींद पूरी लें, दिन में कम से कम 24 घंटे में हमें 7-8 घंटे की नींद लेनी चाहिए। अगर नींद की कमी होती है, नींद पूरी नहीं होती है, तो उससे भी हमारे पाचन पर बुरा प्रभाव पड़ता है। और हानिकारक पदार्थों से बचें, उनका सेवन न करें, जैसे धूम्रपान है और अत्यधिक शराब है, इस तरह के आहार से बचें। पाचन में सहायक खाद्य पदार्थों का सेवन ज्यादा करें, जैसे अदरक है, सौंफ है, हींग, जीरा आदि जो हमारे पारंपरिक मसाले हैं, उनका सेवन करें, इससे हमारा पाचन ठीक रहता है। और अगर ऐसी कोई समस्या लगे तो हमें नियमित जांच कराती रहनी चाहिए स्वास्थ्य की, स्पेशली जब पेट संबंधित कोई विकार हो तो उसकी हमें जांच अवश्य करा लेनी चाहिए। तो ये कुछ उपाय हैं जिनसे हम अपने पाचन तंत्र को स्वस्थ और ठीक रख सकते हैं। पाचन तंत्र को स्वस्थ और बेहतर रखने के लिए कुछ योगासनों का नियमित अभ्यास बहुत कारगर हो सकता है। ये आसन आंतों की गतिशीलता को बढ़ाते हैं, पाचन रसों के स्राव को प्रोत्साहित करते हैं और तनाव को कम करके पाचन को सुधारते हैं। लेकिन योगासन करते समय ये ध्यान रखना है कि योगासन की हमें शुरुआत किसी प्रशिक्षित योग शिक्षक की देख रेख में ही करनी चाहिए। ये कुछ योगासन और प्राणायाम हैं जिनके नियमित अभ्यास से पाचन तंत्र मजबूत होता है, अपच, गैस, कब्ज जैसी समस्याएं कम होती हैं और समग्र स्वास्थ्य में सुधार होता है। योगाभ्यास हमें कोशिश करनी चाहिए कि सुबह खाली पेट या खाने के 3-4 घंटे बाद ही करें। और यदि कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या है, जैसे हर्निया या अल्सर या पेट का कोई ऑपरेशन हुआ हो, तो योग करने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह अवश्य ले लेनी चाहिए। कुछ योगासन हैं जो कि अपने पाचन तंत्र को स्वस्थ रखने में सहायक होते हैं। इनमें से कुछ योगासन हैं जिनका मैं आपको वर्णन करता हूँ और उनके करने से क्या लाभ हैं वो भी बताऊंगा साथ में। सबसे पहले है पवन मुक्तासन, इसको इंग्लिश में विंड रिलीविंग पोज भी कहते हैं, और इसको करने से आंतों में जमा गैस निकालने में सहायक होती है, कब्ज और अपच से छुटकारा मिलता है। वज्रासन, वज्रासन ही एक ऐसा आसन है जिसको कि हम खाने के बाद भी कर सकते हैं और हमें खाने के बाद करना भी चाहिए। वज्रासन को करने से भोजन के पाचन में सुधार और पेट में मांसपेशियां मजबूत होती हैं। वज्रासन को हम खाने के जस्ट बाद 10-15 मिनट तक कर सकते हैं। तीसरा है भुजंगासन, ये मालिश करता है भुजंगासन, और पाचन रसों के स्राव को बढ़ाता है जिससे कि भोजन को पचाने में आसानी होती है। चौथा है पश्चिमोत्तानासन, जिसको सीटेड फॉरवर्ड बेंड बोलते हैं, इससे पेट के अंगों को उत्तेजित करने में सहायता मिलती है जिससे कब्ज और अपच में लाभ मिलता है। ताड़ासन या माउंटेन पोज, इससे रक्त संचार बेहतर होता है जो कि पाचन क्रिया को सहायता देता है। फिर त्रिकोणासन, जिसको ट्रायंगल पोज भी बोलते हैं, इसको करने से पाचन अंगों को उत्तेजित कर आंतों की गतिशीलता को बढ़ाता है, त्रिकोणासन। और सातवां है नौकासन, या जिसको बोट पोज बोलते हैं, बोट पोज को करने से पेट की मांसपेशियों को मजबूती मिलती है और इससे पाचन को बढ़ावा मिलता है। कुछ प्राणायाम भी हैं जो कि पाचन तंत्र को स्वस्थ रखने में सहायक होते हैं। इसमें मेनली जैसे कपाल भाति क्रिया है, अनुलोम विलोम प्राणायाम है, भस्त्रिका प्राणायाम है, ये ऐसे कुछ प्राणायाम हैं जिनसे कि अपने पाचन तंत्र को बेहतर स्वस्थ रखा जाता है। योगासन और प्राणायाम से केवल पाचन तंत्र नहीं, हमारा इससे तनाव को कम करने में सहायता मिलती है जिससे कि पाचन तंत्र बेहतर बनता है। तो इस तरह योगासन से और नियमित अभ्यास से अपने पाचन तंत्र संतुलित रख सकते हैं।
1: विविधा कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे वार्ता, योग और आसन नियमित करें पाचन। वार्ताकार थे सत्य प्रकाश शर्मा।

श्रोताओं, सब कुछ खोने से बुरा होता है उस उम्मीद को खो देना जिसके सहारे आप सब कुछ पा सकते हैं। तो अपनी उम्मीद हमेशा कायम रखें। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हमारे लखनऊ केंद्र से प्रादेशिक समाचार। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: भरोसे वाला भी हो।
1: PLI है ना?
2: सरकारी कर्मचारी के साथ साथ सभी प्रोफेशनल, ग्रेजुएट और डिप्लोमा होल्डर्स ले सकते हैं PLI पॉलिसी का फायदा और साथ में पोस्टल डिपार्टमेंट का भरोसा भी। अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से आज ही संपर्क करें या लॉग इन करें indiapost.gov.in पर।
3: आकाशवाणी लखनऊ से प्रादेशिक समाचार।

0: पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जारी की किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त। प्रदेश के 2 करोड़ से अधिक किसान हुए लाभान्वित। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जताया आभार। मुख्यमंत्री ने ललितपुर में राजकीय मेडिकल कॉलेज सहित 221 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, बुंदेलखंड में बनेगा प्रदेश का पहला फार्मा पार्क। नीट यूजी की पुनर्परीक्षा कल देश के 551 शहरों में होगी आयोजित। प्रदेश में अभ्यर्थियों को राज्य परिवहन निगम की बसों में किरायों में मिलेगी 50% की छूट। और प्रदेश में जनगणना 2027 के पहले चरण के अंतर्गत मकान सूचीकरण का कार्य पूरा। दूसरा चरण अगले वर्ष 9 फरवरी से 28 फरवरी के बीच होगा संपन्न। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मुक्ता शर्मा। समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंगाल के हुगली में तारकेश्वर से पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किस्त जारी की। इसके अंतर्गत 9 करोड़ से अधिक किसानों के खातों में डीबीटी के माध्यम से लगभग 19,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि हस्तांतरित की गई। इनमें उत्तर प्रदेश के 2 करोड़ से अधिक किसान लाभान्वित हुए हैं, जिनके खातों में 4,352 करोड़ रुपए की राशि पहुंची है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने देशभर के किसानों को वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया।
1: आज पीएम किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त भी जारी की गई है। देश भर के 9 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में लगभग 19,000 करोड़ रुपए सीधे भेजे गए हैं। मैं देश के सभी लाभार्थी मेरे किसान परिवारों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं।
0: प्रदेश भर में प्रधानमंत्री के कार्यक्रम का सजीव प्रसारण देखा गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने झांसी से इस कार्यक्रम में सहभागिता की। श्री योगी ने प्रदेश के किसानों की ओर से इस सौगात के लिए प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह राशि केवल आर्थिक सहायता नहीं है, बल्कि अन्नदाता के परिश्रम, सम्मान और समृद्धि के प्रति सरकार की अटूट प्रतिबद्धता का सशक्त प्रतीक है। प्रदेश के किसानों ने खुशी व्यक्त करते हुए इसके लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया। जौनपुर के एक लाभार्थी ने कहा,
2: किसानों को बहुत फायदा मिलता है।

0: बीज लेने के लिए, खाद लेने के लिए, जुताई देने के लिए काम आ जाता है। उसके लिए हम प्रधानमंत्री के आभारी हैं। जैसे छोटे मोटे किसान हैं, उनको फायदा हो जाता है, इससे किसानों को आसान हो जाता है।
1: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज ललितपुर में 1,766 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित राजकीय मेडिकल कॉलेज सहित 221 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बुंदेलखंड विकास का एक मॉडल बन रहा है। उन्होंने कहा कि हर घर नल योजना बुंदेलखंड में साकार हो रही है, शुद्ध पेयजल लोगों के घरों तक पहुंचाया जा रहा है।
2: अब मुझे अच्छा लगता है कि हमारी बहन और बेटियां, हमारी माताएं सिर में घड़ा लेकर के नहीं, हर घर नल की योजना साकार हो रही है। बुंदेलखंड के अंदर शुद्ध पेयजल उनके घर तक पहुंचाने का काम हो रहा है, तो बुंदेलखंड अब एक मॉडल बन रहा है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल सिटी अगर हम कहीं बसाने जा रहे हैं, तो वह भी बुंदेलखंड में बसाने जा रहे हैं।
1: श्री योगी ने कहा कि ललितपुर में प्रदेश का पहला फार्मा पार्क विकसित किया जा रहा है।
2: आज ललितपुर बदल चुका है, अब ललितपुर के पास अपना मेडिकल कॉलेज भी है, अटल आवासीय विद्यालय भी है, और अभी 1,500 एकड़ क्षेत्रफल में हम उत्तर प्रदेश का पहला फार्मा पार्क आपके ललितपुर जनपद में बनाने जा रहे हैं।
1: मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी की पुनर्परीक्षा कल भारत के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में आयोजित की जाएगी, जिसमें 22,69,000 से अधिक अभ्यर्थी शामिल होंगे। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक होगी। अभ्यर्थियों को इस बार परीक्षा में 15 मिनट का अतिरिक्त समय दिया गया है। इससे पहले 3 मई को हुई नीट की परीक्षा कथित पेपर लीक विवाद के कारण रद्द कर दी गई थी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने परीक्षा को निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और नकल विहीन ढंग से कराने के लिए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। सभी केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरों से हर गतिविधि पर नजर रखी जाएगी। केंद्रों पर मजिस्ट्रेटों की तैनाती के साथ पर्याप्त सुरक्षा बल तैनात किया गया है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी नीट यूजी 2026 पुनर्परीक्षा की तैयारियों के अंतर्गत आज देश भर में मॉक ड्रिल कर रही है। प्रदेश में 59 जिलों में नीट की पुनर्परीक्षा होगी। अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश रेलवे लखनऊ मंडल विशेष अनारक्षित स्पेशल रेलगाड़ियां चला रहा है। वहीं प्रवेश पत्र दिखाने पर अभ्यर्थियों को राज्य परिवहन निगम की बसों में किराए में 50% की छूट मिलेगी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल दुनिया भर में मनाया जाएगा। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय है स्वस्थ आयु के लिए योग। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य समारोह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर आयोजित किया जाएगा। प्रदेश में भी योग के दिवस के अवसर पर सभी जनपदों में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। एक रिपोर्ट।
3: प्रदेश में सभी जनपदों में योग दिवस के अवसर पर कल योगाभ्यास के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ झांसी में, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य प्रयागराज और ब्रजेश पाठक लखनऊ में योग दिवस पे होने वाले कार्यक्रमों में शामिल होंगे। वहीं लखनऊ स्थित राजन भवन में इस अवसर पर महिला योग सत्र आयोजित किया जाएगा, जिसमें राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के नेतृत्व में महिलाएं योगासन, प्राणायाम और ध्यान का अभ्यास करेंगी। इसी तरह विभिन्न जनपदों में प्रदेश सरकार के मंत्री और जनप्रतिनिधि योग दिवस पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में शामिल होंगे। योग दिवस पर विद्यालयों में सामूहिक योगाभ्यास और योग से जुड़े जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जहां विद्यार्थियों को योग के शारीरिक और आध्यात्मिक लाभों के बारे में जानकारी दी जाएगी। समाचार कक्ष से सुषमा कुकरेती।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। और अब शेष समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्षों की उपलब्धियों और समावेशी विकास की यात्रा को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से प्रदेश में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज झांसी में विकसित भारत संकल्प सम्मेलन कार्यक्रम में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने कहा कि गुलामी की मानसिकता को लेकर कोई समाज स्वावलंबी नहीं हो सकता। आत्मनिर्भर नहीं हो सकता। आत्मनिर्भरता के लिए गुलामी की मानसिकता को दूर कर अपनी विरासत के प्रति गौरवान्वित होना चाहिए। मेरठ की ग्राम पंचायत फफुंडा स्थित प्राथमिक विद्यालय में रात्रि चौपाल का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में प्रदेश

0: कार के राज्य मंत्री डॉक्टर सोमेन्द्र तोमर ने ग्रामीणों से संवाद करते हुए कहा कि आज प्रदेश विकास, निवेश और आधारभूत संरचना के क्षेत्र में नई पहचान बना रहा है।
1: सरकार आपके द्वारा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा हमेशा प्रयास यही है कि सरकार अपने जो सम्मानित नागरिक है उनसे संवाद करके उन सुझावों के साथ हम लोग प्रदेश और देश के विकास में उनकी सहभागिता हो। आज भी हम लोगों ने यहाँ पर जो स्टॉल्स के माध्यम से जो जिले के अलग अलग विभाग है उनकी सबकी स्टॉल्स लगी और यहाँ पर जो उनके सुझाव है, यदि कोई पेंशन के लिए था तो उसका भी रजिस्ट्रेशन हुआ है, लेकिन हमारी स्वयं सहायता समूह 32 स्वयं सहायता समूह इस गांव के अंदर है, उसकी जो मातृशक्ति का योगदान हमारे इस गांव के लिए, इस मेरठ के लिए हो रहा है, उसका भी मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आकाशवाणी समाचार एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज हम सशक्त भारत के संकल्प को साकार करने वाली सरकार की परिवर्तनकारी पहलों की जानकारी दे रहे हैं।
2: पिछले 12 वर्षों में सरकार ने भारत के हाईटेक क्षेत्र में बड़ा बदलाव लाने का काम किया है। सशक्त भारत के दो महत्वपूर्ण आधार हैं, सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का विकास और स्पेस स्टार्टअप्स की तेजी से बढ़ती संख्या। सरकार की नीतियों और फैसलों से सेमीकंडक्टर क्षेत्र में सिर्फ योजनाएं ही नहीं बनी बल्कि अब निर्माण और डिजाइन से जुड़े कई इकाई भी काम कर रहे हैं। दिसंबर 2021 में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन शुरू किया गया, इसके लिए 76,000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया। साल 2026 में सरकार ने सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 शुरू किया, जिसके लिए 1,000 रुपए का प्रावधान किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य उद्योगों के सहयोग से शोध और प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करना, नई तकनीकों का विकास करना और भविष्य के लिए कुशल मानव संसाधन तैयार करना है। वहीं भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 ने निजी कंपनियों को अंतरिक्ष क्षेत्र में पूरी तरह काम करने की अनुमति दी है। इस नीति के बाद भारत में स्पेस स्टार्टअप्स की संख्या 2014 में केवल 1 से बढ़कर 400 से अधिक हो गई है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रदेश में जनगणना 2027 के पहले चरण के अंतर्गत मकान सूचीकरण और मकान जनगणना का काम 100% पूरा कर लिया गया है। पहले चरण में निर्धारित 22 मई से 20 जून 2026 तक घरों की गणना का कार्य सफलतापूर्वक संपन्न हो गया। राज्य के जनगणना कार्य निदेशालय के अनुसार प्रदेश के सभी 75 जिलों, 350 तहसीलों और 1,00,000 से अधिक गांवों में मकान सूचीकरण के लिए 5,00,000 से अधिक प्रगणकों और पर्यवेक्षकों ने सक्रिय भूमिका निभाई। जनगणना का दूसरा चरण 9 फरवरी से 28 फरवरी 2027 तक चलेगा, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति की गणना होगी। इसी चरण में जाति गणना की भी की जाएगी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जारी की किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त। प्रदेश के 2 करोड़ से अधिक किसान हुए लाभान्वित। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जताया आभार। मुख्यमंत्री ने ललितपुर में राजकीय मेडिकल कॉलेज सहित 221 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, बुंदेलखंड में बनेगा प्रदेश का पहला फार्मा पार्क। नीट यूजी की पुनर्परीक्षा कल देश के 551 शहरों में होगी आयोजित। प्रदेश भर में अभ्यर्थियों को राज्य परिवहन निगम की बसों में किराए में मिलेगी 50% की छूट। और प्रदेश में जनगणना 2027 के पहले चरण के अंतर्गत मकान सूचीकरण का कार्य पूरा। दूसरा चरण अगले वर्ष 9 फरवरी से 28 फरवरी के बीच होगा संपन्न। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
3: APJ अब्दुल कलाम का कथन है, लक्ष्य के प्रति एकाग्र समर्पण लक्ष्य को पाने का एकमात्र साधन है।
4: आकाशवाणी का यह आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज़ और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर। अब समय है कार्यक्रम मेरी माटी मेरा देश का। मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के अंतर्गत आज आप सुनेंगे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की पूर्व संध्या पर योग फॉर हेल्दी एजिंग विषय पर योगाचार्य डॉक्टर राजकुमार शर्मा से अनिंद्र सिंह की बातचीत।
5: ऐसा कहा जाता है कि तन सुखी तो मन सुखी, या कहें कि मन सुखी तो तन सुखी, दोनों ही एक दूसरे के पूरक नजर आते हैं। यहाँ तो स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है, ये भी कहा जाता है। और स्वस्थ रहने के लिए योग से बेहतर शायद कोई विधा प्राचीन जो हमारे ऋषि मुनियों ने हमें दी है, इससे बेहतर शायद कुछ भी नहीं। योग की चर्चा आज पूरी दुनिया

0: दुनिया में हो रही है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जैसे आयोजन जब होते हैं और पूरी दुनिया एक परिवार बनकर जब 21 जून को दिखाई देती है, तब हमें योग की महत्ता नज़र आती है। आज हम योग के एक ऐसे आयाम की चर्चा करने वाले हैं जिसकी चर्चा आज दुनिया भर में हो रही है। वृद्धावस्था हमारा सुखद हो, हेल्दी एजिंग, जिसकी बात आज हम करने वाले हैं इस कार्यक्रम में। और हमारे साथ इस पर बातचीत करने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं योगाचार्य और प्राकृतिक चिकित्सा विद हैं डॉक्टर राजकुमार शर्मा जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है, नमस्कार।
1: धन्यवाद, नमस्ते। हाँ
0: डॉक्टर साहब, हेल्दी एजिंग की चर्चा हर ओर आजकल सुनने देखने को मिलती है। मैं अपने श्रोताओं के लिए यही सबसे पहले आपसे पूछना चाहूँगा कि हेल्दी एजिंग के मायने हैं क्या?
1: सिंह साहब, जैसा आपने पूछा कि हेल्दी एजिंग अर्थ क्या, तो हेल्दी एजिंग का अर्थ है कि जैसे जैसे व्यक्ति वरिष्ठ होता जाता है, उम्र बढ़ती जाती है, उम्र बढ़ने के साथ उसके शरीर पे, उसके मन पे और उनके भावों पे परिवर्तन नजर आते हैं। और वो परिवर्तन सकारात्मक हो सकते हैं और नकारात्मक भी हो सकते हैं, लेकिन सामान्यतः परिवर्तन नकारात्मक देखने को मिलते हैं, क्योंकि समाज में जो चल रहा है उन सब जो परिणाम है वो ये होता है कि व्यक्ति नकारात्मक परिवर्तनों में पीड़ित रहता है, और वो नकारात्मक परिवर्तन व्यक्ति को विभिन्न प्रकार की बीमारियों से जकड़ लेते हैं। तो हेल्दी एजिंग का अर्थ है कि उम्र बढ़ने के साथ साथ जो समस्याएं आती हैं उन समस्याओं से कैसे छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं, कैसे निजात पा सकते हैं, और योग का उसमें क्या रोल हो सकता है।
0: अब चूंकि उम्र ऐसी चीज है जिसको बढ़ती उम्र को रोक पाना तो संभव है नहीं, लेकिन वो स्वस्थ हो, गरिमामय हो, सक्रिय रहे, वो हम जरूर ऐसे उपाय कर सकते हैं। जब बड़े बुजुर्गों की या वरिष्ठ नागरिकों की बात आती है, तो आज के समय में अगर हम देखें तो उनके लिए योग की आवश्यकता को ज्यादा महसूस किया जा रहा है। आपको क्या लगता है?
1: हाँ बिल्कुल, देखिए ये जो हमारे व्यक्तित्व है, मानव व्यक्तित्व, वो भाव प्रधान है। जिस तरह का भाव शरीर में रहता है, मन में रहता है, चित्त में रहता है, व्यक्ति उसी तरह के परिवर्तन प्राप्त कर लेता है, अडप्ट कर लेता है। और भाव को परिवर्तित करने के लिए कोई दवाई नहीं है, कोई रेमेडी नहीं है दुनिया
0: बिल्कुल
1: में,
0: ठीक बात।
1: और भाव को परिवर्तन करने में योग का बड़ा महत्व है, क्योंकि भाव प्रधान होता है और भाव प्रधानता को योग के द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है। और न सिर्फ परिवर्तित किया जा सकता है बल्कि सकारात्मक परिवर्तन भाव के रूप में योग द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं। हाँ
0: अगर शारीरिक रूप से देखें और मानसिक रूप से भी देखें, इमोशनली भी आदमी अपने आप को बहुत सारे बदलावों से गुजरता है। शारीरिक तौर पे अगर देखें तो जोड़ों में, मांसपेशियों में शिथिलता आती है जैसे जैसे उम्र बढ़ती है। तो अगर मैं इस पक्ष की बात करूं जहां जोड़ों में, मांसपेशियों में, इन सब में शारीरिक तौर पे योग जो है वो किस तरह मदद करता है?
1: देखिए, आज आप देखेंगे कि हर व्यक्ति किसी न किसी प्रकार की बीमारी से पीड़ित है। कोई शरीर की बीमारी है और शरीर में बहुत प्रकार की बीमारियां हैं, मसल्स की बीमारियां हैं, हड्डियों की बीमारियां, आंखों की बीमारियां, कान की बीमारियां, हृदय की बीमारियां, लंग्स की बीमारियां, मूत्र संबंधित बीमारियां, तो बहुत प्रकार की बीमारियों से पीड़ित है व्यक्ति। अब जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, 40 साल के बाद सामान्य रूप से व्यक्ति के ज्वाइंट्स स्टिफ हो जाते हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है, डायबिटीज बढ़ने लगता है, हार्ट में प्रॉब्लम होने लगता है। ऐसी स्थिति में अगर योग अभ्यास आरंभ कर दिया जाए तो ये जो एजिंग प्रोसेस जिसको कहते हैं हम, कि वरिष्ठता प्राप्त करते हुए व्यक्ति विभिन्न बीमारियों का शिकार बनता है, उस परिस्थिति से हम अपने को निकाल सकते हैं, क्योंकि उस वक्त हमें जरूरत होती है हमारी मसल्स की स्टिफनेस को दूर करने की, हमारे ज्वाइंट्स की मोबिलिटी को बढ़ाए रखने की, हमारे ब्लड के सर्कुलेशन को ठीक ठाक बनाए रखने के लिए, मसल्स को मजबूत रखने की। तो ऐसी स्थिति में आसनों का जो अभ्यास है वो हमें बहुत मदद करता है। अगर आसनों का अभ्यास हम करें तो ये जो प्रॉब्लम्स हैं, फिजिकल प्रॉब्लम्स स्पेशली,
0: जी,
1: इनको हम दूर कर सकते हैं।
0: आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये बहुत ही कॉमन चीज़ें हैं जहाँ पे गठिया, कमर दर्द, गर्दन दर्द, ये सब समस्याएं बुढ़ापे में आम तौर पर सभी को फेस करनी पड़ती हैं। और भी बहुत सारी समस्याएं हैं जो बढ़ती उम्र में आती हैं। अब अगर मैं कहूँ कि जैसे आपने कहा कि योग उसमें मदद करता है, तो कौन कौन से वो आसन हैं? क्या सारे आसन बुढ़ापे में किए जा सकते हैं? नहीं, तो कौन से आसन हैं जो उनको मददगार हो सकते हैं?
1: हाँ, ये आपने बहुत बढ़िया बात पूछी कि कौन से आसन करें, क्योंकि हजारों प्रकार के आसन हैं और हजारों प्रकार के आसनों में कुछ एक आसन को चूज करना और परिस्थिति, व्यक्ति, उम्र, उसकी कैपेसिटीज हैं, उनकी जो क्षमता है, उनको ध्यान में रखते हुए उन आसनों का अभ्यास करना, उसके लिए पर्टिकुलर आसन चूज करना, तो ऐसे में मैं सजेस्ट करूंगा

0: अगर व्यक्ति 40 साल क्रॉस कर रहा है और उसको थोड़ी सी समस्याएं अब होने आरंभ हो गई हैं, तो स्ट्रेचिंग, जैसे ताड़ासन है, अर्धचक्रासन है, नटराज आसन है, त्रिकोणासन है, पश्चिमोत्तान आसन है, वक्रासन है, उष्ट्रासन है, ऐसे आसन जिसमें खिंचाव हो और खिंचाव के साथ ज्वाइंट्स की मोबिलिटी को जो इम्प्रूव कर सके, ऐसे आसनों का अभ्यास बहुत फायदेमंद रहता है।
1: माने आपके शरीर के जो जॉइंट्स हैं उनकी एक्सरसाइज थोड़ी हो जाए, उनमें मूवमेंट आ जाए,
0: यस, उनमें
1: वो
0: मूवमेंट आ
1: ऐसे
0: जाए
1: आपको व्यायाम या आसन,
0: करने से।
1: सूक्ष्म व्यायाम की बड़ी बात होती है, तो वो भी आप इन्हीं को ही कहेंगे सूक्ष्म
0: नहीं,
1: व्यायाम से क्या
0: सूक्ष्म
1: तात्पर्य?
0: व्यायाम का अर्थ है कि हम अपने जॉइंट्स में, जो छोटे छोटे जितने हमारे जॉइंट्स हैं,
1: जी
0: हमारी फिंगर्स में, रिस्ट में, एल्बोज में, शोल्डर में, वेस्ट में, घुटने में, टखने में, ये छोटे छोटे जॉइंट्स हैं, इन जॉइंट्स को रोटेशन देते हुए रोटेट करना है, फिर थोड़ा सा बेंडिंग देना है, इनको थोड़ा थोड़ा स्ट्रेचिंग देना है, इसको हम सूक्ष्म व्यायाम कहते हैं, कि जिससे हर छोटे बड़े जॉइंट्स को, मसल्स को प्रैक्टिस मिल जाए, जिससे उसमें ब्लड का सर्कुलेशन ठीक हो जाए और उन
1: स्टिफनेस खत्म हो जाए।
0: स्टिफनेस खत्म हो जाए।
1: ठीक बात। ये तो फिजिकल जो एस्पेक्ट है वो हो गया। हम अब आते हैं मानसिक स्वास्थ्य पे। मानसिक स्वास्थ्य के संदर्भ में भी योग की बड़ी भूमिका है, क्योंकि जो जैसे जैसे आदमी उम्रदराज होता है, उम्र बढ़ती है, उसमें चिंताएं और अकेलापन और जो भावनात्मक असुरक्षा जैसी स्थितियां हैं वो घर कर जाती हैं। तो उस स्थिति में, उस संदर्भ में, मानसिक स्वास्थ्य के संदर्भ में योग की क्या भूमिका आप देखते हैं?
0: ये भी बहुत बढ़िया प्रश्न आपने सर पूछा है कि मानसिक स्वास्थ्य। देखिए, 40 साल के बाद आप देखेंगे तो बच्चों, जनरली व्यक्ति जब 40 क्रॉस करता है तो उसके बच्चे पढ़ रहे होते हैं, हायर एजुकेशन ले रहे होते हैं, और उसको घर बनाना होता है, उसको बाकी परिवार करना होता है सेट। ऐसी स्थिति में बहुत प्रकार की चिंताओं के थ्रू वो व्यक्ति गुजरता है, और चिंताओं से गुजरते गुजरते, जैसा आप जानते हैं, कि साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। बहुत जब चिंता व्यक्ति करता है, तो चिंता जब बहुत ज्यादा होगी तो हमारे शरीर में हार्मोन्स के सीक्रेशंस उसी तरह के होंगे, और वो जो हार्मफुल हार्मोन्स हैं वो पैदा होंगे, और वो जब पैदा होंगे तो विभिन्न प्रकार की एंजाइटी, जिसको चिंताएं, फिक्र, तनाव कहते हैं, मानसिक एक उद्वेग कहते हैं, वो हो जाएगा, आदमी डिप्रेशन में आ जाएगा, इवन आगे चल के सिजोफ्रेनिक भी हो जाता है। तो जब ये चिंताएं, फिक्र होती हैं, एंजाइटी, डिप्रेशन और सिजोफ्रेनिक कंडीशंस का शिकार व्यक्ति होता है, तो उसको योग का अभ्यास आवश्यक हो जाता है, क्योंकि दवाई इसका कोई बहुत बड़ा सॉल्यूशन नहीं हो सकती जब तक खुद के, क्योंकि हम ये मानते हैं, योग में ये मानते हैं कि ये जो परेशानी है ना, वो शरीर के अंदर से पैदा हुई हुई है, तो शरीर के अंदर ही अगर हम परिवर्तन कर लेते हैं योगाभ्यास के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा, ध्यान के द्वारा, मुद्रा और बंधनों के द्वारा, तो बाहर से मेडिसिन लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी,
1: कांटे से ही कांटा
0: कांटे
1: निकलेगा।
0: से ही कांटा निकलेगा। जो चिंता फिक्र हुई वो शरीर के अंदर ही हुई ना, और अंदर ही उसने रोग पैदा कर दिए, तो इसको हम अपने अंदर ही परिवर्तन ला करके, अपने
1: उसका हल भी आपको अंदर ही तलाशना
0: अंदर
1: है।
0: ही तलाश रहे हैं। हम हर जनरली बाहर तलाशते हैं, और बाहर तलाशने के चक्कर में जिंदगी भर दवाई खाने के शिकार हो जाते हैं, और जिंदगी भर दवाई खाते हैं, और तो वो डिप्रेशन, एंजाइटी जो ठीक होता नहीं, नई प्रकार की बीमारियों को शिकार हो जाता है व्यक्ति। तो ऐसी स्थिति में ध्यान का अभ्यास, अनुलोम विलोम, कपालभाति, भ्रामरी का अभ्यास और ओम का अभ्यास व्यक्ति करे, तो उसको विभिन्न प्रकार की जो मानसिक बीमारियां हैं उनसे निजात मिल सकती है।
1: ध्यान, प्राणायाम और आपने जैसे कहा कि ओम का अभ्यास, तनाव कम हो जाएगा। लेकिन बहुत हद तक जो मुझे लगता है कि आदमी अगर सकारात्मक रहे तो सकारात्मक सोच विकसित करने में भी शायद योग की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है।
0: निश्चित रूप से। देखिए सर, योग अभ्यास जब हम करते हैं, तो योग का अभ्यास का मतलब यह है कि सिर्फ आसन नहीं, उसमें आसन के साथ प्राणायाम होता है, धारणा होता है, ध्यान होता है, मुद्रा होता है, बंध होता है, और ये कलेक्टिवली जब हम इन सब चीजों का अभ्यास करते हैं, तो जैसा मैंने बताया था कि हमारे व्यक्ति का व्यक्तित्व क्या है, शरीर को स्वस्थ रखना, मन को दुरुस्त रखना, सामाजिकता दुरुस्त रखना, और भाव प्रधान और सकारात्मक भाव रखना, ये चारों स्तर पर हमारा ये आसन, प्राणायाम, मुद्रा, बंध और ध्यान काम करता है, और जब शरीर के चारों स्तरों पर समन्वय पैदा हो जाता है, ट्रैंक्विलिटी पैदा हो जाती है, तो किसी भी प्रकार के रोग को ये प्रिवेंट भी कर सकते हैं और ये क्योर भी कर सकते हैं, इसलिए कलेक्टिवली सबका अभ्यास करना चाहिए।
1: ठीक बात। बुढ़ापे में जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो सबसे बड़ी समस्या आती है कि याददाश्त चली जाती है
0: बिल्कुल,
1: और जो मानसिक एक शिथिलता आ जाती है, तो क्या योग हमारी स्मरण शक्ति को या मानसिक सक्रियता को बढ़ाने में मददगार होता है?
0: बिल्कुल। देखिए, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, स्पेशली 50, 55, 60 के बाद, 60 के बाद लोगों को डिमेंशिया हो जाता है, स्मरण शक्ति उसकी बहुत कमजोर हो जाती है, और अक्सर ये वृद्ध लोग ये शिकायत करते हुए पाए जाते हैं, यार कि मैं भूल जाता हूँ, मुझे याद

0: नहीं रहा। मैंने चश्मा कहाँ रख दिया, मैंने चाबी कहाँ रख दी, मैंने पैसा कहाँ रख दिया, मैंने बाकी चीजें कहाँ रख दी, उनको भूलने की बीमारी हो जाती है। उसका कारण ये होता है कि उस वक्त एक तो हम मानसिक रूप से काम करना बंद कर देते हैं, लगभग हमें हमें लगता है कि अब हमें जरूरत नहीं है, तो हम अपने को उदासीन पाते हैं। तो हम छोटी छोटी जो समस्याएं या छोटी छोटी जो और चीजें पहेलियां हैं उनको सुलझाने में कोई किसी प्रकार का एंटिसिपेशन नहीं करते, किसी प्रकार का भाग नहीं लेते। इससे हमारा ब्रेन काम करना धीमे धीमे धीमे धीमे कम कर देता है। और ये ब्रेन की नेचर है कि अगर आपने ब्रेन से काम लेना बंद कर दिया तो ब्रेन काम नहीं करेगा,
1: शिथिल हो जाएगा।
0: शिथिल हो जाएगा। दूसरा, हम आसन प्राणायाम मुद्रा बंद जैसे अभ्यास नहीं करते, जिससे ब्लड में जो ऑक्सीजन की सप्लाई है और ब्रेन में जो स्पेशली ब्लड की और ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो मात्रा से कम हो जाती है। ऐसी स्थिति में अगर हम योग का अभ्यास करें तो ब्लड सप्लाई और ऑक्सीजन की सप्लाई ब्रेन में ज्यादा होगी। और अगर ऑक्सीजन की सप्लाई ब्लड में ज्यादा है और ब्रेन में ऑक्सीजन की सप्लाई पूरी हो रही है,
1: तो वो
0: तो
1: सक्रिय रहेगा।
0: डिमेंशिया जो स्मरण शक्ति है उसको बना के रखती है। अगर कम भी हो गई है तो उसको पुनः से प्राप्त किया जा सकता है।
1: अच्छा, एक चीज जो हम जो फिजिकल उसकी बात कर रहे थे कि जोड़ों में मांसपेशियों में मजबूती के लिए योग किस तरह मददगार होता है।
0: देखिए, 40 साल के बाद हार्मोन सीक्रेशंस कम हो जाते हैं। हमारे जो हार्मोन्स हैं, नौ एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं, उनके सीक्रेशंस कम हो जाते हैं। और जब सीक्रेशंस कम होते हैं, हमारी बॉडी को जिस तरह के, जिस क्वांटिटी में और जिस क्वालिटी के हार्मोन्स चाहिए, 40 साल के बाद सामान्य रूप से उन उन बॉडीज को उस तरह के हार्मोन्स नहीं मिल पाते जो कि सामान्य व्यक्ति योगाभ्यास या फिजिकल मूवमेंट नहीं करता। ऐसी स्थिति में जब हार्मोन्स के सीक्रेशंस कम हो गए हैं तो सबसे पहले असर पड़ेगा मसल्स पे, मसल्स कमजोर हो जाएंगे, मसल्स स्टिफ हो जाएंगे। और जब मसल्स स्टिफ होंगे तो इसका असर जाएगा आपके लिगामेंट पे, लिगामेंट के बाद असर जाएगा बोन पे, और लिगामेंट्स, बोन, मसल्स जब सब स्टिफ होंगे तो फिर पेन की स्थिति बन जाएगी।
1: सारे के सारे शरीर के जो अंग प्रत्यंग हैं वो आपस में एक समन्वय में कार्य करते
0: समन्वय
1: हैं,
0: में कार्य
1: और
0: करते
1: जब
0: हैं।
1: वो समन्वय कहीं गड़बड़ाता है तो सारे अंग प्रत्यंग जो है वो कहीं ना कहीं आपस में कोऑर्डिनेशन बिठा पाने में थोड़ी सी दिक्कत महसूस करते हैं, और
0: बिल्कुल
1: उसकी परिणति होती है कि हमें बहुत सारे जो रोग हैं वो नज़र आते हैं अपने इर्द गिर्द।
0: बिल्कुल
1: हम अपने श्रोताओं के साथ आपकी पसंद का एक गीत इस मुकाम पे सुनवाने का चेष्टा करेंगे, तो हमें बताएं कि आप की पसंद का एक गीत जो आप हमारे श्रोताओं को अभी सुनवाना चाहें।
0: मुझे वो पुराना गाना इनसे बड़ा अच्छा लगता है, कोई यूं ही मिल गया था सरे राह चलते चलते।
1: ओ हो, क्या बात है, क्या बात। कोई मिल गया था सारी राह चलते चलते।
0: हाँ, तो ये गाना मुझे बहुत पसंद है।
1: जी
0: अगर आप श्रोताओं को ये गाना सुनवाएं तो मुझे भी अच्छा लगेगा, पसंद आएगा। और मुझे लगता है ये इसमें जो संगीत है ना सिंह साहब,
1: जी
0: वो भाव विहोर कर देने वाला है।
1: तो
0: ये वो
1: आइए सुन
0: संगीत है जो
1: लेते हैं
0: हमारे,
1: आपकी पसंद का ये
0: बिल्कुल
1: गीत।

0: डॉक्टर साहब, फिर से वापस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। डॉक्टर साहब, आजकल का युग डिजिटल युग है, जहाँ पर जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं, बड़े बूढ़े हैं घर के, वो भी मोबाइल और इंटरनेट का उपयोग करते हैं। तो क्या योग जो है आज के डिजिटल दौर में, जो हमारे वरिष्ठ लोग हैं, उनको भी इसमें संतुलन स्थापित करने में मददगार होता है?
1: बिल्कुल सिंह साहब, ये आज की सबसे बड़ी समस्या है। डिजिटल जो एडिक्शन जिसको कहते हैं,
0: जी
1: मोबाइल का एडिक्शन है, मोबाइल का, कंप्यूटर का, लैपटॉप का, इसका उसका। और बड़े ही नहीं, इसमें सो 5 साल 3 साल के बच्चे से लेकर के 100 साल के बुजुर्ग सब लोग का इन्वॉल्वमेंट हो गया है।
0: नहीं,
1: और
0: युवा पीढ़ी और बच्चे तो हैं ही इसमें,
1: हाँ,
0: लेकिन आजकल तो जो है हमारे जो सीनियर सिटीजन्स हैं वो भी इससे अछूते नहीं है, क्योंकि समय की उस साथ चलना उनकी मजबूरी है। और जो आजकल की तकनीकी युक्त जो हमारा जीवन हो गया, जीवन शैली है, जिसमें तकनीक का बड़ा दखल है, तो ऐसे में उसको अवॉइड कर पाना तो बहुत मुश्किल है। जी
1: अवॉइड कर पाना मुश्किल है सिंह साहब, लेकिन इसको थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा। और समाधान इसका यह है कि हम व्यक्ति को दूसरे टारगेट्स उपलब्ध कराएं, दूसरे उद्देश्य उपलब्ध कराएं। अभी व्यक्ति के पास क्या है, जब वो खाली बैठता है तो उनको लगता है मोबाइल खोल लो, यूट्यूब खोल लो, इंस्टा खोल दो, फेसबुक खोल दो और उसे टाइम पास हो जाएगा, व्हाट्सएप से टाइम पास हो जाएगा। लेकिन अगर हम उसको समझाएं और बताएं व्यक्ति क्यों ये डिजिटल एडिक्शन क्यों हो गया है, व्यक्ति के अंदर कुछ समस्याएं, कुछ प्रश्न हैं और उन प्रश्नों के उत्तर खोजता है वो, उसको लगता है व्हाट्सएप पे कुछ मिल जाएगा, इंस्टा पे मिल जाएगा, फेसबुक पे मिल जाएगा, कुछ नया मिल जाएगा, कुछ अच्छा मिल जाएगा, जिंदगी बदल जाएगी, उसको ऐसा लगता है।
0: जी जी
1: और ऐसा

0: खोजते खोजते वो पूरे जिंदगी भर, पूरी वो साल, पूरे महीने, पूरे वीक, पूरे 24 घंटे वो बिजी रहता है इंस्टा फेसबुक पे। हाँ, मिलता कुछ नहीं है। अगर हम उसकी विवेक को जागृत कर पाए कि इंस्टा पे नहीं है, आपको जितने उत्तर हैं प्रश्नों के वो आपके अंदर से मिलेंगे, और आपके अंदर आपको झांकना पड़ेगा, उसके लिए आपको प्राणायाम का अभ्यास करना पड़ेगा, ध्यान का अभ्यास करना पड़ेगा,
1: और यही आपको योग जो है काम
0: और
1: आता
0: यही
1: है।
0: आपको योग काम करेगा। और एक बार जब योग क्लिक कर गया, उसको वो अपने अंदर कनेक्ट हो गया, तो वो जो आनंद आता है, जो उत्तर मिलते हैं दुनिया भर के प्रश्नों के, वो दुनिया में बाहर कहीं नहीं मिलते हैं।
1: और आपने बीच में बात की थी कि सामाजिक जो एक कनेक्टिविटी है, सोशल कनेक्ट, क्या योग व्यक्ति को खास तौर से वृद्धावस्था में सामाजिक रूप से भी सक्रिय रहने में मददगार होता है?
0: हाँ, निश्चित रूप से योग सामाजिक रूप से सक्रिय रहने में मददगार करता है। आप देखेंगे तो ये पाएंगे कि हर व्यक्ति अपने आप में तो ठीक है, लेकिन उसका झगड़ा अपनी बीवी के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ, पड़ोसियों के साथ, बॉस के साथ, सबॉर्डिनेट के साथ, बिजली के मैकेनिक के साथ होता है, सब्जी

0: सामाजिक रूप से सक्रिय रहने में मददगार करता है। आप देखेंगे तो ये पाएंगे कि हर व्यक्ति अपने आप में तो ठीक है, लेकिन उसका झगड़ा अपनी बीवी के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ, पड़ोसियों के साथ, बॉस के साथ, सबॉर्डिनेट के साथ, बिजली के मैकेनिक के साथ होता है, सब्जी वाले के साथ होता है, दूध वाले के साथ होता है, चाय वाले के साथ होता है। यानी सामाजिक जो तारतम्य है वो कहीं ना कहीं गड़बड़ाया हुआ है। समाज में उसकी बन नहीं रही है किसी से, उसकी बहुत सारी अपेक्षाएं वो पूरी नहीं होती, समाज की अपेक्षाएं उससे पूरी नहीं होती, उसकी अपेक्षाएं समाज से पूरी नहीं होती, और वहां द्वंद्व पैदा होता है और झगड़ा होता है समाज में और व्यक्ति में, और ऐसे में समाज भी पीड़ित है और व्यक्ति भी पीड़ित है, दोनों ही पीड़ित है।
1: बिल्कुल,
0: ऐसे में योग एक ऐसा माध्यम बन सकता है, एक ऐसा विज्ञान, एक ऐसी फिलॉसफी है जो दोनों के बीच में एक तारतम्य, एक ट्रैंक्विलिटी, एक संबंध स्थापित कर सकता है, सकारात्मक संबंध स्थापित कर सकता है, जो ये बताता है कि सामने वाले का दुख मेरा दुख है, सामने वाले की समस्या मेरी समस्या होनी चाहिए। वो सामने वाले को अगर समस्या से पीड़ित पाता है तो जनरली सामान्य रूप से लोग समझते हैं हमें क्या करना है, भाड़ में जाने दो, वो पीड़ित है तो पीड़ित रहने दो, वो उसको मदद नहीं करता है। जबकि हम मनुष्य के सामाजिक प्राणी है, जब तक हम एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे तो व्यक्ति का काम चलेगा नहीं। हम कितने बड़े भी सक्षम हो जाएं, कितने बड़े पैसे वाला हो जाएं, कितने बड़ी सुविधाएं प्राप्त कर लें, लेकिन अगर आपस में हमारा तारतम्य ठीक नहीं है, मानव मानव की मदद करने को तैयार नहीं है, तो सामाजिक जो ताना बाना है वो खराब होना ही है।
1: अगर दूसरे की कठिन परिस्थिति में आपको कहीं ना कहीं वो एहसास, दूसरे के सुख में वो खुशी, वो आपको अगर होती है तो आप सामाजिक रूप से कनेक्टेड हैं।
0: बिल्कुल।
1: नहीं है अगर, तो आप कहीं ना कहीं इस चीज को मिस कर रहे हैं और आपको संतुलन का बिठाने की जरूरत है।
0: और सिंह साहब एक बात और जोड़ूंगा, ये जो होता है ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की वजह से होता है। हमारी बॉडी के अंदर दो प्रकार के नर्वस सिस्टम है, एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है, एक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है वो हमारे भावों को, हमारे विचारों को प्रभावित करता है। उसके लिए दुनिया में कोई दवाई नहीं है, वो सिर्फ योग अभ्यास उसके लिए एक ऐसी दवाई है जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को कंट्रोल कर सकता है। यानी आप गलत नहीं सोचेंगे, आदमी गलत सोचता है तो उसके लिए कोई दवाई नहीं है कि खाओ और सही सोचो।
1: भावों पे नियंत्रण जो है,
0: भावों
1: पे
0: नियंत्रण
1: हो सकता है जब आपका अपनी श्वासों पे नियंत्रण हो।
0: हाँ, श्वासों पर नियंत्रण हो और आपके अंदर की चेतना पे आपका जब नियंत्रण हो जाएगा तो आप सकारात्मक सोचेंगे, अच्छा सोचेंगे, दुनिया का दुख आपको अपना दुख लगेगा, दुनिया का सुख अपना सुख लगेगा, वहां आप सामाजिक ताने बाने में जुड़ जाएंगे।
1: एक चीज और होती है डॉक्टर साहब, जो मुझे लगता है, मैं आपकी भी राय जानना चाहूंगा, कि जब हम मिल बैठ के सामूहिक रूप से योग के सेशंस करते हैं तो ऐसे सत्रों में सिर्फ जो है आप कहें स्वास्थ्य लाभ हो रहा हो, ऐसा नहीं होता, बल्कि जो सामाजिक जुड़ाव है वो भी बढ़ता है।
0: बिल्कुल ठीक बात है। एक साथ जब करते हैं तो एक साथ सबकी चेतना, सबकी ऊर्जा, सबकी शक्ति एक साथ एक जैसे काम करती है, और जब एक जैसे काम करती है तो विचार भी एक जैसे आएंगे, बॉडी के अंदर चेंजेस भी एक जैसे होंगे और वो सकारात्मक होंगे, भाईचारा बढ़ेगा, वैमनस्यता खत्म होगी।
1: अब हम चूंकि अब वृद्धावस्था होती है तो लिमिटेशंस हो जाती हैं, हमारे बहुत सारे ऐसे काम हैं जो शायद हम चाह के भी नहीं कर सकते, तो क्या वो सावधानियां हैं, क्या वो बातें हैं कि अगर कोई वरिष्ठ व्यक्ति योग सत्र करता है तो उसको ध्यान में रखने की जरूरत होती है, उसको सावधानी बरतने की जरूरत है?
0: बिल्कुल, ये आपने बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा है। मैं आपको सबसे पहले सजेस्ट करूंगा कि टीवी और यूट्यूब देख के कभी योग न करें। ये सबसे खतरनाक बीमारी चल रही है आजकल, डिजिटल एडिक्शन का एक बड़ा कारण ये भी है कि YouTube पे ऐसे ऐसे लोग आ रहे हैं जिसकी एजुकेशन का कोई पैरामीटर वहां निर्धारित नहीं है। कोई भी आदमी अपने को कितना भी बड़ा योगी मानते हुए सो कॉल्ड योगी बन जाता है और वहां वो अपने विचार व्यक्त करने लगता है जिसकी कोई एजुकेशन नहीं है, अकाडमिक एजुकेशन नहीं है, और अकाडमिक एजुकेशन के बगैर जो लोग सिखा रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ नुकसान कर रहे हैं। इसलिए यूट्यूब देख करके, इंस्टा देख करके कभी भी योगाभ्यास नहीं करना।
1: सोशल मीडिया पे दूसरों को देख के आप अपनी क्षमताओं का आकलन, गलत आकलन ना करें।
0: यस, करेक्ट, बिल्कुल सही आपने कहा कि सोशल मीडिया के द्वारा अपना आकलन न करें। आप किसी एक्सपर्ट, किसी योग गुरु के पास जाएं, उससे व्यक्तिगत रूप से मिलें, अपनी परेशानियां, अपनी क्षमताएं, अपनी सीमाएं बताएं और उसके अनुसार वो आपको, आपके लिए एक प्लान देगा कि
1: वो उसको आप अपनी क्षमताएं, अपनी सीमाएं साझा करें और वो आपकी क्षमताएं, आपकी सीमाएं जो है वो देख के निर्धारित करके आपको उसके हिसाब से सही सलाह देगा।
0: निश्चित रूप से, बिल्कुल।
1: अब मान लीजिए कोई वरिष्ठ व्यक्ति है जिसके पास ज्यादा समय योग के लिए दे पाने के लिए नहीं है, और अगर मान लीजिए कि वो आधा घंटे, 45-50 मिनट ही अगर वो देना चाहता है, तो क्या वो चीजें हैं, क्या वो दिनचर्या है उसकी जिसमें योग जैसी विधा को शामिल कर सकता है और अपनी जो एजिंग प्रोसेस है उसको और हेल्दी कर सकता है?
0: हाँ, अगर व्यक्ति के पास, मैं कह रहा हूँ, 2 घंटे 3 घंटे नहीं है तो कोई बात नहीं, 30 मिनट है, 40 मिनट है, 30 से

0: 40 मिनट का शेड्यूल योगाभ्यास अगर करे वो, तो उसको पूरा हेल्दी एजिंग में बहुत मदद कर सकता है। और उसमें सुबह उठे, अपना थोड़ा बहुत नींबू पानी पिए और सुबह जो है जग करके बैठ जाए, थोड़ी कपालभाति करे, अनुलोम विलोम प्राणायाम करे, भ्रामरी करे, ओम गाए, और फिर खड़े होकर के सूक्ष्म व्यायाम कर ले, जिसमें रोटेशन है, कंधे का, गर्दन का, कमर का, घुटने का, एंगल्स का रोटेशन कर ले, थोड़ा हाथ चौड़े करके ट्विस्टिंग कर ले, स्ट्रेचिंग कर ले, और फिर लेट करके क्रोकोडाइल्स कर ले, पवन मुक्तासन कर ले, सेतु बंधासन कर ले, अर्धहलासन कर ले, फिर उल्टा लेट करके निरालंबासन, भुजंगासन, सर्पासन कर ले, और बैठ करके वक्रासन और पश्चिमोत्तान कर ले, खड़े होकर के ताड़ासन, वृक्षासन और चक्रासन कर ले, और ओम गा ले, थोड़ा शवासन का अभ्यास कर ले। ये पूरा शेड्यूल कुल मिलाकर के आधा घंटे से लेकर के 40 मिनट में हो जाता है। और अगर ये होता है तो आप ये मान के चलिए कि ये 20 आसनों के नाम मैंने बताए हैं, 4 प्राणायाम के नाम बताए हैं, और कपालभाति बताई है, और 1 शवासन का अभ्यास बताया है। ये लगभग 25 प्रक्रियाएं हैं। अगर इन 25 प्रक्रियाओं का अभ्यास व्यक्ति 30 से 40 मिनट रोज करता है तो निश्चित रूप से मान के चलिए कि उसको जीवन में किसी प्रकार की बीमारी भी नहीं होगी, शरीर और मन उसका स्वस्थ रहेगा। और हमारा इस साल का जो योगा फॉर हेल्दी एजिंग थीम है,
1: जी,
0: उस थीम को भी हम पूरी तरह से जस्टिफाई कर पाएंगे।
1: उम्र बढ़ना तो जीवन की एक स्वाभाविक
0: स्वाभाविक
1: प्रक्रिया
0: प्रक्रिया
1: है,
0: है, बिल्कुल।
1: लेकिन सक्रिय रहना वो आपका अपना निर्णय है। किस तरह से आप अपने दिनचर्या में नियमित योग और इनका पुट सम्मिलित करके अपने जीवन को स्वस्थ और आनंदमय बना सकते हैं। योग केवल आपके शारीरिक स्वास्थ्य को ही नहीं मेंटेन करता, वो आपके जीवन
2: मंत्री
1: में भी।
2: स्वतंत्र प्रभार आयुष विभाग डॉक्टर दयाशंकर मिश्र दयालु से डॉक्टर नगेंद्र सिंह रघुवंशी की बातचीत सुनिए।
3: हमारी भारतीय संस्कृति की समृद्ध परंपरा में हम यह पाते हैं कि जब कोई बड़ा हमें आशीर्वाद देता है तो यही कहता आयुष्मान भव। यह आयुष्मान भव की परंपरा हमारी पुरातन परंपरा में से एक है जो आज तक चली आ रही है। गुरुओं द्वारा देवी देवताओं की जब हम स्तुति करते हैं तब भी यही अपेक्षा करते हैं आयुष्मान भव का हमें आशीर्वाद मिले। और इसी आयुष शब्द से जो हमारे ऋषि महर्षि प्रतिपादित किए हैं एक स्वस्थ रहने की कला और स्वस्थ रहने की उपायों को जड़ी बूटियों के माध्यम से या उनके निकले हुए अर्क से हमें प्राप्त होते रहे हैं, और हम दीर्घायु होने के लिए जो कुछ प्रयत्न हो सकते हैं उस दिशा में आगे बढ़ते रहे हैं। लेकिन आयुष मंत्रालय भी अब भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया है। सौभाग्य की बात यह है कि आज हमारे बीच में माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार आयुष डॉक्टर दयाशंकर मिश्र दयालु जी हैं। और दयालु जी के बारे में आप लोग जितना जानते होंगे मंत्री के रूप में, उससे पीछे की थोड़ी सी बात हम करना चाहेंगे कि आप बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से पीएचडी डिग्री धारक हैं बॉटनी में। इस पीएचडी बॉटनी करते समय भी आपने आयुष के क्षेत्र में, यानी आयुर्वेद के रूप में कहें तो ज्यादा अच्छा होगा, उसमें काफी कुछ कार्य किया है, काफी उपलब्धियां रही हैं। प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान के प्रधानाचार्य के साथ साथ आप शिक्षा को प्रगति का मूल मानते हैं। शिक्षाविद के रूप में आपकी जो पहचान है उसे भी हम लोग बखूबी जानते समझते हैं। इसी बीच स्वागत करते हैं मंत्री साहब आपका, और हमारे लिए सौभाग्य की बात है और हमारे श्रोताओं के लिए कि आज हमारे बीच हैं, आपके शब्दों आपकी वाणी से हम दो चार होने की कोशिश के क्रम में आपसे जानना समझना चाहेंगे कि क्या स्थिति है आयुष की अपने प्रदेश में।
4: सबसे पहले तो बधाई देना चाहता हूँ इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, जिनका नारा है विरासत भी विकास भी।
3: जी,
4: आयुर्वेद हमारी विरासत है। आयुर्वेद ही नहीं बल्कि आयुष की जितनी भी विधाएं हैं ये सब बिखरे हुए थे। बिखरी हुई कड़ियों को जोड़कर उन्होंने आयुष के रूप में एक माला पिरोने का काम किया। 9 नवंबर 2014 को जब इस देश में पहली बार वो प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने आयुष के सारी विधाओं को, होम्योपैथ, आयुर्वेद, यूनानी, सिद्ध, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, इन सारी विधाओं को उन्होंने आयुष से जोड़ते हुए एक मंत्रालय का गठन किया। तो आपको पता है कि इस देश में पहली बार, चूंकि हृदय स्थल प्रदेश माना जाता है इस देश की, कहीं ना कहीं से आत्मा उत्तर प्रदेश में बसती है। भगवान राम, भगवान कृष्ण और शिव की नगरी उत्तर प्रदेश में ही है, जन्मस्थली है भगवान लोगों की। सौभाग्य है कि अगर उत्तर प्रदेश में जब हमारे योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तो 2017 से उसकी पारी आयुष की उत्तर प्रदेश में शुरू हुई, और तब से लेके ये पिछले 9 वर्षों की यात्रा है आयुष की उत्तर प्रदेश में, और 12 वर्षों की यात्रा है केंद्र में मंत्रालय बनने के बाद से। प्रधानमंत्री जी के प्रयासों से ही 21 जून को विश्व योग दिवस के रूप में संयुक्त राष्ट्र के 177 देशों ने इस विश्व योग दिवस को मान्यता प्रदान किया, और आज भारत की एक उस विधा को योगियों की, ऋषियों की, महर्षियों की

0: शिक्षा के अंतर्गत जो है लोग काम करते थे। इंडिपेंडेंट मिनिस्ट्री बनने के बाद से हमारे भी सपनों को पंख लगे और उत्तर प्रदेश में वर्तमान में 3959 से ज्यादा हॉस्पिटल हमारे पास है। 2111 अस्पताल हमारे आयुर्वेद के हैं, जिसमें 4 बेड के, 15 बेड के, 25 बेड के, 30 बेड के। और मंत्रालय बनने के बाद प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के सहयोग से, उत्तर प्रदेश के अब तक 16 जिला मुख्यालयों पर 50 बेड के इंटीग्रेटेड हॉस्पिटल बन चुके हैं, नए जो बन रहे। पुराना मैंने कहा कि 2111 अस्पताल पुराने आयुर्वेद के हैं, 1585 हॉस्पिटल पुराने होम्योपैथ के हैं, 258 हॉस्पिटल हमारे पास यूनानी के, जो पुराने अस्पताल हैं। जब से मंत्रालय बना तो फिर हमने उसको नए को, क्योंकि हमको अपनी जमीन पे ले जाना था अपने कैंपस, उत्तर प्रदेश के अब तक 16 जिला मुख्यालयों पर 50 बेड के इंटीग्रेटेड हॉस्पिटल बन चुके हैं, नए जो बन रहे। पुराना मैंने कहा कि 2111 अस्पताल पुराने आयुर्वेद के हैं, 1585 हॉस्पिटल पुराने होम्योपैथ के हैं, 258 हॉस्पिटल हमारे पास यूनानी के, जो पुराने अस्पताल हैं। जब से मंत्रालय बना तो फिर हमने उसको नए को, क्योंकि हमको अपनी जमीन पे ले जाना था अपने कैंपस में उसको शिफ्ट करना था, चाहे वो पीएससी में हो, सीएससी में हो, ग्राम समाज की जमीनों पर हो, किराए के भवन में हो, दान की जमीनों पर हो, तो वह जो परिवर्तन देश के प्रधानमंत्री जी का सपना है कि हम वेलनेस की बात करें, हम रोग और इलाज की तरफ न जाके हम व्यक्ति को निरोग और स्वस्थ रखने के लिए उसके वेलनेस की बात करते हैं, तब फिर सारी विधाएं मिल के काम कर रही हैं। अब इंटीग्रेशन पे काम हो रहा है। हमारे जितने मेडिकल कॉलेज थे, उत्तर प्रदेश में 19 राजकीय मेडिकल कॉलेज है, जिसमें 8 मेडिकल कॉलेज आयुर्वेद के हैं, 9 मेडिकल कॉलेज होम्योपैथ के हैं, 2 मेडिकल कॉलेज यूनानी के हैं, और 2 नए मेडिकल कॉलेज हमारे उत्तर प्रदेश में नए मिले हमको, बल्कि आप कहिए 3 मिले। एक आयुर्वेद का नया मेडिकल कॉलेज अयोध्या में बन के तैयार है, और एक बरेली में यूनानी का मेडिकल कॉलेज बन के तैयार है, जो माननीय मुख्यमंत्री जी के शिलान्यास की हम लोग समय मांग रहे हैं, जिस दिन मिलेगा वो ओपन हो जाएंगे। काशी में चूंकि पहले से आयुर्वेद का मेडिकल कॉलेज था, तो वहाँ एक होम्योपैथ का मेडिकल कॉलेज बन रहा, तो 21 मेडिकल कॉलेज मैंने आपसे बताया कि वो इंटीग्रेटेड अस्पताल 16 जिले के मुख्यालयों पर बन चुके हैं। 8 हमारे अस्पताल, जिसमें 4 इनॉग्रेट होने जा रहे हैं, शिलान्यास जिनका होने जा रहा है, 4 भी बहुत जल्दी वो भी मिल जाएंगे। तो हर वर्ष अब तक करीब 1000 से ज्यादा हम अपने पुराने अस्पतालों में, जैसे 4 बेड के जो हमारे अस्पताल हुआ करते थे, उनको आयुष वेलनेस सेंटर के रूप में परिवर्तित कर चुके हैं। 225 योग वेलनेस सेंटर अब तक हम नए भवन, नए परिसर में बना चुके हैं। और जगह की अपने मैंने कहा कि वो समस्या थी, तो अब बहुत सारी जमीनें जैसे जैसे मिलती जा रही हैं,
1: वैसे
0: हम अपने नए सेंटर्स बनाते जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में प्राकृतिक चिकित्सा का कोई अस्पताल नहीं था, तो काशी में प्राकृतिक चिकित्सा का एक सेंटर, वो भी मात्र 2 महीने बाद, मुझको लगता है कि वो भी शिलान्यास के लिए तैयार है। आयुष का विश्वविद्यालय नहीं था, विश्वविद्यालय न होने से हमारे पढ़ाई प्रभावित होती थी।
1: इस विश्वविद्यालय से क्या, जितने कॉलेजेस का आपने नाम लिया आयुष से जुड़े हुए हैं, इनकी संबद्धता भी उसी से हो गई है या फिर अलग अलग?
0: 19 राजकीय मेडिकल कॉलेज और 86 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, 105 मेडिकल कॉलेजों का एफिलिएशन वो हमारे विश्वविद्यालय से हो गया। अब उनकी परीक्षाएं, उनकी कापियों का जांचना, उनका रिजल्ट का बनना, सब कुछ विश्वविद्यालय के तहत हो गया, आयुष विश्वविद्यालय के साथ हो गया,
1: इंटीग्रेटेड हो गया एक जगह से,
0: सब एक जगह हो गया। और बहुत सारे डिग्री और डिप्लोमा के कोर्सेज भी विश्वविद्यालय ने शुरू कर दिया, पीजी शुरू कर दिया, यूजी की मान्यता मिल गई, अब यूजी भी शुरू हो जाएगा, तो एक फुल फ्लेज्ड काम करने वाला विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में आयुष का मिल चुका।
1: जब आपने विश्वविद्यालय की बात कर ही दी और उस पर हम आना चाह रहे थे, लेकिन आपने पहले बता दिया, और अच्छी बात है कि एक विश्वविद्यालय अब हो चुका है, तो फिर रिसर्च की भी संभावनाएं ज्यादा जगेंगी। और इस दिशा में कार्य करने के लिए अपना उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड से सटा होने के कारण काफी कुछ संसाधन ऐसे हैं, औषधीय पौधों के आधार पर वहां रिसर्च भी हो सकता है, नई नई जो दवाएं हो सकती हैं विकसित करने के, कहने को तो सीमैप भी है, सीडीआरआई भी है, लेकिन राज्य स्तर पर कुछ इसका प्रयास?
0: देखिए, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस वर्ष भी बजट में अपने 3 नए अय्या बोलते, इसके पहले अय्या दिल्ली में और अय्या जयपुर में, उन्होंने इसके पहले 2 अय्या और उद्घाटन कर दिया, एक गोवा में बन चुका है। तो आयुर्वेद के नए इंस्टीट्यूशन की स्थापना लगातार हो रही है, और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथ कलकत्ता में है, उसकी सब ब्रांच दिल्ली में खुल गई, उसकी एक सब ब्रांच लखनऊ में खुल गई, और एक केंद्रीय संस्थान आयुर्वेद का वो पहले से झांसी में काम कर रहा है आयुर्वेद का। हम सबका प्रयास ये है, अखिल भारतीय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी वो गाजियाबाद ने बन के काम करना शुरू कर दिया, तो हर विधा के शोध पर लगातार काम हो रहा है, और शोध के बगैर दुनिया आजकल प्रमाण चाहती है, लेकिन जिस विधा का जन्म वेदों से हुआ हो, अथर्ववेद की उपशाखा मानते हैं आयुर्वेद को, हम महर्षि सुश्रुत

0: से दुनिया ने कभी नहीं पूछा कि आपने जो पहली सर्जरी किया उसके पीछे आधार क्या था, उसके पीछे किस इंस्टीट्यूट का। तो उनको भी आज भी मॉडर्न मेडिसिन भी उनको फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी कहती है,
1: बिल्कुल।
0: महर्षि सुश्रुत को। वो भी उत्तर प्रदेश में काशी में जन्मे थे। चरक संहिता हो, सुश्रुत संहिता हो, और जितने भी, चाहे वो महर्षि नागार्जुन का काम हो, चाहे वो जितने भी लोगों ने इस विधा में काम किया है, उनके लिए उनकी शरीर ही प्रयोगशाला थी। समाज पे काम किया, वर्षों वर्षों की साधना के बाद, तपस्या के बाद। सिद्ध हमारा एक विषय है जिसके महर्षि अगस्त, उनकी भी जन्मस्थली उत्तर प्रदेश और काशी है। तो उस महर्षि अगस्त की एक विधा है सिद्ध
1: जी।
0: उस सिद्ध के बारे में यह है कि सिद्ध किसने इंट्रोड्यूस किया, तो सिद्ध सिद्धों ने, जो सिद्ध पुरुष थे, साधकों ने, वर्षों की तपस्या का ये परिणाम है। ये हमारे ऋषि मुनियों के जीवन की, वर्षों की साधना। योग क्या है? योग हमारे योगियों के अपने को स्वस्थ और निरोग रखने के, जो योग और आसन, ध्यान, इन सब का वो सहारा लेते थे, प्राणायाम, उसी योग को प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से मान्यता मिली,
1: मान्यता मिली है। और जन जन तक ये उसको पहुंचाने में आप लोगों का जो योगदान रहा है उसको भी भुलाया नहीं जा सकता है। अभी अब 21 जून की तारीख बिल्कुल सामने है हमारे, इसमें अगर योग की बात हम आगे बढ़ाना चाहें तो ये पूछना चाहेंगे आपसे कि इस बार ये कहा जा रहा है कि जो सरोवर हैं गांव-गांव में बने हुए, उस पर भी योग शिविर लगाए जाएंगे। जैसे वेलनेस सेंटर की बात आपने कही कि गांव-गांव तक पहुंच चुके हैं, तो ये अमृत सरोवरों पर ये है कि 21 तारीख को सब लोग योग करेंगे, इसकी क्या तैयारी शासन प्रशासन की तरफ से भी अलग से है
0: तो
1: क्या?
0: पूरा देश इसमें जुड़ जाता है, संसार जुड़ जाता है, दुनिया के 177 देश योग करते हैं। विश्व योग दिवस के दिन की भी विशेषता है कि वो 365 दिनों का सबसे लंबा दिन होता है, योग दिवस का 21 जून, और 21 जून को सारा संसार आपको योग करता दिखाई देता है। तो क्या नदी, क्या तालाब, क्या पोखर, क्या सरोवर, क्या नदियों का किनारा, क्या पौराणिक स्थल, क्या धार्मिक स्थल, जितने भी ऐतिहासिक, काशी में अगर वो होता है तो भगवान गौतम बुद्ध की उपदेश स्थली, भगवान गौतम बुद्ध को स्वरिप्पा का जनक माना जाता है, जो देश के पर्वतीय अंचलों में कश्मीर से लेकर लाहौल स्पीति घाटी से होते हुए हिमाचल होते हुए पूर्वोत्तर राज्यों तक एक विधा प्रचलित है जिसको स्वरिप्पा कहते हैं। उत्तर प्रदेश को एक और सम्मान अभी हुआ कि देश के प्रधानमंत्री जी ने काशी में तिब्बती विश्वविद्यालय है, उस विश्वविद्यालय में स्वरिप्पा का बहुत ही एडवांस हॉस्पिटल उन्होंने अभी देश को, उत्तर प्रदेश को दिया है। तो हर विधाएं अब मिल के समाज को स्वस्थ और निरोग बनाए रखने के लिए, मन को, शरीर को, आत्मा को खुश बनाए रखने के लिए, स्वस्थ बनाए रखने के लिए, अब उसकी सबसे बड़ी ताकत योगा है, और योग कहीं भी किया जा सकता है। और ये जो नदियों का आह्वान है, पौराणिक स्थलों का आह्वान है, ऐतिहासिक स्थलों का आह्वान है, शहर के पार्कों में है, गांव के मंदिरों पर है, तो जहां व्यक्ति एकत्र हो सके, जहां उसको बैठना, जहां नेचर हो, जहां प्रकृति हो, शुद्ध सुबह की हवा मिले उसको, तब उसकी प्राणवायु जब उसको मिलेगी तो उसकी ऊर्जा बढ़ेगी और वह स्वस्थ मन से, अच्छे मन से योग करेगा। और एक दिन का योग नहीं, ये तो प्रधानमंत्री जी का आह्वान है। अब जैसे सप्ताहव्यापी, इसके पहले हम लोग एक महीने का शेड्यूल बनाते थे, 15 दिन का शेड्यूल बनाते थे। तो योग को अपने जीवन शैली में शामिल करना है, योग को अपनाना है। योग सिर्फ एक दिन करने से कोई व्यक्ति स्वस्थ निरोग नहीं होगा, लेकिन जब आपने उसको अपने जीवन में अपना लिया तो निश्चित ही आपका मन, आपका शरीर, आपका तन, और कहते हैं ना कि आत्मा तक आपकी खुश होगी, पवित्र होगी, शुद्ध होगी, और एक अच्छे मन से, एक अच्छे स्वस्थ नागरिक के रूप में आप इस देश के हित में काम कर सकेंगे।
1: बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब। और मुझे लगता है कि ये जिन शब्दों का प्रयोग आपने किया है, इन शब्दों को सुनते हुए या प्रस्तुत करने की जो कला आपके पास है, इसी से मंत्रमुग्ध होकर के आदमी योग तो करेगा ही करेगा, आयुष्य भी जुड़ेगा। क्योंकि बॉटनी से पढ़ा हुआ छात्र अगर साहित्य और संस्कृति की भी बात बेहतर ढंग से रख सके, बेहतर ही नहीं, बहुत अच्छे ढंग से, उसके लिए तो फिर सुनने को जी चाहता ही है। और सुनते रहने की बाध्यता हमारी यहीं समाप्त हो जाती है क्योंकि समय की सीमा में हम लोग बंधे रहते हैं। अब आकाशवाणी से तो आप जानते ही हैं, छोटेपन से ही सुनते रहे होंगे, फिर कभी मौका मिलेगा तो जरूर आपसे अपेक्षा होगी कि आप हमारे स्टूडियो इसी तरह से पधारेंगे और आयुष की तमाम जो इसके बिंदु हैं,
0: ये उन हजारों साल की विरासत है,
1: इसीलिए तो
0: प्रधानमंत्री जी ने उसको विकास में उपयोग किया।
1: अब
0: है।
1: काशी का जन हमारे बीच है तो बार बार तो अपेक्षा होगी ना कि हाँ हमारे साथ साथ जुड़ते रहें। बहुत अच्छा लगा वास्तव में, और आपकी वाणी के जो भी ये शब्द हमें प्रेरित कर सकते हैं वो बहुत प्रेरित कर रहे हैं। और लोगों से भी अपेक्षा, अपने श्रोताओं से, कि आप आयुष को अपनाएं, अपनी जीवन शैली को बेहतर से बेहतर
0: करें, योग रहे निरोग का नारा देते हैं।
1: बिल्कुल, आपका ये नारा पहले से भी चल रहा है, आप द्वारा दिया जा रहा है तो और प्रभावी होगा। इन्हीं अपेक्षाओं के साथ कि आपसे पुनः मुलाकात होगी, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।

0: अभी आप सुन रहे थे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की पूर्व संध्या पर माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार आयुष विभाग डॉ दयाशंकर मिश्र दयालु से डॉ नगेंद्र सिंह रघुवंशी की बातचीत। ये विशेष कार्यक्रम अब संपन्न होता है।
1: आकाशवाणी का यह आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर।

श्रोताओं, घड़ी की सुई इशारा कर रही है 'संगीत के कार्यक्रम की तरफ। तो फिल्मों से भजनों का कार्यक्रम भजन संध्या सुनने के लिए चलते हैं इस सुंदर भजन के साथ।

कार्यक्रम का पहला फिल्मी पैचल हमने लिया है फिल्म राम तेरी गंगा मैली से। गीत को गाया है लता मंगेशकर ने, गीत संगीत है रविंद्र जैन का।

राम तेरी गंगा मैली फिल्म में भी आपने सुना लता मंगेशकर को, गीत संगीत था रविंद्र जैन का। अब सुनते हैं लता मंगेशकर आशा भोसले की आवाज में मैं तुलसी तेरे आंगन की फिल्म का गीत। अमीर खुसरो के लिखे गीत को संगीत से सवारा है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

कार्यक्रम के अंतिम प्रस्तुति में भी आपने सुना सौदागर फिल्म में लता मंगेशकर मोहम्मद अजीज को। आनंद बख्शी के लिखे गीत को संगीत से संवारा था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। इसके साथ ही फिल्मों से भजनों का कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है, मीडियम वेव 196.1 मीटर पर।

सुखविंदर सिंह सपना अवस्थी की आवाज में अभी आप सुन रहे हैं दिल से फिल्म का गीत। गुलजार के लिखे गीत को संगीतबद्ध किया है AR रहमान ने।

सुखविंदर सिंह ऋचा शर्मा की आवाज़ में अभी आपने सुना ताल फिल्म का गीत। आनंद बख्शी की रचना को संगीत से संवारा था ए आर रहमान ने। कार्यक्रम का आखिरी गीत हमने लिया है फिल्म लज्जा से। आवाजें हैं अलका याग्निक, ऋचा शर्मा और साथी की। शब्द रचना समीर की है, संगीत रचना अनु मलिक की।

श्रोताओं, लज्जा फिल्म के इस गीत के साथ ही चित्रपट संगीत अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है, मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्स और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर। अब से कुछ देर बाद हमारे दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे समाचार संध्या। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जागृति शर्मा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत को शांति और सहयोग का पक्षधर बताया। कहा, वैश्विक संकटों और युद्ध जैसी परिस्थितियों का समाधान संवाद और कूटनीति से ही संभव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, जनजातीय समुदाय देश के विकास में महत्वपूर्ण भागीदार बन रहा है। ओडिशा में 47,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शुभारंभ। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किश्त जारी की। 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि किसानों के खातों में अंतरित। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री कल कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर राष्ट्रीय समारोह का नेतृत्व करेंगे। नीट यूजी 2026 पुनर्परीक्षा कल। परीक्षा केंद्रों पर कड़े सुरक्षा प्रबंध। ईरान ने युद्ध विराम उल्लंघन के बाद होर्मुज जल डमरू मध्य फिर से बंद किया। और चेन्नई में तीसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 9 विकेट से हराकर श्रृंखला 3-0 से जीती। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत हमेशा शांति और सहयोग का पक्षधर रहा है, क्योंकि जटिल वैश्विक मुद्दों और युद्ध जैसे संकटों का समाधान केवल संवाद और कूटनीति से ही संभव है। राष्ट्रपति ने मोहन चरण मांझी सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर ओडिशा के मयूरभंज जिले के रायरंगपुर में एक जनसभा में ये बात कही। राष्ट्रपति ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व नेताओं के साथ अपने दूरदर्शी शासन और संपर्क के जरिए वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाया है।
1: देशर प्रधानमंत्री भव्य दायित्व ग्रहण करिवा दिनरु
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना पदभार संभालने के बाद से राष्ट्रीय हित में कई कदम उठाए हैं। इस महीने उन्होंने लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल पूरा करने का रिकॉर्ड बनाया। मैं सभी नागरिकों की तरफ से इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए उन्हें बधाई देती हूं। मैं कामना करती हूं कि वे देश के लोगों के हित के लिए निरंतर काम करते रहें और भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का सपना साकार करने में राष्ट्र का नेतृत्व करते रहें।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं से सशक्त होकर जनजातीय समुदाय भारत के विकास में सक्रिय योगदान दे रहे हैं। उन्होंने पूर्वी भारत के विकास में तेजी लाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार के पूर्वोदय दृष्टिकोण का भी उल्लेख किया।
3: ओडिशा में आर्थिक गतिविधियां, निवेश और उद्योगों को आकर्षित

0: विकसित करने का सामर्थ्य आज नजर आ रहा है। केंद्र सरकार का विजन है पूर्वी भारत के विकास से भारत का विकास। इसलिए हम पूर्वोदय की नीति पर काम कर रहे हैं। जिस पूर्वी भारत को कांग्रेस के दौर में पिछड़ेपन का पर्याय बना दिया गया था, आज वो प्रगति का प्रवेश द्वार बन रहा है।
1: इस दौरान ओडिशा में 47,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया। बाद में प्रधानमंत्री हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंगाल दिवस समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने कहा कि इन परियोजनाओं से राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किश्त के रूप में 18,880 करोड़ रुपए जारी किए। प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे देश भर के 9,44,00,000 से अधिक किसान को लाभ मिलेगा।
0: साथियों, आज पीएम किसान सम्मान निधि के तहत देश भर के 9 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में पैसे भेजे गए और पश्चिम बंगाल के किसानों के लिए एक और खुशी की खबर है। आज से राज्य में पीएम फसल बीमा योजना शुरू की जा रही है।
1: प्रधानमंत्री कोलकाता में कल आईएनएस दुनागिरी, आईएनएस संशोधक और आईएनएस अग्रय का अनावरण करेंगे। इन पोतों में 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल विश्व भर में मनाया जाएगा। इस वर्ष का विषय है बढ़ती उम्र के प्रभाव को रोकने के लिए योग। मुख्य कार्यक्रम कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर आयोजित किया जाएगा। प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम में योगाभ्यास के दौरान राष्ट्र का नेतृत्व करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि रेड रोड पर राष्ट्रीय कार्यक्रम सुबह 5 बजे शुरू होगा।
2: संस्कृति मंत्रालय द्वारा देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक स्थलों और योग परंपराओं को जोड़ते हुए देश भर के 100 विशेष स्थानों पर योग के विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस पहल के तहत 12 प्रमुख स्थलों पर बड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिनमें नई दिल्ली में लाल किला, उत्तराखंड में हरिद्वार, उड़ीसा में कोणार्क, कर्नाटक में हम्पी, तमिलनाडु में महाबलीपुरम, महाराष्ट्र में मुंबई, बिहार में नालंदा, गुजरात में अहमदाबाद, उत्तर प्रदेश में सारनाथ, लद्दाख में लेह, तेलंगाना में हैदराबाद और असम में सिलचर शामिल है। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के साथ मिलकर विदेशों में मौजूद 210 से ज्यादा भारतीय मिशन लगभग 2,500 स्थानों पर योग कार्यक्रम आयोजित करेंगे। वहीं दिल्ली में शांति पथ, यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, कर्तव्य पथ, न्यू मोतीबाग, सेंट्रल पार्क और तालकटोरा गार्डन जैसे प्रमुख सार्वजनिक स्थानों पर योग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: उपराज्यपाल मनोज सिन्हा कल श्रीनगर में डल झील के किनारे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह का नेतृत्व करेंगे। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में विशेष योग दिवस समारोह आयोजित करेगा। इस आयोजन में लगभग 1,500 वरिष्ठ नागरिकों के शामिल होने की संभावना है। इसी कड़ी में आकाशवाणी समाचार आयुष राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार प्रताप राव जाधव का विशेष साक्षात्कार प्रसारित करेगा। आकाशवाणी एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज चैनल पर यह साक्षात्कार आज रात 9:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। श्री जाधव ने बताया कि कामकाजी लोगों के लिए सरकार ने वाई ब्रेक ऐप भी शुरू किया है।
3: लोग दिन भर चेयर पे बैठे के काम करना पड़ता है, वो लोग भी जब लंच ब्रेक होता है तब तक बहुत सारी थकान वो लोगों में आती है, तो वो थकान दूर करने के लिए भी उनके लिए वाई ब्रेक नाम का एक हमने ऐप निकाला है कि उसमें 10 मिनट में तुम चेयर पर बैठे बैठे कौन से आसन कर सकते हो, करने से जो भी तुम्हारा थकान आई होगी वो दूर हो जाएगी।
1: दुनिया भर में भारतीय दूतावास और राजनयिक मिशन कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए पूरी तरह तैयार हैं। आज नेपाल में भारतीय दूतावास ने लुम्बिनी में योगासन कार्यक्रम आयोजित किया। चीन में भारतीय दूतावास ने पेचिंग में आयोजित योग

कार्यक्रम की झलकियां साझा की। उधर जापान में भारतीय दूतावास ने कल सुकिजी होंगन जी मंदिर में योग दिवस कार्यक्रम आयोजित करने की घोषणा की है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले संयुक्त अरब अमीरात में भी कई कार्यक्रम आयोजित हुए। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा कल आयोजित की जाएगी। परीक्षा देश के 551 शहरों और विदेश में 14 शहरों में होगी। इसमें 22,79,000

0: जाएगी। परीक्षा देश के 551 शहरों और विदेश में 14 शहरों में होगी। इसमें 22,79,000 से अधिक परीक्षार्थी शामिल होंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने नीट यूजी पुनर्परीक्षा की तैयारियों के अंतर्गत आज राष्ट्रव्यापी मॉक ड्रिल आयोजित की। एक रिपोर्ट।
1: परीक्षा के सुरक्षित, पारदर्शी और सुचारू संचालन के लिए पर्यवेक्षकों, समन्वयकों, पुलिस बलों और प्रशासनिक अधिकारियों सहित 2,00,000 से अधिक कर्मियों की तैनाती की गई है। निष्पक्ष और पारदर्शी परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई है। एनटीए भ्रामक सूचनाओं पर रोक लगाने और किसी भी प्रकार की अनियमितता को रोकने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की भी सक्रिय रूप से निगरानी कर रहा है। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक आयोजित की जाएगी। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा कल संयुक्त अरब अमीरात में 3 निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव आया है। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर विशेष कार्यक्रम का प्रसारण कर रहा है। आज जानकारी सशक्त भारत के संकल्प को साकार करने वाली सरकार की परिवर्तनकारी पहलों के बारे में।
2: पिछले 12 वर्षों में सरकार ने भारत के हाईटेक क्षेत्र में बड़ा बदलाव लाने का काम किया है। सशक्त भारत के 2 महत्वपूर्ण आधार हैं, सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का विकास और स्पेस स्टार्टअप्स की तेजी से बढ़ती संख्या। सरकार की नीतियों और फैसलों से सेमीकंडक्टर क्षेत्र में सिर्फ योजनाएं ही नहीं बनी बल्कि अब निर्माण और डिजाइन से जुड़े कई इकाई भी काम कर रहे हैं। दिसंबर 2021 में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन शुरू किया गया। इसके लिए 76,000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया। इस योजना के तहत सिलिकॉन फैब, कंपाउंड सेमीकंडक्टर इकाई, असेंबली और टेस्टिंग सुविधाओं तथा चिप डिजाइन के लिए 50% तक वित्तीय सहायता दी गई। साल 2026 में सरकार ने सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 शुरू किया, जिसके लिए 1,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य उद्योगों के सहयोग से शोध और प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करना, नई तकनीकों का विकास करना और भविष्य के लिए कुशल मानव संसाधन तैयार करना है। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मिशन 1.0 ने इस जटिल उद्योग की मजबूत नींव रखी है।
3: हम अपने सेमीकंडक्टर मिशन के पहले चरण में ये हासिल कर पाए हैं। 75,000 से ज्यादा इंजीनियर इस क्षेत्र में प्रशिक्षित हो चुके हैं। 300 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज छात्रों को चिप डिजाइन करना सिखा रही हैं और भारत में 2 नैनोमीटर चिप्स डिजाइन की जा रही हैं, जो दुनिया की सबसे एडवांस चिप्स हैं। इनमें एनवीडिया और इंटेल की चिप्स भी शामिल हैं और ये सभी अब भारत में ही डिजाइन की जाती हैं।
2: वहीं भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 ने निजी कंपनियों को अंतरिक्ष क्षेत्र में पूरी तरह काम करने की अनुमति दी है। अब निजी संस्थाएं रॉकेट लॉन्च, उपग्रह निर्माण और संचालन, डेटा संग्रह और वितरण तथा ग्राउंड स्टेशन जैसी गतिविधियां कर सकती हैं। इस नीति के बाद भारत में स्पेस स्टार्टअप्स की संख्या 2014 में केवल 1 से बढ़कर 400 से अधिक हो गई है। इससे देश की निजी अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को नई गति मिली है। भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था वर्तमान में लगभग $8 अरब से अधिक की है और अगले 8 से 10 वर्षों में इसके 4 से 5 गुना बढ़कर 40 से 45 अरब डॉलर तक पहुंचने की संभावना है। आकाशवाणी के साथ बातचीत में अनिल प्रकाश, स्पेस इंडस्ट्री एसोसिएशन ऑफ इंडिया के महानिदेशक ने बताया कि भारत में अब 400 से अधिक स्पेस टेक स्टार्टअप्स हैं।
4: नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में स्पेस सेक्टर रिफॉर्म, स्पेस की स्थापना और प्राइवेट पार्टिसिपेशन में को बढ़ावा देने वाली नीतियों ने एक नई क्रांति की शुरुआत की है। आज भारत में 400 से अधिक स्पेस स्टार्टअप कार्यरत है, जो सैटेलाइट, लॉन्च व्हीकल, अर्थ ऑब्जर्वेशन और डाटा सर्विस जैसे क्षेत्रों में इनोवेशन कर रहे हैं।
2: सेमीकंडक्टर मिशन की उपलब्धियों और तेजी से बढ़ती निजी अंतरिक्ष क्षेत्र के माध्यम से भारत विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। ईरान की संयुक्त सैन्य कमान ने आज घोषणा की है कि होर्मुज जलडमरू मध्य को एक बार फिर बंद कर दिया गया है। यह फैसला लेबनान में इसराइल की सैन्य कार्रवाई का हवाला देते हुए लिया गया है। सरकारी टेलीविजन पर प्रसारित बयान में ईरान ने चेतावनी दी है कि अगर इसराइल के हमले जारी रहे तो वह और कड़े कदम उठा सकता है। उधर दक्षिणी लेबनान में इसराइल के हवाई हमलों में 2 बच्चों सहित

0: 16 लोगों की मौत हो गई। ये हमले संघर्ष विराम की खबरों के कुछ ही घंटों बाद हुए। कैलाश मानसरोवर यात्रा के तीर्थयात्रियों का पहला जत्था आज नाथुला दर्रे से होते हुए चीन में प्रवेश कर गया। इस दल में 47 लोग हैं। चेन्नई में भारत ने तीसरे और अंतिम एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान को 9 विकेट से हराकर श्रृंखला 3-0 से जीत ली है। भारत ने 29वें ओवर में एक विकेट पर 224 रन बनाकर जीत हासिल की। 5 विकेट लेने वाले प्रसिद्ध कृष्णा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत को शांति और सहयोग का पक्षधर बताया। कहा, वैश्विक संकटों और युद्ध जैसी परिस्थितियों का समाधान संवाद और कूटनीति से ही संभव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, जनजातीय समुदाय देश के विकास में महत्वपूर्ण भागीदार बन रहे हैं। ओडिशा में 47,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शुभारंभ। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किश्त जारी की। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री कल कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर राष्ट्रीय समारोह का नेतृत्व करेंगे। नीट यूजी 2026 पुनर्परीक्षा कल, परीक्षा केंद्रों पर कड़े सुरक्षा प्रबंध और चेन्नई में तीसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत ने अफगानिस्तान को हराकर श्रृंखला 3-0 से जीती। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. President Draupadi Murmu says India has consistently emerged as voice of peace, dialogue and cooperation as it believes issues can only be resolved through mutual discussion and not war. Prime Minister Narendra Modi asserts tribal communities are emerging as active participants in India's development journey, launches development projects worth more than 47,000 crore rupees in Odisha. Prime Minister releases 23rd installment of PM Kisan Samman Nidhi scheme of over 18,000 crore rupees. Prime Minister to lead International Day of Yoga 2026 celebrations at Kolkata's historic Red Road tomorrow. NEET UG 2026 re-examination to take place tomorrow under strict vigil. Iran closes Strait of Hormuz over ceasefire violation. And in cricket, India clean sweep 3-match series against Afghanistan 3-0, defeating the visitors by 9 wickets in third ODI at Chennai. President Draupadi Murmu today lauded Prime Minister Narendra Modi's leadership, stating that he has significantly enhanced India's prestige and influence on the global stage through his visionary governance and constructive engagement with world leaders. Addressing a large public gathering at Rai Rangpur in Odisha's Mayurbhanj district, organized to mark the completion of 2 years of the Mohan Charan Majhi government, in the presence of Mr. Modi, the President said India has consistently emerged as a voice of peace, dialogue and cooperation under Prime Minister Modi's stewardship.
2: Since assuming the office, Prime Minister Narendra Modi has taken several steps in the national interest. This month, he set a record for the longest continuous tenure as an elected Prime Minister. On behalf of all citizens, I congratulate him on this historic achievement. I wish that he may continue to benefit the people of the country with his vision and lead the nation in realizing the resolve to transform India into Viksit Bharat by 2047.
1: Addressing the public gathering, Prime Minister Narendra Modi lauded Odisha's progress as the state completed 2 years under Chief Minister Mohan Charan Majhi, saying it is moving rapidly on the path of development and contributing significantly to the growth of eastern India. He said the centre's Purvodaya vision aims to drive India's growth through the rapid development of eastern India.
3: Odisha mein aarthik gatividhiyan, nivesh aur udyogon ko आकर्षित करने का सामर्थ्य आज नजर आ रहा है। केंद्र सरकार का विजन है पूर्वी भारत के विकास से भारत का विकास, इसलिए हम पूर्वोदय की नीति

0: as Yashasvi Jaiswal smashed an unbeaten century. Chasing a modest 219-run target, India raced to victory in just 28.4 overs, losing one wicket. Jaiswal slammed an unbeaten 110 off 86 balls, while Rohit scored 79 off 69 deliveries. In the FIFA World Cup, the Netherlands will take on Sweden today at 10:30 p.m. IST. The match will be played at NRG Stadium in Houston, United States. The two sides have met 20 times in the past. Their most recent encounter was during the 2018 FIFA World Cup qualifiers in 2017. And now before we end the bulletin, the headlines once again. President Draupadi Murmu says India has consistently emerged as a voice of peace, dialogue and cooperation, as it believes issues can only be resolved through mutual discussion and not war. Prime Minister Narendra Modi asserts tribal communities are emerging as active participants in India's development journey, launches development projects worth more than 47,000 crore rupees in Odisha. Prime Minister releases 23rd installment of PM Kisan Samman Nidhi scheme of over 18,000 crore rupees. Prime Minister to lead International Day of Yoga 2026 celebrations at Kolkata's historic Red Road tomorrow. NEET UG 2026 re-examination to take place tomorrow under strict vigil. That is all in the news at 9. Good night.
1: Adab, ye Akashvani hai. खबरों के साथ मैं शगुफ्ता यास्मीन। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत लगातार अमन मुजाकरात और इश्तराक की आवाज के तौर पर उभरा है, क्योंकि उसका ये मानना है कि मामलात को जंग से नहीं बल्कि बाहमी बातचीत के जरिए ही हल किया जा सकता है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जोर देकर कहा है कि कबायली तबके भारत की तरक्की के सफर में सरगर्मी के साथ शामिल हो रहे हैं। जनाब मोदी ने ओडिशा में 47,000 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के तरक्याती प्रोजेक्टों का आगाज किया। वजीर आजम ने पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम की 18,000 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत की 23वीं किस्त जारी की। वजीर आजम कल कोलकाता के तारीखी रेड रोड पर 2026 के योग के बैन अलाक्वामी दिन की तकरीबात की क्यादत करेंगे। कल नीट यूजी 2026 का दोबारा इम्तिहान सख्त निगरानी में कराया जाएगा। ईरान ने जंगबंदी की खिलाफवर्जी का हवाला देते हुए आबनाए हुरमुज को बंद कर दिया है। और क्रिकेट में भारत ने चेन्नई में तीसरे एक रोजा मैच में अफगानिस्तान को 9 विकेट से करारी शिकस्त देकर सीरीज के तीनों मैच जीत लिए हैं। अब खबरें तफसील से। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क्यादत की यह कहते हुए सताइश की है कि उन्होंने अपनी नजरियासाज हुक्मरानी और आलमी रहनुमाओं के साथ तामीरी राब्तों के जरिए आलमी मंजरनामे पर भारत के वकार और उसके असर रसूख को नुमाया अंदाज से बढ़ाया है। ओडिशा के मयूरभंज जिले में राय रंगपुर के मकाम पर जनाब मोदी की मौजूदगी में एक बड़े जलसा आम से खिताब करते हुए सदर जमहूरिया ने कहा कि वजीर आजम मोदी की क्यादत में भारत अमन मुजाकरात और इश्तराक की आवाज के तौर पर उभरा है। ओडिशा में मोहन चरण माझी सरकार के 2 साल मुकम्मल होने के मौके पर इस तकरीब का एहतमाम किया गया था। मोहतरमा द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि एक ऐसे वक्त में कि जब दुनिया के कई खित्तों में टकराव और गैर यकीनी के हालात हैं, भारत ने सिफारती राब्तों और बाहमी मुफाहमत के जरिए तनाज़ात को हल करने की लगातार वकालत की है। जलसयाम से खिताब करते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने ओडिशा की पेशरफ्त को यह कहते हुए सराहा कि रियासत तरक्की के रास्ते पर तेजी के साथ आगे बढ़ रही है और मशरकी भारत की नशोनुमा में अहम रोल अदा कर रही है। जनाब मोदी ने कहा कि मरकज के पूर्व उदय नजरिए का मकसद मशरकी भारत के तेज रफ्तार फरोग के जरिए भारत की तरक्की को रफ्तार देना है।
2: ओडिशा में आर्थिक गतिविधियां, निवेश और उद्योगों को आकर्षित करने का सामर्थ्य आज नजर आ रहा है। केंद्र सरकार का विजन है पूर्वी भारत के विकास से भारत का विकास, इसलिए हम पूर्वोदय की नीति पर काम कर रहे हैं। जिस पूर्वी भारत को कांग्रेस के दौर में पिछड़ेपन का पर्याय बना दिया गया था, आज वो प्रगति का प्रवेश द्वार बन रहा है।
1: वजीर आजम

0: नरेंद्र मोदी ने आज ओडिशा में मुख्तलिफ शोबों में तकरीबन 47,000 करोड़ रुपए मालियत के तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया और संगे बुनियाद रखा। जनाब मोदी ने जोर देकर कहा कि कबायली तबके भारत के तरक्की के सफर में सरगर्मी के साथ शामिल हो रहे हैं। जनाब मोदी ने सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू को उनकी सालगिरह पर मुबारकबाद भी पेश की और कहा कि उन्हें सदर जमहूरिया के आबाई गांव पहाड़पुर में आने का शर्फ हासिल हुआ है। बाद में वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मगरबी बंगाल के हुगली जिले में ताराकेश्वर के मकाम पर पश्चिम बंगा दिवस तकरीबात में शिरकत की। जनाब मोदी ने 18,880 करोड़ रुपए मालियत की पीएम किसान स्कीम की 23वीं किस्त भी जारी की, जिससे मुल्क में 9,44,00,000 से ज्यादा किसानों को फायदा होगा। वजीर आजम ने मगरबी बंगाल का यौम तासीस मनाने के लिए मुनक्कदा एक शानदार तकरीब में भी शिरकत की। इस मौके पर रियासत के वजीर आला शोभेंदु अधिकारी भी मौजूद थे। जनाब मोदी ने मुख्तलिफ शोबों में कई तरक्याती प्रोजेक्टों का आगाज किया, मुल्क के नाम वक्फ किया और कुछ प्रोजेक्टों का संगे बुनियाद रखा। इन शोबों में रेलवेज, ज़राअत, देही तरक्की, माही परवरी और मवेशी परवरी के शोबे शामिल हैं। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि बीजेपी सरकार ने बंगाल की तरक्की के लिए सुपरफास्ट रफ्तार से काम शुरू कर दिया है।
1: आज यहाँ सैकड़ों करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास हुआ है। रेल, रोड, कृषि, मछली पालन, इससे जुड़ी ये परियोजनाएं बंगाल के विकास को नई गति देगी। इन परियोजनाओं से यहाँ की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। मैं बंगाल के लोगों को इन विकास परियोजनाओं की बधाई देता हूँ।
0: योग का बैन अल-अक़वामी दिन कल पूरी दुनिया में मनाया जाएगा। इस साल योग का ये 12वां बैन अल-अक़वामी दिन है और इस साल का मौजू है सेहतमंद बढ़ती उम्र के लिए योग। इससे सेहतमंद, सरगर्म और बावकार बढ़ती उम्र की खातिर योग को जिंदगी भर के लिए अपनाने की अहमियत उजागर होती है। 2026 के योग के बैन अल-अक़वामी दिन की बड़ी तकरीब मगरबी बंगाल में कोलकाता में तारीखी रेड रोड पर होगी, जहां वजीर आजम नरेंद्र मोदी मुश्तरका योग प्रोटोकॉल अपनाने में मुल्क की क्यादत करेंगे। रेड रोड पर कौमी सतह की तकरीब कल सुबह सवेरे 5 बजे शुरू होगी। वहां हजारों लोग शिरकत करेंगे, जबकि मुल्क और बैरून मुल्क से करोड़ों लोगों के इसमें वर्चुअल वसीले से शामिल होने की उम्मीद है। इस तकरीब से सेहत, हम आहंगी और इज्तिमाई बहबूद को फरोग देते हुए एक आलमी तहरीक के तौर पर योग के बढ़ते हुए रोल का इयादा होगा। मजीद तफसील हमारे नामनिगार से।
2: सकाफत की वजारत मुल्क भर के 100 सरकर्दा मकामात पर योग की खुसूसी तकरीबात का एहतमाम कर रही है, जिसका मकसद भारत के मालामाल सकाफती विरसे, तारीखी मकामात और योगा की रिवायत को मजबूत करना है। इस पहल के तहत 12 सरकर्दा मकामात पर अहम तकरीबात का इनेकाद किया जाएगा, जिनमें दिल्ली में लाल किला, उत्तराखंड में हरिद्वार, उड़ीसा में कोणार्क, कर्नाटक में हम्पी, तमिलनाडु में महाबलीपुरम, महाराष्ट्र में मुंबई, बिहार में नालंदा, गुजरात में अहमदाबाद, उत्तर प्रदेश में सारनाथ, लद्दाख में लेह, तेलंगाना में हैदराबाद और असम में सिलचर शामिल है। सकाफती राब्तों की भारतीय कौंसिल के साथ इश्तराक में बैरून मुल्क 210 से ज्यादा भारतीय मिशन दुनिया भर में तकरीबन 2500 मकाम पर योगा तकरीबात का इनेकाद करेंगे। दिल्ली में अहम आवामी मकाम पर योगा तकरीबात का एहतमाम किया जाएगा, जिनमें शांति पथ के लॉन, यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, कर्तव्य पथ, सीपी सेंट्रल पार्क और तालकटोरा गार्डन शामिल हैं। दिल्ली से आनंद कुमार की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं मोहम्मद आजम खान।
0: ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल कोलकाता में मुल्क में ही बनाए गए भारतीय बहरिया के 3 बहरी जंगी जहाजों को पानी में उतारने की रस्म अंजाम देंगे। इनमें INS दुनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रय शामिल हैं। इनका डिजाइन बहरिया के जंगी बहरी जहाजों के ब्यूरो ने तैयार किया है और गार्डन रीच शिप बिल्डर्स और इंजीनियर्स ने इन्हें तामीर किया है। इसका मकसद मुकाबला करने की सलाहियत को मुस्तहकम बनाना, हाइड्रोग्राफिक सर्वे और आबदोज शिकन निजाम को मजबूत बनाना है। भारत ने पिछले 12 साल में वजीर आजम नरेंद्र मोदी की कयादत में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के उसूलों के तहत बहुत सी काबिल जिक्र तब्दीलियां की हैं। आकाशवाणी का खबरों का शोभा आपके लिए एक खसूसी फीचर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के पेश कर रहा है। आज हम एक बाख्तियार भारत के

0: तबूर के लिए यकसर तब्दीली लाने वाले इकदाम का जिक्र कर रहे हैं।
1: गुज़श्ता 12 बरस के दौरान हुकूमत ने मुल्क में जदीद टेक्नोलॉजी के सिलसिले में बड़े पैमाने पर ढांचा जाती इकदाम किए हैं। बाख्तियार भारत के दो सबसे अहम सुतून सेमी कंडक्टर इको निज़ाम की तश्कील और खला से मुतालिक स्टार्टअप्स की ज़बरदस्त तरक्की हैं। 76,000 करोड़ रुपए के बड़े अखराज के साथ दिसंबर 2021 में भारतीय सेमी कंडक्टर मिशन का आगाज़ किया गया था। 2026 तक हुकूमत ने सेमी कंडक्टर मिशन के दूसरे मरहले का आगाज़ किया, जिसका मकसद सनत की क़यादत में तहकीक, टेक्नोलॉजी के फ़रोग़ के लिए तरबियती मराकज़ और मुस्तकबिल के लिए हुनरमंद अफरादी क़ुव्वत की तश्कील पर ज़ोर देना है। सेमी कंडक्टर मिशन 2.0 के बारे में बात करते हुए इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी के वजीर अश्विनी वैष्णव ने इस बात को उजागर किया कि मिशन 1.0 ने इस अहम सनत के लिए बुनियाद फराहम की और मिशन 2.0 इको निज़ाम को मुस्तहकम करने पर तवज्जो मरकूज करेगा।
2: The first mission was to start the industry in our country. It's an extremely complex industry. We have now talent. More than 75,000 engineers are trained in this. More than 300 universities are teaching the students to design chips. 2-nanometer chips are designed in India. The most advanced chips in the world, including NVIDIA chips, including Intel chips, they are all designed in India now. The world today recognizes India as a country which will become a major semiconductor designing and manufacturing country in the coming years.
1: भारत की खलाई पॉलिसी 2023 के तहत प्राइवेट कंपनियों को खलाई सरगर्मियां अंजाम देने की इजाज़त दी गई, जिससे सैटेलाइट को खला में भेजा जाना भी आसान हुआ। इसके बाद खला से मुतालिक रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स की तादाद में इजाफा हुआ। आकाशवाणी से बात करते हुए भारत की खलाई सनत की एसोसिएशन के डायरेक्टर जनरल अनिल प्रकाश ने कहा कि ये कंपनियां इख्तराई तौर पर सरगर्म हैं।
3: नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में स्पेस सेक्टर रिफॉर्म, स्पेस की स्थापना और प्राइवेट पार्टिसिपेशन में को बढ़ावा देने वाली नीतियों ने एक नई क्रांति की शुरुआत की है। आज भारत में 400 से अधिक स्पेस टेक स्टार्टअप कार्यरत हैं, जो सैटेलाइट, लॉन्च व्हीकल, अर्थ ऑब्जर्वेशन और डाटा सर्विस जैसे क्षेत्रों में इनोवेशन कर रहे हैं।
1: सेमी कंडक्टर मिशन और प्राइवेट खलाई शोबे की पेशरफ्त की शक्ल में एक तरक्की याफ्ता मुल्क की जानिब भारत का सफर जारी उसारी है। अमन यादव की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए अर्जुमंद अली खान।
0: अहलियत और दाखिले से मुतालिक कौमी इम्तिहान नीट यूजी 2026 का कल दोबारा इम्तिहान होगा। कल होने वाले इस दोबारा इम्तिहान में मुल्क भर के 551 शहरों और बैरून मुल्क 14 शहरों में 22,79,000 उम्मीदवार शामिल होंगे। ये इम्तिहान अंग्रेजी और 12 भारतीय जबानों में होगा। इम्तिहान से कबल इम्तिहानात के इनेकाद से मुतालिक कौमी एजेंसी एनटीए ने आज मुल्क भर में मॉक ड्रिल्स अंजाम दी, जिनके तहत सभी सिस्टम जैमर्स, सीसीटीवी, अमले की तलाशी और बायोमेट्रिक की जांच की गई। एनटीए ने कहा है कि वो बिला रुकावट मुनसिफाना और शफाफ इम्तिहान के लिए पूरी तरह तैयार है। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
4: मुशाहिदीन, राब्ता कारों, पुलिस दस्तों और मुंतजमीन समेत 2 लाख से ज्यादा अहलकारों को महफूज, शफाफ और बिला रुकावट इम्तहान के इनाकाद के लिए तैनात किया गया है। मुनसिफाना और शफाफ इम्तहान को यकीनी बनाने के लिए कसीर सतही सिक्योरिटी तरीके कार को बरवे कार लाया जा रहा है। इसमें सीसीटीवी से निगरानी, आधार पर मबनी बायोमेट्रिक तस्दीक और इम्तहानात से मुतालिक सामान की नकलो हमल के लिए पुलिस हिफाजत के साथ जीपीएस वाली मोटर गाड़ियां शामिल है। एनटीए भी सरगर्मी के साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की निगरानी कर रही है, ताकि किसी भी तरह की गलत मालूमात और तौर तरीकों की रोकथाम की जा सके। ये इम्तहान दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक होगा। दस्तावेजी अमल को मुकम्मल करने, उसकी तस्दीक और इम्तिहान से मुतालिक दीगर जरूरतों को पूरा करने के लिए इजाफी 15 मिनट फराहम किए जाएंगे। दिल्ली से सकलेन अख्तर की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं शोएबा।
0: ईरान की मुश्तरका मिलिट्री कमान ने ऐलान किया है कि आबनाए हुरमुज को फिर से बंद कर दिया गया है। उसने लबनान में इसराइल की फौजी कार्रवाई जारी रहने और लड़ाई के खात्मे के लिए अपने वादों को बरकरार रखने में अमरीका की नाकामी को इसकी वजह बताया है। सरकारी टेलीविजन पर नशर किए गए एक बयान में ईरान की मिलिट्री कमान ने यह तंबीह की कि अगर बकौल उसके जारहियत का सिलसिला जारी रहा तो मजीद इकदाम भी किए जाएंगे। आज चेन्नई के एम ए चिदम्बरम स्टेडियम में 3 एक रोजा बैन अल्कामी क्रिकेट मैचों की सीरीज के आखिरी मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 9 विकेट से करा

0: पहली शिकस्त देकर सीरीज 3-0 से जीत ली। भारत के लिए यशस्वी जायसवाल ने सेंचुरी बनाई और वो नॉट आउट रहे। भारत को जीत के लिए 219 रन का निशाना मिला था, जिसे उसने 28 ओवर्स और 4 गेंदों में एक विकेट खोकर हासिल कर लिया। जायसवाल ने 86 गेंदों में शानदार 110 रन बनाए और वो नॉट आउट रहे। रोहित शर्मा ने 69 गेंदों में 79 रन स्कोर किए। इससे कबल भारतीय गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा ने अफगानिस्तान के शुरुआती बल्लेबाजों को आउट करके शानदार गेंदबाजी का मुजाहरा करते हुए 4 विकेट हासिल किए। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर सुन लीजिए। सदस्य जमहूरी द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत लगातार अमन मुजाकरात और इश्तराक की आवाज के तौर पर उभरा है, क्योंकि उसका ये मानना है कि मामलात को जंग से नहीं बल्कि बाहमी बातचीत के जरिए ही हल किया जा सकता है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जोर देकर कहा है कि कबायली तबके भारत के तरक्की के सफर में सरगर्मी के साथ शामिल हो रहे हैं। जनाब मोदी ने ओडिशा में 47,000 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के तरक्याती प्रोजेक्टों का आगाज किया। वजीर आजम ने पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम की 18,000 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत की 23वीं किस्त जारी की। वजीर आजम कल कोलकाता के तारीखी रेड रोड पर 2026 के योग के बैनुल अक्वामी दिन की तकरीबात की क्यादत करेंगे। और क्रिकेट में भारत ने चेन्नई में तीसरे एक रोजा मैच में अफगानिस्तान को 9 विकेट से करारी शिकस्त देकर सीरीज के 3 मैच जीत लिए हैं। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: ये आकाशवाणी है, आइए सुने राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती।
2: साइंस, लाइट, साउंड, कैमरा, एक्शन।

नमस्कार, राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती के जून महीने के अंक में आपका स्वागत है। चित्र भारती के इस अंक में संपादकीय शास्त्रीय संगीत के दिग्गज फिल्म संगीत की दुनिया में

मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह पर एक रपट और स्मृति शेष में नमन जानी मानी गायिका सुमन कल्याणपुर को। सबसे पहले संपादकीय शास्त्रीय संगीत के दिग्गज फिल्म संगीत की दुनिया में 21 जून को मनाया जाता है विश्व संगीत दिवस। इस दिन को मनाने की शुरुआत हुई थी सन 1982 में। 21 जून का ही दिन इसलिए चुना गया था क्योंकि इस दिन होता है समर सोल्स्टिस यानी ग्रीष्म संक्रांति, साल का एक सबसे लंबा दिन, ताकि आप संगीत की स्वर लहरियों का ज्यादा मजा ले सकें। संगीत सिर्फ एक कला नहीं, संगीत जीवन का सुकून है। संगीत न होता तो कितनी सूनी होती ये दुनिया। आज चित्र भारती के संपादकीय में हम विश्व संगीत दिवस पर लाए हैं एक खास पेशकश, ऐसे कलाकारों की बातें जो वैसे तो शास्त्रीय संगीत में सक्रिय रहे पर जब वो फिल्म संगीत के मैदान में आए तो उन्होंने अपनी और ज्यादा चमक बिखेरी और हमें दिए कुछ अनमोल गाने, यानी कुछ ऐसे गायक और संगीतकारों की बातें जो शास्त्रीय संगीत की दुनिया से आते हैं। शास्त्रीय संगीत और फिल्म संगीत हमेशा दो अलग अलग ध्रुव रहे हैं। एक लंबे समय तक शास्त्रीय संगीत की दुनिया में फिल्म संगीत को कमतर माना जाता रहा और शास्त्रीय संगीत के कलाकारों ने फिल्म संगीत से बाकायदा दूरी बनाकर रखी। पर फिर ऐसा वक्त आया जब शास्त्रीय संगीत की दुनिया के दिग्गजों ने फिल्म संगीत की जमीन पर अपने कदम रख ही दिए। अगर शुरू से बात करें तो बेगम अख्तर जैसी दिग्गज गायिकाओं ने फिल्मों में काम भी किया और गाने भी गाए। सन 1930 के जमाने में उन्होंने एक दिन का बादशाह, नल दमयंती और जवानी का नशा जैसी फिल्मों में अभिनय किया था। सन 1942 में उन्होंने महबूब खान की फिल्म रोटी में संगीतकार अनिल विश्वास के निर्देशन में गाना भी गाया। इसके अलावा सत्यजीत

ने सन 1958 में एक फिल्म बनाई जलसा घर। इस फिल्म में उस्ताद विलायत खान साहब का संगीत था। ये फिल्म अपने लाजवाब संगीत के लिए जानी जाती है। बेगम अख्तर ने इस फिल्म में ये

ऐसे मौकों पर फिल्म संगीत अपनी अप्रतिम ऊंचाई तक पहुंच जाता है। शास्त्रीय संगीत के कई दिग्गजों ने फिल्म संगीत में अपना योगदान दिया है। सन 1952 में विजय भट्ट ने एक फिल्म बनाई, बैजू बावरा। इस फिल्म के लिए संगीतकार नौशाद ने राजी किया मालवा घराने के संस्थापक उस्ताद अमीर खान साहब को। कितना सुखद था कि इस फिल्म का एक गाना पंडित डी वी पलुस्कर और उस्ताद अमीर खान साहब ने साथ में गाया था।

यहाँ ये जिक्र जरूरी है कि उस्ताद अमीर खान साहब ने सिनेमा के लिए शायद सबसे पहले नौशाद के ही संगीत निर्देशन में गाया था। फिल्म थी सन 1954 में आई शबाब। दूसरी बार उन्होंने सिनेमा के लिए तब गाया जब वी शांताराम ने फिल्म बनाई झनक झनक पायल बाजे, साल 1955। सन 1956 में राजा नवाथी की फिल्म आई बसंत बहार। इस फिल्म में ऐसा मौका आया जब फिल्म की सिचुएशन के मुताबिक शास्त्रीय संगीत की दिग्गज हस्ती पंडित भीमसेन जोशी को हराने की जिम्मेदारी पार्श्व गायक मन्ना डे को सौंपी गई। मन्ना डे तनाव में आ गए और चुपचाप पूना चले गए। उनकी पत्नी ने उन्हें समझाया कि आपका जो फर्ज है वो आपको निभाना होगा, ये तो सिर्फ फिल्मी गाना है, आपको ये गाना रिकॉर्ड करना ही होगा। और तब जाकर ये गाना रिकॉर्ड हुआ जो कालजयी बन गया।

अब आते हैं हिंदी सिनेमा की एक अजीमुशान फिल्म की ओर। ये फिल्म थी के आसिफ की मुगले आजम। इस फिल्म में एक खास सिचुएशन ऐसी है जिसके लिए के आसिफ को चाहिए थी पटियाला घराने के दिग्गज गायक उस्ताद बड़े गुलाम अली खां की आवाज। किसी तरह उन्हें मनाया गया। कहते हैं कि उन्होंने के आसिफ से एक बड़ी रकम की मांग की थी जिसे आसिफ साहब ने फौरन मान लिया था, और इस तरह से मुगले आजम में उस्ताद बड़े गुलाम अली खां की आवाज में दो गाने रिकॉर्ड हुए। एक गाना था ये, और दूसरा गाना था

0: सन 1960 में आई फिल्म कोहिनूर। इस फिल्म में एक गाने में सितार बजाया था उस्ताद अब्दुल हलीम जाफर खान साहब ने। कहते हैं कि इस गाने में अभिनय के लिए दिलीप कुमार ने महीनों उस्ताद जी से सितार की तालीम ली थी। इसी तरह से फिल्म मेरी सूरत तेरी आंखें के इस गाने में तबला बजाया था बनारस के बेमिसाल तबला वादक गुदई महाराज यानी पंडित सामता प्रसाद जी ने।
1: नाचे मन मोरा मगन तिक दा धिक धिक।
0: वी शांताराम ने सन 1964 में बनाई फिल्म गीत गाया पत्थरों ने। इस फिल्म में संगीत था रामलाल जी का, जो खुद एक सिद्ध शहनाई वादक थे। इस फिल्म का शीर्षक गीत गाया था जयपुर घराने की दिग्गज गायिका विदुषी किशोरी अमोनकर जी ने।

0: चूंकि यहाँ हमने रामलाल जी की शहनाई का जिक्र किया, तो इसी बहाने याद कर लें जाने माने शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्ला खान साहब को। सन 1959 में आई विजय भट्ट की फिल्म गूंज उठी शहनाई। इस फिल्म के बैकग्राउंड म्यूजिक में शहनाई बजाई थी उस्ताद बिस्मिल्ला खान साहब ने, पर गानों में बजी शहनाई रामलाल जी ने खुद बजाई थी। सन 1966 में एक फिल्म आई थी लड़की सह्याद्री की। वी शांताराम के निर्देशन वाली इस फिल्म में मेवाती घराने के प्रसिद्ध गायक पंडित जसराज ने एक गीत गाया था।
1: वंदना करो अर्चना करो,
0: ये गीत राग अहीर भैरव पर आधारित था। गीतकार थे भरत व्यास और संगीतकार थे वसंत देसाई। बहुत बाद में पंडित जसराज ने फिल्म 1920 में ये गाना गाया। सन 1976 में आई फिल्म कादंबरी। इस फिल्म में संगीत दिया था उस्ताद विलायत खान साहब ने। उन्होंने इस फिल्म में आशा भोसले से अमृता प्रीतम की ये रचना गवाई थी।

0: जानी मानी गायिका विदुषी बेगम परवीन सुल्ताना ने भी कई फिल्मी गाने गाए हैं। उनका सबसे मशहूर गाना है फिल्म कुदरत का वो गीत, जिसे आर डी बर्मन ने स्वरबद्ध किया था। इस गाने के गीतकार थे मजरूह सुल्तानपुरी। पर उन्होंने इसके अलावा भी कई फिल्मों में गाया है। विदुषी परवीन सुल्ताना ने फिल्म गदर में ये गीत गाया। इस गाने में उनके साथ थे पटियाला घराने के जाने माने गायक पंडित अजय चक्रवर्ती। सन 1985 में अमोल पालेकर ने फिल्म अनकही बनाई। इस फिल्म का संगीत जयदेव ने दिया था। पंडित भीमसेन जोशी ने इस फिल्म में दो गाने गाए थे।
1: रघुवर तुम को मेरी लाज, रघुवर तुम को मेरी लाज।
0: सन 1985 में फिल्म आई सुरसंगम, जिसके जरिए शास्त्रीय संगीत की दुनिया के अनमोल पंछी उतरे फिल्म संगीत के मैदान पर। पंडित राजन और पंडित साजन मिश्र, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

जाने माने बांसुरी वादक पंडित हरि प्रसाद चौरसिया और जाने माने संतूर वादक पंडित शिव कुमार शर्मा ने ऐसे तो कई फिल्मी गानों में अपने अपने साजों का कमाल दिखाया है, पर आगे चलकर उन्होंने जोड़ी बनाई शिव हरि की जोड़ी और कई फिल्मों में संगीत दिया। ऐसी ही एक फिल्म थी सिलसिला। जाने माने सितार वादक पंडित रविशंकर ने कई फिल्मों में संगीत दिया, जैसे नीचा नगर, पाथेर पांचाली, अपराजितो वगैरह। पर उन्होंने ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म अनुराधा में क्या कमाल के गाने बनाए थे। जाने कैसे

सन 1997 में सई परांजपे ने फिल्म साज बनाई। इस फिल्म में उस्ताद जाकिर हुसैन ने न केवल अभिनय किया था बल्कि कुछ गाने भी बनाए थे। चूंकि जिक्र चला है तो आपको बता दें कि उस्ताद जाकिर हुसैन के पिता उस्ताद अल्लाह रखा खान साहब ने भी कई फिल्मों में संगीत दिया था। यह है उनका संगीतबद्ध किया एक गाना।

आपने देखा कि शास्त्रीय संगीत की दिग्गज हस्तियों ने फिल्म संगीत का हाथ कभी कभी पकड़ा है। जब शास्त्रीय संगीत की बड़ी हस्तियां फिल्मी गानों से जुड़ती हैं, तो फिल्म संगीत और ज्यादा निखर जाता है। ये था विश्व संगीत दिवस के मौके पर चित्र भारती का संपादकीय शास्त्रीय संगीत के दिग्गज फिल्म संगीत की दुनिया में। और अब मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह पर एक रपट। मुंबई में 15 जून से 21 जून तक आयोजित किया जा रहा है 19वां मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। इस फिल्म समारोह का आयोजन नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और भारत सरकार का सूचना और प्रसारण मंत्रालय करता है। ये एक ऐसा फिल्म समारोह है जिसमें डॉक्यूमेंट्री, शॉर्ट फिक्शन और एनिमेशन फिल्में दिखलाई जाती हैं। ये दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा और सबसे पुराना डॉक्यूमेंट्री फिल्म समारोह है। आपको बता दें कि मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आरंभ सन 1990 में हुआ था। ये फिल्म समारोह हर दूसरे बरस आयोजित किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ वृत्त चित्र को गोल्डन कॉन्च पुरस्कार दिया जाता है और 10,00,000 रुपए नगद मिलते हैं। इस समारोह में इस बरस कुल मिलाकर 55,00,000 रुपए के पुरस्कार दिए जाएंगे। प्रतियोगिता श्रेणी के सभी पुरस्कारों का निर्णय अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय जूरी के द्वारा किया जाता है। प्रतियोगिता फिल्मों के अलावा AIFF जूरी रेट्रोस्पेक्टिव, बेस्ट ऑफ द फेस्टिवल्स, MIFF प्रिज्म, कंट्री फोकस डॉक्यूमेंट्री और रीस्टोर्ड क्लासिक्स जैसे कई विशेष पैकेज इस फिल्म समारोह का हिस्सा हैं। इस फिल्म समारोह के दौरान पैनल चर्चा, एक खुला मंच, सेमिनार और डॉक्यूमेंट्री फिल्म निर्माण पर कार्यशालाएं भी आयोजित की जाएंगी। ये फिल्म निर्माताओं और फिल्म प्रेमियों के लिए एक अनूठा मंच है, जहां आकर वो अपने विविध दृष्टिकोण साझा कर सकते हैं और आगे बढ़ने के अवसरों का पता लगा सकते हैं। इस फिल्म समारोह में एक सेक्शन है प्रिज्म, जिसमें भारत और दुनिया भर की चोटी की शानदार डॉक्यूमेंट्री फिल्में दिखाई जाएंगी। इस फिल्म समारोह में वेव्स डॉक बाजार का भी आयोजन किया जा रहा है। ये एक ऐसा मंच है जो फिल्म निर्माण की यात्रा को पोषित करेगा और गति प्रदान करेगा। इसमें है एक व्यूइंग रूम, जहां रजिस्टर्ड रिप्रेजेंटेटिव को एक समूह के सामने अपनी डॉक्यूमेंट्री, लघु फिल्म या एनिमेशन फिल्म प्रदर्शित करनी होगी। इस तरह से ये जगह वितरण सौदे हासिल करने, सह निर्माताओं को आकर्षित करने और फिल्म महोत्सव स्क्रीनिंग के लिए पैसे जुटाने का एक लॉन्च पैड बनेगा। इसके अलावा एक इमर्सिव मार्केट भी है, जो पहली बार शामिल किया जा रहा है। इसमें इमर्सिव कंटेंट क्रिएटर्स, प्रोड्यूसर्स और टेक्नोलॉजी पार्टनर्स के लिए एक मिलन स्थल होगा, जहां आकर वो आपस में कोलैबोरेट कर पाएंगे। VR, AR, XR और इंटरएक्टिव अनुभवों पर केंद्रित ये मार्केट नई परियोजनाओं को प्रदर्शित करने और सहयोग को बढ़ावा देने का काम करेगा। इस बार के फिल्म समारोह में कई मास्टर क्लासेस भी आयोजित की जाएंगी, जैसे फास्ट फिल्म क्या माइक्रो ड्रामा सिनेमा का फास्ट फैशन है, या फिर विचार से रूपरेखा तक एक दृश्य की संरचना। ये थी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह पर एक रपट। और अब स्मृति शेष में आज हम नमन कर रहे हैं जानी मानी पार्श्व गायिका सुमन कल्याणपुर को। 31 मई को सुमन कल्याणपुर हमारे बीच नहीं रही। स्मृति शेष। कम लोग जानते हैं कि सुमन कल्याणपुर का जन्म 28 जनवरी 1937 को भवानीपुर बंगाल में हुआ।

0: ये जगह अब बांग्लादेश में है। पांच बहनों में सबसे बड़ी सुमन की परवरिश मुंबई में हुई। ये वो जमाना था जब लड़कियों को बाहर खेलने की इजाजत नहीं थी। ऐसे में उनकी दिलचस्पी गायन में हो गई।
1: 1953 में जब मैं आर्ट स्कूल में थी, मुझे किसी फिल्म के लिए गाने का मौका मिला, मगर केवल गाने ही रिकॉर्ड हो पाए, फिल्म नहीं बनी। उसके बाद एक मराठी फिल्म में गाना गाया, उसका नाम था शुक्राची चांदनी। लेकिन बात यह है कि उस फिल्म की चांदनी भी स्टूडियो के सेट पर भी उतरी नहीं, वो भी नहीं बन पाया। फिर उसके बाद शेख मुख्तार की फिल्म बनी मंगू, जिसका संगीत मोहम्मद शफी साहब ने दिया है। इस फिल्म के लिए मेरा गाना जब रिकॉर्ड हो रहा था तो मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। ये देख करके लता दीदी स्वयं वहां आई हैं और बहुत देर तक मुझसे बात करती रही, बिल्कुल सगी बहन की तरह।

इसके बाद उन्हें कुछ और गाने मिले, जैसे मियां बीवी राजी, बात एक रात की,

और राजकुमार। सुमन कल्याणपुर के जीवन का सबसे बड़ा दुख ये रहा कि उनकी आवाज लता मंगेशकर से मिलती जुलती थी, तभी तो उनके गानों को लता मंगेशकर के गाने समझ लिया जाता था।

0: बहुत बरस पहले सुमन कल्याणपुर विविध भारती के स्टूडियो में आई थी और उन्होंने फौजी भाइयों के लिए जयमाला कार्यक्रम पेश किया था।
1: कई वर्षों के बाद आज फिर से मुझे आपसे बात करने का मौका मिला है। आप हमें सुरक्षित जीवन प्रदान करते हैं, देश की आन बान के लिए अपने प्राणों की आहुति तक देने में पीछे नहीं हटते। लेकिन ऐसा मत सोचिए कि हम आपके लिए कुछ नहीं सोचते। हम कलाकार अपनी कला से आपका मनोरंजन करते हैं, अपने गीतों से आपके हर क्षण में सहभागी बनते हैं। आप युद्ध में हो या शांति में, सुख में हो या दुख में, परिवार के साथ हो या अकेले, भीड़भाड़ वाले शहर में हो या सीमा के एकांत मोर्चे पर, हर जगह हर पल हम अपनी कला से अपने गीतों के जरिए आपके आसपास ही रहते हैं। आप सुन पाएं या ना सुन पाएं, मगर यकीन मानिए हम आपको ही आवाज देते रहते हैं।

मुझे बचपन से ही गाने का बड़ा शौक था। मेरे पिताजी और माताजी को भी संगीत का शौक था और इसीलिए हम सब बहन भाई संगीत में रुचि रखते हैं। जब मैं स्कूल में पढ़ती थी तो उस जमाने में कुछ लोकप्रिय गीत गाया करती थी। उस जमाने के गायिकाओं में से नूरजहां जी और लता दीदी के गीत मुझे बहुत ही अच्छे लगते थे। जिन गीतों ने मुझे बहुत आकर्षित किया वो गीत एक से बढ़कर एक मधुर हैं और ऐसे कई गीत हैं जो मुझे बहुत ही पसंद हैं। जब भी कोई नया गीत हमें मिल जाता तो मैं और मेरी सहेली शारदा बल से हमारे छत पर बैठकर अक्सर वो गीत गाया करते थे। उनमें से कुछ गीतों की शुरुआत मैं आपको गाकर बताती हूँ। नूरजहां जी का ये गाना मुझे बहुत पसंद है। सखी रे नहीं आए सजन वामूर, सखी रे नहीं आए सजन।

0: मुझे याद है लता दीदी एक बार हमारे पड़ोस में आई थी। तब मैं स्कूल में पढ़ती थी। मैं बार बार इधर से उधर उधर से इधर आ जा रही थी, बस लता दीदी को देखने के लिए, कुछ बोलने के लिए। मगर बोलना तो क्या, उनको देख भी ना पाई। खैर, धीरे धीरे समय बीत गया, मैं भी बड़ी हो गई।
1: एक समय ऐसा आया जब लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी के बीच रॉयल्टी को लेकर मनमुटाव हो गया था। ऐसे में लता जी ने रफी साहब के साथ गाना बंद कर दिया था। इस पूरे दौर में सुमन कल्याणपुर ने मोहम्मद रफी के साथ कई युगल गीत गाए। फिल्म दिल ने फिर याद किया।
2: फिर कोई
1: फिल्म सूरज।

सुमन जी के गीतों में शामिल हैं कुछ भोजपुरी गाने भी। सुमन कल्याणपुर चली गई लेकिन उनकी आवाज हमेशा कायम रहेगी और हमारे मन की वादियों में यादों के फूल खिलाती रहेगी।

0: नमस्कार, संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं डॉक्टर विवेक करमहे का शास्त्रीय गायन।
1: नमस्कार, इन टुडेज नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक वी आर गोइंग टू ब्रॉडकास्ट अ क्लासिकल वोकल परफॉर्मेंस बाय डॉक्टर विवेक करमहे।
0: सुरों के प्रति अगाध समर्पण और रागों की शुद्धता जब किसी साधक के कंठ से प्रस्फुटित होती है तो संगीत का एक नया अध्याय जन्म लेता है। भारतीय शास्त्रीय संगीत के आकाशदीप पर ऐसा ही एक दैदिप्यमान नाम है डॉक्टर विवेक करमहे। 15 से अधिक वर्षों के अनवरत रियाज और देश विदेश के प्रतिष्ठित मंचों पर अपनी मंत्रमुग्ध कर देने वाली प्रस्तुतियों से आपने शास्त्रीय संगीत जगत में अपनी एक अमिट छाप छोड़ी है।
1: When profound dedication of musical notes and the purity of ragas spring forth from the voice of a devotee practitioner, a new chapter in music is born. One such radiant name shining on the firmament of Indian classical music is Dr. Vivek Karmahe. With over 15 years of relentless practices and spellbinding performances on prestigious stages in India and abroad, he has left an indelible mark on the world of classical music.
0: स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर स्वर्ण पदक विजेता तथा संगीत में डॉक्टरेट की उपाधि से विभूषित डॉक्टर विवेक ने पद्मश्री पंडित उल्हास कशालकर, विदुषी गिरिजा देवी, श्री ओंकार दादरकर और श्रीमती कुमुदिनी मुंदकुर जैसे महान संगीत मनीषियों के सानिध्य में इस कला की सूक्ष्मताओं को आत्मसात किया है। आकाशवाणी के ए ग्रेड प्राप्त कलाकार डॉक्टर विवेक जब तानसेन समारोह और पंडित कृष्णराव शंकर पंडित समारोह जैसे ऐतिहासिक मंचों पर अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं तो श्रोता भाव विभोर हो उठते हैं। भूटान, नेपाल, श्रीलंका से लेकर दक्षिण अफ्रीका, मॉरिशस और संयुक्त अरब अमीरात तक भारतीय संस्कृति का परचम लहराने वाले डॉक्टर विवेक आज के दौर में शास्त्रीय गायन की एक प्रखर और प्रेरक आवाज है।
1: A gold medalist at both the undergraduate and postgraduate levels and honored with a doctorate in music, Dr. Vivek assimilated a subtle nuances of this art under tutelage of great musical maestros such as Padma Shri Pandit Ulhas Kashalkar, Vidushi Girija Devi, Shri Onkar Dadarkar and Srimati Kumudini Mundukur. An A-grade artist of All India Radio, when Dr. Vivek showcases his art of historic stages like the Tansen Samaroh and Pandit Krishnarao Shankar Pandit Samaroh, the listeners are left utterly spellbound. Proudly flying the flag of Indian culture from Bhutan, Nepal and Sri Lanka to South Africa, Mauritius and United Arab Emirates. Dr. Vivek is a brilliant and inspiring voice of classical vocal music in today's era.
0: Dr. Vivek Karmahe अपनी गायन की शुरुआत राग श्री से कर रहे हैं। विलंबित रचना तिलवाड़ा ताल में निबद्ध है जिसके बोल है वारी जाऊं रे तुम पे। द्रुत रचना तीन ताल में है जिसके बोल है चलो रे माई राम सिया दर्शन। आपके साथ हारमोनियम पर संगत कर रहे हैं रविंद्र किल्लेदार और तबले पर निशांत शर्मा।
1: डॉक्टर विवेक करमहे इज कमेंसिंग हिज रिसाइटल विद राग श्री। द विलंबित कंपोजिशन इज सेट टू तिलवाड़ा ताल विद द लिरिक्स वारी जाऊं रे तुम पे। द द्रुत कंपोजिशन इज इन तीन

ये था राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती का इस महीने का अंक। शोध, आलेख, स्वर और संपादन यूनुस खान, प्रस्तुति अनुश्री पाठक। राष्ट्रीय प्रसारण के लिए फिल्म पत्रिका चित्र भारती का निर्माण विविध भारती मुंबई में किया गया।

0: रागश्री में अभी आपने सुना डॉक्टर विवेक करमहे का गायन। डॉक्टर विवेक करमहे अब प्रस्तुत करने जा रहे हैं राग बागेश्री। विलंबित रचना एक ताल में है जिसके बोल हैं कौन गत भई। द्वित रचना भी एक ताल में निबद्ध है जिसके बोल हैं बेग बेग बेग बेग आओ।
1: You were just listening to Dr. Vivek Karmahe's rendition in Raag Shri. Dr. Vivek Karmahe is now going to present Raag Bageshri. The Vilambit composition is in Ektal with the lyrics Kaun Gat Bhai. The Drut composition is also set to Ektal with the lyrics Beg Beg Beg Beg Aao.

0: था डॉक्टर विवेक करमहे का गायन राग बागेश्री। डॉक्टर विवेक करमहे अपने गायन का समापन राग सोहिनी से कर रहे हैं। मध्य लय तीन ताल में निबद्ध रचना की बोल है देख देख मन ललचाई, और द्रुत तीन ताल में निबद्ध रचना की बोल है रंग न डारो श्याम जी।
1: That was Dr. Vivek Karmahe's vocal rendition in Raag Bageshri. Dr. Vivek Karmahe is concluding his recital with Raag Sohini. The Madhyalay composition set to Teen Taal has the lyrics Dekh Dekh Man Lalchai. And the Drut composition set to Teen Taal has the lyrics Rang Na Daro Shyamji.

0: डॉक्टर विवेक करमहे के द्वारा प्रस्तुत ये था राग सोहिनी। आपके साथ हारमोनियम पर संगत कर रहे थे रविंद्र किल्लेदार और तबले पर निशांत शर्मा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर की प्रस्तुति थी। इसके साथ ही आज की अखिल भारतीय संगीत सभा संपन्न होती है।
1: That was Raag Sohini presented by Dr. Vivek Karmahe. Accompanying him were Ravindra Killedar on harmonium and Nishant Sharma on tabla. This program was presentation of Akashwani Indore. With this, today's national program of music comes to an end.

0: अवसर पर ओडिशा के मयूरभंज जिले के रायरंगपुर में एक जनसभा में ये बात कही। राष्ट्रपति ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक नेताओं के साथ अपने दूरदर्शी शासन और संपर्क के जरिए वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाया है।
1: देशर प्रधानमंत्री भावे दायित्व ग्रहण करिवा दिनरु
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना पदभार संभालने के बाद से राष्ट्रीय हित में कई कदम उठाए हैं। इस महीने उन्होंने लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल पूरा करने का रिकॉर्ड बनाया। मैं सभी नागरिकों की तरफ से इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए उन्हें बधाई देती हूं। मैं कामना करती हूं कि वे देश के लोगों के हित के लिए निरंतर काम करते रहें और भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का सपना साकार करने में राष्ट्र का नेतृत्व करते रहें।
1: यह मोर आंतरिक कामना।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं से सशक्त होकर जनजातीय समुदाय भारत के विकास में सक्रिय योगदान दे रहे हैं। उन्होंने पूर्वी भारत के विकास में तेजी लाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार के पूर्वोदय दृष्टिकोण का भी उल्लेख किया।
3: ओडिशा में आर्थिक गतिविधियां, निवेश और उद्योगों को आकर्षित करने का सामर्थ्य आज नजर आ रहा है। केंद्र सरकार का विजन है पूर्वी भारत के विकास से भारत का विकास। इसलिए हम पूर्वोदय की नीति पर काम कर रहे हैं। जिस पूर्वी भारत को कांग्रेस के दौर में पिछड़ेपन का पर्याय बना दिया गया था, आज वो प्रगति का प्रवेश द्वार बन रहा है।
0: बाद में प्रधानमंत्री हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंगाल दिवस समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने कहा कि इन परियोजनाओं से राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किश्त के रूप में 18,880 करोड़ रूपये जारी किए। प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे देश भर के 9,44,00,000 से अधिक किसान को लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री कोलकाता में कल आईएनएस दुनागिरी, आईएनएस संशोधक और आईएनएस आग्रह का अनावरण करेंगे। इन पोत में 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है। 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल विश्वभर में मनाया जाएगा। इस वर्ष का विषय है बढ़ती उम्र के प्रभाव को रोकने के लिए योग। मुख्य कार्यक्रम कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर आयोजित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में योगाभ्यास के दौरान राष्ट्र का नेतृत्व करेंगे। रेड रोड पर राष्ट्रीय कार्यक्रम सुबह 5 बजे शुरू होगा। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 की पुनः परीक्षा कल आयोजित की जाएगी। ये पुनः परीक्षा भारत के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में होगी। इस पुनः परीक्षा में 22,79,000 से अधिक परीक्षार्थी शामिल होंगे। महाराष्ट्र के परभणी जिले के मनवथ तालुका में आज एक निर्माणाधीन मंदिर का एक हिस्सा गिरने से कम 5 श्रद्धालुओं की मौत हो गई और लगभग 40 अन्य घायल हो गए। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस त्रासदी पर गहरा दुख व्यक्त किया। उन्होंने प्रत्येक मृतक के परिवार को 5,00,000 रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की। चेन्नई में भारत ने तीसरे और अंतिम एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान को 9 विकेट से हराकर श्रृंखला 3-0 से जीत ली है। भारत ने 29वें ओवर में 1 विकेट पर 224 रन बनाकर जीत हासिल की। 5 विकेट लेने वाले प्रसिद्ध कृष्णा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। और मौसम विभाग ने कल पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्र और सिक्किम में अत्यधिक तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने अगले 2 दिनों तक असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर। अब से कुछ ही देर बाद समाचार होंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत हमेशा शांति और सहयोग का पक्षधर रहा है, क्योंकि जटिल वैश्विक मुद्दों और युद्ध जैसे संकटों का समाधान केवल संवाद और कूटनीति से ही संभव है। राष्ट्रपति ने मोहन चरण मांझी सरकार के दो वर्ष पूरे होने के